धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में इंसान जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नेक जिंदगी बसर करने लगता है तो अल्लाह सुभान व तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है, उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह सुभान व तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुभान व तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पाले। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो। लालच में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद को तकलीफ हो। कहावत है, खाना पराया है पेट तो पराया नहीं, यानी खाना पेट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्चे कितना ही उम्दा और नफीस हो, क्योंकि बदहजमी का अंदेशा होता है। अरबी जबान की कहावत है, अल्कम लखम अल्जमाली व गुम गबल अर्रिजाली, यानी ऊंट की तरह खाओ और दूसरों से पहले दस्तरखान से उठ जाओ। ऊंट जब दरख्तों के पत्तों को खाता है तो बड़ी एहतियात से मुंतखब करता है। ऊंट इन पत्तों को अपने होंठों से इस तरह उठाता है जैसे बागबान दरख्तों के फल तोड़ता है। ऊंट जमीन से जो भी पौधे खाता है वो उन्हें खाने की ख्वाहिश के मुताबिक लेता है, लेकिन वो उनकी जड़ों को नहीं उखाड़ता जैसे दूसरे जानवर करते हैं। ऊंट खाने के वक्त अपना सर उठाता है, दाएं बाएं देखता है। वैसे कुरानी आयात के मुताबिक ऊंट तो बजाते खुद पूरी ही अल्लाह ताला की मुकम्मल निशानी है, लेकिन यहाँ जिस मायने में ऊंट की मिसाल दी जा रही है इसका मतलब ये है कि हम खाने के आदाब की पाबंदी करें और लोगों के दस्तरखान से उठने से पहले हम खुद दस्तरखान से उठ जाएं। इस कहावत में हमारे लिए सबक ये है कि खाने में इत्तेदाल और एहतियात ज़रूरी है और हमें दूसरों के साथ शाइस्तगी और हुस्न सुलूक के साथ पेश आना चाहिए।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमारे खानों का लाजमी हिस्सा है, मगर ये कि वो सेहत के लिए कुछ खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों अफराद ज्यादा नमक खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यानी आज हम बात करेंगे नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में, जो कि बहुत ही हमें टेस्टी लगता है और हम समझते हैं। बात भी यह है कि कोई भी खाना इतना ज़्यादा लजीज नहीं हो सकता अगर उसमें नमक शामिल ना हो। लेकिन आज हम जानेंगे कि नमक की सही मिकदार कितनी है और ज़्यादा नमक कैसे नुकसान पहुँचाता है। नमक में सॉल्ट में सोडियम होता है जो कि जिस्म के पानी और जो उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनकी जो बैलेंस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा नमक का मतलब यह है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और फिर गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं। दुनिया की सेहत की तंजीम यानी कि WHO ने कहा है कि एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, यानी तकरीबन 1 चम्मच। हकीकत यह है कि हम अक्सर इससे 2-3 गुना ज़्यादा ही सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पैक्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, चिप्स है या अचार हैं, चटनियाँ हैं, उनमें छुपी हुई सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रोज़ाना बिस्किट खाते हैं और इसमें 1-2 ग्राम नमक होता है, तो उसमें खाने में 3-4 ग्राम सॉल्ट शामिल करते हैं, तो फिर तकरीबन 10-12 ग्राम नमक हम हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। करना हमने ये है कि खाने में कम सॉल्ट डालिए और जायके के लिए लेमन या हर्ब्स, हल्दी या ग्रीन चिली जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को ज़्यादा नमकीन चीज़ें देने से आप गुरेज कीजिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड जहाँ तक हो सके कम इस्तेमाल कीजिए। अपने दस्तरखान पर सॉल्ट की जो बोतल है वो कम रखिए, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सकें। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर की हदायत से लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना खाने का रिकॉर्ड रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितना नमक इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, नमक सॉल्ट जिंदगी की ज़रूरत है, मगर ज़्यादा सॉल्ट बीमारी की जड़ है। तो आज ही से ये आदत डाल लीजिए, कम सॉल्ट और ज़्यादा सेहत। हेल्थ फॉर ऑल,
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107 दिल से देसी।
4: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका नाम था माला। माला वो थी जो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। माला का घर बहुत सादा और छोटा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने शहर की सबसे मशहूर और हुनरमंद आर्टिस्ट थी। उसकी तस्वीरें बहुत खूबसूरत हुआ करती थीं। वो अपनी पेंटिंग्स को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज समझती थी। हर रंग और ब्रश की एक एक लहर उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। माला का नाम बहुत मशहूर हो गया था। लोग उसे अपनी एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स में बुलाते थे। हर जगह लोग उसकी बनाई हुई तस्वीरों की दाद दिया करते थे। उसकी तारीफें ही तारीफें सुनने को मिलती थीं। लेकिन माला की ना अपनी ही एक दुनिया थी। वो हमेशा अपने कामों में ही मसरूफ रहती थी और कभी भी अपने आसपास के लोगों से अच्छे तरीके से मिलने की कोशिश नहीं करती थी। उसका वक्त सिर्फ अपने रंगों में मसरूफ रहकर अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाने में गुजर जाता था। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने गांव को पूरी तरह से लपेट लिया। ये तूफान पूरे गांव में तबाही मचा गया। घर, पेड़ और यहाँ तक के फर्श तक सब कुछ बारिश और तूफान की हवाओं में तहस नहस हो गया। इस सब में बेचारी माला का घर भी टूट गया और जब वो अपनी पेंटिंग्स ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसकी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स पानी में डूब चुकी थीं। अब उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी बनाई हुई पुरानी तस्वीरें ढूंढने लगी, लेकिन वो सब कुछ पानी में बह चुका था। माला के दिल में गम और उदासी थी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि उसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बनाने में गुजार दिया था और अब उसके आसपास कुछ भी नहीं रह गया था। दोस्तों, माला को ये सब कुछ हो जाने के बाद ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि माला ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ पेंटिंग्स बनाने में ही गुजार दी थी। ना उसने कभी कोई दोस्त बनाया और ना ही उसे अब तक कोई सच्ची खुशी मिली थी। ये सब सोचते सोचते माला बहुत उदास हुई और वो ऐसे ही गांव के रास्तों पर चलती जा रही थी। वो जिस गली में भी जाती वो यही देख रही थी कि लोग दोबारा अपना घर बना रहे थे, क्योंकि तूफान और आंधी की वजह से लोगों के घर दरहम बरहम हो गए थे। सब घर वाले मिलकर काम कर रहे थे, लोग आपस में खाना तक शेयर कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वहाँ एक अजीब ही नया रंग देखने को मिल रहा था, एक नई उम्मीद थी। माला ने ये नोट किया कि लोग अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनके दिल में एक दूसरे के लिए दर्द था और वहीं एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी। माला को ये देखकर बहुत कुछ समझ आया। उसने सोचा कि जितना वक्त उसने अपनी पेंटिंग्स के साथ गुजारा, अगर वही वक्त वो लोगों के साथ गुजारती तो शायद उसे कोई सच्ची खुशी मिल पाती। और उस दिन माला ने ये फैसला किया कि वो अपने पुराने लाइफस्टाइल को टोटली बदल देगी और अब वो दूसरों की मदद करने में वक्त गुजारा करेगी। वो सिर्फ अपनी पेंटिंग्स और तस्वीरें नहीं बनाएगी बल्कि दूसरों के साथ अपनी खुशी भी शेयर करेगी। माला ने अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाते हुए अपनी पुरानी सारी चीजों को बेच दिया और जो कुछ बच गया वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों में तकसीम कर दिया। वो अपने दोस्तों की मदद करने लगी, उनके साथ अपना खाना शेयर करने लगी और तो और अपने दोस्तों की मदद से अपने घर को भी सुधारने लगी। उसने सीखा कि असली दौलत किसी चीज में नहीं होती बल्कि दूसरों के साथ प्यार और दोस्ती में होती है। माला ने अपने दिल से अपनी पुरानी सोच को बिल्कुल निकाल दिया था और अब वो हर दिन खुशी से अपने पड़ोसियों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बना रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और वो अब लोगों से मिलकर बहुत खुश होती थी। वो जान गई थी कि असली दौलत ये नहीं कि हम तस्वीरें बनाते रहें और चीजों को जमा करते रहें, बल्कि उसे ये समझ में आ गया कि दूसरों के साथ अपने जज्बात, अपना वक्त और अपनी मदद शेयर करने में ही असली खुशी है।
जब माला ने ये नया तरीका अपनाया तो उसको बहुत खुशी मिली। गांव के लोग भी उसकी मदद से बहुत खुश हुए। माला अब दूसरों के साथ मिलकर अपना दुख भूल गई थी और दूसरों के दुख में उनकी मदद करके अपने दर्द को हल्का महसूस कर रही थी। माला के दोस्त और पड़ोसी सब ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नया रंग दिया। अब माला का दिल बहुत बड़ा हो गया था। उसने सीखा था कि असली दौलत वो नहीं जो हम अपने आस पास रखी हुई चीजों में ढूंढते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। उस दिन के बाद माला के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। उसकी तस्वीरें अब भी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग उसकी दोस्ती और दूसरों के लिए हमदर्दी था। वो अब ये बात समझ गई थी कि असली दौलत चीजों में नहीं होती, बल्कि असली दौलत तो दूसरों के साथ अपना वक्त, अपना प्यार और उनकी मदद करने में होती है। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखिएगा, हकीकत में गरीब वो लोग हैं जो वक्त की कदर नहीं करते और दूसरों के लिए कुछ नहीं करते।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई साइकिल। मेरा मतलब है आज एक नई टर्म पे बात करेंगे। बड़ी कमाल की इकोनॉमिक टर्म है और इसका नाम है बिजनेस साइकिल। हाँ जी, तो क्या आपने इससे पहले बिजनेस साइकिल के बारे में सुना या पढ़ा है? शायद कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ और कुछ लोगों का जवाब होगा ना। कुछ लोगों का जवाब होगा टर्म तो सुनी है पर खास इसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए अब आपको पता लगेगा। मेरा मतलब है मैं अब आपको अच्छे से इस टर्म को एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, बिजनेस साइकिल का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो किसी भी इकोनॉमी में तब आती है जब फिनेंस, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और आम लोगों की जिंदगी उससे मुतासिर होती है। वेल, देखा जाए तो बिजनेस साइकिल के चार इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं: पहला एक्सपेंशन, दूसरा पीक, तीसरा रिसेशन, ये तो आपने सुना ही है, और चौथा ट्रॉफ। वेल, धीरे धीरे इन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सपेंशन क्या है और इसका बिजनेस साइकिल से क्या ताल्लुक है? वेल, किसी भी इकोनॉमी का ये हाल या किसी भी इकोनॉमी में ये सिचुएशन तब होती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इजाफा होता है। लोगों का खर्च बढ़ता है जिसकी वजह से बिजनेसेस को भी फायदा होता है। चलो एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए किसी एरिया में नई फैक्ट्री खुलती है और लोगों को काम मिलता है तो इससे लोकल इकोनॉमी को पुश मिलता है, या यूं कहें कि लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। लोग आपस में खर्चे करते हैं और शॉपिंग करते हैं और इससे बिजनेसेस की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो ये है एक्सपेंशन। वहीं बिजनेस साइकिल का दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पीक। ये सिचुएशन एक्सपेंशन के हमेशा बाद आती है। पीक पर इकोनॉमी अपनी हाईएस्ट ग्रोथ पॉइंट पर होती है, लेकिन इस वक्त प्रोडक्शन और डिमांड भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं। कैसे? मान लेते हैं एक पीक वक्त पर अगर ज्यादा डिमांड होने से फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होती हैं, तो ये उनका मैक्सिमम आउटपुट होता है, लेकिन जब डिमांड का लेवल थोड़ा गिर जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो जाता है। तो ये हुआ पीक। वही अब तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं जो कि है रिसेशन। दोस्तों, इस सिचुएशन को आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकाउंटर किया ही होगा। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब कम होने लगती हैं तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है रिसेशन। लोग खर्च करने में हिचकिचाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाता है और बिजनेसेस की अर्निंग्स भी कम हो जाती हैं। मान लीजिए जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हाँ, लोगों का खर्चा कम हो गया था और इस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। बहुत से लोगों की सेविंग्स भी खत्म हो गई और बिजनेसेस बंद हो गए। तो ऑल टुगेदर ये सिचुएशन कहलाती है रिसेशन का पीरियड। वहीं आखिरी एलिमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये है ट्रफ। ये बिजनेस साइकिल का सबसे निचला एलिमेंट है। इस वक्त इकोनॉमी सबसे कम ग्रोथ पॉइंट पर होती है, लेकिन ये स्टेज ट्रांजिशन की सबसे रेडीनेस या सबसे रेडी सिचुएशन को दिखाता है। ट्रॉफ से या ट्रॉफ के बाद फिर से एक्सपेंशन ही शुरू होता है। मान लेते हैं कि जब इकोनॉमी ट्रॉफ का सामना कर रही होती है तो लोगों के पास कम पैसे होते हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट अक्सर स्टिमुलस पैकेजेस और पॉलिसी बना के इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करती है। यानी जैसे इकोनॉमी सुधरती है वापस से एक्सपेंशन पे पहुंच जाती है। तो हुई ना ये बिजनेस साइकिल, एक्सपेंशन से शुरू होके ट्रॉफ पर पहुंचे और ट्रॉफ से फिर वापस एक्सपेंशन पर। दोस्तों, बिजनेस साइकिल का इकोनॉमी पर भी स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है। सबसे ज्यादा बिजनेस साइकिल जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर असर डालती है। बिजनेस साइकिल की वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत तब्दीली होती है। जब एक्सपेंशन होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, और रिसेशन होता है तो लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं। वहीं पर बिजनेस साइकिल का असर डिमांड और सप्लाई पर भी पड़ता है। डिमांड और सप्लाई के लॉस का असर भी बिजनेस साइकिल पर ही होता है। जब इकोनॉमी छोटी होती है तो डिमांड कम होती है, जो सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करती है। वहीं पर देखा जाए तो बिजनेस साइकिल का असर इन्फ्लेशन को भी दिखाता है। जब इकोनॉमी एक्सपेंशन पर होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। रिसेशन के दौरान इन्फ्लेशन गिरता है, यानी चीजें सस्ती हो जाती हैं। वहीं बिजनेस साइकिल का असर इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है। बिजनेस साइकिल का असर इन्वेस्टमेंट पे खास तौर पर तब पड़ता है जब इकोनॉमी अपने नीचे एक्सपेंशन पर चल रही हो। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो बिजनेसेस नए प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिसेशन में इन्वेस्टर्स अपने खर्चों को रोकने की कोशिश करते हैं। तब आप तो समझ ही गए होंगे कि बिजनेस साइकिल का इकोनॉमी पर कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस साइकिल एक बेहद अहम कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी की हालत और उसकी एक्टिविटीज को समझाने में काफी यूजफुल होता है। इस साइकिल की हर एलिमेंट को समझना जरूरी है ताकि लोग और गवर्नमेंट सही तौर पर पॉलिसीज बना सकें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकें। बिजनेसेस को भी इन साइकिल्स का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो खुद को बेहतर तरीके से प्रिपेयर या तैयार कर सकें, चाहे फिर एक्सपेंशन के लिए हो या फिर रिसेशन के लिए हो। ये साइकिल सब लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, इसलिए इस पर तवज्जो देना बेहद जरूरी है। तो मैंने कोशिश की कि आज आप इस पर तवज्जो दें, यानी थोड़ा सा बिजनेस साइकिल को समझें। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं कुछ हद तक कामयाब हुई हूँ आपको समझाने में। वेल, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में वापस से हाजिर होंगी एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की।

फुटबॉल में ऐसे तो कई लेजेंडरी फुटबॉलर्स हैं, मुबारक मुस्तफा उनमें से एक हैं। डोमेस्टिक स्कूल लीग में खेलने के दौरान मुबारक टैलेंट स्काउट्स के नजरों में आए और मुबारक ने अल अरबी जूनियर टीम के दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट किया और स्क्वाड में अपनी कारकर्दगी की बदौलत अपनी छाप छोड़ी। इनफैक्ट फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड स्टेज ही शोड हिज टैलेंट दैट वाज नॉट टू बी हिडन फ्रॉम एनीवेयर। इसके बाद अल अरबी में मुबारक ने 1990 से 2003 तक अपनी टॉप लेवल फुटबॉल खेलते हुए एक मकाम बनाया। ही बिकेम टू बी नोन एज एन अल अरबी लॉयल फुटबॉलर। कतर स्टार्स लीग में 1991-92, 1992-93 और 1996-97 एडिशंस में तीन मर्तबा हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुबारक किस किस्म के खिलाड़ी थे। जाहिर सी बात है कि मुबारक को बैरूनी मुल्क से कई ऑफर्स मिले, मसलन तुर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन से भी। फुटबॉल को अलविदा कहने के बाद मुस्तफा अल अरबी क्लब के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी बने, क्योंकि अल अरबी क्लब के ऑफिशियल्स, अल अरबी क्लब के मैनेजमेंट उनको ये देना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव सर्विस टू द क्लब। 2009 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से मुबारक को एनुअल आइडियल प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को जीतने वाले मुस्तफा पहले कतरी फुटबॉलर थे।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: का है, यू कैन ट्राई इट. पर दूसरा हैक है, चिप्स को हमेशा आप क्रिस्पी कैसे रखें. यस, चाहे वो पोटैटो चिप्स हो या किसी भी तरह के चिप्स हो, जब आप उनका पैकेट खोलते हो और दोबारा बैंड लगाकर बंद करते हो तो वो सिल जाते हैं. तो उन्हें खुले या बंद जैसे भी स्थिति में है, अगर आप सीधा फ्रीजर में रख देंगे तो कमाल हो जाएगा. डोंट वरी, वो जमेंगे नहीं, बस ठंडे हो जाएंगे. और ट्रस्ट मी, वो कभी भी स्टेल नहीं होंगे, हमेशा आपको फ्रेश मिलेंगे और करारे करारे. सो डू ट्राई दिस और हमें जरूर बताइए. फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi. Har hafte ki sabse zaruri update, MOI Weekly Update Program. MOI Weekly Update Program. Wizarat-e-Dakhila ki har ek activity, zaruri khabrein aur aap aur aapki family ke liye important awareness. Sab kuch milega yahan. Sab kuch milega yahan. Tune karein har Wednesday sham 7:15 baje FM 107 aur janiye wo sab jo aapke liye matter karta hai. MOI Weekly Update, aapka weekly dose of news and much more. Don't miss it. Don't miss it.
2: Qatar ka pehla desi radio station FM 107, dil se desi.
3: Assalamualaikum listeners, aap sun rahe hain Green Path, ek aisi journey jahan hum baat karte hain environment ki behtri, sustainable lifestyle aur Qatar ke vision 2030 ke goals ki roshni mein. Har roz ek nayi baat, ek nayi soch aur chote-chote habits jo bana sakte hain ek bada farq. To chaliye shuru karte hain aaj ke episode. आज हम जीरो वेस्ट लिविंग के बारे में बात करेंगे. इसका मतलब है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे चॉइसेस करें जिससे वेस्ट कम हो. किचन वेस्ट को कंपोस्ट करें जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है और लैंडफिल में वेस्ट को कम करता है. सिंगल यूज आइटम्स जैसे प्लास्टिक बॉटल्स और बैग्स को

0: करें। रीयूजेबल बॉटल्स, बैग्स और कंटेनर्स का यूज करें। पुरानी चीजों को नई चीजों में बदलना जीरो वेस्ट का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए पुराने टी शर्ट्स को रग्स में बदल सकते हैं। जब भी पॉसिबल हो बल्क में शॉपिंग करें, ये पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करता है। जीरो वेस्ट लिविंग आपको ज्यादा माइंडफुल बनाता है और आप अपने एनवायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तफहीमुल कुरान। इस प्रोग्राम में सामिने किराम हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़हाम व तफहीम का ये मरहला बहुत ही अहम है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इल्म हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। आप सब जानते हैं कि अब तो तमाम तर लेक्चर और ये सब सब दस्तरस में है। मालूमात के एक वसी समंदर हमारे सामने हर वक्त मौजूद है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या हर मालूमात इल्म होती है और क्या हर इल्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। चलें अब रुख करते हैं कुरान की तरफ और देखते हैं कि कुरान हमें सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है। कुरान करीम बार बार हमें दावत देता है कि ज़मीन में गौर करो, आसमानों पर नज़र डालो, अपनी ज़ात में फ़िक्र करो और फिर इस मारिफत के ज़रिए अपने रब को पहचानो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से हकीकी खशियत रखने वाले वो हैं जो मारिफत और इल्म रखते हैं। वह इल्म की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसके अंदर अल्लाह की खशियत हो। आज की गुफ्तगू में हम बहुत ही एक अहम हकीकत पर गौर करेंगे। वो ये कि अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी डॉक्टरी या कोई अच्छे सर्टिफिकेट्स हो तो वो बहुत इल्म वाला है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें बताता है कि इंसान की असल कदर उसके दिल, उसके अखलाक और उसकी नीयत से होती है। कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद था क्योंकि उनके दिल ईमान से भरे हुए थे, उनके अखलाक बेहतरीन थे और उनके अंदर मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत थी। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि किसी के पास बहुत इल्म होता है, लेकिन अगर उस इल्म के साथ इखलास ना हो तो वो इल्म इंसान के लिए वबाल भी बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहायत अहम तंबीह फरमाई कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग इल्म अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि दुनिया हासिल करने के लिए सीखेंगे।

0: रुकावट है। लेकिन इस्लाम में रिवायत का मतलब ये नहीं कि इंसान सोचना छोड़ दे, बल्कि रिवायत का मतलब है कि सदियों की इल्मी मेहनत, तजुर्बे और हिकमत को समझकर आगे बढ़ना। हमारे उलमा ने हमेशा इख्तिलाफ किया, बहस की, तहकीक की, इश्तिहाद किया। इसीलिए हर दौर के मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़माने के मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझे, न कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करे। समने किराम, कुरान बार बार बताता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती है, आसानी भी। मुश्किलात भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। हम अक्सर मुसीबत से घबरा जाते हैं, लेकिन कितने मरतबा ऐसा हुआ कि एक मुश्किल ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया, एक बीमारी ने हमें दुआ सिखा दी, एक नुकसान ने हमें सब्र सिखा दिया, एक नाकामी ने हमें आजिज़ी सिखा दी। इसीलिए कुरान फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन इसी के साथ अल्लाह सब्र करने वालों को खुशखबरी भी देता है। इस्लाम की एक अजीम तालीम रहमत और हमदर्दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। समझ कराम, ये पूरा माशरती निज़ाम है इस जुमले में कि अगर मैं दूसरों के दर्द को महसूस करूं, मैं जुल्म नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि जिस तकलीफ को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो किसी और के लिए भी पसंद नहीं करनी चाहिए। समझने कराम, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी दिल का सख्त हो जाना है। जब इंसान दूसरों की तकलीफ महसूस करना छोड़ दे, जुल्म उसे मामूली लगने लगे, खून बहाना आसान महसूस होने लगे, तब मुआशरा तबाह होने लगता है। कुरान हमें उसके बरक्स दिल की नरमी सिखाता है, रहमत सिखाता है, अदल सिखाता है, एहसान सिखाता है, और यही अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत थी। तो समझने कराम, प्रोग्राम में अब तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है इससे हमें चंद बुनियादी असबाक मिलते हैं। वो ये कि इस्लाम के हवाले से इस्लाम के मुख्तलिफ अहकाम पर जो शकूक और शुबहात के नारे लगाए जाते हैं, ये सवालात नए नहीं, कुरान ने हर दौर में उनका जवाब दिया है। इल्म के साथ अखलाक भी ज़रूरी है। मज़ीद हमने ये भी बताया कि मुश्किलात इंसान की तरबियत का ज़रिया बनती हैं, दूसरों का दर्द महसूस करना ईमान की निशानी है, और सबसे बढ़कर एक मुसलमान का किरदार रहमत, शुक्र और ज़िम्मेदारी का आहना होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे दिलों को नरम करे, हमारे अखलाक को संवारे, और हमें कुरान की रोशनी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। समय कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में रुख करते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। फासिल वन वासिल, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम एक्सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के सिलसिले में, जहां हमारी गुफ्तगू चल रही थी शुरू से कि इल्म किस तरह इंसान को अल्लाह की मारिफत तक पहुंचाता है, और ये भी बताया हमने कि दीन का असल हुस्न सिर्फ मालूमात में नहीं बल्कि अखलाक, रहम और एहसास ज़िम्मेदारी में है। अब प्रोग्राम के इस मरहले में एक नहायत ही अहम सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वो ये कि आखिर इंसान इस दुनिया में आया क्यों है। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसके जवाब में काफ़ी गहराई है, और काफ़ी मरतबा जब हम इसे सुनेंगे तो शायद इसकी हकीकत तक हम पहुंच सकते हैं।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: एफएम 107 टाइम चेक। Assalamu alaikum and good morning. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और मैं आ गई हूँ एक दफा फिर आप लोगों के साथ। 6:00 हो रहे हैं, 2 मिनट मेरे और आपका साथ रहना है 9 बजे तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी इतनी जिंदगियों को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। सुबह का आगाज अच्छा हो गया होगा और आप इस वक्त अपनी जिंदगी के मामला में बिल्कुल रवा दवा होंगे, कुछ भी कहीं पे भी कोई मामला फंसा हुआ नहीं होगा। खैर जी, आज सुबह का आगाज हमें थोड़ी सी दुआ के साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जो मेरी इर्द गिर्द हालात हाजरा के ऊपर नजर पड़ी है उससे लग रहा है कि थोड़ी सी टेंशन कुछ हो रही है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ही रखे, इंशाल्लाह ताला सारे के सारे मामला जो है वो इन कंट्रोल रहें और सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहें स्मूथली इंशाल्लाह ताला सबकी जिंदगियों में। तो इसी दुआ के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो गई होगी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मेरा जो मतलब आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी लो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब ठीक है। खैर जी, तो आज का सीन क्या है? आज भी वही सब कुछ होगा डेफिनेटली जो हमारे शो का रोज़ का फॉर्मेट है, यानी हम आपसे कुछ खबरें वबरें शेयर करेंगे, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या क्या होता है दुनिया भर में और फिर बाकी और सारी चीज़ें सवाल भी करेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। आपको बताएंगे कि आज क्या है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उस पर आप अपनी राय अपना जो भी है जवाब ज़रूर दीजिएगा। और रोज़ाना कोशिश, जैसे आपको पता ही है कि हल्के फुल्के सवालात की होती है, तो ऐसे ही आज भी हल्का फुल्का सा ही सवाल आपके लिए होगा जिसके बारे में आप बताएंगे, अपने दिल का हाल सुनाएंगे और हम सुनेंगे। और सुनाने के लिए नंबर्स हैं हमारे 4434377 और साथ ही 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और शामिल ज़रूर होइएगा क्योंकि आप शामिल होते हैं तभी मज़ा आता है, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो आप डेफिनेटली कॉल कीजिएगा थोड़ी देर के बाद और फिर शामिल होइएगा, मैसेज कीजिएगा, आपके मैसेज हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अब सबसे पहले असकार पे जाने से पहले आज की तहरीर पर। और आज की तहरीर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से मेरा ख्याल है ज़्यादातर घरों में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर बच्चे को डर लगता हो या फिर और दीगर मामलात हों, तो एक जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो है आयतल कुर्सी पढ़ना। और ख़ास तौर पर सोने से पहले ये कहा जाता है कि सोने से पहले जो है ना आप आयतल कुर्सी पढ़ लें तो पूरी रात आराम से गुजरती है। जिन लोगों को डरावने ख्वाब आने का एक सिलसिला होता है, और भी चीज़ें होती हैं, डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो उनको ख़ास तौर पे कहा जाता है। चोर से हिफाजत के लिए बताया जाता है कि ये पढ़ो। तो डेफिनेटली लाखों बार पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसके एन मरकज में ऐसा क्या राज पोशीदा है जिसकी वजह से कहा जाता है वो राज जिससे जादूगर तक खौफ खाते हैं, वो हकीकत जिससे जन्नात आग की तरह दूर भागते हैं। तो चले आज जानते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। मदीना मुनव्वरा में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसके नजूल पर फरिश्ते सफ दर सफ उतरे, एक ऐसी आयत जिसके मायने इतने अजीम थे

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

और एक दफा फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ और अब कुछ मौसम के हालचाल पे बात कर लेते हैं। तो आपको बता दी चलूँ कि भाई इस वक्त जो हो रहा है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और आज यही कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 44 डिग्री यानी 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये सीन है और इसके साथ ही ये भी आपको मैं बता दी चलूँ कि आज 11 बजे के बाद थोड़ा मतलब ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया ना वो 11 बजे से कुछ 2 बजे के दरमियान रहेगा, बाकी वक्त में मतलब टेम्परेचर जो है वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सनसेट के वक्त ये कुछ 39, 38, 37 और फिर 36 दोबारा हो जाएगा। तो ये है भाई सीन और इसके साथ ही ह्यूमिडिटी 30% है, मॉडरेट कह सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। और ये कि यूवी इंडेक्स आज भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपने करना क्या है ये मैं आपको बताती चलूँ। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम रोज़ाना आउटडोर की बात करते हैं तो आज थोड़ी सी इनडोर की बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से गर्मियों के मौसम में सिर्फ मतलब ये नहीं कि बाहर जब जाएँ जब ख्याल करें बल्कि घर पर भी रहते हुए अंदर के टेम्परेचर को भी काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। होता ही है ना कि डेफिनेटली आप लोगों की ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, कुछ लोगों की 8:30 बजे, कुछ लोगों की मेरी तरह 9 बजे तो उसके बाद जाके होता ही है कि आजकल गर्मियों के दिन बड़े लंबे हैं, आप आराम से सो हो सकते हैं। तो अगर मतलब घर के अंदर गर्मी हो रही हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, मतलब आप ये परेशान रहेंगे, इसी आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा सब कुछ। तो अगर छोटी छोटी सी कुछ अपनी जो आदतें हैं उनमें तब्दीली लाई जाए, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आप चेंज करें तो आपका बिल भी एक तो कम आएगा और आपका घर भी काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा। तो सबसे पहले तो दिन के जो सबसे गर्म औकात हैं, जैसे मैंने आपको बताया आज 11 से 2 के दरमियान सबसे ज़्यादा गर्मी रहनी है, तो इसमें आपके घर पे जो भी पर्दे ब्लाइंड्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनको बंद रखें। और पर्दा थोड़ा सा आपके घर में होना चाहिए, वो होता है ना लेयर्स में आता है कि एक ऊपर से और फिर अंदर जो है ना एक मोटा वाला जो कि आपकी सनलाइट को आने से रोक सके, तो वो पर्दे आपके घर में ज़रूर होने चाहिए ताकि आप आराम से बिल्कुल बंद करें तो डार्क हो जाए एकदम से डार्क, ठीक है। तो वो हो जाएगा तो होगा ये कि धूप जो है वो सीधा मतलब अंदर कमरे में नहीं आएगी और कमरों का टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये होगा कि ये जो औकात हैं जो बिल्कुल पीक हीट वाले होते हैं तो उस वक्त पर्दे या ब्लाइंड्स अगर आप बंद रखेंगे तो इससे घर में गर्मी कम से कम दाखिल होगी और आपका एसी या मतलब फ़ैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छे ज़्यादा मौसर तरीके से अपना काम कर सकेगा। इसके साथ ही जब ठंडा थोड़ा सा वक्त हो जाए, जैसे सुबह का वक्त होता है और रात का वक्त होता है, तो आपको पता होगा ना कि हीट ट्रैप हो जाती है घर के अंदर, तो वो निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोल दिया करें ताकि आपका मौसम जो है वो घर के अंदर का भी बेहतर हो जाए, उस वक्त में ठंडी हवा ज़रा खिड़की के अंदर दाखिल हो तो वो जो हीट है वो बाहर निकल सके। इसके साथ ही घर के अंदर भी आपने कपड़े जो है वो आजकल हल्के कॉटन वगैरह के पहनने ताकि ज़रा ब्रीदेबल हों, पसीना जो है वो जस्ट कर लेते हैं ईजिली, आपको ठंडा रखने में मदद देते हैं। गैर ज़रूरी जो आपके घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे अक्सर होता है ना कि कंप्यूटर बिला वजह चल रहा है, टीवी चल रहा है और जो इस तरह की और जो चीज़ें हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन बंद कर दिया करें, क्योंकि ये अप्लायंसेस ना सिर्फ ये कि आपकी जो ना बिजली ज़्यादा ज़ाया करते हैं बल्कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट भी पैदा होती है। तो अगर आप सो रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है टीवी देखते देखते सो जाते हैं, तो कुछ टाइमर वगैरह लगा दिया करें ताकि बंद हो जाए और आपको गैर ज़रूरी तौर पर ना तो बिल देना पड़े ना ही उनकी वजह से हीट ज़्यादा पैदा हो सके। तो ये करें, इसके बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें। ठंडे से मुराद मेरी ये है कि रूम टेम्परेचर, और अगर चाहें तो थोड़ा बहुत वैसे अच्छा लगता है ठंडा हल्का सा पानी आप पी लें तो वो करें, मौसमी फलों का इस्तेमाल करें और ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल मतलब गर्मियों में अच्छा अच्छा फील करेंगे, आपको गर्मियाँ अच्छी लगेंगी, बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि बड़ा मज़ा आता है दोपहर में ना, मतलब आप देखो कि यहाँ पे तो वाला सीन नहीं है लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब गर्मियाँ हो रही हों और वो बाहर गोला गंडे वाला और कुल्फ़ी वाला वो जो सारे जो आते हैं ना, तो फिर उस वक्त में आपको गर्मियों से मोहब्बत हो जाती है, ये वाला सीन होता है। अच्छा, कुछ लोगों को गर्मियों के सीज़न से इसलिए मोहब्बत होती है क्योंकि गर्मियों में आम आते हैं तो उनको गर्मियों का बड़ा इंतज़ार होता है। तो ये होते हैं मुख्तलिफ जो चीज़ें ना, आप इन्जॉय करना चाहो तो भाई हर चीज़ को कर सकते हो और घर पर भी आपको मतलब कभी कभार यही जो गोला गंडा वगैरह आजकल तो वो मिल भी गया ना, वो मशीन्स वगैरह आ गई, आप इजीली घर पे बना सकते हैं, तो कभी कभी इन्जॉय करना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि मतलब आज मुझे बड़े दिनों के बाद गोला गंडा ही याद आई है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप गोला गंडा वगैरह इन्जॉय कर सको, घर पे बनाओ या बाहर कभी खाओ, क्योंकि वाकई मतलब ये आपको बड़ा रिफ्रेशिंग एकदम वो एहसास देते हैं। आप इस मौसम में आप आइसक्रीम भी खाएं, एक दिन की बात है अभी कुछ दिन पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था, हम लोग बाहर निकले और
आइसक्रीम खाने के बाद एकदम से वो यूं उड़न छू हो गया. मैंने कहा वाह, मतलब वाकई ठंडी चीज़ों का असर होता है, आपको कभी कभी खानी चाहिए ठंडी चीज़ें. खैर जी, आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई को दुनिया भर में होता है क्या, ये जानते हैं. तो हर साल 8 जुलाई को वर्ल्ड एलर्जी डे मनाया जाता है और इस दिन का मकसद होता है कि लोगों में एलर्जीज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करें. एलर्जी किसी भी चीज़ जैसे पॉलन, डस्ट और कुछ मुख्तलिफ किस्म के फूड्स. अक्सर मैंने देखा है कि नट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मेडिसिन या फिर किसी इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है. तो इस दिन ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एलर्जी की पहचान, उससे बचाव के तरीके और वक्त पे ट्रीटमेंट की अहमियत बताते हैं कि अगर एलर्जी को नज़रअंदाज किया जाए तो कभी कभी ये जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है. तो इसके लिए काफ़ी आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं अवेयरनेस बताई जाती है, फैलाई जाती है, ये सीन है. इसके अलावा जी 8 जुलाई को अमेरिका में नेशनल वीडियो गेम्स डे भी मनाया जाता है और ये दिन वीडियो गेम्स की दुनिया और गेमिंग कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए होता है. वीडियो गेम्स सिर्फ तफरी के लिए ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को भी बेहतर बना सकते हैं. और लेकिन ये कि एक्सपर्ट्स इस बात पर भी साथ में जोर देते हैं कि गेमिंग हमेशा बैलेंस के साथ होनी चाहिए और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखना चाहिए. तो मतलब सिर्फ गेम्स बुरे ही नहीं होते, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब अंडर कंट्रोल हो हर चीज़. खैर जी, इसके साथ ही 8 जुलाई को मैथ 2.0 डे भी मनाया जाता है और ये दिन मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के दरमियान मजबूत ताल्लुक को हाईलाइट करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड्स में मैथमेटिक्स की जो बुनियादी अहमियत है उस इस दिन में उजागर की जाती है. और इस ऑब्जर्वेंस का मकसद है ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को मैथ्स से दिलचस्पी दिलाना और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना. तो ये सीन भी होता है भाई. इसके साथ 8 जुलाई को एक और जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक फ़न ऑब्जर्वेंस है जो लोगों को याद दिलाता है कि ज़िंदगी की मसरूफियात के दरमियान कभी कभी बचपन की मासूमियत और ख़ुशी को भी महसूस कर लेना चाहिए. और इस दिन लोग अपने बचपन के गेम्स खेलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं. तो इसका बेसिकली मैसेज ये है कि मुस्कुराइए, खुश रहिए और ये सब कुछ सेहतमंद ज़िंदगी का हिस्सा है, अलामत है. तो बी अ किड अगेन डे भी मनाया जाता है. अगर आप चाहें तो आज है 8 जुलाई, आज आप बच्चा बन के इंजॉय कर सकते हैं ज़िंदगी को. और इसके साथ ही भाई आज जो है एक और नया और पॉजिटिव ऑब्जर्वेंस है जो लोगों को सोशल मीडिया के अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और नेगेटिविटी से दूर रखने की तरफ तवज्जो दिलाती है. बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट डे है. मैं अक्सर सोच रही होती हूँ कि लोगों को मिलता क्या है ये कीबोर्ड वॉरियर बन के. तो इस दिन का मकसद बेसिकली ये होता है कि लोग जो है ना कॉमेडी, हंसी मजाक और पॉजिटिव कंटेंट से अपना मूड बेहतर बनाएं और ऑनलाइन ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है इससे बचकर अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें. तो आज की तारीख में ये मतलब काफ़ी सारे दिन मनाए जाते हैं, सारी पॉजिटिव हैं और डेफिनेटली हम लोगों को भी एक मतलब अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बरकरार रखनी चाहिए. अक्सर ये मैं देख रही होती हूँ इतनी इतनी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही होती हैं सोशल मीडिया पर. आप देखो किसी भी इशू को लेकर फ़र्क क्या पड़ जाता है भाई, जिसका ओपिनियन जो है वो वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला. लेकिन अपनी एनर्जीज गैर ज़रूरी जगह पे आप जो है ना ज़ाया कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता. तो खैर ये सिलसिले हैं. और इसके अलावा आज का हाँ सवाल क्या है वो बताती हूँ मैं आपको.

अभी कुछ अरसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी कोई ड्रामा या फिल्म होती तो फिर क्या होता, तो उस दिन मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए थे और वो फिक्शनल कैरेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं भाई रुक जाएं, यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि मैं ये वाला सवाल भी लेकर आने वाली हूँ। तो आज आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी आपको रिप्लेस करनी हो किसी फिक्शनल कैरेक्टर से, ठीक है, तो आप किससे करना चाहेंगे और क्यों? डेफिनेटली तो ये फिक्शनल कैरेक्टर्स जो है ना, ये अब इसमें थोड़ा सा बता दूं कि फिक्शनल कैरेक्टर्स में आपने जो किताबें पढ़ी हैं आप उसके हवाले से भी कोई ऐसा मशहूर कैरेक्टर हो जो कि आपको बहुत इंस्पायर करता हो, कोई नॉवल

0: ट्रैवल का कोई कुछ, तो उससे भी आप अपनी ज़िंदगी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हकीकत में नहीं लेकिन कर सकते हैं, शो के लिए ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स वो भी हो सकते हैं जो आप बनना चाहें, जैसे कि मिक्की माउस, जैसे कि पिंक पैंथर, सुपरमैन, बैटमैन, कोई भी, आयरन मैन, हैरी पॉटर, इस तरह के भी जितने करेक्टर्स हैं ये जो मूवीज़ वगैरह में डिज्नी विजनी में आपने देखे हुए हैं, वो करेक्टर में वो क्या था, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कौन बनना चाहेगा ब्यूटी बनना चाहेंगे सब लोग, लेकिन फिर भी अगर बनना चाहे, दिल का बड़ा अच्छा होता है वो, तो अगर बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत से करेक्टर्स हैं ना, मतलब मैं कितने बताऊँ, सेंड्रेला बन सकते हैं अक्सर लोग, वैसे मतलब इसी तरह जाएंगे ना, लड़कियों के जो करेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक, अगर फिक्शनल की बात करें हम, मजलूम बेचारी, मासूम शहजादियाँ, तो वो ज़्यादातर जो है ना लोग उस तरह जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे तो चूंकि ज़्यादातर सुनने वाले हमारे भाई हैं, तो आप चुनिए इन करेक्टर्स में से कि आप अपने लिए कौन सा करेक्टर, क्या स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर दीवारों पर चढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आज के दिन आपने थोड़ा सा मतलब अंदर के बच्चे को, मैं बता रही थी ना बिया किड डे अगेन, तो बिया क्या था, इस तरह का कुछ था, अगेन किड डे, तो वो अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो आप भी अपने अंदर के बच्चे को जगाइए और मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिलता है किसी फिक्शनल करेक्टर को जीने का, तो वो कौन सा करेक्टर होगा और क्यों। ईजी है, बहुत से हमने ऐसे करेक्टर्स देखे हुए हैं। हमारी अगर बात करो तो हमारे यहाँ उम्र यार है जो बचपन में पढ़ा है, टार्जन की जो कहानियाँ हुआ करती थीं वो थीं, इसके अलावा और जो बाकी जो नॉवेल्स वगैरह हैं वो तो अलग हो गए, लेकिन अगर बच्चों की कहानियों के हिसाब से बताऊं तो उसमें भी बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पढ़ते आए हैं, वो इंडिया में वो छोटा भीम है और इस तरह के और बहुत से करेक्टर्स हैं, अब मुझे वहाँ का इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत से करेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अली बाबा, और मैंने बहुत सारे नाम ले दिए हैं, तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, सवाल क्या है मेरा, इसलिए मैंने सारे फेमस करेक्टर्स बता दिए हैं कि लोग सोच रहे हों कि क्या मतलब इसका क्या जवाब हो सकता है, तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको दे दिए हैं कि इनमें से कोई भी आप मुंतखब करना चाहें और हमें बताना चाहें और रीज़न भी बताइएगा कि क्यों। और मुझे लगता है जब भी ना मतलब अगर आप कहानी की बात करो ना, तो जब हम कहानी पढ़ते हैं या हम कहानी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस कहानी को जी भी रहे होते हैं साथ में ना, ये जीने का दिल चाहता है आपका, मतलब हम देखो ना कि जब हम देख रहे होते हैं कोई कार्टून, कोई सुपर पावर है किसी के पास, अलादीन के पास चिराग आ गया, तो किसका दिल नहीं चाहता कि उसके पास चिराग आ जाए और वो उस अलादीन के चिराग से जो है ना वो तीन ख्वाहिशात अपनी पूरी करवा सके। हर बंदे ने सोचा होगा, मैं तो लिटरली अभी कुछ अरसे पहले तक भी ये बातें सोच रही होती थी कि अगर मेरे पास अलादीन का चिराग आया तो मैं उससे क्या कहूँगी, कौन सी तीन ख्वाहिशात होंगी मेरी, और मैं वो सोचते सोचते सो जाती थी खुशी खुशी, मुझे लगता था वाकई मतलब ये वाली ना तीन ख्वाहिशात मेरी अभी भी पूरी हो सकती हैं। खैर, तो सोचने में क्या है भाई, मतलब अंदर का बच्चा, हम लोग बात करते हैं ना, अंदर का बच्चा आपका जिंदा रहना चाहिए, आपके बच्चे को अंदर के आप जब तक मतलब ना जगा के उसकी मासूमियत को बरकरार रखोगे, इतना ही अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी आपके पास, मतलब वो सोते हुए टेंशन और ये सब कुछ लेने के बजाय बेहतर है बंदा ना कुछ अच्छा सा खूबसूरत सा सोचता हुआ, तस्वूर करता हुआ सो जाए। तो खैर, बताया आप मुझे, कॉल कीजिएगा और मैसेजेस कीजिएगा, मैं देखती हूँ अभी मेरे पास मैसेज किसका आया, उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी, तो शहजादा सलीम है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ, फ्री होके कॉल करता हूँ। चलो ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ ही तौफीक हैं और तौफीक कहते हैं महावेश खान अस्सलाम वालेकुम अलवकरा से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन, अल्लाह ताला आपको भी बहुत बहुत खुश रखे। इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हैं, मैं अच्छा हूँ, आज मेरा थर्ड मैरिज एनिवर्सरी है, वाह ग्रेट, जबरदस्त आरिफ अंसारी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की तीसरी सालगिरह, आज तो आपके लिए कोई अच्छा सा गाना बनता है तो मुझे बता दें, मैं जब गाने चलाना शुरू करूंगी तो आपके लिए पहला गाना चलाऊंगी, ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा उनको, ठीक है। तो खैर जी, तो आप बताएं, और बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा मेरी तरफ से भी और सारे लिस्टनर्स की तरफ से भी। खैर जी, तो आपने सोचना है फिक्शनल करेक्टर्स, मैं आपको ऑप्शन बहुत सारे दे चुकी हूँ, कुछ भी फॉर फन, मतलब ये हम लोग कोई बहुत सीरियस बातें नहीं कर रहे होते, ना कोई किसी को जज कर रहा होता है कि आपने जवाब सही दिया है, ना कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारा जो कुछ है माहौल चिल करने के लिए सारी की सारी चीज़ें बातें हो रही होती हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई किसी को जज नहीं करता, हर बंदा आता है अपनी बात करता है और चला जाता है, तो आप कुछ भी नहीं, मतलब डोनाल्ड डक भी बनना चाहें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मुझे तो बनने में कोई मसला नहीं है, तो अगर आप भी बनना चाहें तो आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं हम, कहाँ कॉल आ गई, तो कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कॉल आई भैया
0: कैसे हैं शहजादा सलीम?

0: जी
1: जी बढ़िया है।
0: क्या हो रहा था?
1: हाँ आज जरा जल्दी सुबह से, मतलब मेरा तो 3 बजे से शेड्यूल शुरू हो जाता है तो मुझे बीच में ब्रेक मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ब्रेक मिलता है तो मैं सो लेता हूँ, फिर 6:30 बजे उठता हूँ तो फिर डायरेक्ट फिर ड्यूटी पे आ जाता हूँ। तो उसी बीच में मतलब प्रोग्राम दिए ना, गाड़ी में आ गया तो दिया ऑन हो गया, गाड़ी में नहीं वो नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसा हो जाता।
0: सही सही।
1: कल जावेद भाई ने बस अकेला छोड़ दिए, जल्दी से ट्वीट कर गए। मुझे कहीं कहीं ना फीका नजर आया।
0: हाँ, नहीं बेसिकली एक तो ऑफिस में भी होते हैं, पर दूसरी बात वो चाह रहे होंगे कि अब नए लोगों को भी मौका दिया जाए ना, तो नए लोग क्यों नहीं आ रहे?
1: मेरा भी यही है ना, अभी सब लोग चाह रहे हैं जावेद भाई को सुनना, और मैं भी चाहता हूँ जावेद भाई को सुनो क्योंकि करेक्ट भी अच्छी है और आवाज तो उनके साथ कोई और लोग भी नए नए ना ज्वाइन हो ना।
0: हाँ, वही तो
1: नई। हाँ तो रईस अगर आज पहला कर ले तो हम बाद में वन डाउन आ जाएंगे, कोई बात नहीं।
0: बिल्कुल, रईस भाई भी आए और बाकी और लोग, क्योंकि पहले ये होता था ना, वही मैं आपसे कह रही थी जब शुरू में कि गेम्स हम इंट्रोड्यूस करवाने को बहुत सारे करवा सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये होती है एक्टिव लोग हों, मतलब जो लोग करते हैं गाने गाते हैं, और उसमें पता है मज़ा आता है जब आप जावेद साहब की तो आवाज़ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन जब आप गाते हैं ना उस वक्त भी लोग बहुत इंजॉय करते हैं जिस तरह से आप गा रहे हैं, तो वो असल जो चीज़ है ना वो इंजॉयमेंट है जो हम उस लम्हे को इंजॉय कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और एक अपने आप के अंदर का जो फन को एक ना एक मौका होता है क्या, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करे और थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे, तो वो फन को ऐसे नहीं मर देना चाहिए, जितना भी हो थोड़ा बहुत हो भले तो बाहर निकल, ये कैसे तो एक लगे तो सही क्या भाई, यार मेरे अंदर ये भी था मुझे तो पता ही नहीं
0: ना, और वो ही चल माहौल, मतलब थोड़ा सा बंदा जो है ना, मतलब अपने आप को हल्का फुल्का भी रखे, हमेशा होता है ना कि आप सीरियस रहते हो, कुछ तो थोड़ी सी चीज़ें हैं हल्का फुल्का, अक्सर लोग डर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं हम दिल तो चाह रहे हैं लेकिन शर्म आ रही है, ये सारा मसला है।
1: आपका भी मसला होता है ना, बोले कौन थका हुआ आ गया, देखो पैसा जा रहा है फटे हुए बात।
0: सीरियसली आपको याद है ना शहर सलीम, जब हम लोग पहले गेम्स खेलते थे तो अलग अलग पता नहीं किस किस अंदाज से लोग कोई डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, कोई आगे गाना गा रहे हैं, लेकिन उसको लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो चीजें थोड़ी ना मतलब बड़ी जो परफेक्ट चीज हो उसको भी लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन इम्परफेक्शन को भी लोग इंजॉय करते हैं, मजा आता है
1: ना,
0: तो जरूर लोगों को आना चाहिए, लोग बिल्कुल भी वो ना सोचें हम आपको ज्यादा इंजॉय करेंगे। अभी कुछ अर्से पहले मैं वो मूवी देख रही थी दोबारा, हम दिल दे चुके सनम, तो वो उसमें जो अजय देवगन वाला कैरेक्टर था तो वो उसको नहीं आता गाना, लेकिन अब वो सलमान खान को तो हम मुसलसल सुनी रहे थे गाना गाते हुए, लेकिन जब अजय देवगन गाना गाते ना, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उस वक्त थी कि वो मजे से इतने गा रहा था, तो वो मजा आता है आपको।
1: हाँ जी जी जी जी जी, एक नया मतलब एक नया मतलब कुछ फेस करने मिलता है ना, एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, वो बेटर होता है, यानी अच्छा लगता है कहने का मतलब, और प्रोग्राम को भी और मजा आता है ना, प्रोग्राम भी आगे ऐसे मतलब एंजॉय के साथ जा रहा है,
0: ज्यादा लोग आएंगे ना, पता है एक जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ ये कि आप हैं, आप हो गए जावेद साहब हो गए, कुछ मखसूस गाने ना याद हुए हुए होते हैं आपको, तो अगर नए लोग भी साथ साथ आते जाएंगे तो उसमें ये होगा कि नए गाने आएंगे उन हरूफ से कुछ मतलब अलग अलग, तो उसमें और ज्यादा इंजॉय करेगा बंदा।
1: बिल्कुल।
0: और बताएं भाई कोई फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब कोई, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, जैसे हम बचपन से देखे कार्टून डिज्नी मूवीज इस तरह की जो चीजें ना वो देखते हुए बड़े हुए हैं, अलादीन का चिराग देखा है हमने, अली बाबा 40 चोर इस तरह के और बहुत से कैरेक्टर्स हैं, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और आप अगर वो बनना चाहें तो क्यों, क्या चाहेंगे उसके बाद?
1: फेवरेट तो यही है कि अपना जो कोई
0: अलादीन स्पाइडरमैन बैटमैन
1: कोई बादशाह ही बनते हैं, मतलब उसकी ही सल्तनत है ना, कि सल्तनत का बादशाह बन गया था ना, यानी बादशाह अपनी सल्तनत चला रहे ना, तो उसका एक मतलब जब उसके आने से पहले जब दरबार सकता है और सारा कुछ के लिए मतलब इतने सब ताजी के लिए खड़े होते हैं और सारा कुछ अपने अपने सब नोट लिख के लेके

0: जाते ना बाजार का, पहले तो ऐसे ही होता था ना, तो फिर सुनता है हाँ, सुनने के बाद फिर वो फिर फैसले कि ऐसा क्या फैसले ना, इस तरह कुछ मतलब एक मतलब बादशाहित वाला मतलब सबकी फिक्र रहते, या नहीं कि नहीं कि मैं
1: अच्छा मतलब नेक दिल बादशाह बनना चाहते हैं
0: तो मतलब है ना अपना सवार के संभाल के हाँ। लेके चले ना साथ में हाँ। और कई साथ में कोई तो बेचारा दुखी तो नहीं है, कोई बेचारा तो भूखा तो नहीं है हाँ। तो जिसका पूरा मतलब हर एक ना निगरानी में रहे, और गेट गेट कोई है ना कोई खराब नजर तो नहीं डाल रहा हमारी साल तरफ, कब्जा तो करने नहीं जा रहा है तो हाँ एक अपने आप को एक मतलब एक परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है ना
1: तो
0: पूरे अपने हिफाजत और अपने को संभालना, पूरे एरिया को संभालना, पूरी सल्तनत की हिफाजत करना और उसके बाद हाँ, और हमारे जो उसके बाद जो चलाने वाले रहेंगे उनको फिर है ना मोटिवेट करके उनको टेक ओवर करके फिर रुखसत होना।
1: तो एक ऐसा बादशाह बनना चाहते हैं, नेक दिल, जिम्मेदार, सब रियाया का ख्याल करने वाला, सबकी अर्जियां सुनने वाला, इस तरह का एक बादशाह बनना चाहते हैं। और ठीक है ठीक है, अच्छा हो गया ये भी। बिल्कुल हमने बादशाह और वजीर और बहुत सारी इस तरह की कहानियां पढ़ी है ना, तो जिसमें बादशाह होते हैं नेक दिल भी होते हैं, तो वो बनना चाहते हैं। गुड, जबरदस्त सलीम।
0: औरंगजेब
1: रहमतुल्लाह
0: अलैह था उनका, और उन्होंने खजाने में से अपना गुजारा नहीं किया ना, वो तो अपने कोई टोपियां
1: वगैरह बनाते थे, बिल्कुल
0: बना के उसको सेल करते थे, इस तरह से उनका रहा है कुछ ना। एक दिन और खुशमिजाज मतलब ऐसे मतलब बादशाह ना जो मतलब एक अपनी सल्तनत को एक मतलब एक एक मिसाल देके एक छोड़ के, अगर वो अगर नहीं हो तो फिर पूरा बैलेंस बिगड़ जाए। तो एक अच्छी मतलब एक अच्छी मतलब जिम्मेदार बादशाह
1: शहजादे शहजादे से बादशाह का सफर करना चाहते हैं। चले रे बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त आंसर।
0: हाँ विरासत तो मिलेगी ना सल्तनत से, विरासत मिलेगी सल्तनत सारी, तो फिर अपने करके तो चले गए और फिर उसके बाद फिर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर
1: सही शहर सलीम, जबरदस्त जबरदस्त। आप जो है ना बाकी असल में दिल से शहजादे हैं आप, अरमान आपके वही वाले हैं।
0: और है ना जावेद भाई के लिए ना एक गाना मेरा डेलीगेट रहेगा, जब भी हो टाइम मिले तो मतलब लगा देना, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: अच्छा ये लिख के भेज दे मुझे, ठीक है ऐसे याद नहीं रहेगा मुझे, थोड़ी देर में लिख के भेज दे फिर मैं जरूर डाल दूंगी, ठीक है डेडिकेट भी कर दूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया शहर सलीम, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, लाफिज़ राइट जी। शहजादा सलीम हमारे साथ थे और ये कहानियों में जो नेक दिल बादशाह होते हैं ना वो बनना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके?
2: जी ठीक ठाक, नफीस बात कर रहा हूँ।
1: नफीस भाई कहाँ थे इतने दिनों से, हम तो आपको इतना मिस कर रहे थे, आपने पूरे हफ्ते के बाद कॉल की है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मिस करने तो, और सबसे पहले तो सॉरी भी करना था क्योंकि आपका वो प्रोग्राम जो सॉन्ग्स और जो मतलब जिसमें मैंने विनर आना था वो मतलब संडे को थोड़ी सी मैंने वो सुन के मुझे हुआ, हमारी थोड़ी सी सुरक्षित रहती है, संडे पहला वर्किंग डे होता है तो उस वजह से थोड़ा सा ना मैं बिल्कुल माजूर सा हूँ।
1: नहीं अभी चल रहा है, आप आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ हाँ डेली है, डेली है, डेली अभी चल रहा है।
2: आज तो जिंदगी थोड़ी सी खराब हो गई है ना।
1: हाय हाय क्या हो गया?
2: मतलब मैं चलता हूँ

0: बस वो मसल इजिप्ट की सपोर्ट कर रहा था मैं, और मेरे दोस्त कर रहे थे अर्जेंटीना की, तो बस आप देख रहे हैं उनकी जिंदगी बन गई, मेरी नहीं बन पाई।
1: हाँ नहीं, काफी लोगों को मैंने देखा आज सुबह, मैं देख रही थी थोड़ी न्यूज वगैरह, तो हर्ट हुए मैं बहुत सारे लोग, ऐसा है। मुझे तो खैर वो रोनाल्डो पे अफसोस हुआ, मैं तो खैर मैच नहीं फॉलो कर रही हूँ इतना, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये कि वो रोनाल्डो, बस एक पता है हमें, रोनाल्डो पता है, मैसी पता है, कुछ बुनियादी बुनियादी नाम पता है, मुझे अच्छा लगता है रोनाल्डो पर्सनली ना, मतलब उसकी और चीजों की वजह से तो अच्छा बंदा
0: है, बड़ा फेमस है, बड़ा वर्ल्ड में मेरा ख्याल मोस्ट फेमस पर्सन है वो तो।
1: हाँ, और मतलब एक कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोगों को अल्लाह ताला इज्जत देते हैं तो लगता है कि डिजर्विंग भी है, मतलब बहुत सारी चीजें ना, मतलब देखो तो आपको लगता है कि हाँ, तो वो अफसोस हुआ कि वो बिल्कुल आखिरी मैच और टीम उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रही और सब कुछ ना, तो अफसोस हुआ मुझे भी।
0: वो ही आपका इंटरेस्ट फुटबॉल या किसी और स्पोर्ट्स में है?
1: क्रिकेट देखती थी पहले बहुत ज्यादा पहले, लेकिन वो भी फिर हमारी क्रिकेट टीम ने दिल बर्दाश्त इतना कर दिया कि अब नहीं देखती। क्रिकेट के लम्हात ऐसे बड़े कम मिलते हैं अभी हमें। अच्छा बड़े तारीख गवाए, मैं कह रही हूँ तारीख गवाए जिस टीम को, एक तो मतलब पहले तो ये होता था कि हम मैच देख रहे हैं तो वो अच्छा अच्छा अच्छा खासा जीते जीतते हार जाता था, उसके बाद हमने ये जब ये PSL शुरू हुआ तो हमने ना मुख्तलिफ टीमों को, इस दफा पेशावर जलमी अपनी है तो उस दफा हारती थी लाजमी, मतलब जिसको सपोर्ट किया वो हार गई। हमने कहा यार करो ही नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है।
0: नहीं, कोई दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं शुरू से कतर कलंदर्स के साथ था,
1: लाहौर कलंदर्स, सॉरी,
0: तो हमेशा हारती रही है, तो एंड पे हमें एक मरतबा खुशी दी उसने। तो इसी तरह जिसकी सपोर्ट करें उसके साथ रहें, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाता है।
1: हाँ।
0: तो बस नहीं, आपने अच्छी बात की, दिल पर रिलैक्स हुआ, वरना रात तो जैसे लग रहा था कि जिंदगी यार खराब हो गई।
1: नहीं, आप आए अंताक्षरी में, आप देखिएगा आप बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा आपका दिल, आप इतने खुश होंगे। 8:30 बजे अगर हो ना आपको मौका मिल रहा हो तो आप लाजमी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी।
0: क्या नहीं, ये तो ज्यादा बेहतर हो गया। और बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, याद करते हैं आप लोग तो।
1: और आप कहाँ गायब थे ये बताएं, और दूसरा ये भी मेरा जो सवाल है उसका जवाब भी तो देना है ना आपने। आज मैंने ये पूछा है, आज सवाल ये है कि फिक्शनल कैरेक्टर्स हमने जितने देखे या पढ़े हैं ना, जैसे अलादीन, अली बाबा, या फिर मतलब ये आपका स्पाइडरमैन, ये वो सब कुछ जितने भी है, हैरी पॉटर, तो इनमें से कोई कैरेक्टर अगर आपको बनने का मौका दिया जाए तो आप कौन सा इंतखाब करेंगे और क्यों?
0: करेक्टर तक की थोड़ा सा मेरे लिए सवाल ओवरऑल कर दें, क्या बनना चाहूंगा आज तो बड़ा मजा आएगा।
1: ओवरऑल कर दूं
0: मेरे लिए प्लीज, क्योंकि आज तो मेरे गालिब बनने को दिल कर रहा है, गालिब होता मैं।
1: तो क्या मर्सिया लिख देते?
0: मैं लिख देता हूँ ये गजल, मैं अपने नाम लिखता, कोई उम्मीद कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसती, हम किसी बात पर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती। और ये मैं डेडिकेट करता वकास साहब को, अर्जेंटीना के बहुत बड़े फैन थे। और बस बड़ी माजत, आप कहेंगे कि अपनी ही दाल रखी जा रहा है, बड़ी सॉरी,
1: मुझे मजा आ रहा है,
0: मैं अब क्या करूं,
1: मुझे मजा आ रहा है, इतने दिल से देख रहे थे आप।
0: दिल से देखे, जो काम करे दिल से नहीं तो नहीं करे,
1: ये तो है, ये तो है,
0: सॉरी कर स्टोरी करके आगे चले जाएं।
1: अच्छा ये बताए, शर्त वर्त तो नहीं लगी हुई थी कहीं? शर्त तो नहीं हार गए?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: 100 रियाल का नुकसान तो नहीं हो गया?
0: यार वो हो जाता, वो चलता है, वो दिल पे असर नहीं करता। दिल पे असर करता है जब जीतने के बाद ये ये ये मैं कर जाता ना।
1: हाँ, अच्छा,
0: तो आपकी सोच होनी थी कि क्या जिंदगी बनी थी और क्या आज मैंने शो गाने गा जाने थे।
1: चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपसे ना सैड गाने सुनेंगे, सैड सैड
0: सैड, कोई उम्मीद पर नहीं आती ये चलेगा।
1: हाँ।
0: और हम बेवफा हरगिज ना थे, हम वफा कर ना सके।
1: हाँ।
0: ये तो इजिप्ट के ऊपर पूरा आता है, 2 गोल से जीते जीते
1: रह गया। अच्छा वो उसने उसने बोला, वो मुस्तफा करके कुछ नाम है ना उनका प्लेयर का, उसका मैं देख रही थी स्टेटमेंट,
0: बोल के ना दूसरा।
1: हाँ, उसने कहा कि वो रेफरी से, हम जो ना हम रेफरी की बात को वो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और उसने कुछ एक वो भी आयत का

0: जुमा भी पढ़ा उसने।
1: मैं करूंगा लेकिन मैं उसका सपोर्टर हूँ और मैं फैन हूँ, लेकिन मैं मतलब टीम पे बुरी, लेकिन मैं डिफर करूंगा हारने के बाद, ये सूट नहीं करता, ऐसा अच्छा नहीं लगता।
0: नहीं तो बेईमानी तो नहीं हुई कोई ऐसी?
1: नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, थोड़े से डिसीजन होते हैं आगे पीछे, लेकिन हारे तो प्रॉपर है ना। अगर वो डिसीजन के हाथ में भी होते, उन्होंने भाई 3 गोल किए हैं 10 मिनट में, आप इमेजिन कर सकती हैं। मेरा ख्याल फुटबॉल से आपको इंटरेस्ट नहीं है?
0: नहीं मुझे नहीं है।
1: थोड़ा सा एक मैच देखेंगे ना तो आइडिया हो जाएगा, पूरे पूरे मैच में 1 गोल नहीं होता, उन्होंने 10 मिनट में 3 गोल किए हैं।
0: हाँ नहीं नहीं ये आइडिया है, फीफा जब अपना यहाँ पे हुआ था ना उस दौरान तो इंटरेस्ट हो ही गया था थोड़ा बहुत, ये तो पता है।
1: 2 गोल जीत के जा रही हुई टीम, उन्होंने 1 गोल ऊपर चली गई है, तो भाई टैलेंट तो है ना।
0: हाँ नहीं वो तो है, सही बात है, सही बात है। जैसे हम मानते हैं विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें हरा देते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, दिल बड़ा होना चाहिए।
1: ये हुई ना बात, कसम से ये आपने दिल जीतने वाली बात कर दी। मैं बताऊं आपको, थ्रू आउट दी लाइफ इसका असर होना चाहिए। अब मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है तो उसकी वजह से मैं उसकी क्वालिटीज को मार दूं यार, मैं
0: नहीं, ये नहीं। अच्छा ये जो चीज है ना नफीस भाई, मतलब यहाँ पे ही मैं कहना चाहूंगी कि अगर देखा जाए ना, हम पाकिस्तानियों के दिल वैसे ही बहुत बड़े हैं इस मामले में, है ना। हम अप्रिशिएट करते हैं, खुल के करते हैं, बिल्कुल
1: खुल के, है ना यार। मेरे को मजा आया तेरा यार। अब मैं विराट कोहली को बड़ा प्लेयर मानू तो ना विराट कोहली के कोई वो फर्क पड़ना है ना कुछ, अपना एक पता चल जाए कि यार जर्फ है,
0: जर्फ है,
1: बड़ा है तो exactly. बड़ा मान रहा हूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: होना भी ऐसे चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात
1: है। बात ही कैसे हम है
0: जिंदगी
1: बनती है तो देखिए, मैं इन सब की तबीयत साफ करता हूँ जो मेरे मुखालफीन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हम आपके साथ हैं।
1: ये ना बात है कि बस मुझे यही सपोर्ट चाहिए थी, मॉडल थोड़ी सी सोच रहा था सुबह से किससे शेयर करूं क्या करूं, फिर मैंने कहा आपसे शेयर करता हूं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा किया आपने,
1: शायद भगा देंगी आप फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी, तो वो ऐसे फीलिंग आ रही है।
0: बिल्कुल अब आप आए अंताक्षरी में मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको लेते हैं, आप फिर देखिएगा आज आपका कैसा दिन बन जाता है ना इंशाल्लाह।
1: ठीक है
0: चलें प्लीज भाई, बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल करते रह करें, अच्छा लगता है आपसे बात करके बहुत।
1: जी जी जी इंशाल्लाह जिंदगी बनती रहे मेरी, मैं आ रहा हूँ
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय,
1: थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।
0: रही जी तो हमारे साथ थे नफीस भाई, थोड़े से सैड सैड लेकिन चलता रहता है जिंदगी में, यही तो है जिंदगी के मजे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताएं कैसे हैं नूर मोहम्मद मंसूर भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: दिल तो कहता है रोज दिन पर दिमाग,
0: हाय अल्लाह, आपके भी वही मुश्तरका गम तो नहीं है कहीं?
2: मैं इतनी स्पोर्ट देखा हूँ 2003 से लेकर 2026 तक, मैं इतने गेम देखा और ऐसा मोमेंट के ऐसा मैंने क्या बयान करूँ, मैं इतना गंदा रेफरी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा।
0: रेफरी अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं अच्छा ही था।
2: अगर ट्रॉफी देना है तो उठाकर अर्जेंटीना को दे दो, कोई मुश्किल नहीं है। पहला मैच खेला नाइजीरिया के साथ, इतना बड़ा फॉल है मेसी का, 4-8 कार्ड नहीं दिया, चालीसवां मैच है, इतना सुपर 100% गोल है इजिप्ट का, तीसरा गोल वो फॉलो करार दे दिया, तीसरा गोल दूसरा गोल अर्जेंटीना ने, इतना बड़ा फॉलो है कोर्ट ने, इजिप्ट का खिलाड़ी गिर के मतलब अपने आप को बचा रहा है, इतना कुछ ध्यान नहीं है, मतलब इतना गंदा गेम कर दे कभी नहीं देखा लाइफ में। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको अगर बड़े ही टीम को अगर आगे लेके जाना है तो छोटी टीम को आने के लिए मौके ही मत दो। एग्जाम्पल आप 10 साल से इस एफएम पे काम कर रही है, ठीक है, तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में कर रहा हूँ तो आपको मुझे तारीफ करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल,
2: ये नहीं कि बस नूर आया है 1 साल है नया है इसको डिसाइड करो, इससे मेरा नुकसान होने वाला है, ये आएगा मालूम रहेगा मुझे फायदा होगा, क्योंकि ब्राजील बाहर हो चुका है, पुर्तगाल बाहर हो चुके हैं, रह गया अर्जेंटीना, अगर अर्जेंटीना कल बाहर हो जाए खुना खास पदान खास फीफा का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, इसी के लिए उसको बताया गया, मैं इसको मैं

0: लेकिन दबा देने वाला हूँ। मैं गेम भले नहीं खेलता हूँ, गेम का मैं एक एक पॉइंट जानता हूँ। इतना दिल दुखा है।
1: सही सही, ठीक हो गया ये सीन है। चले खैर, हम हल्का करें आप। हाँ, आप ये बताएं, अगर आपके पास होता अलादीन का चराग तो क्या आप 3 गोल और बना लेते? क्या मांगते?
0: बात की बात है, अगर मेरे मैं अपनी चॉइस करूं, आपने जैसे फरमाया था इसके ऊपर आपका वो हो, तो मैं जितना जिंदगी में मैं मूवी या ड्रामा या कुछ देखा हूँ ना, मैं सबसे अगर मुतासर इंस्पायर हुआ हूँ तो हुआ हूँ अतुल्ला जी से। बहुत मैं चाहता हूँ मेरा रोल मिल जाए, मैं बहुत कुछ सुधारने की कोशिश करूँ। मतलब उसमें इतना इंसाफ, एक भी गलत नहीं, भाई को तीर मारता है, मतलब कोई कबीले से गद्दारी करता है तो अपने को भी नहीं बताता है, मतलब ऐसा इंसाफ वाला मैं खुद बनना चाहता हूँ। मैं खुद अपना 100% इंसाफ दूँ, गलत को गलत सही।
1: सही
0: अगर
1: सही।
0: मैं 4 साल से मैं देख रहा हूँ ड्रामा, मैं एपिसोड का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, 1 साल से लगे अरे तक कोई एपिसोड नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग भी थोड़ा देखें। अर्थ गाजी
1: देखा है? देखा है?
0: मैं तो एक एपिसोड नहीं छोड़ा।
1: हाँ नहीं, हमने भी देखे अर्तुगरल गाजी देखा है, पर बाद में जो आए हैं वो नहीं देखे। अर्तुगरल गाजी के तो कोई 100 से ऊपर के एपिसोड थे ना, वो सब देखे। हाँ वो नहीं देखा मैंने। अच्छा हाँ सुना है, लेकिन वो फिर देखा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा एपिसोड्स होती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा 4 साल। सही सही सही सही। तो अर्तुगरल गाजी मतलब अगर देखा जाए फिक्शनल कैरेक्टर्स में तो आप ये लेंगे। सही हो
0: गया। मतलब घंटों में मतलब मिलियन व्यू चले जाते हैं, और इसका सोचिए इसके कितने और आप फैन हैं आदमी।
1: सही सही,
0: कुछ तो हकीकत है।
1: हाँ हाँ,
0: और बेहतरीन बात ये है कि इसमें हमारे इस्लाम की पूरी सच्चाई बता रहा है।
1: सही सही सही, चलें गुड, जबरदस्त, अच्छी चॉइस। और दिल हल्का करें, छोटा ना करें, इंशाल्लाह आगे अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही
0: होगा।
1: इंशाल्लाह
0: रोनाल्डो के लिए तो बस जितने मेरे ख्याल से लग रहा है इंसान आंसू बहाया होगा उस दिन, उसने तो शायद फुटबॉल को देखता भी नहीं होगा।
1: हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ नहीं, वही है कि मैं फुटबॉल की कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोनाल्डो मुझे अच्छा लगता है, और वो उसके रीजन सिर्फ वो नहीं है, फुटबॉल नहीं है।
0: मतलब हमारे मुसलमान को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। एक देखो ना बदल में, कल एक चीज हो रहा था ना बदल में, किसी के साथ मतलब कि मतलब बुरा भला कुछ मतलब होता है ना, बहुत सेम इंसान
1: काफी मामला में,
0: किसी के बुराई हेल्पिंग में किसको चाहे वो अपना खुल के हेल्प करता है, ऐसे मतलब हम लोग को सीखना चाहिए, और बहुत मैं सीख रहा हूँ उसको भी देख के। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना।
1: सही सही,
0: उसके फलों को मौका लीजिए, आते हैं।
1: चले जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनने आए, बल्कि आए वैसे भी आए। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, जब आपका मूड हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादले ख्याल करें। तलहा अशरफ उस जमान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देश।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देश।

0: Alright, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mahavish और मैं एक दफा फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल आ गई है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.
0: जी जावेद साहब, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्लाह का बड़ा एहसान है. मैं पता

0: नहीं सकता क्या मेरा हाल होगा, तड़प मेरे अंदर ऐसी कि मैं अपने भाइयों की आवाजों को सुनता हूँ और मैं कॉल नहीं कर पा रहा। और मेरे साथ काफी मेरे कोलीग थे, आप अच्छा। आपने कभी मगरमच्छ को तड़पते देखा है? ऐसे में तड़प रहा था आज।
1: अरे देखा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कैसा लगता होगा। अच्छा मगरमच्छ,
0: लेकिन
1: जी जी आप बोले,
0: जी जी बोलिए।
1: मैं कह रही हूँ मगरमच्छ तो पानी से बाहर भी आ जाता है ना, ये भी नहीं कि पानी के बाहर आए तो तड़पना शुरू कर देगा।
0: ना बेसिकली मैंने इसकी मिसाल इसलिए दी है क्योंकि जो मेरे दो चार खुलीग है ना, वो मुझे बाद में मैसेज करते हैं, बाजवा भाई आज आपको सुना है माशाल्लाह, आज भी आपने कॉल की, मतलब ये किसी को अप्रिशिएट करने का एक मौका उनको मिलता है और खुशी होती है। तो आज उन्होंने मुझे मैसेज किया है, बेसिकली मगरमच्छ का मैसेज उन्होंने किया कि भाई आज आप बंधे हुए मगरमच्छ जो तड़प रहे हो गए, कॉल नहीं कर पा रहे।
1: अच्छा
0: सही, बेसिकली मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं अकेला हूँ गाड़ी में तब मैं कॉल करूँ, जब चार पांच लोग एक साथ होना गाड़ी में तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है, फिर जरा मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉल करूँ।
1: हाँ ये तो है, मतलब वो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बैठे हुए लोग और उनके दरमियान में आप कॉल कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। सही सही,
0: बिल्कुल ऐसी है। और मैं शहजादा सलीम भाई का शुक्र गुजार हूँ जो डेडिकेशन उन्होंने,
1: वो अभी भी चलाऊंगी आपके लिए, चलाऊंगी मैं,
0: मेरा मतलब बड़ी मेहरबानी आपकी, वो उन्होंने कह दिया तो समझिए मुझे वो डेडिकेट हो भी और पहुंच भी गया मुझे। और आज मैं जो हमारे चैंपियन है नफीस भाई की बातों से ही मैं खौफ खा गया हूँ, मैं तो नहीं आ रहा आज, ठीक है।
1: क्यों?
0: तो
1: वो तो दुखे दिल के, आप साथ दें उनका आके। उनको थोड़ा सा हंसा दें, वो चाह रहे हैं उनको कोई मतलब ना, थोड़ा सा वो अपसेट हुए हैं।
0: नहीं माशाल्लाह उनकी बातों में वो मतलब दुखी हैं लेकिन फिर भी मुस्कुराहट झलक रही थी उनकी बातों में, अंदाज में झलक रही थी माशाल्लाह। अच्छी बात है, नहीं आज मौका मिलना चाहिए, आज कुछ और लोग देखते हैं ना कि कितने दिलदादा हैं, कितने शौकीन हैं जो मैसेज भी करते हैं, आज हम भी तो देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल होते हैं।
1: सही सही बिल्कुल,
0: इसलिए तो मैं भी क्विट कर,
1: लेकिन वही वही वाली बात है कि सब लोग ना आपकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं, सब लोगों को ये होता है कि भाई हम खेले ना खेले चलो सुनते हैं जावेद साहब को।
0: भाई ये सब धोखा है, कुछ नहीं, मैं पीछे टेप चलाता हूँ, मैं नहीं करता कुछ भी।
1: जी अच्छा ये बताएं, ये जब आप कॉल पे अभी जैसे आपने बताया था कि आपने पूरा सिस्टम लगाया हुआ, ये तो आप डायरेक्टली करते हैं ना?
0: नहीं, ये हमारे गाड़ी में वो ड्राइव करते हुए करता हूँ मैं, मतलब डेफिनेटली मैं ऑफिस में और गाड़ी ड्राइव करते हुए गाड़ी साइड पे लगा के तब मैं कॉल करता हूँ।
1: सही सही सही, चले लेकिन खैर माशाल्लाह से आपकी आवाज़ जो है ना बहुत अच्छी साउंड करती है, बहुत अच्छी साउंड करती है। खैर जी, तो ये तो बात हो गई अंताक्षरी की, अब आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। हम लोगों ने बचपन से बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं और उनमें, या फिर हमने ये जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए भी हैं हॉलीवुड की सूरत में, डिज्नी और ये सब कुछ, तो आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, आप क्या बनना चाहते हैं?
0: बात तो इसमें टॉपिक तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, लेकिन इस टॉपिक पे अगर गुफ्तगू की जाए तो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अली बाबा होशियारी, बहादुरी और जरूरतमंदों की मदद की अलामत समझा जाता है। नंबर वन, जो सिम जिसको कहा जाता था, ये दरअसल कोई किरदार नहीं बल्कि एक जादुई लफ्ज है ये, बस सिम के जादू से निकला है। हाँ अगर किरदार के हवाले से महविश ऐसा किरदार कोई अच्छा, जिस तरह शहजादा सलीम भाई ने कहा कि बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है, एक हुक्मरान, ऐसा बादशाह, ऐसा हुक्मरान जो इंसाफ करे, कमजोरियों की हिफाजत करे और आवाम की फलाह बहबूद को अपनी तरजीह बनाए। और उससे भी अगर मुझे अच्छा मौका मिले सिर्फ एक किरदार को चुनने के लिए, तो वो फिर मैं चाहूंगा कि मैं एक मुसन्निफ बनूं और एक रहम दिल इंसान, क्योंकि लफ्जों की जो तासीर और लफ्जों की जो ताकत है वो फिर सारी रियाया सारी दुनिया तक पहुंचती है।
1: बिल्कुल,
0: तो इन शॉर्ट बस, मतलब मैं इतनी ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मुझे वो 3 मिनट अभी भी याद है।
1: दिल पे लगे, दिल पे
0: नहीं, मैं मतलब दो चीजों को दिल पे लेके गया हूँ, एक तो वो 3 मिनट वाली बात और एक वो जो प्रोग्राम मैं तलाश कर रहा हूँ। यकीन कीजिए कल तलाश कर कर के मैं, मतलब मेरी हालत बिगड़ गई थी वो संडे मॉर्निंग 6:01, वो भी मैं नहीं भूल पा रहा।
1: बस आप रोज ही सुनते हैं 6:01।

0: पता नहीं मुझे भी, मैं बाद में कह रही हूँ मुझे हुआ क्या है, मतलब क्यों किस उस पे बहक गई थी मैं खैर वो पता है नींद पूरी नहीं हो रही होती ना समझे आजकल
1: जिस रवानी में आपने मतलब उसका जिक्र किया था संडे मॉर्निंग मैं भी शांत से 6 बज के 1 मिनट आ ये मैं क्या बोल रही हूँ
0: पता है क्या जब मैं 101 पे थी तो मैंने एक दफा मैं टाइम देख रही हूँ तो अब टाइम भाई किसको नहीं पता कि टाइम क्या होता है और मैंने उस दिन जो है ना जैसे जब 8 के ऊपर सुई थी तो मैंने उस पे देख के बोला था कि इस वक्त हो रहे हैं 2:80 मुझे आज तक नहीं भूला सब लोग मेरा मजाक बनाते थे ये 2:80 क्या होते हैं
1: अच्छा ये मतलब मजाक की बात नहीं है ये मतलब आप देखें आपने एक मुस्कुराहट बिखेरी ये वो लफ्ज़ है अब यकीन कीजिए कि बड़ा अच्छा लगा 6:01 वो जिस तरह दिल पे नक्श नहीं होती कोई चीज पे अच्छा यार ये भी चीज है हाँ, ऐसा भी हो सकता है हाँ। तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे तमाम दोस्त तमाम अहबाब और मेरे तमाम दोस्तों से ये इल्तिजा भी है कि देखिए जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं ये हम सबके लिए आते हैं हमें पार्टिसिपेट करना भी चाहिए क्योंकि बड़ी लगन और बड़ी मेहनत है आपकी और आपकी पूरी टीम की
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और मैं ये भी जानता हूँ कि जब लोगों ने आपसे कहा कोई 2-3 हफ्ते पहले कि अंताक्षरी का वो शुरू कीजिए और आपने मैनेजमेंट से बात करके आपने वो शुरू करवाया
0: जी जी जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल आना चाहिए सब लोगों को और ज्यादा लोग आएंगे आप हो सब लोग हो बदलते भी रहे ना लोग तो फिर मजा आएगा
1: हाँ वो लोग भी तंग आ जाएंगे यार ये आज बाजवा फिर आ गया
0: नहीं नहीं जैसे शहजादा सलीम कह रहे थे ना कि जावेद साहब आए लेकिन साथ में और लोग भी आए तो वो अच्छा लगेगा
1: हाँ सब आए तो मैंने कल एक बात आपसे और भी पूछी थी तो आपने कहा था कि मैं कल बताऊंगी कि अगर मुझे अपने ये जितने भी मेरे जो हम तो रहते हैं
0: जी जी जी जी तो वो सबके आए ना मैसेजेस वो सब लोगों ने कहा कि हाँ आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम आ जाएंगे जब मिलने को कहेंगे हम आ जाएंगे ये इसमें तो मतलब मिलना तो हम चाहते ही हैं जरूर जरूर तो सबके ये मैसेजेस आए थे
1: मैसेजेस तो आए थे लेकिन मैं ढूंढू कहाँ पर जाके
0: अच्छा मैं आपको नंबर भेज देती हूँ ना आप मुझे बताएं किस किस के नंबर चाहिए मैं आपको भेज देती हूँ
1: हाँ ये मतलब मैं क्वेश्चन शायद मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था कहना ऑन एयर इसलिए मैं
0: नहीं नहीं आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको नंबर भेज दूंगी सबके
1: आप मुझे मतलब ये जो बेसिकली जो हमारा जिक्र भी करते हैं वो शहजादा सलीम भाई हैं रईस भाई हैं नूर भाई हैं नफीस भाई हैं और जो दूसरे भी मैं इंशाल्लाह मैं
0: आप मुझे भेज दीजिए हाँ मुझे भेज दीजिए किन किन के नंबर चाहिए मैं आपको भेज देती हूँ इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे हंसता मुस्कुराता रखे ऐसी खुशियाँ बांटने वाला रखे इंशाल्लाह
1: आमीन और तड़पता रखे कभी कभी
0: मगरमच्छ की तरह मैं अभी तक तसव्वुर कर रही हूँ देखूंगी कोई वीडियो मगरमच्छ तड़पता कैसे थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़ रोही जी तो हमारे साथ जावेद साहब और उसके साथ देखते हैं कि कौन है हमारे साथ मैंने आज आपसे सवाल किया है कि कहानियाँ हम सब ने पढ़ी हैं कौन सा फिक्शनल करेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है आप वो बनना चाहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जमाल भाई क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक क्या हो रहा है
2: वही रफ्तार में ढंग जो पहले थी वो अभी
0: अच्छा वही वही जी तो ये बताएं भाई जमाल भाई कहानियां पढ़ी हैं खूब सारी
2: जी जी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तारीखी ये किताबों से थोड़ा सा वास्ता रहा है और बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा है बहुत शुरुआती दौर में तो खैर मतलब उन्हीं में उलझा हुआ करता था तो बहुत सारी तारीख है जो हमारे असलाफ के हवाले से बहुत सारे ऐसे किरदार है जो ऐसा दिल करता है कि मतलब इस तरह से होना चाहिए तो अभी दौर हाजिर में अगर आप मुझसे पूछेंगे मतलब कि बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं आपने तो ऐसे तो सलाहुद्दीन अयूबी और क्या कहते हैं अरे ऐसे ऐसे किरदार मतलब पढ़े गए हैं जो लगता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुछ खास नजर हो और इस तरह के हालात पैदा हो तो इस तरह को जो पढ़ा गया है उस तरह से अपने आप को पेश करने की कोशिश की जाए है ना तो लेकिन मैं दौरे हाजिर में जो देख रहा हूँ तो एक चीज मेरा मन हमेशा करता है करने को आपने भी सुना होगा हाशिम शाही के बारे में
0: किसके बारे में?
2: मिसाल भी दे
0: हातिम ताई, फेवरेट भाई, फेवरेट कैरेक्टर है मेरा. मतलब बचपन से जब पहली दफा मैं सुना था ना कि वो इस तरह के थे हातिम ताई, अच्छा पहले लगता था फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, उनकी बेटी की मुलाकात भी हुई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो फेवरेट
2: हातिम ताई का मतलब ये था कि वो है ना अवामी सतह पर सुबह से लेकर शाम तक वो उनका नजरिया ही था ऐसा कि सुबह से शाम तक वो काम करते थे लोगों के बारे में.
0: hmm.
2: अभी भी हमारे गांव में या कुछ लोग जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो कभी आपको मिसाल देते हुए देंगे, सुनेंगे आप कभी क्या बहुत हाथी भाई बन रहे हो. मतलब जूदो सफा की एक जो आदत थी उनके अंदर है ना, एक जो सखावत वाली आदत थी, तो उससे होता क्या था कि वो जो बहुत मजबूर अवामी तबका होता था वो उससे मुस्तफीद होता था. यहाँ तक कि मैंने तारीख में ये भी पढ़ा है कि उनके घर 24 घंटे चूल्हे जला करते थे. मुसाफिर जो इधर से उधर गुजरते थे वो उनके यहाँ पे खाना खा के गुजरते थे. यानी वहां से जो उनको पता होता था कि हमारी जो है ना पेट की तैराबी, हमारे भूख की तैराबी यही थे, तो आस पास से लोग आते थे. देखिए कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो और किसी फर्ज कर लीजिए, एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई हो जो जिसकी प्यास की शिद्दत से उसके होठ सूखे हुए हो है ना, भूख उसके चेहरे से झलक रही हो और आपको मौका मिल जाए या आप एक बार उसको पानी से सैराब करके उसका पेट भर सके, पेट भर खाना खिला सके और बाद उसके जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आप उसे देख कर आप यकीनी तौर पर बहुत इमोशनल सिर्फ नहीं हो जाएंगे बल्कि आप अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कारगुजारी मेरे हाथ से रोक लिया था, खिदमत अल्लाह करने का मौका दे.
0: नहीं नहीं बहुत जबरदस्त किरदार, और आपने बड़े मतलब अरसे के बाद ना मेरे दिमाग में ये किरदार दोबारा से आपके कहने की वजह से आया, और मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त में भी हमारे देखिए मतलब वाकई हीरोज है ना, तो इनके ऊपर हमें कुछ काम करना चाहिए, कोई ड्रामा कोई इस तरह की चीज़. अब तो बच्चों के लिए बेसिकली काम नहीं होता ना, पहले जब बच्चों के लिए बनती थी इस तरह की चीज़ें तो लोग बनाते थे इस तरह के करेक्टर्स के ऊपर, तो ये भी बनाना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है हातिम ताई का.
2: मैम पता है आपको, आपको बात ऐसी है कि हम अब अगर आप किसी भी से पूछ लीजिए किसी भी, मतलब तकरीबन 80% लोग तो आपको इस बात का ही जवाब नहीं दे पाएंगे. अगर एक छोटा सा सवाल कर लीजिए कि मतलब हमारे साहबे इकराम में से वो कौन से साहबा थे जो हालत कुफर में भी उन्होंने कोई जंग नहीं हारी और हालत इस्लाम में भी कोई जंग नहीं हारी उन्होंने, एक ऐसा नाम भी है आप देखिए. तो अभी अभी मतलब आपको 80% लोग हमारे नौजवान तबके में से लोग नहीं बता पाएंगे. तो मुझे तो लगता है कि कम अज कम ये अगर चलिए कुछ किरदार अगर हम नहीं दिखा सकते हैं एटलीस्ट उसको बताना तो चाहिए, उसको हम अजबर करने के लिए उनके दिमाग में डालने के लिए उसको एक छोटे से प्रोग्राम की शक्ल तो दे ही सकते हैं.
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
2: चीजों को काम होना चाहिए. हकीकत बात है,
0: बिल्कुल सही बात.
2: पता है मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमको मतलब किसी ने ऐसे मतलब मैंने कहीं कॉल से सुनते हुए एक उस पे स्टेज पे सुना था, साहब कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे थे कि जंग में जाने की मुनादी हो गई और वो लोग अपनी गफलत से नहीं जा पाए और उनको सोशल बायकॉट कर दिया.
0: अच्छा,
2: वो एक्चुअल में वो एक खिताब कर रहे थे सोशल बायकॉट में, तो उन्होंने दौरान खिताब ये तमसील ये मिसाल पेश की, ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि तीन लोग ऐसे थे जिनको सोशल बायकॉट कर दिया गया और फिर कुरान की जब आयत नाज़िल हुई तब उनको वापस से फिर से लिया गया.
0: सही,
2: अल्लाह के रसूल ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था. सारे घर के लोग, सारे सोसाइटी के लोग, गांव समाज आस पास अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबने बंद कर दिया, कोई बात ही नहीं कर रहा था उनसे. तो ये मर्ज भाई, अब आप पूछे अभी कि वो तीन लोग कौन है, अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम के नुक्ते नजर से वो तीन नाम तो याद ही रखना चाहिए कम से कम, अच्छे से है ना, नहीं याद रहता है. तो उन्होंने बताया कि मैं बता देता हूँ, उन्होंने मक्का याद कर लो, मक्का एक उन्होंने मतलब फार्मूला बताया कि मक्का याद कर लो तो आपको वो तीन नाम याद रहेंगे. वो तीन लोग थे साद बिन मालिक, मुरारा बिन रदी और हिलाल बिन उमैया.
0: सही सही
2: साफ
0: है
2: ना,
0: सही सही.
2: थोड़ा सा हमारे मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल की आई ख्वाहिश है कि हमारे नौजवानों को इस तरफ थोड़ा रुझान लगता है, पता चलेगा कि एक दौर था ऐसा भी कि जब सहराई लोमड़ी सलाहुद्दीन अयूबी को कहा जाता था, यानी उस वक्त के जितने मुखालफी थे उनको सहराई लोमड़ी कहते थे। खौफ इतना था कि उन्हें ये पता था कि ये इंसान जहाँ चाहेगा वही ले जाकर हमसे जंग लड़ेगा।
0: सही बात,
2: वो सब किरदार से दिल करता है सच में। अच्छा एक चीज में छोटा सा और मतलब इस चीज से हट के बता दो, हमारे पहले कॉलेज जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने मिसाल जो दी थी उसकी क्या कहते हैं मगरमच्छ वाली, मगरमच्छ की एक मिसाल बहुत मशहूर है
0: आंसू वाली ना,
2: लोग कहते हैं क्या अगर आंसू वाली और अगर बात कलपने की आएगी तो उर्दू में एक लफ्ज आम तरीके से बोला जाता है माहिए पे आप।
0: हाँ, माही भी आप, बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
2: आपकी तरह से तड़पने का मतलब यह है कि जिस तरह से
0: पानी से निकल के मछली, हाँ बिल्कुल जी,
2: तो उसमें उसके जो तड़पने का अंदाज होता है मैं उसी हालत में जवाब रहा था।
0: हाँ
2: ये कह सकते हैं।
0: हाँ उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों ने मैसेज किया मगरमच्छ कि आज तो हम मगरमच्छ की तरह तड़प रहे होंगे। दोस्तों दोस्त होते ना, दोस्त ने मछली नहीं कहा, दोस्त ने कहा मगरमच्छ। सही जमाल भाई, चले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा ठीक है, और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करें ना आप भी।
2: मैं आज कोशिश करूंगा।
0: चले ठीक है, चले ठीक है, चले सही, चले ठीक है, ख्याल रखिएगा बिल्कुल अपना बहुत बहुत ठीक है, चले जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रही जी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं उस ट्रैक की तरफ जो कि शहजादा सलीम डेडिकेट करना चाहते हैं जावेद साहब को, तो आपकी नज़र ये वाला गाना शहजादा सलीम की तरफ से।

0: तो वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 107 पे समर मॉर्निंग विद आरजे महाबिशकान और 7 बज के हो रहे हैं 34 मिनट। अच्छा, एक जल्दी से खबर शामिल करते हैं, फिर हमारे साथ कॉलर है। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ के लोकल एयरलाइंस ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर सीटा के साथ मिलकर फास्ट पास नाम की एक नई फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड बायोमेट्रिक ट्रैवल सर्विस लॉन्च की है और ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पैसेंजर सिस्टम्स में से एक है, जिसमें एयरपोर्ट के अंदर 700 से ज़्यादा टच पॉइंट्स को इंटीग्रेट किया गया और सर्विस के जरिए एलिजिबल पैसेंजर चेक इन, सेल्फ बैग ड्रॉप, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और बोर्डिंग के दौरान बोर्डिंग पास हर बार दिखाने की उनको जरूरत नहीं है, बगैर दिखाए सिर्फ अपने चेहरे की पहचान के जरिए सफर कर सकते हैं और मुसाफिर एक मरतबा यहाँ की एयरलाइन मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर सफर के दौरान ये जो है दिन भर डिपार्चर हॉल के Row 3 में मौजूद सेल्फ सर्विस पर पासपोर्ट स्कैन और फेशियल फोटो के जरिए फॉरन रजिस्टर हो सकते हैं। जो पैसेंजर्स बैगेज चेक इन करवाना चाहते हैं वो टैग बैग्स प्रिंट करके सेल्फ बैग ड्रॉप काउंटर्स पर जमा कर सकते हैं, जबकि सिर्फ हैंड लगेज के साथ सफर करने वाले सीधे सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती सर्विस है और ये सर्विस फिलहाल सिर्फ 18 साल या उससे ज़ायद जो उम्र के अफराद हैं उनके लिए है और जो दोहा से अपने सफ़र शुरू कर रहे हैं, और हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होगा फिर भी तमाम मुसाफिरों को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ रखना होगा क्योंकि इमिग्रेशन ई गेट्स पर उसकी ज़रूरत होगी। तो प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा गया और एयरपोर्ट पर लिया गया जो बायोमेट्रिक डेटा है फ्लाइट के 24 घंटे बाद खुद ब खुद डिलीट भी कर दिया जाएगा। तो ये है सीन और इसके साथ ही देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, आपकी आप इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन आपकी हमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, कहीं बहुत दूर से आ रही है।
1: चलो ठीक है, एक मिनट।
0: जी जी,
1: अभी अभी अभी,
0: अभी आ रही है ना। पहले कहाँ से बात कर रहे थे?
1: असल में मैं वो बड़ा वाला आप लोग से बता के बैठे हैं, हेडफोन बात हो रहा है घर पे, बात कर से पता क्यों रेडियो पे आपको डिस्टर्ब हो रहा है?
0: नहीं, वो घर पे हो जाता है लेकिन यहाँ पे जब कॉल आती है ना तो फिर वो आवाज ही नहीं आती है, ये हो जाता है।
1: हेडफोन बड़ा वाला हेडफोन मैंने लगा के रखा,
0: ये वाला सीन। जी रईस भाई, तो बताएं भाई, कहानियां पढ़ी हैं बचपन से, कौन सा करेक्टर
1: है? सारी करेक्टर हमारे तो भाई, हमारे अंदर का जिन जाके उन लोगों में कान में देता था, ये बता दो तुम रईस भाई, ये सोच रहे हैं आप, पहले आए जावेद भाई, फिर उसके बाद में जमाल भाई, सारे हमने करेक्टर सोचा, और एक सलीम भाई, एक मुंसिफ, मतलब एक मुंशी चाहिए के समझ लो कि सरबराह बनू किसी मुल्क का, जो सबके साथ हिसाब कर सकूं, वो उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद में हातिम ताई का तो जावेद भाई ने, ये क्या नाम है, जमाल भाई ने। मैं बोला यार ये मेरा जिन कितना मेरे साथ धोखा कर रहा है भैया, मेरे जहन में चल रहा है फटाफट जाके वहाँ पे कान में फूक जा जाता, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मैं
0: बोला यार, इसे कहते हैं दिल से दिल मिलते हैं, सबको सबके दिल मिले हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं सोचा यार अपनी बात को मैं कुछ और अलग सा कुछ ये करूँ ताकि भाई हो सकता है ये भी बात है और लास्ट में मैं रह जाऊँ ऐसे ही बैठे। जो आप जिक्र कर रही थी ये हमद है इंटरनेशनल के बारे में, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत पहले से इसको,
0: नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो तो है सेल्फ ट्रांसफर, वो सब कुछ था, लेकिन ये जो इन्होंने जो एक नई सर्विस लेकर आए ना,
1: जी जी, मैंने
0: न्यूज़ सिस्टम न्यू है
1: फायदा, और ये 700 जगहों पे बाकायदा माशाल्लाह बहुत खुशी हुआ कि तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए बड़ा आसानी, और बहुत से कोई कोई मुल्कों में जाओ तो अल्लाह कितना लाइन, खासकर हम अपने मुल्कों में जाते हैं कितने घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है।
0: हाँ, अच्छा ना, सिर्फ ये कि एयरवेज तो चलो सबको पता ही है दुनिया में, लेकिन मतलब यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, रोजाना आपको ऐसी न्यूज मिलती है कि हर इदारा अपने अपने तौर पे ना चीजें अपने आप बेहतर कर रहा है। अभी मैंने देखा रिसेंटली जी के, हम कतर नेशनल लाइब्रेरी को समझते हैं कि वो सिर्फ लाइब्रेरी है, सिर्फ किताबें हैं वहाँ पे, लेकिन इतना कुछ है वहाँ पे, उन्होंने स्टूडियोज बनाए हुए हैं वहाँ पे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ है उनके पास। तो वही हम लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज का, हम लोग नहीं डिस्कवर करते, लेकिन ये कि वाकई मतलब अगर आप यहाँ पे आप मौजूद हो तो मतलब आप बहुत ही खुश नसीब हो कि आप कतर में मौजूद हो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें फख्र है इस बात का, और इस मुल्क की तरक्की में हम लोगों ने बहुत मतलब समझ में मेहनत कर रहे हैं, और तमाम भाइयों का मतलब इसमें ये है, और वो हमारे साथ में हुकूमत इंसाफ भी कर रहा है हमारे साथ में, हमें जो हमारे जराए जो हमें जरूरियात हैं वो हमें मतलब ये भी प्रोवाइड भी किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बिल्कुल
1: सही बात, खुशी है इस बात का देख के और सुन के, और इसकी तरक्की को हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि मजीद अल्लाह ताला से और तरक्की की
0: तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल।
1: दूसरी बात, हम आपके मुल्क में भी गए हैं।
0: अच्छा।
1: अभी पिछले कुछ कराची में भी हमारा मतलब एक बार लैंडिंग हुआ है।
0: अच्छा।
1: तो हम
0: बाहर निकले थे
1: एयरपोर्ट से, बाहर नहीं निकलने का मौका मिला,
0: बाहर निकलना चाहिए ना।
1: हाँ था मेरा, लेकिन अब वो चीज मतलब हमारे पास वीजा और वो नहीं था, तो असल में वहाँ से लैंड किए थे। लैंड करने के बाद कराची से फिर दोहा का मतलब ये था, कराची मतलब ये वो पाकिस्तान का एयरलाइन था, तो समझ लो PIA साइज था उस टाइम। तकरीबन ये आज के 6-7 साल पहले की बात है, शायद 5-6 साल पहले की बात है।
0: सही सही।
1: तो मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट का थोड़ा सा मतलब देखा, चक्कर वगैरह कुछ, बल्कि मैं जैकेट वकेट लेने के उसमें थोड़ा सा, लेकिन बड़ा महंगा, बड़ा मतलब हाई रेट बता रहे थे एयरपोर्ट में, खासकर तो हर चीज महंगे होते हैं, आपको पता है।
0: वही ना,
1: एक आप पानी का बोतल भी मांगोगे तो वो जो बाहर 10 रुपए में मिलते हैं वहाँ पे 100 रुपए का मतलब ये किया जाता है, तो ये सब है।
0: बिल्कुल
1: जी जी जी, तो मतलब थोड़ा सा मतलब मौका मिला है।
0: लेकिन कभी आए वीजा लेकर आए आप पाकिस्तान आएंगे तो आप पाकिस्तान
1: में, हम तो हाँ, हम तो खास कर मतलब हमारा पासपोर्ट असल में नेपाल का है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से आ सकते हैं। हाँ, मतलब नहीं है,
0: जरूर जाइएगा।
1: तो असल में बॉर्डर ये इलाके के हैं, हमारा मतलब लेन देन इंडिया से भी बहुत ज्यादा रहता है, और हमारे रिलेशन भी खासकर उत्तर प्रदेश के मतलब जो कानपुर और ये इलाहाबाद लखनऊ ये सब जगहों के हमारे रिलेशन के, और बड़े बड़े समझ लो बहुत लोग रहते हैं और आना जाना भी रहता है, लेकिन हम लोग एकदम बॉर्डर इलाके पे हैं, तो ये दोनों मुल्क का मतलब ये भी नहीं रहता कि कोई चीज का रोक टोक है, बस खाली अपना आइडेंटिटी दिखाओ और आओ जाओ, बाजार करो, घूमो टहलो।
0: जरूर जरूर आप पाकिस्तान जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी चीज है ना, हाँ, मेहमान नवाज लोग,
1: और वो चीज मैं बिल्कुल पढ़ता भी हूँ, जज भी कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और जिनके बारे में आपने बताया था कि वो बड़ा मजाहिया उनका कलाम होता है, अरे उनका नाम
0: देखो, अनवर मकसूद साहब,
1: नहीं नहीं अनवर मकसूद साहब नहीं, अनवर मकसूद साहब तो मतलब वो राइटर है, मोइन अख्तर नहीं, अभी लास्ट इनके बाद में आपने कहा था उनका कुछ सुना करें, वो थोड़ा शायर
0: साहब,
1: बड़ा उनका बेहतरीन फैन हूँ, कि बड़े बड़े गहरी और मजाहिया भी रहता है और एकदम सच्चाई भी उनके उस पर, बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातों को सुन के, और उसमें हकीकत भी होता है, सामने वाले को मतलब रहनुमाई भी होता है उसमें, कोई भी बात
0: वो बेसिकली। जिया मोहियुद्दीन साहब ने ना पत्रस बुखारी है हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे, तो उनकी तहरीरें बहुत पढ़ी हैं, तो आप उसका जिक्र कर रहे होंगे।
1: जी, तो बड़ा बेहतरीन उनका मतलब अंदाज गुफ्तगू होता है, और सामने वाले को मजाहिया भी हंसाते भी रहते हैं, और बात को समझ लो कि हकीकत भी बयान कर देते हैं अपनी बातों में, सामने वाले को तकलीफ भी ना लगे और हंसने भी मजबूर हो जाए और उसे सोचने भी मजबूर हो जाए यार ये बात मतलब सच कह रहा है।
0: हाँ,
1: मैं पॉइंट पे आऊंगा कि अब क्या कहें भाई लोगों ने तो हमारा, तो मैं बस यही फैसला करूंगा कि मैं एक ऐसा कारी बनूं। अब आलिम के उसमें तो लोगों का इख्तलाफ होता है, तो
0: करेक्टर हम मैंने जैसे पूछा ना करेक्टर को बचपन में पढ़ा हो, जैसे अली बाबा की बात की थी अभी उन्होंने, जावेद साहब ने बात की थी, तो ऐसा कोई करेक्टर जो बचपन में पढ़ा हो आपने और आपको लगता हो ये कितना अच्छा करेक्टर है, कि अगर अगर उसको देख लें आप, सिंध बात था,
1: मैं पहले सबसे पहले एक दो दो करेक्टर के बारे में मैंने सोचा था, ये एक ऐसा इंसाफ करने वाला एक बादशाह का ऊपर मैं सोचा, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर जमाल भाई ने मतलब इसका भी हातिम ताई मेरे
0: रिपीट कर देंगे, मसला नहीं है हातिम ताई।
1: जी जी, मतलब तो वो एक मुंसिफ बंदा था कि और लोगों का मदद करने वाला और सखी था, मैंने पढ़ा और इससे को मतलब बचपन में ही स्कूल के टाइम पे भी, तो उसमें तो कुछ बढ़ा चढ़ा के भी रहता है, लेकिन ये हकीकत है, ये समझ लो कि उसमें जो हातिम था बंदा, और वो उसमें से समझ लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का मतलब हजरत ईसा अलैहि सलाम के वक्त का बंदा था वो, तो उसमें बड़ी मतलब दयानतदारी, और वो शायद उनका बेटा भी कोई शायद बाद में इस्लाम लाने के उसने शायद
0: वो हो गया था, इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, और मेरे ख्याल उनकी बेटी आई थी, जो वो आते हैं ना जब जंग में कहीं जीत जाते हैं तो उसके बदले में वो जो कैदी बना के लाए जाते हैं, तो उस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, तो उनको जो है ना उनको कहा था कि नहीं ये हातिम ताई की,
1: हाँ
0: उन्होंने कहा था ये हातिम ताई की औलाद हैं तो बेटा बेटी तो इनको छोड़ दिया जाए इनके वालिद की वजह से, बाद में वो इस्लाम भी हाँ कबूल कर लिया था।
1: मैंने बिल्कुल आपने सही फरमाया
0: जी जी जी,
1: उनके बारे में मतलब उनके बेटी के बारे में भी मतलब आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया सहाबाए कराम ने मतलब फला की ये है तो उनकी नस्ल से है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मतलब उस उनके बाप का तारीफ भी किया और उनको फिर ये आजाद भी करने का हुक्म दिया गया था।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि वो एक ये जो लोग गुजरे थे पहले इस तरह के जो लोग भी जो नेक फितरत होते थे तो बेसिकली ये फितरत पे होते थे ना।
1: मैं एक बात बताऊंगा कि आजकल हम लोग के अंदर दिखावा ज्यादा आ गया, पहले के लोग ये चीज से बड़ा दूर रहते थे। ये आजकल एक छोटा सा भी किसी को हम दे रहे हैं तो बड़ा फोटो शूट करके एक छोटा सा सौ दोस्तों का इनाम दे रहे हैं तो खड़े होके उसका फोटो शूट करवा रहे हैं किसी को ये कर रहे हैं, ये चीजें नहीं थी उस टाइम पे। वो ऐसा मतलब ये बना के चले गए हैं कि लोग उनको समझ लो कि जब तक कयामत शायद कायम रहेगा कुछ ऐसे ऐसे शख्सियात हैं कि उनका नाम बाकी रहेगा, वो इतना ही बेहतरीन उनका ये अंदाज था। अब एक ज़ुल्करनैन के बारे में जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया कि वो इतने मतलब बेहतरीन बादशाह थे कि वो जब उन्हा के रियाया ने कहा कि मतलब हम आपका कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं माल के बारे में हमारे पास अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, तुम सिर्फ मतलब अपनी बदनी पर समझ लो मदद करो, और याजूज बाजूज को जो कैद किया गया था और ये सारी चीजें मतलब हदीस कुरान में मिलती है सारी चीजें, तो ये सब चीजें उनसे सीखने को मिलता है कि बाकी वाकई मतलब पहले के लोगों का जो आजकल के हमारे बादशाह हैं और आजकल के जो हमारे कुछ लोग एक दूसरे के साथ में ये करते हैं तो ये थोड़ा सा उनके अंदर दिखावा ज्यादा होता है।
0: सही हो गया, सही हो गया,
1: बिल्कुल।
0: चले रईस भाई तो फिर इंशाल्लाह यानी आप हातिम ताई के साथ जाएंगे और मैं एक गाना चलाती हूँ आपके लिए, अच्छा सा एंजॉय कीजिए, साथ रहिए, सही है, सुनते रहे।
1: एक बात मैं लास्ट में पूछूंगा कि आपको मैं कुछ थोड़ा सा वीडियो थोड़ा भेजा हूँ तो आप थोड़ा सा
0: मैसेंजर
1: समझ लो कि ये

0: आप मैसेंजर पे, तो मेरा यह मकसद नहीं किसी के ऊपर कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल, आप
1: अच्छा मैं देख लूंगी देख लूंगी
0: देख नहीं मेरा कोई कंफ्यूज नहीं है, देखें और थोड़ा सा गौर फिक्र करें। मैं समझ लो कि एक अपना वो होने की वजह से कि मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं, ये अल्लाह के सामने ये ना कहना कि मेरे तक अल्लाह ये बात नहीं पहुंचा तो मैं कैसे बात
1: मैंने अभी देख लिया वैसे
0: नहीं
1: अल्लाह माफ करे ऐसे हम नहीं हम ना किसी की रईस भाई मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम नियत नहीं जान सकते ना किसी की,
0: नहीं
1: वो सही है मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम ना किसी के दिल का हाल नहीं जानते तो हम किसी को ये नहीं कह सकते।
0: जी जी जी। आपके कराची के ही उसमें रहते हैं कारी खलील रहमान जावेद साहब को भी थोड़ा सुना करें, वो उनसे भी आपको ज्यादा फायदा होगा, उनका भी बड़ा बेहतरीन उनका मतलब गुफ्तगू होता है।
1: चले सही है बिल्कुल सुनूंगी ठीक है चले रईस भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ रईस जी। तो इसके साथ ही हम मूव करते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ वापस आते हैं। आज मैंने आपसे सवाल किया फिक्शनल करेक्टर, तो मुझे बताएं आपके बचपन के या फिर बड़े होने के बाद भी बहुत से करेक्टर्स हो सकते हैं जो आपने कोई कहानी पढ़ी हो, कुछ जो आप चाहते हो कि उस जैसा मतलब आपने अपनी जिंदगी को रिप्लेस करना है उसके साथ, तो कौन हो सकता है ठीक है तो बताइएगा और इसके साथ बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें.
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको.
5: टॉप 10 काउंटडाउन.
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। क्रिकेट हो,
1: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 runs,
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: तो वापस आ गए मैं, 8:02 हो रहे हैं तकरीबन, और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस मैं आप लोगों के शामिल कर लूं क्योंकि काफ़ी मतलब देर हो गई है, आपके मैसेजेस नहीं शामिल हुए हैं। तो मुमताज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। गेम मुझे भी खेलने का बड़ा दिल करता है लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि सेम टाइम हमारे इंजीनियर साहब ड्यूटी पर आ जाते हैं और FM 107 वो भी सुनते हैं, वो गाड़ी में होते हैं। जिस दिन मैं गेम खेला उसी टाइम फ़ोन आएगा कि क्या चल रहा है मुमताज़ अहमद, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, किसी दिन ज़रूर खेलूँगा। मुमताज़ ज़रूर उनको मनाइए और आप ज़रूर आइए। इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान आपको मैं यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपका भी इंतज़ार है। इसके साथ ही आसिफ भाई ने भी मुझे मैसेज किया, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैन आई जॉइन योर अंताक्षरी प्रोग्राम। तो मैंने उनको कह दिया कि वाई नॉट, तो ज़रूर वो भी आएंगे। इसके साथ ही हाज़िर हूँ, ओके, अच्छा चले आपका नंबर भेजती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ हैं इस वक्त बैक टू बैक दो कॉलर्स, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। अगर दूसरे वाले कॉलर इंतज़ार नहीं कर सकते तो मैं उनका नंबर नोट कर लेती हूँ, जो दूसरे नंबर पे हैं वो समझ जाएंगे, उसके बाद फिर पहले नंबर नोट कर लेती हूँ फिर हम जो है ना कॉल लेते हैं, तो उनको मैं खुद ही कॉल कर लूँगी, फिक्र ना कीजिएगा आप, मैं नंबर जल्दी से नोट कर लूँ फिर उसके बाद हम कॉलर को ले लेते हैं। चले जी, तो पहले कॉलर हमारे साथ हैं और दूसरे अगर जाना चाहें तो अभी जा सकते हैं, मैं कॉल कर लूँगी आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मैं लाइन पे हूँ।
2: जी जी, आप लाइन पे।
3: जी कैसे हैं आप, खैरियत से बहन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
3: जी, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम असमत है और आप तो शायद जानती हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
3: जी
2: जी। तो असमत आफरीदी साहब, क्या आज कैसी सुबह का आगाज हुआ आपकी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सुबह का आगाज हुआ है, बस वही अपनी रूटीन, नॉर्मल रूटीन, अपनी एक्सरसाइज वगैरह पूरी की और फिर नाश्ता वगैरह हुआ और उसके अलावा फिर उसके बाद ड्यूटी, बस अभी भी ड्यूटी पे हैं। मैंने कहा आज टॉपिक मेरे मुताबिक है तो चलो आज हम भी कॉल कर लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने।
3: तो आपने कहा कि कोई फिक्शनल करेक्टर जो आप जीना चाहते हैं वो करेक्टर या वो बनना चाहते हैं, राइट?
2: बिल्कुल ऐसे ही।
3: तो मुझे अगर कोई कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर का कोई समझ आया है अभी तक जो मैंने पढ़ा है या देखा है, तो मुझे एक ही परफेक्ट कैरेक्टर लगता है फिक्शनल कैरेक्टर, वो है सालार सिकंदर पीरे कामिल वाला।
2: सही सही,
3: सालार सिकंदर एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो रिलेट कर सकता है हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगियों से। उसको उमेर अहमद ने पीरे कामिल में ऐसा दिखाया है ना, अच्छा मैं अक्सर देख रहा होता हूँ ये इंस्टाग्राम पे रील्स ना, ये इस पे सालार का और जहान सिकंदर का मुकाबला होता है आपस में कि कौन बेहतर कैरेक्टर है, वो जन्नत के पत्ते वाला जो था निमर अहमद का।
2: जी जी जी जी।
3: तो इनका आपस में मुकाबला करवाते हैं लोग,
2: लेकिन माहिर का क्या, मुझे ये बताएं, मुझे तो माहिर ज्यादा अच्छा लगता है।
3: माहिर ये भी माला वाला ना,
2: माला वाला
3: नहीं, वो उसका कैरेक्टर भी ठीक था, मजे का था,
2: मुझे माहिर लेकिन
3: मर जाते हैं ना आखिर में।
2: हाँ, नहीं, मर वो कहाँ मरता है, वो मरती है, माला मर जाती है।
3: हाँ,
2: माहिर
3: माला,
2: तो जिंदा रहता है, कशमाला मर जाती है, लेकिन मुझे माहिर पसंद है। अगर जेहान सिकंदर और इनका मुकाबला हो तो मैं कहूँगी माहिर।
3: अच्छा, नहीं नहीं, मुझे तो सालार सिकंदर से बेस्ट कोई कैरेक्टर अभी तक नहीं लगा। उसकी वजह ये है कि उमेर अहमद ने उसको ऐसा दिखाया ना, अब सालार का उसका जो लोग दिखाते हैं ना, जो कंपटीशन करवाते हैं जहान सिकंदर का और इसका, देखिए जहान सिकंदर को मैं अक्सर कॉमेंट भी वहां करता रहता हूँ कि जहान सिकंदर को शुरू से परफेक्ट दिखाया है और आखिर तक परफेक्ट ही है, ठीक है, वो बंदा परफेक्ट ही रहा है। लेकिन सालार एक ऐसा आदमी था जो एक ऐसी दुनिया से आता है दीन की तरफ कि वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ, मतलब हमारे माशरे में जिसको लोफर और लोग अजीब अजीब किस्म के लोग गालियां देते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को जो इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन उस बंदे का जो उमेर अहमद ने दिखाया है शुरू में, आप अगर देखें, आपने पढ़ा है ना पीरे कामिल, बल्कि आपने भी सजेस्ट किया है,

0: कहता है कि मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ मगर कोई भी मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ठीक है, वो सवाल क्या पूछता है, कहता है कि व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी।
1: ठीक
0: है, वो कहता है कि वो कुछ देर में खामोश रहती है, उसके पास जवाब नहीं होता तो एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू, वो जवाब देती है पेन, दर्द। ठीक है, और आगे से वो पूछता है व्हाट इज नेक्स्ट टू पेन, वो जवाब है नथिंगनेस। ठीक है, तो फिर वो कहता है व्हाट इज नेक्स्ट टू नथिंगनेस, वो कहती है
1: हेल,
0: जहन्नम। व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल, व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल, व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल, तीन बार दोहराता है। ठीक है, वो आगे से कहते हैं तुम्हें खौफ नहीं आता किस चीज से, हेल से, जहन्नम से। ठीक है, उस जगह से जिसके आगे और जिसके आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके पीछे ही रह जाता है। ठीक है, तुम्हें उस जगह से खौफ नहीं आता। तो इस किस्म के कैरेक्टर, इस किस्म के सवाल अगर आज के माशरे में हमारे यहाँ भी लोग पूछते हैं, अक्सर डॉक्टर सुफियान भी उसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि अगर ऐसे सवाल कोई पूछता है तो हम उस पे कुफर के फतवे लगा देते हैं या मुलहिद करार दे देते हैं कि तुम ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसको शौक था वो जानने का कि यार मुझे बताओ क्या है, हेल क्या है, पेन क्या है, दर्द क्या है, मुझे बताओ इससे आगे भी। और वो हर कभी भी वैसे ही करता है ना, कभी खुदकुशी के अटेम्प्ट कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी अभी अपनी नसें काट रहा है, अजीब अजीब किस्म के। लेकिन फिर मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब वो तब्दील होता है सालार सिकंदर, जब वो तब्दील होता है, मैं कहता हूँ यार मैं इतना रोया था, मैं ये सब दोस्तों से, बहनों से जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग जो उर्दू समझते हैं, बल्कि बांग्लादेश में भी अब तो बंगला लैंग्वेज में भी आ गया है पीरे कामिल, तो हिंदी में भी शायद आ गया है गालिबन, हिंदी में आई थिंक नहीं आया, लेकिन उर्दू में और अंग्रेजी में और इसमें अवेलेबल है बंगला में, बंगला लैंग्वेज में।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज पीरे कामिल पढ़ें एक बार। उमैर अहमद ने एक शाहकार लिखा है, ये कोई मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये सदियों में एक बार कोई ऐसा कैरेक्टर सामने आता है।
1: एग्जैक्टली,
0: तो हाँ, तो ये आप जरूर पढ़ें, मैं सबको सजेस्ट भी करूंगा। और मेरा फेवरेट है सालार सिकंदर, उसकी वजह ये है कि वो जिस बैकग्राउंड से आता है वापस, जिस बैकग्राउंड में वो होता है, जिस किस्म की उसकी हरकतें होती हैं, और फिर जब वो अल्लाह के करीब होता है तो वो इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि फिर वो मतलब वो हमारा पर्सनल वो एक फेवरेट बन जाता है कि यार ये क्या था, ये उसने क्या सिखाया।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखें कि जो डॉक्टर सुफियान की एक बड़ी पसंदीदा मुझे लगता है लाइन भी है, और बड़ी मतलब मौके पे मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल सही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बदतरीन जानवर उन लोगों को कहा है जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, जो सवाल नहीं करते। तो सालार सिकंदर जैसे जो कैरेक्टर्स है ना, वो देखें उसको बताया कि उसका IQ 150 से अबव था। तो ऐसा बंदा जो इतना ज़हीन हो, उसको अगर किसी चीज़ को पाना है ना, तो पहले वो सवाल करता है। जब तक उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो वहाँ तक नहीं आता। तो सवालों को कभी भी बुरा नहीं समझना चाहिए। और ये वाकई ये मैंने सजेस्ट की थी अपने शो में, थैंक यू सो मच कि भाई आपने पढ़ी और आप जो है वो उसके बाद आप इसका इतना जिक्र भी कर रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी
0: होती है। दो बार पढ़ी है, एक बार नहीं, दो बार।
1: जबरदस्त। तो वही है कि मैं इसीलिए मैं बार बार, जैसे कल एक भाई कह रहे थे ना आपको मशवरा दें, तो मैं इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ लोगों का बहुत किरदार है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो मैं हमेशा लेती हूँ वो है उमैर अहमद, कि उनकी तहरीरों ने आज मुझे लगता है जो कुछ हूँ, मेरी अम्मी के बाद ना उमैर अहमद जिसको मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिली, लेकिन उस बंदी का मेरी शख्सियत के ऊपर एक बहुत गहरी छाप है, बहुत गहरी छाप है मेरी सोच पर। तो वो मैं चाहती हूँ कि हाँ, कि आप लोग ज़रूर उमैर अहमद की पीर कामिल पढ़ें, आब हयात पढ़ें, और भी उनके बेशुमार ऐसे नॉवल्स हैं जिनको आप पढ़ें, अगर आपको उनसे इश्क ना हो जाए ना फिर बोलिएगा।
0: नहीं वाकई में, और मैं ये यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो डॉक्टर सुफियान कहते हैं ना, कि ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं, अगर आपने इनको मुतमईन कर दिया तो फिर ये मुसलमान नहीं बनते, ये मोमिन बनते हैं।
1: ठीक है,
0: ये मुसलमान से भी आगे होते हैं। और सालार फिर मोमिन बना है, फिर पक्का वाला मोमिन बना है, वो वाला बंदा बना है जो मतलूब है हमारी जिंदगियों में, जो अल्लाह के इतने करीब हों। तो बारकैफ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मेल कोई पढ़ना चाहता है तो मुझे पूरा यकीन है मेरी तरह वो भी अच्छा, ये इमामा और सालार के बीच में जो है, तो उसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है वो इमामा है, सारी सी बात है वो इमामा है।
1: लेकिन मैं चाहूंगी सालार के साथ फिर दोबारा।
0: हाँ, नहीं, अगर मैं अपनी जिंदगी में वो, क्योंकि मैं मर

0: हूँ, अगर मैं उस तरह जीना चाहूँ तो मैं सलार की तरह ही जीऊंगा, ऑफकोर्स उसी तरह का बनूंगा, लेकिन इन दोनों में अगर कोई फेवरेट है मेरा तो वो इमामा है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनी है और जिस फिरके से वो आई है
1: हाँ.
0: तो वो आपको पढ़ना चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा.
1: हाँ, exactly, बिल्कुल जी, बिल्कुल.
0: जज़ाकअल्लाह खैर.
1: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने एक रियल, मतलब जो एक फिक्शनल कैरेक्टर था उसको, उसके बारे में काफी अच्छी से बात की, तो जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. रई जी, इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर है, सबसे पहले तो उनसे बहुत सारी माजरत और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंतजार किया. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: कौन है भाई आप, कौन है आप?
2: मैं नहीं बताऊंगा.
1: अरे आरिफ अंसारी, क्या बात है भाई, मतलब इतने स्वीट इंसान है आप, सीरियसली, कि मुझे अफसोस हो रहा था कि आप कॉल इस वक्त इंतजार कर रहे, लेकिन आप इतनी देर तक इंतजार करते रहे. थैंक यू सो मच.
2: कोई बात
1: नहीं. हाँ चले, बहुत अच्छी बात है. आजकल सबर ही तो नहीं है भाई, सबसे बड़ा मसला यही तो है, सबर नहीं है लोगों में.
2: सबर होना जरूरी है.
1: हाँ जी, तो बताएं भाई क्या चल रहा है आज, और क्या, कौन सा फिक्शनल कैरेक्टर के साथ जाएंगे आप?
2: फिक्शनल कैरेक्टर तो पहले मेरा पिछला साल आज,
1: हाँ ना, मैंने आप, पता है आपके लिए गाना लगा के रखा हुआ है, मैं आपके लिए चलाऊंगी, आपने तो बताया नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही चला देती हूँ एक गाना.
2: आज मेरा मूड नहीं था गाना से, मैं सोच रहा था कुछ ऐसा देखूं, कोई ऐसा हो शादी पे तो मैं सजेस्ट करूंगा.
1: हाँ, मैंने वो वाला लगा दिया, मैंने वो लगाया, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी. तो वो चलाऊंगी मैं इसके बाद.
2: ओके, कोई बात नहीं.
1: हाँ जी,
2: कैरेक्टर के हिसाब से एक तो सबसे पावरफुल अभी मैं अभी का दौर की बात कर सकती
1: हूँ,
2: 2002 की जनरेशन मेरी, हम लोग तो बैट्समैन, सुपरमैन ये सब देख के हम लोग बड़े हुए. हम लोग पढ़ा भी है और अभी भी देखते थे वो सकला का बूम, हम लोग वो सब भी देखते थे. पर मैं जाऊँगा स्पाइडरमैन के साथ, क्यों, एक तो वो गरीबों का सुपर हीरो होता है ना, वही वाले कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि गांव घर में हम लोग जो मकड़ी भी देखते हैं, तो पहले हम बचपन में बात भी करते थे, काट लेगा तो मैं भी स्पाइडर हो जाऊंगा, उससे यादें थोड़ी जुड़ी हुई है, इसीलिए.
1: सही सही, स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं.
2: बॉडी पे वो कुछ छोड़ देता है ना स्पाइडर, तो थोड़ा गाँव का सेम से हो जाता है, वैसे हुआ था. हम लोग दोस्त से हम लोग बात भी करते थे, मैं देख दोस्त मेरे को स्पाइडर ने काट है, अभी मैं स्पाइडर हो जाऊंगा. बहुत मजे किए थे, 12 दिन रहा था वो.
1: अच्छा,
2: तो मैंने खूब मजे किए थे.
1: सही सही, बस रही सही सही, गुड, जबरदस्त. तो स्पाइडर मैन बनना चाहते हैं और गरीबों की मदद करना चाहते हैं, असल पॉइंट ये है.
2: उसका स्टोरी भी मेरे को थोड़ा, लव लाइफ भी उसका थोड़ा इमोशनल भी है, और वो हाँ, काम भी वैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी वाली.
1: नहीं, मजे की मजे की. आपको पता होगा वो स्पाइडर मैन के ऊपर ना, वो स्पाइडर मैन की कौन सी वाली मूवी आई थी, एक मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम था, तो उसमें हमारे एक पाकिस्तानी बैंड है स्ट्रिंग्स, तो उन्होंने उसके लिए गाना गाया था, बड़ा सैड सॉन्ग है वो, लेकिन बड़ा जबरदस्त है, सुना है कभी?
2: नहीं, अभी तो भूल गया हूँ. मैंने वैसे फिल्म सारे देखी हुई है स्पाइडरमैन की.
1: अच्छा अच्छा,
2: और अभी याद वो, अभी एक फिल्म हाँ, आ रहा है, एक फिल्म आएगा.
1: अच्छा अच्छा,
2: मैं जाऊंगा.
1: अच्छा अच्छा, चले ठीक है, और मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके लिए वो लगाऊंगी. ठीक है, वो बेसिकली पाकिस्तानी वर्जन जो था ना, मतलब पाकिस्तानी के लिए, उर्दू वर्जन के लिए ये वाला गाना लिया था. हाँ, उर्दू वर्जन के लिए, तो मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ आपके लिए. शादी मुबारक हो आपको भाई, तीसरी सालगिरह, एक दफा फिर से वो भी गाना लगाना है और ये वाला भी लगाती हूँ, सुन के बताइएगा. ठीक है, चलिए जी, आरिफ अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी. तो हमारे साथ है आरिफ अंसारी, और इसी के साथ एक और कॉल आ रही है, लेकिन मैं थोड़े से मैसेजेस और पढ़ दूँ. जसविंदर सिंह कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड प्रोग्राम. जसविंदर सिंह काला, और प्लीज़ बुल्ला की जाना मैं कौन. अच्छा, ये वाला गाना आप सुनना चाहते हैं, चले मैं ये ढूंढ के जो है ना रखती हूँ अभी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मौका मिलता है तो चलाती हूँ. वैसे भी हमारा अंताक्षरी का वक्त भी होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम रह गया. अच्छा, ये मुझे लग नहीं रहा कि है. चले खैर, कॉल ले लेते हैं, फिर देखते हैं, ढूंढती हूँ मैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हो? ठीक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है. कैसे, तबीयत कैसे, ठीक है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं, नाम तो बताएं.
3: शरीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह. उस दिन भी कॉल किया था, फिर मैंने बोला फिर दोबारा कॉल करते हैं.
1: अच्छा अच्छा, कि आपने, मैं समझ तो रही, कुछ कुछ आवाज सुनी सुनी लग रही है, लेकिन नाम बताना पड़ेगा अभी.
3: नाम बता देगा, मुश्किल नहीं है, नाम बता दे गोवा पहुँच जाएंगे.
1: जयस खान.
3: नाम मेरा है खान साहब है, हम पठान हैं।
1: खान साहब हैं, ओके। जी खान साहब, क्या हाल चाल है आपके?
3: खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप पाकिस्तान से हो मैडम?
1: जी जी पाकिस्तान से हूँ।
3: पाकिस्तान में कौन से शहर से हो?
1: कराची।
3: माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत है लेकिन खूबसूरत इलाके जिसमें है वो वाली बात।
1: बस आजकल जो है ना आप खैर दुआ करते हैं अल्लाह करे दोबारा अच्छा कर दे, लेकिन आजकल बस बेचारा बेहाल हुआ है हमारा कराची। खैर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आप कहाँ से?
3: मैं पेशावर से हूँ।
1: पेशावर से हैं, जबरदस्त जबरदस्त, तारीखी शहर है पेशावर बहुत ज्यादा।
3: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल जी, तो जबरदस्त। और बताएं भाई खान साहब के बचपन में कोई कहानी, कोई ऐसा कुछ पढ़ा था या स्पाइडर मैन ये वो जिससे आप मुतासिर हो या अभी भी कोई कहानी?
3: यार बचपन में तो खाली हमारे लिए जब नींद नहीं आती थी तो डरावने वो बला वाली कहानी सुना देती हम सुला के।
1: बलाओं वाली कहानी सुना के आपको सुलाती थी? क्या और डर जाए बच्चा,
3: रात को नहीं निकलते रूम से, इधर देश में आगे भी इधर भी डरते, रात को पेशाब आ जाते नहीं निकलते यार, इतने अंधेरे रात में कौन निकले, कोई बला निकल जाएगी।
1: अच्छा मतलब वो बोलती होंगी कि बेटा सो जाओ वरना वो बड़े बड़े जो है ना वो ऐसी खौफनाक आंखों वाली ये आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी,
3: बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े बाल और ये पांव उल्टे होंगे।
1: तो अब मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकती कि आप चुड़ैल तो नहीं बनना चाहते? याल्ला तो सही, आपने तो चुड़ैलों की कहानियां सुनी हुई है। हाँ सही है सही है, चले जी गुड, ये भी अच्छा है।
3: एक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर इजाजत है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूछे।
3: आप अगर जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगी?
1: मतलब किस हवाले से, कोई करेक्टर या क्या? कोई करेक्टर ऐसे किरदार की जैसे बात हो रही है वो या फिर क्या?
3: जो भी मतलब करेक्टर हो या इंसान हो या कोई चीज हो, मतलब जैसा भी हो बस बंदा बोले यार मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता।
1: हाँ। जैसे आज हम फिक्शनल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फिक्शनल्स में मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स पसंद है, मतलब कहानियाँ, क्योंकि मैं बचपन से कहानियाँ ही पढ़ती बड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो बेतहाशा कैरेक्टर्स में किसी एक का नाम नहीं ले सकती। लेकिन हाँ अभी जैसे उन्होंने बात की थी, हमारे कॉलर आए थे हातिम ताई की, तो मैं भी बचपन से बहुत मुतासर थी हातिम ताई से, उनकी सखावत से कि वो इतना ज़्यादा बड़े दिल के होते हैं, किसी ने उनसे कुछ भी मतलब कभी भी कुछ मांगा तो उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, तो वो मुझे मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर था बचपन से, तो वो हाँ हातिम ताई। हातिम ताई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये कि फिक्शनल कैरेक्टर्स में फिर बहुत सारे, मैं तो वही मैं कह रही थी ना शुरू में कि मेरा तो दिल चाहता था, अभी तक मैं ये ख्वाब देखती थी कुछ अरसे पहले तक, अब थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं यार अब मतलब अब अक्ल आई है मुझे थोड़ी सी, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि नहीं ये चराग बराग कुछ नहीं होते, वरना मैं तो सोचती थी कि कुछ जन आ जाएगा फिर हम उससे कौन सी तीन फरमाइशें करेंगे। तो मुझे अलादीन का चराग भी चाहिए था, तो ये वाला सीन है।
3: अलादीन का चराग नहीं मांगो भाई।
1: हाँ नहीं, मैं तो सोचती थी, मैं कहती थी अगर अलादीन का चराग मतलब आ गया उसमें से कुछ जिन निकल आया तो मैं कौन सी चीज़ें, मैं वाकई लिटरली बता रही हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब अभी कुछ 10-12 साल पहले तक मतलब ना मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि अगर मुझे अलादीन का चराग मिल गया, उसने मुझसे पूछा कि मांगो क्या मांगती हो, तो मैं कौन सी तीन चीज़ें बोलूँगी, बाकायदा सोते हुए सोचते हुए सोचते सोचते मुस्कुराती हुई सो जाती थी। तो ये सीन है। तो ये सीन है भाई, मतलब क्या बचपन में जब छोटी थी जब भी मैं ये सोचती थी, अच्छा मेरे हमारे खानदान में इत्तफाक की बात है, मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं है लेकिन उस जमाने में लगा करती थी ना, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में हमारे यहाँ सारे 6 फिट से अबव लोग हैं, ठीक है सारे, मेरी अम्मी की माशाल्लाह से बहुत लंबी हाइट थी, और बाकी जो है ना दोस्त वगैरह जो बने वो भी सारे के सारे ना कुछ 6 फिट के करीब करीब मेरी दोस्तें थी, 5 फिट 8 इंच और इस तरह से, तो उनके दरमियान ना मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता था कि मेरा कद छोटा है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मुझे ये अलादीन का चराग मिला तो मैं उससे बोलूँगी, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश बचपन में बहुत अरसे तक रही है, क्योंकि इर्द गिर्द सारे लंबे लंबे लोग थे ना, तो मेरी ये थी कि जब अगर मुझे मिल गया तो मैं उससे बोलूँगी भाई मेरा कद इतना बढ़ा दो। तो ये वाला सीन था, ये सोचती रहती थी भाई कद बढ़ा दो। हाँ अभी मेरी हाइट मतलब 5'2" है, 5'2" है,
3: 5'2"
1: हाँ, तो ना छोटी है ना बड़ी है, दरमियानी है, लेकिन मेरे खान में बता रही हूँ ना मेरी कजन्स वगैरह जिन लोगों के साथ मेरा घूमना फिरना था वो माशाल्लाह से 5'8" इस तरह की हाइट है उनकी,

0: तो वो
1: माशाल्लाह तबारक रहमान,
0: हाँ एग्जैक्टली. तो उनके साथ मेरी दोस्तें भी, स्कूल की दोस्तें भी, तो पता नहीं कौन से खानदान में ना, मैं मतलब खानदान और इर्द गिर्द में जो लोग थे मेरे, वो दियो हैकल टाइप लोग थे. तो उनके दरमियान में रह के मुझे अपना आप बहुत ही कोई मतलब छोटा छोटा सा लगता था, तो उस जमाने में था. फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरी तो नॉर्मल हाइट है, बल्कि मुझसे कम कितने लोगों की हाइट होती है. तो अब मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अब नहीं,
1: नहीं, नहीं बहुत है, बहुत कम लोगों की इतनी भी कम हाइट है. आप तो माशाल्लाह सही है, 5'2"
0: जी जी जी. तो ये सीन है, तो ये वाला मामला है भाई. तो मैं तो ख्वाबों में अभी तक जीती हूँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ. और मुझे लगता है कि आपको ख्वाब देखने चाहिए, चाहे वो बचपन की कहानियाँ हो, चाहे बड़ी मतलब हो के भी कहानियाँ आपको पढ़नी चाहिए और ख्वाब आपको जीने चाहिए.
1: हाँ ये तो है, लाजमी बात है. जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नींद आने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए.
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो चलें, खान साहब, खान साहब आपका असली नाम क्या है ये तो बताएं.
1: मेरा असली नाम है मोहम्मद जुनैद.
0: देखिए अभी तो पिछले दिन बात हुई थी आपसे, हाँ जुनैद नहीं बताया आपने, खान साहब बोल दिया. चलो जी, बहुत अच्छा लगा जुनैद आपसे एक दफा फिर बात करके. थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है?
1: बहुत, आप भी अपना बहुत ख्याल,
0: बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी,
1: एंटरटेनमेंट करने के लिए.
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ भाई जुनैद थे और इसके साथ ही आपके मैसेज में जल्दी जल्दी से शामिल कर दूं. अच्छा जी, ये है, अच्छा नंबर चाहिए आपको, ठीक है मैं देती हूँ. तौफीक भाई, इसके अलावा जो है रईस खान, गुड सॉन्ग. अस्सलाम वालेकुम, हम चाहते हैं पहला सॉन्ग, पहले हम लोग ना आए. अच्छा, आप आज नहीं आना चाहते, चले हम दूसरे लोगों को आज मौका देते हैं. मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, गुड मॉर्निंग मामू जी, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग. मोहम्मद यूसुफ खान, ये तो बताएं कि कौन सा फिक्शनल कैरेक्टर जो है ना आप चुनना चाहेंगे. सलाम माही मैम, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग. मैम मैंने तो अभी ऑन किया है, आज तो मैं बिजी हुए हुए. सुरजीत आज बिजी है. और इसके साथ ही सैयद खादिम हुसैन और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. महावश खान बहन, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब. और असमत अफरीदी भाई को भी सलाम, अल्लाह करीम आपको अपनी रहमतों के साए में रखे. ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सईद खादिम हुसैन भाई. और असमत आफरीदी डेफिनेटली सुन रहे होंगे, तो उन तक भी आपका सवाल सलाम पहुंच चुका है, सलाम पहुंच चुका है. तो राइट, तो आज का सवाल भी ये था. अब अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कल कर सकते हैं, वरना फिर अब हम थोड़ी देर के बाद अंताक्षरी की तरफ बढ़ेंगे. मैं आपको उससे पहले खबर सुना दूँ, क्योंकि हमने अभी आज बहुत ही कम जो है ना चीज़ें शामिल की हैं, मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो रहा है. तो खैर आपको बताती चलूँ कि कतर ने जनेवा में होने वाले यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस के दौरान ग्लोबल अलायंस फॉर एआई एथिक्स लॉन्च कर दी. और इस अलायंस का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऐसे इंटरनेशनल एथिकल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स तैयार करना है जो मुख्तलिफ ममालिक की तहजीबों और कीमतों और तजुर्बों को भी शामिल करें. तो ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है. और इसके साथ ही कुछ अगर मौका मिलता है तो मैं आपसे स्पोर्ट्स के हवाले से भी चीज़ें शेयर करती हूँ थोड़ी देर में. और जितने लोग हैं सारे के सारे इस वक्त जिस खबर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुए हैं, वो ये कि अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 के एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मुकाबले में इजिप्ट को 3-2 से हरा कर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है. तो इसके ऊपर डेफिनेटली लोग काफ़ी हर्ट भी हुए हैं. और कैप्टन ये जो मैसी हैं, उन्होंने पहली पेनल्टी मिस की, लेकिन बाद में अहम गोल करके टीम को जीत दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया है. तो ये सीन है भाई. और इसके साथ ही जी हम बढ़ते हैं, मैं गाना लगाने जा रही हूँ. आरिफ अंसारी, आपको बहुत मुबारक हो आपकी शादी की 3री सालगिरह.

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और हमारा वक्त हो गया है अंताक्षरी का। जी तो अंताक्षरी में हमने एक कॉलर तो ले लिया है, वो हमारे साथ हैं, दूसरे का हम कर रहे हैं वेट कि दूसरे हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और शामिल हो जाएं, तो हम आपके साथ अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि जल्दी से कोई आ जाए भाई, क्योंकि दो लोग तो चाहिए ही चाहिए और ये वाला सीन है, तो फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग माही जी, यू हैव अ वंडरफुल डे। और ये कौन है? ये इनका नाम है राज। राज क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है राज, कॉल कर लें। आरिफ अंसारी, ओके जबरदस्त माशा।

0: तीकुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तीकुर रहमान भाई। अच्छा जी, तो हम अपने कॉलर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन हमें ज्वाइन करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: जी फैजान, क्या हाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमारे परीजाद आ गए हैं।
1: जी जी जी
0: जी, जी तो परीजाद की आवाज भी अच्छी है भाई, आज सुनने को मिलेगी हमें।
1: जी जरूर।
0: चले अच्छा, एक कॉलर और आए, देखते हैं कि कौन है, इनसे भी बात करते हैं फिर शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
2: जी निमरान बोल रहा हूँ।
0: निमरान बात कर रहे हैं, जबरदस्त निमरान। तो अंताक्षरी खेलेंगे ना आप?
2: जी
0: चले ठीक है, तो फिर चलें गुड, जबरदस्त कोशिश कीजिए। और कौन शुरुआत करेगा, फैजान आप या निमरान आप?
2: भाई अगर करेगा तो भाई को करने दो, या तो फिर मुझसे करेगा तो क्या फिर? अच्छा आप करें,
1: मैं कर लेता हूँ।
0: ठीक है गुड, जबरदस्त।
1: अच्छा क्या कहते हैं, गाना गाने के लिए कितना टाइम चाहिए? एक मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना है मेरा ख्याल।
0: हाँ, मतलब एक मिनट 30 सेकंड इस तरह से
1: चले। ठीक है। अपनी खबर मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
0: क्या बात है फैजान, वाकई आपकी तो माशाल्लाह आवाज बहुत ही सुरीली है, जबरदस्त। तो ये दुनिया की महफिल मेरे काम की नहीं, नून निमरान।
2: क्या एच आ गया ना?
0: नून नून
2: नून।
0: हाँ,
2: न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया।
0: जबरदस्त या तो या हम कहते हैं इसको, आखिर का लफ्ज लेते हैं तो अलिफ आया है, अलिफ फैजान। जी
2: जी राइट।
1: अकेले न जाना,
0: ओए होए,
1: हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना।
0: अलिफ। जी निमरान,
2: फिर अलिफ आ गया।
0: जी जी फिर अलिफ आ गया।
2: ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं मन मोजी, राइट है ना?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गा रहे, अच्छा गा रहे, कंटिन्यू कीजिए।
2: मैं हूँ मन मोजी करता हूँ मैं वो जो तुम भी सुनो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन।
0: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला लखन। नून
2: नून,
1: माय नेम इज लखन। वो है कि ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगु होने लगी है, जिंदगी प्यार में खोने लगी है। ये गाना है नेस कैफे बेसमेंट, पाकिस्तान का कैफे था ये, उसका सॉन्ग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खोने लगी है,
0: खोने लगी है ये
2: ये
0: जी,
2: ये के ये
0: ये
2: एच एच से आएगा?
0: नहीं नहीं, ये मतलब वाई
1: वाई वाई
0: वाई। यस यस यस। वन टू,
2: याद आ रही है,
0: जबरदस्त,
2: तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है।
0: बहुत आला। जा रही है। ये अगेन फैजान,
1: ये से आया है।
0: हाँ

0: ये दीवान
1: सारे सॉन्ग है ये से, लेकिन अभी वो ब्लैंक हो रहा है। यारो माफ करना, कहने आया हूँ कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ, वो जो गाना है ना इसका,
0: मैं हूँ परदेसी,
1: जी जी जी मैं हूँ परदेसी हम नवा, तो ये
0: दिल में रहने आया हूँ। नून
1: नून
2: ना नून से ना
0: नून से वन
2: ना ना ना ना नारे नारे नारे ना ना ना ना नारे नारे ना साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे साढ़े नाल।
0: गुड कलेक्शन निम्रान,
2: साढ़े नाल स्कूल में था मैडम, वही मैं चला रहा था।
0: लाम
2: काम आ रही है,
0: लाम एल
1: लाम से लाल इश्क ये मलाल इश्क,
0: क्या बात है,
1: इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, ये वाला
0: बहुत आला इश्क। तो ये शहजादा सलीम की मतलब ना वो बात पूरी हो गई कि ये कभी काफ भी आना चाहिए तो आ गया है। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निवरान, मुश्किल हो जाएगा। जी
2: काफ आ गया, कागज कलम दवा देना, लिख दूं दिल तेरे नाम सनम, दिल क्या जान भी दे दूं दे दूं, बस आगे क्या। मगर केस मैंने पकड़ लिया, गाना
0: पकड़ लिया। आई थिंक जान सनम तो मीम पे खत्म होता है,
2: मीम जान मीम ओके राइट।
1: एम से एक मिनट
0: जी जी जी जी जी
1: आ, मुझे तुम नजर
0: ओए, ओए, ओए, क्या बात है।

0: क्यों यकी हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तुमने दिल से
1: नजर से ये वाई
2: ये
1: जी
2: वाई ये वाई से ना
1: वाई वाई
2: वाई वाई
1: वन टू जल्दी से
2: नहीं याद आ रही है गा लिया पहले ही वाई
1: चले हम देखते हैं थ्री कोशिश कीजिए फोर फाइव चलिए निमरान थैंक्स अ लॉट बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा निमरान आपके नंबर के आखिर में 84 आता है
2: जी जी जी
1: हाँ चलें ये वाली ड्रॉप करनी निमरान बहुत जबरदस्त सॉन्ग कलेक्शन कमाल थी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है आगे भी आइएगा। चलें जी हम दूसरे कॉलर ले लेते हैं जल्दी से और फटाफट मैं कॉल मिलाती हूँ और हमारे साथ जो हैं कॉलर जो आ रहे हैं जल्दी से हम ले लेते हैं जल्दी से मैं कॉल करती हूँ आप जो है फटाफट उठा लीजिएगा तो हम कॉल शामिल कर लेते हैं और अपना अंताक्षरी का सिलसिला जारी रखते हैं। फैज़ान भाई आप कमाल कर रहे हैं भाई आपने कहा था आपकी आवाज अच्छी है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हेलो फैज़ान आप है ना हमारे साथ
3: जी जी मैं कॉल
1: हाँ हाँ हाँ चलिए बस हम दूसरे कॉलर को बस ले रहे हैं जैसे ही आते हैं हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। आ गए तो हमारे साथ हैं नफीस जी नफीस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वेलकम बैक कैसे हैं।
4: सुबह से काफी फर्क है।
1: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त चलें जी तो कहाँ पे रुका था फैजान ये पे ये से गाना गाना है। ओहो फैजान इनकी कॉल एकदम से ड्रॉप हो गई नफीस की क्या सीन हुआ है मेरा ख्याल इनका या तो हाथ लग गया गलती से क्या हुआ है। चलें खैर जल्दी से नफीस या तो आप हमें कॉल कीजिए या फिर जो भी आता है हमारे साथ हम शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।

0: शहजादा सलीम आ गए हमारे साथ। शहजादा सलीम जी,
1: मैं पहले ना अप्रिशिएट करूंगा के दो जो हमारे नए साथी है ना,
0: हाँ, इमरान फैजान जी जी जी,
1: हाँ दोनों अप्रिशिएट है, बहुत जबरदस्त,
0: बहुत जबरदस्त गाया, हाँ बहुत जबरदस्त,
1: बहुत अच्छे। तो आप लोग जितने नए हैं ना, सब लोग प्लीज आप आओ और बड़े मजे से ना, मजा आ रहा है और एंजॉय हो रहा है प्रोग्राम।
0: हाँ चले जी शहर सलीम, तो फिर ये
1: कहाँ तक छोड़े थे, ये तक छोड़े थे
0: ये,
1: अच्छा अच्छा, ये जो चिल मन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हाय, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी
0: हमारी, ये फिर अगेन
1: ये,
2: ये आया है
0: जी जी, ये आया है
2: ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमां, ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी जाने जान, नून आ गया।
0: वाओ जबरदस्त, जाने जान सही है, नून
1: नून आ गया
0: जी जी, नून आ गया।
1: नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदम तुझे ऐसा मिलेगा, झुंझरू बना के पाओ में बांध के, कहाँ तुझे ऐसा तरतान मिलेगा
0: मिलेगा। अलिफ जी, अलिफ जी,
2: आँखों में तेरी अजब से अजब से अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, वो मतलब अभी जो लिरिक्स हैं वो मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो ये हवाएं हैं,
0: हवाएं
2: ये
0: हैं, आएगा हैं, नून नून, नून जी नून। शहर सलीम,
1: नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
0: वेरी नाइस
1: जी जी, क्या
0: दाल
1: क्या, क्या
0: दाल
1: दाल
0: जी,
2: दाल से था, एक मिनट, दिल दिल वाले करांगे नाल नाल बैके, अख नाले अख नु मिला के, दिल दिया गल्ला, दोबारा एन पे ले आया मैं इनको,
0: हाँ नून दोबारा से, फिर नून आ गया,
1: नून आया
0: हाँ।

0: से रिश्ते
1: रिश्ते ये पे छोड़ रहे हैं ये
0: ये ये ये ये
1: हाँ
0: ये दिल है दीवाना ये दिल है दीवाना ये दिल है दीवाना ये दिल ये तो ये ये एक वाला गाना हो जाता है
1: लाम लाम पे
0: लाम आया
1: जी जी लाम आया
0: लो आ गई उनकी याद जावेद साहब वो नहीं आए
1: हाय हाय हाय
0: जावेद साहब को आना चाहिए था अभी मैं मन क्विट करता प्लीज जावेद साहब आए
1: अच्छा
0: अगर सुन रहे तो है मैं कुछ कहता हूँ
1: अगर हाँ।
0: और लोगों का मौका देना क्योंकि मेरा कहने का मतलब और को मौका मिलना चाहिए
1: सही सही चलें जी तो फिर आप क्या जाना चाहते हैं लेकिन अब 3 मिनट ही बचे हैं बाकी
0: अच्छा अच्छा चलो चलो कंटिन्यू करते हैं
1: हाँ जी तो आखिर आपने क्या आया था क्या छोड़ा था आपने
0: लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए
1: आए ओके ये
0: ये
1: हाँ ये
0: से है क्या कहते हैं उसका
1: वन
0: है एक मिनट ये दूरियां सॉन्ग है लेकिन मुझे ना उसके वो थोड़ा सा भूल रहा है यूं ही चला चल रहा ही
1: ये गाले
0: यूं ही चला मतलब जो जो इसकी ट्यून है ना वो अभी मेरे जेन में नहीं आ रही थोड़ी सी
1: वो वाला ना शाहरुख खान वाला
0: जी जी जी जी वही वाला वही वाला
1: सही सही तो वो इजी है काफी थोड़ा सा सोचें गा लें मजा आएगा फिर उसमें वरना फिर हम क्या मैं क्या दूं शहजादे सलीम को
0: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर वो तेरा साथ ना छोड़ेंगे तो ये आ गया जी
1: छोड़ेंगे नून जी शायद सलीम नून
0: नहीं नहीं छोड़ेंगे ये आया जी
1: ये आया ये ओके ये
0: आ गया
1: ये
0: हो चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहे मैं दो जी कहता रहे हम चाह के तूफानों में गिरे हम क्या करें
1: जबरदस्त जबरदस्त चलें जी इसी के साथ यहाँ पे अब टाइम भी हमारा हो गया है तमाम और बहुत आला भाई बहुत आला जबरदस्त फैजान बहुत अच्छा आपकी आवाज माशाल्लाह बड़ी अच्छी
0: बहुत
1: है
0: अप्रिशिएट फैजान भाई बहुत जबरदस्त सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी आवाज है आप प्लीज आप पार्टिसिपेट करें और प्रोग्राम में हिस्सा लें मजा आएगा
1: हाँ बहुत मजा आया और निमरान निमरान आपको ही मैं कहना चाहूंगी निमरान के गानों की सिलेक्शन बहुत मजे की थी बहुत मजे की सिलेक्शन थी चले जी तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान और मैं आपके लिए आखिर में एक गाना लगा रही हूँ ठीक है
0: जी जी आप लगा
1: चले जी आपने भी कहा ना आरओ की बात की थी तो मैंने कहा चले मैं आरओ का ट्रैक आपके लिए प्ले करती हूँ एंजॉय कीजिएगा थैंक्स अ लॉट फैजान थैंक्स अ लॉट थैंक यू इसी के साथ हमारा अंताक्षरी भी खत्म होता है लेकिन मैं आपके मैसेजेस शामिल करूंगी उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत दूंगी और बहुत ही जबरदस्त फैजान ने बहुत अच्छा गाया निमरान आपने बहुत अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन थी आवाज भी आपकी अच्छी है मावश जी शायद हातिम ताई ये करेक्टर बहुत पसंद है और मैंने फिल्म्स भी देखी है ओल्ड एंड न्यू जितेंद्र बने थे ना इसमें मेरा ख्याल है और मेरे पास इंडिया में हातिम ताई की कहानी की बुक भी थी जिसको मैं बार बार पढ़ता था जबरदस्त मोहम्मद यूसुफ खान और इसके साथ ही जी रईस खान कहते हैं नाइस वॉइस फैजान को और इसके साथ ही जावेद भाई को बोलो जल्दी आए बेस्ट जोड़ी हाँ फैजान के साथ वैसे बड़ी काफी जमती लेकिन निमरान ने ना गानों का सिलेक्शन उनका बड़ा मजेदार था और बहुत मजे मजे के गाने गाए निमरान ने अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह और इसके साथ मेरे पास है मैसेज मैसेज किसका है ये अच्छा बार बार मैं यही वाला खोल रही हूँ मोहम्मद नफीस कैसे कॉल कट गई पता नहीं चले मोहम्मद नफीस कल जरूर आइएगा ठीक है हम आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं और जी वाह फैजान भाई आउटस्टैंडिंग अच्छा हुआ आज हम नहीं आए यू आर द बेस्ट माशाल्लाह निमरान भाई ग्रेट बोथ ऑफ यू ग्रेट लेजेंड्स जावेद भाई जबरदस्त भाई अब होते वैसे तो खैर मजा आता फैजान के साथ जोड़ी जमती आपकी काफी और निमरान ने कमाल किया सैयद खादिम हुसैन कहते हैं उनका नाम निमरान है निमरान वाकई बड़ा अच्छा गा रहे थे और जी वाओ जी अस्सलाम वालेकुम आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था बहुत मजा आया सुन के फैजान की आवाज बहुत अच्छी है क्या बात है और फैजान भाई को जावेद साहब का मुकाबला होना चाहिए था बहुत अच्छा लगेगा गजन पर जट कहते हैं ये और इसी के साथ लिसनर्स मैं लूंगी आपसे इजाजत मैं छोड़े जा रही हूँ आपको आरओ की انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ. ابھی جب گایا انہوں نے, مجھے اچھا فیضان نمران دونوں کا یہ بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے گانوں کی سلیکشن نا بالکل کچھ ہٹ کے گانے تھے, اور خاص طور پہ یہ جو گانے ہیں پاکستانی ہمارے یہ بھی گا دیے تو میرا بھی دل خوش ہو گیا. تو بہت کمال سانگ نہ کہو, انجوائے کیجیے گا آپ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں آپ سے کل. اللہ حافظ اینڈ بائے.

0: फ्रांस ने रवां साल के लिए अपनी मईशी तरक्की की शरह के नतीजे में कमी की खबर दी है। हुकूमत ने अब मुल्की मईशत की रफ्तार 0.7% रहने की तवक्को का इजहार किया है, जबकि इससे पहले ये 0.9% बताई गई थी। इससे जाहिर होता है कि यूरो जोन की दूसरी बड़ी मईशत को बदस्तूर मईशी दबाव का सामना है। जनूबी कोरिया की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने रवां साल की दूसरी सहमाही के मुनाफे का तखमीना जारी कर दिया। कंपनी के मुताबिक अप्रैल से जून तक के अरसे में मुनाफा 89.4 ट्रिलियन वन यानी तकरीबन 58.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रहने की तवक्को है, जो कंपनी की तारीख का एक नया सहमाही रिकॉर्ड होगा। कतर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स आज कारोबार के इख्तिताम पर 12.58 पॉइंट्स यानी 0.12% कमी के बाद 10,254.60 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान 100,025,130 शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तौर पर 20,724 सौदे तय पाए। कारोबारी सेशंस के दौरान 17 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 33 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। थ्री कंपनीज के शेयर्स अपनी गुज़िश्ता इख्तितामी कीमत पर बरकरार रहे। सामीन, कारोबार की इस खबरों के बाद, इस मरहले के बाद अब हम आप समात फरमाइए स्पोर्ट्स हेडलाइंस।
1: कतर की नेशनल बास्केटबॉल टीम कतर बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के एशियाई क्वालिफाइंग मरहले में जापान, चीन और जनूबी कोरिया की टीमों का सामना करेगी। वाज़ेह रहे कि कतर बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 पहली बार मशरिक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में मुनाकिद होगा। यह टूर्नामेंट 27 अगस्त से 12 सितंबर 2027 तक खेला जाएगा। कतर की टीम ने इब्तदाई क्वालिफाइंग मरहले में ग्रुप डी में 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। लबनान की टीम 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही, जबकि सऊदी अरब 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। भारत की टीम 6 पॉइंट्स के साथ चौथे और आखिरी नंबर पर रही। इटली के आलमी नंबर एक टेनिस स्टार और दिफाई चैंपियन यानी सेनर ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने जर्मनी के यान लेनार्ड सेट्रूफ को मुसलसल 3 सेट्स में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। उधर खवातीन के मुकाबलों में अमरीकी टेनिस स्टार कोको गोफ भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं, जहाँ वो टाइटल की रोड की दौड़ बरकरार रखेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सिएटल के लोमन फील्ड स्टेडियम में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने शानदार खेल पेश करते हुए मेज़बान अमेरिका को वाज़े बरतरी से हराया। इस कामयाबी के बाद बेल्जियम का अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में स्पेन से होगा। मैच के 90 मिनट में चार्ल्स डी कैटेलायर ने गोल करके बेल्जियम को बरतरी दिलाई, ताहम अमरीका की जानिब से मालिक टिलमैन ने 31वें मिनट में बराह रास्त फ्री किक पर गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। लेकिन बेल्जियम ने सिर्फ 2 मिनट बाद दोबारा बरतरी हासिल कर ली, जब चार्ल्स डी कैटेलायर ने 33वें मिनट में अपना दूसरा गोल स्कोर किया। यूँ पहले हाफ के अख्तितम पर बेल्जियम को 2-1 की बरतरी हासिल रही। स्पेन ने लास्ट में पुर्तगाल को एक صفر سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ اسپین کی فتح کا سہرا میکل میرونو کے سر ہے، جنہوں نے پہلے ہاف کے اضافی وقت 19+1 میں میچ کا واحد گول اسکور کیا اور جیتنے کی امیدیں برقرار رکھی۔ امریکی ٹینس کھلاڑی ٹیلر فریڈز، برطانوی آرچر فیری اور چیک جمہوریہ کی ایلینڈا نوسکووا نے ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ومبلڈن سال کے چار بڑے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں تیسرا بڑا ایونٹ ہے۔ کوارٹر فائنل کی آخری نشست کا فیصلہ نہ ہو سکا کیونکہ جرمنی کے الیگزینڈر زوریف اور چیک کھلاڑی یری لہچکا کے درمیان رات کو کھیل روکنے کے مقررہ وقت کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ فرانس کے فٹ بال کلب موناکو نے آج برازیل کے فلپی لوئس کو ٹیم کا نیا کوچ مقرر کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ فلپ لوئس برازیلی کلب فلامینگو سے موناکو میں شامل ہوئے ہیں اور وہ آئندہ دو سیزن تک ٹیم کی کوچنگ کریں گے۔ یوکرین کی مارٹا کوس ٹیوک، بیلجیم کی الیز میریٹنز اور جمہوریہ چیک کی ایلینڈا نوسکووا نے پہلی بار ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دنیا کی مشہور کھلاڑی مارٹا کوس ٹیوک نے کوالیفائنگ راؤنڈ سے آنے والی امریکی کھلاڑی ایشلن کروگر، جو عالمی درجہ بندی میں 102 نمبر پر ہیں، کو 6-4 سے شکست دی۔ اس کے چند گھنٹوں بعد بیلجیم کی

0: एलेज मेर्टन ने भी खिलाड़ी मेरी बोस्कोवा को उसी स्कोर 6-4 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सामाइन खबरों के इस मरहले में अब आप समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: रियासत कतर ने कतरी बहरी जहाज को इब्न हरमूज के करीब निशाना बनाए जाने की शदीद मज़ाहमत करते हुए कहा है कि ये हमला बैन अल-अक़वामी बहरी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजारत खारजा में वजीर मुमलिकत से तुर्की के दारुल हकूमत अनकारा में मुनक्कदा नाटो के सरबराही इजलास के मौके पर मुख्तलिफ मुमालिक के आला सरबराहान ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुमलिकत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स, रियासत कुवैत, हाशमी मुमलिकत जॉर्डन और अरब जमहूरिया मिस्र ने कतरी बहरी जहाज को इब्न हरमूज के करीब निशाना बनाने वाली ईरानी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मज़ाहमत की है। कतर ने शाम के दारुल हकूमत दमास्कस में होने वाले दो धमाकों की मज़ाहमत की है जिनके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। वजारत औकाफ इस्लामी उमूर के शोबा दावा और दीनी रहनुमाई ने सालाना समर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इजरायली फौज के हमलों के नतीजे में एक बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सामीन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया टीम से हाफिज और न्यूज़ रूम से मोहम्मद नफीस और सफा सफदर को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे अब्दुल्ला अल खुलैफी के बारे में। अब्दुल्ला अल खुलैफी कतर के उभरते हुए मोटर स्पोर्ट्स सितारों में से एक नाम माना जाता है। उन्होंने कम उम्र से ही रेसिंग और हाई स्पीड कॉम्पिटिशन में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत के जरिए मुल्क की और बैनुल अक्वामी सतह पर पहचान बनाई। उनकी ड्राइविंग स्टाइल में रफ्तार के साथ स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन भी नजर आता है, जो उन्हें मुश्किल ट्रैक्स पर भी मजबूत मुकाबला करने के काबिल बनाता है। कतर में मोटरस्पोर्ट्स की तरक्की के साथ अब्दुल्ला अल खुलैफी जैसे ड्राइवर्स ने टैलेंट के लिए मिसाल बन रहे हैं। वो ट्रेनिंग, फिटनेस और टेक्निकल समझ पर खास तवज्जो देते हैं, क्योंकि मॉडर्न रेसिंग सिर्फ तेज गाड़ी चलाने का नाम नहीं बल्कि प्रेसिशन और टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत अहम होता है। मुख्तलिफ चैंपियनशिप में शिरकत करते हुए उन्होंने कतर का परचम फख्र से बुलंद किया और मोटरस्पोर्ट्स के शौकीन नौजवानों को इंस्पायर किया। उनका सफर ये साबित करता है कि लगन, मेहनत और मुस्तकिल प्रैक्टिस से मुश्किल मैदानों में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब्दुल्ला अल खुलैफी का मकसद सिर्फ रेस जीतना नहीं बल्कि कतर में मोटर स्पोर्ट्स की मकबूलियत को मजीद बढ़ाना और अगली जनरेशन के ड्राइवर्स के लिए नए मौके पैदा करना भी है। उनकी कहानी हौसले और जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट हमारी तवानाई और मेटाबॉलिज्म पर कैसे असर अंदाज होता है। मेटाबॉलिज्म तो आपको पता है उस अमल को कहते हैं जिसके जरिए हमारा जिस्म खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। रात भर सोने के बाद जिस्म की तवानाई कम हो जाती है और सुबह का जो नाश्ता है वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और जिस्म को दिन भर काम करने के लिए ईंधन फराहम करता है। जो अफराद नाश्ता नहीं करते वो अक्सर सुबह के वक्त सुस्ती, कमजोरी और तवज्जो की जो कमी है वो महसूस करते हैं। इसके बरक्स जो अफराद जूस अच्छा नाश्ता करते हैं तो मतवाजन नाश्ता करने में खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखने यानी उसका जो बैलेंस है उसे रखने और फिर हमारे जिस्म को मुसलसल जो एनर्जी है या तवानाई फराहम करने में मदद देता है। बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो की जा रही हैं कि नाश्ता जो है कितना हेल्पफुल है, तो तहकीकात से ये भी साबित हुआ है कि ब्रेकफास्ट वजन को भी बैलेंस में रखता है और बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जब आप दिन का आगाज एक अच्छी ग़िज़ा से करते हैं तो बाद में गैर ज़रूरी भूख, मीठी या चिकनाई वाली अशिया खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। सेहतमंद नाश्ते के लिए जैसे कि बोरिज है या जो होल ग्रेन गज़ा है वो आप लीजिए। ताज़ा फल, अंडे, लोबिया और दालें उसमें आप ले सकते हैं और इसी तरह लो फैट जो मिल्क है या योगर्ट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह के वक्त ज़्यादा मीठी अशिया जैसे केक है, पेस्ट्री है या मीठे मशरूबात हैं उनसे ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये वक्ती तवानाई तो देते हैं लेकिन बहुत जल्द थकन और कमजोरी का एहसास भी हो सकता है। पानी पीना नहायत जरूरी है। दिन का आगाज एक गिलास पानी से कीजिए ताकि जिस्म जो है वो हाइड्रेट रहे। अगर आपको सुबह नाश्ते करने की आदत नहीं तो इब्तदा किसी हल्की गजा जैसे कि एक केला है, एक कप दही है या चंद बादाम है उनसे कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, सेहतमंद नाश्ता दिन भर की तवानाई, बेहतर मेटाबॉलिज्म और अच्छी सेहत की बुनियाद है। सेहतमंद रहिए, मतवाजन गिजा खाइए और अपने दिन का आगाज एक बहुत ही अच्छे से नाश्ते से कीजिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा। FM 107 पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आप हैं मेरे साथ हमारे खासम खास शो मेरी पहचान पर। तो ये बताइए कि आप सबकी सुबह आज कैसी रही? उम्मीद है थोड़ी सुकून भरी रही होगी, लेकिन सच बताइएगा, सुकून कहाँ मिलता है हमें? आज सुबह जब आप उठी होंगी, या जैसे मैं उठती हूँ, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या वो आपकी नींद अच्छी हुई ये होता है, या कुछ और? नींद अच्छी हुई ये तो नहीं होता है कि नहीं? सबसे पहला ख्याल होता है स्कूल का टिफिन, गैस पर रखी चाय, घर के और भी काम, या फिर ऑफिस का काम है। ये सारी लिस्ट इतनी लंबी है कि इसके बारे में सोचते सोचते हमारा खूबसूरत जो वक्त होता है वो निकल जाता है। कतर की ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, कभी कभी दिमाग ना थक जाता है हमारा। राइट नाउ आई नो एग्जैक्टली आप कहाँ हैं। शायद आप अपने बच्चों को वेस्ट बे के किसी स्कूल में ड्रॉप करने के लिए ड्राइव कर रही होंगी, या शायद लुसेल में अपने ऑफिस डेस्क पर बैठकर पहला ईमेल चेक कर रही होंगी, या फिर शायद आप किचन में होंगी, एक कप गरम करक चाय स्टर कर रही होंगी, अगले 5 कामों की लिस्ट दिमाग में बना रही होंगी। फिलहाल एक लम्हे के लिए रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, और उस इनविजिबल बैकपैक की तरफ देखिए जो आपने पहना हुआ है। हम सब ने पहना है। ये वो बोझ है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर इसका वजन हमें हर पल महसूस होता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग पूछते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग वुमन हो, आप दिन भर करती क्या हो? अरे उन्हें कैसे समझाएं कि ये जो बोझ है ये सिर्फ घर के कामों का नहीं है, ये बाहर के कामों का नहीं है, इट्स द मेंटल लोड। और ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसका कोई ऑफिस नहीं होता, पर इसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है। आपको पता है कि फ्रिज में दूध खत्म होने वाला है, आपको याद है कि अगले हफ्ते स्कूल में क्रेजी हेयर डे है, तो उसके लिए प्रॉप्स कहाँ से आएंगे, आपको मेडिसिन का पूरा स्केड्यूल याद रहता है, कौन सी गोली कब खानी है, किसको कब देनी है, यहाँ तक कि बच्चों के जूते कब टाइट हो गए और नए कब लेने हैं, इसका रिकॉर्ड तक हमारे दिमाग में होता है। ओ माय डियर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे हाउस होल्ड का वो हिस्सा है जो कभी भी सोता या खामोश नहीं होता। तो आज हम उस खामोश ताकत को सल्यूट करेंगे जिसके बारे में न जिक्र होता है ना ही कोई बात करता है। हाँ, अक्सर दिन के खत्म होने के बाद जब आप सोफे पर बैठती हैं और सोचती हैं कि मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ, आज तो मैंने बाहर का कोई काम, बड़ा काम किया ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि आपका दिमाग एक प्रोसेसर की तरह लगातार चल रहा है। हर वो छोटी चीज जो हैंडल हो गई, वो इसीलिए क्योंकि आपने उसे हैंडल किया। यू आर द इनविजिबल ग्लू जो कि हर चीज को साथ लेकर चल रही है। और ये थकान जिस्म की नहीं है, ये थकान रूह की, या यू कहे जहन की है। इट्स ओके टू फील टायर्ड, इट्स ओके कि हम कभी कभी बोलें कि आज मेरा दिमाग थक गया है। इसलिए आज मेरी पहचान पर हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने तो अपना बैकपैक आपको दिखा दिया है, अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर, और बताइए कि वो कौन सी एक इनविजिबल चीज है जो अभी इस वक्त आपके दिमाग में चल रही है, वो बात जिसके बारे में घर में किसी और को खबर तक नहीं है, पर आप उसे लेकर परेशान हैं। शेयर योर लोड विद मी, मैं यहाँ हूँ आपके साथ, आपकी बात सुनने के लिए। 6622107 पर अपने नाम के साथ हमसे जरूर शेयर करें, और हम मिलकर इस बोझ को ना थोड़ा हल्का करेंगे। तो कहाँ? यही मेरी पहचान पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ आपके कामों से नहीं है, आपकी हिम्मत से भी है। तो बने रहिए इस बेहतरीन गाने को, खास तौर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

वेलकम बैक टू मेरी पहचान ऑन FM 107. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. अभी हम बात कर रहे थे उस इनविजिबल बैकपैक की जो हम औरतें हर वक्त पहने रखती हैं. अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर. आज की सोच में एक बहुत गहरी बात करते हैं, एक ऐसी गलत फहमी की जो हमने सदियों से पाली हुई है, और वो है हेल्पिंग वर्सेस ओनिंग. हाँ जी, अक्सर जब मैं अपनी सहेलियों से या अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ या कतर में किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, तो एक सेंटेंस अक्सर सुनने को मिलता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे हस्बैंड घर में बहुत हेल्प करते हैं. कम ऑन लेडीज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हेल्प, क्या ये सही लफ्ज है? जब हम कहती हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, तो हम अनकॉन्शियसली ये मान लेती हैं कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है और वो तो बस एक एहसान कर रहे हैं. चलिए एक मिसाल मैं आपको देती हूँ. माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, दोनों शाम को थके हुए वापस आते हैं. हस्बैंड किचन में आता है और कहता है, बताओ मैं क्या हेल्प करूँ, डिनर में क्या बनाऊँ. सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, कितना केयरिंग है. लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर उन्हें आपसे पूछना पड़ रहा है कि डिनर में क्या बनाना है, अगर उन्हें ये नहीं पता कि फ्रिज में सब्जियां कहाँ है और कहाँ नहीं, या बच्चे को क्या पसंद है, तो मैनेजर अब भी आप ही हैं. उन्होंने प्याज काट दिए, वो टास्क था, पर प्याज काटने का फैसला लेना और ये इंश्योर करना कि बाकी चीजें तैयार हैं, वो ओनिंग है. हेल्पिंग एक टास्क है, पर ओनिंग वो जिम्मेदारी है जो उस काम के बारे में सोचने से आती है कि जब तक आप मैनेजर हैं, आपका दिमाग कभी रेस्ट नहीं कर पाएगा. ये सिर्फ मेरी आपकी कहानी नहीं है. यस, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, मर्दों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर वर्क करती हैं. हमारी कम्युनिटी में हमने इसे प्यार का नाम दे दिया है, पर क्या ये प्यार है या सिर्फ एक आदत? हमने मर्दों को एग्जीक्यूटिव बना दिया है और खुद को लेबर और मैनेजर दोनों. उफ, डोंट टेक इट अदरवाइज. हाँ, हम उन्हें शॉपिंग लिस्ट बनाकर देते हैं, उन्हें बताते हैं कि बच्चे की फीस कब भरनी है, उन्हें याद दिलाते हैं कि उनकी अपनी जो मॉम है उनकी दवाइयां कब उन्हें देनी है. ये जो कांस्टेंट डेलीगेशन है ना, उफ, ये बहुत ज्यादा काम हमसे करवा लेता है. और यही वो चीज है जो हमें अंदर से खाली कर देती है, हम टायर्ड हो जाते हैं.

और जब भी मैं बात करती हूँ मेरी पहचान में किसी भी एक मुद्दे के बारे में, न जाने क्यों मुझे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में हर एक चीज़ दिखाई देती है और श्रीदेवी के बड़े खूबसूरत से डायलॉग्स और उनकी सादगी सामने आ जाती है. और एक उनका डायलॉग था कि मदर, ठीक है, शी इज़ द वन हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक. ठीक है, मतलब ये जब वो बोलती है तो सुनकर लगता है कि मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन माँ हर किसी की जगह ले सकती है. पहली बार सुनो तो आंखों में आंसू आ जाता है, कितना स्टेटस है ना एक माँ का, है ना. लेकिन मेरी सारी ब्यूटीफुल लेडीज, कभी इसका दूसरा रुख या यूं कहें दूसरा पहलू हमने देखा है? ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यही वो सुपर वुमन मिथ है जो हमें थका देती है. जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, तो हम हेल्प मांगना बंद कर देते हैं और हम हर चीज खुद परफेक्ट करना चाहते हैं. हम खुद ही करना चाहते हैं परफेक्ट लंच बॉक्स, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट करियर. ये सुपर वुमन का जो ताज है ना, असल में एक बोझ है. इट्स अ ट्रैप जो कि हमें बार बार ये चाहने या यूं कहें ये मांगने से रोकता है जिसकी हमें जरूरत है. तो आज की सोच का निचोड़ ये है कि आपको एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी बनने के लिए सुपर वुमन बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इट्स ओके टू ड्रॉप द केप. इट्स ओके अगर कभी खाना टाइम पर ना बने. इट्स ओके अगर घर थोड़ा बिखरा हुआ हो. भाई इंसान बनिए, ठीक है, फरिश्ते बनने की हम कोशिश ना करें. खुद को इतना ज्यादा मत बर्न कीजिए कि आगे आप चीजें ना कर पाए, क्योंकि जब आप खुद को खो देती है ना, तो आपके परिवार के पास सिर्फ एक थकी हुई मशीन रह जाती है. वो खुश मिजाज माँ नहीं रहती, समझे. तो अपने पार्टनर से हेल्प मत मांगिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को कहिए, ओनरशिप शेयर कीजिए. समझ में आई बात? वेल, आप सुन रहे हैं मेरी पहचान और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. बस एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद वापस आके बात करेंगे कि भाई अभी जो मैंने एक सवाल पूछा है आपसे कि वो कौन सी एक चीज़ है जो इनविजिबल है, वो कौन सा लोड है जो आप हर वक्त सोचती रहती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो आप मुझसे शेयर करेंगी 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ. और अभी बने रहेंगे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 पर, मैं हूँ आपकी अमिताभ के साथ और आप हैं मेरे साथ शो मेरी पहचान पर। और मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं वो कौन सा एक इनविजिबल लोड है, वो कौन सी एक बात है जो आपके जहन में 2400 घंटे रहती है और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं। तो चलिए हमारे कुछ मैसेजेस की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर मुझे फरीन का मैसेज आया है और वो कहती है कि अमिता मेरे दिमाग में हर वक्त एक चीज़ चलती रहती है कि क्या मैं अपनी बेटी को सही परवरिश दे पाऊंगी जो मुझे कभी नहीं मिल पाई। घर में सब सोचते हैं कि ना मैं बहुत सख्त माँ हूँ पर अंदर से मैं सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए डरती हूँ। देखिए फरीन, बात कुछ ऐसी है कि एक माँ की फिक्र है ना, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी, बस थोड़ा भरोसा रखिए और दूसरों की बातों पर गौर ना फरमाइए, ठीक है। अब मुझे जोया का मैसेज आया है और ये कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ पर किसी को खबर नहीं कि मुझे लोनलीनेस महसूस होती है। सबके बीच होकर भी मैं अकेली होती हूँ। जोया, मैं आपको कहूँगी कि कभी कभी खुद से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। शायद आपने औरों के चक्कर में खुद को प्यार करना, खुद को अहमियत देना छोड़ दिया है। याद रखिए, यू नॉट अलोन, मैं आपके साथ हूँ ना। वेल, सीमा का मैसेज आया है एंड शी सेइंग कि मेरा इनविजिबल बोझ ये है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस उम्र में स्कूल, बस यही कश्मकश चलती रहती है और मैं सोच नहीं पाती। देखो सीमा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो नॉलेज है, इल्म है, हासिल करने की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सो गो फॉर इट, आप पढ़ सकती हैं एंड आप कर सकती हैं, ठीक है, बस ये भरोसा रखिए। फिर यहाँ पर मारिया का मैसेज है कि, और थोड़ा उनका डिफरेंट मैसेज है, कहती है कि मैं बीमार हूँ पर घर में किसी को बताया नहीं क्योंकि सब मुझ पर डिपेंडेंट है। ओहो, उनका सुकून ना छिन जाए इसीलिए मुस्कुराकर दर्द छुपाती हूँ। आए हाय मारिया, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल मेरी मम्मी टाइप हो, पता है, मतलब जब से मुझे समझ आई मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया कि भाई देखो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाना बाहर से आ जाएगा, टेंशन ना लें, डॉक्टर को हम दिखाएं, दवाई लें, आराम करें, सब कुछ सीख जाएंगे और अगर हमें चीज़ें नहीं आती तो हम सीख लेंगे। ये कह कह के मैंने अपनी मॉम को समहाउ यू नो अब जाकर थोड़ा सा सेटल किया है। तो मैं आपको कहूँगी मारिया, इट्स वेरी सिंपल, आपको अपना ख्याल रखना होगा, थोड़ा ब्रेव होना होगा लोगों को बताने के लिए और वो भी अपनों को ही बताना है कि भाई मैं आज जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मेरी हालत ख़राब है, बस करके देखिए, सुकून मिलेगा। फिर हिना का मैसेज है, मैं हमेशा परफेक्ट बेटी और बहू बनना चाहती हूँ, इस प्रेशर में मैं भूल गई हूँ कि असली हिना कौन है, मेरी अपनी पसंद नापसंद अब मेरे दिमाग से निकल चुकी है। हिना, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, खुश होना ज़रूरी है, आज थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, ठीक है, बाकी सब होता रहेगा। और फिर नीलोफर का मैसेज है जो कहती है कि मेरे दिमाग में अपने पुराने घर की यादें घूमती हैं। उफ, मैं नए शहर में सेटल तो हूँ पर पुरानी गलियाँ आज भी ख्वाबों में आती हैं, किसी को बताती नहीं क्योंकि सब सोचते हैं मैं यहाँ खुश हूँ। देखो नीलोफर, यादें जो है ना वो हमेशा सुकून देती हैं, उन्हें बोझ मत बनाइए बल्कि उन्हें अपनी मुस्कुराहट की वजह बनाइए और फिर नई यादों को बनाइए ना, किसने रोका है आपको। वेल, हमारी लेडीज, इतने खूबसूरत मैसेजेस आपने जो किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया और सच में बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी बातें शेयर की और बताया कि ये हमारा इनविजिबल बोझ है और आप ही की तरह हर किसी का कुछ ना कुछ इनविजिबल बोझ होगा। वैसे मेरा भी इनविजिबल बोझ यही था कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं टीनेजर थी तब से मेरे कबर्ड्स हमेशा सेटल रहे, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं बड़ी हुई, फैमिली हुई, सारी चीज़ें चेंज होती गई तो कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स के अलावा जब मैं अपनी कबर्ड्स वगैरह ठीक करती हूँ मेरा कबर्ड थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, लेकिन अब आके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ कि इट्स ओके कि थोड़ा मेस्ड अप है तो क्या हुआ, चीज़ें तो रखी हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें ना हमें अपने लिए लेनी पड़ेंगी, कुछ डिसीजंस हमें अपने लिए लेने पड़ेंगे ताकि हम आराम से इत्मीनान से जी सकें और हमारे आसपास के लोग भी हमें देखकर खुश हो सकें और ये खुशी झूठी या दिखावे की ना हो, ये खुशी असलियत की हो, है कि नहीं। चलिए आगे आज हम जो अपने मेरी पहचान शो पर बातें कर रहे हैं इस पर एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. ठीक है, हम सबके साथ ही रोज होती है. दोपहर के 4 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, जब भी मतलब बच्चों की स्कूल बस आ जाती है या शायद आप उन्हें पिक करने जाती हैं. ठीक है, किचन में शाम की चाय की तैयारी हो रही है और अचानक आपको फील होता है कि आपका पेशेंस जो है वो खत्म हो गया है. अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता है और आप चिड़चिड़ करने लगती हैं कि भाई मतलब मत पूछो, बात ही मत करो. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शाम के 4-5 बजते बजते आपका जो मिजाज है वो अचानक क्यों बदल जाता है? इसे साइंस में कहते हैं डिसीजन फटीग. सुबह से शाम तक आपने हजारों छोटे छोटे फैसले लिए होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं आपने ये फैसले लिए, दूसरों के लिए लिए. कि टिफिन में क्या जाएगा, बच्चों ने स्वेटर पहना कि नहीं, ऑफिस की मीटिंग्स का क्या होगा, हमारे घर में सामान है कि नहीं, लाइक ग्रोसरीज वगैरह, हम अच्छे दिख रहे हैं या हमें कहीं जाना है, उसकी भी तैयारी हमें ही करनी होती है. और कतर की जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, कई बार हमें थोड़ा सा प्रेशर फील होता है. देखिए, ये हर बार हमारे दिल में आता है कि हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए. एक कांस्टेंट प्रेशर हमारे अंदर बना रहता है. बेस्ट स्कूल, बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बेस्ट ऑर्गेनिक फूड, बेस्ट बर्थडे पार्टीज. उफ, हम एक ऐसी रेस में हैं जहाँ हम हर किसी की प्लेट भर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी प्लेट ना खाली होते जा रही है. हम सबके लिए अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बॉस के लिए, सास ससुर के लिए एंड सोसाइटी के लिए, लेकिन कभी अपने आप से पूछा है कि भाई मेरी अपनी हेल्थ का क्या? हमने थकान को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया है. हमें लगता है कि जितना हम थकेंगे उतनी ही अच्छी हम केयर गिवर हैं. ओ हो हो, कम ऑन लेडीज, यहीं पर हम गलत हैं. ये सिर्फ एहसास या फीलिंग्स नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है. मेंटल हेल्थ फाउंडेशन यूके की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो क्रॉनिक मेंटल लोड होता है ना, ये हम उठाते हैं. ये हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स के जो लेवल्स हैं उनको ऊपर नीचे कर देता है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं. और जब ये लेवल हाई हो जाता है तो इसका सीधा असर हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उस पर पड़ता है और हमारी हेल्थ खराब हो जाती है. वेल, क्या आपको रात को लेटे लेटे ढेर सारी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं, ख्याल आते हैं? क्या आपकी धड़कन अचानक से तेज़ होती है, फिर कम होती है, तेज़ होती है, ऐसा होता है? ये सब भाई मेंटल लोड की एग्जाम्पल्स हैं, मेंटल लोड की कहानी है. हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने नर्वस सिस्टम को थका रहे हैं. इसे इग्नोर मत कीजिए, ये चिड़चिड़ापन गुस्सा नहीं है, ये आपके शरीर की एक SOS कॉल है. यस, इट्स एन इमरजेंसी कॉल. ठीक है, इसे हमें बैलेंस आउट करना है. तो आज का सबक क्या है, इसे कहीं लिख लीजिए या जहन में याद रखिएगा कि रेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड फॉर फिनिश्ड वर्क. समझ में आई बात? इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर एग्जिस्टेंस. मतलब अगर आप सोचती हैं कि हाय मुझे आराम करना है लेकिन मेरा ये काम छूट जाएगा, इसके चक्कर में आप अपने एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट को कम कर रही हैं. सो डोंट डू दैट. ठीक है, हम अक्सर सोचते हैं ना कि सारा काम खत्म हो जाए फिर आराम करेंगे. काम खत्म होगा ही नहीं और आराम कभी होगा ही नहीं. सुकून कोई तोहफा नहीं है या कोई और आपको आके देगा, सुकून आपका हक है. तो इसे लीजिए, चाहे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या आधा घंटा हो, ठीक है? लेकिन तब तक एक लंबी सांस लीजिए, जस्ट ब्रीद एंड प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुक करेंगे और उसके बाद वापस आके अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है हमारे मेरी पहचान। वेल, अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ना, हो सकता है तो प्लीज उसे आंखें बंद करके सुने। मतलब अगर सिचुएशन आपके लिए इजी है, अगर आप ड्राइव कर रही हैं तो जस्ट अवॉइड इट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग की उस टू डू लिस्ट

को एक पल के लिए पॉज कर दीजिए। एक सवाल उन सब के लिए जो मुझे सुन रही हैं। Who is she? वो लड़की कौन थी मम्मा बनने से पहले? वो लड़की कौन थी किसी के घर की बहू बनने से पहले? Come on, think. Give me the answer. जरा पीछे मुड़िए, just turn around. अपने पास्ट के उन पन्नों को पलटिए। याद कीजिए उस लड़की को जो शादी और बच्चों के शोरगुल से पहले कहीं रहती थी। वो लड़की जिसे शायद घंटों तक खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद था। उसकी अपनी हॉबीज थी, शायद वो पेंटिंग करती थी, शायद वो एक अच्छी एथलीट थी, या शायद उसे सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना पसंद था। ऐसी किताबें जिनका पेरेंटिंग, रेसिपी बुक्स या हाउसहोल्ड मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके कुछ ऐसे ख्वाब थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जो आज स्कूल फीस, बच्चों के यूनिट टेस्ट और ग्रॉसरी लिस्ट के ढेर के नीचे दब गए हैं। हम इतना आगे निकल गए ना कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ब्लू रंग पसंद था या रेड। क्यों, सही कह रही हूँ ना? क्योंकि अब हम अक्सर वही रंग पहनते हैं जो बच्चों को पसंद है या हमारे घर वालों को पसंद है। हमने अपनी पसंद को जरूरत के पीछे यूं कुर्बान कर दिया है कि पूछिए मत। वो छुपी हुई मैं, द हिडन मी, अब भी वही है। आप समझती हैं, वो कहीं गई नहीं है, वो आपके ही अंदर एक कोने में बैठी है, आपके इंतजार में। वो इंतजार कर रही है कि कब आप उसे दोबारा पहचानेंगी। तो अपने आप को, अपनी उस छुपी हुई मैं को पहचानिए। जब हम सिर्फ एक केयर टेकर की पहचान चुन लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपनी असली शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को खो देते हैं। हम एक इंसान से एक रोल बनकर रह जाते हैं। घर में आवाजें आती हैं, मम्मी मेरा सॉक्स कहाँ है, बेगम खाना कब बनेगा, बहू चश्मा कहाँ रखा है। इन सब सवालों के बीच आपका अपना वजूद एकदम धुंधला सा पड़ गया है। आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाती हैं। प्लीज डोंट माइंड, आज ये बात मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने अपने घर में, मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ, ये सारी चीजें महसूस की हैं। और लेडीज, यह एक बहुत कड़वा सच सुनाई देता है। जब हम खुद को पूरी तरह भुला देते हैं ना, जब हम अपने आप को एम्प्टी कर देते हैं, तो हम अपने परिवार को भी ना एक डिप्लीटेड वर्जन दे रहे होते हैं, मतलब जो कि खत्म हुआ हुआ है। हम थक जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो क्या हमें अपने परिवार को ऐसी लड़की देना है जो उदास हो? हमारी शख्सियत जो इतनी खुश मिजाज है, क्या हमें ऐसे उदास होना चाहिए? आज मैं चाहती हूँ कि आप उस औरत का एक छोटा सा हिस्सा वापस मांग ले। हाँ ना, रिक्लेम हर। चाहे वो कॉर्निश पर 10 मिनट की अकेले वॉक हो, जहाँ आप दरिया की लहरों को देखेंगी, सुकून के पल एंजॉय करेंगी, ना कि ये सोचेंगे कि घर जाकर क्या पकाना है। या फिर आपकी फेवरेट पुरानी बॉलीवुड प्लेलिस्ट जो आप लाउड वॉल्यूम पर सुनना पसंद करती हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट। करिए ना, अपने लिए कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए तो करती ही हैं। अपने लिए कीजिए चीजें और फिर देखिए कि आपको आपकी फैमिली में एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी। अपनी मुस्कुराहट को ना पहले ढूंढिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और अब आखिर में एक सवाल आता है कि अमिता, बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब सुनने में, लेकिन हम करें तो करें कैसे? बोझ तो है, उठाना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही, लेकिन अब और क्या करें जिससे कि हमारी हर चीज बैलेंस हो जाए? चलिए सोचते हैं कि कैसे सॉल्यूशंस निकालें। तो एक है द फेयर प्ले मेथड। कामों को सिर्फ आधा आधा मत बांटिए, ठीक है? टोटल ओनरशिप दीजिए अपने परिवार के हर शख्स को, ताकि जो घर का काम है ना, वो डिवाइड हो सके। और इजीली हर कोई जब हाथ बटाता है अपने घर के कामों में, ना कि आपका, तो अपने आप हर चीज स्मूथ होती है और आप भी एनर्जेटिक रहती हैं। उसके बाद 10 मिनट ऑफ ड्यूटी। हाँ भैया, ये रोल बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। हाँ, दिन में एक वक्त ऐसा फिक्स कीजिए कि जब आप घर में हो या बाहर हो, 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल ऑफ ड्यूटी है, मतलब हमें नहीं करना कुछ, और कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा, ना कोई फ़ोन कॉल्स होंगे, ना एक, मतलब हम कुछ नहीं, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे 10-15 मिनट के लिए, और इस दौरान कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, ताकि हमारा जो दिमाग का प्रोसेसर है वो कूल डाउन हो सके। और उसके बाद एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? जैसे कि हमारी अक्सर आदत है कि हम अंदर ना घुटते रहते हैं, हम अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं,

किसी ने हमें अगर बुरा भी कह दिया तो हम सुन के ले लेते हैं कि जाने दो, घर का बड़ा शख्स है या जो भी है. सच तो ये है कि अक्सर हम देखें तो और लोग हमारे जो घर के हैं उन्हें वो चीज़ नहीं दिखती कि आप घुट रही हैं. तो आप ना अपने इस बैकपैक को, इस इनविजिबल बैकपैक में ना चीज़ें ना डालते जाएं और बर्डन ना बढ़ाएं. ऐसा करें कि सीधा आप एक्सप्रेस करें, थक गए हैं तो बोलें, किसी की बात बुरी लगी है तो कहें, कहीं नहीं जाना है तो जता दें कि नहीं जाना है. ये बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया. करके देखिए, फिर देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है. वेल, मेरी आज की ना सबसे बड़ी टिप है, यू कहें इसे हमेशा याद रखिए, मी टाइम सेल्फिश होना नहीं है. हमारी सोसाइटी ने ना हमें सिखाया ही नहीं है कि भाई एक अच्छा इंसान, एक अच्छी औरत वो है जो अपने लिए भी चीज़ें अच्छे से कर सके, बल्कि ये सिखाया है जो कुर्बानी देगी वही बेस्ट है. लेकिन ये गलत है. तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है, सुकून चाहिए, तो अपने आप को सबसे पहले चुनिए. वैसे इस वक्त जाने का वक्त हो गया है और हमारी जो कॉन्वर्सेशन, हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं होने वाली है. आज हमने सिर्फ एक पर्दा उठाया है उस मेंटल लोड से जो हम सब ना उठाए फिरते रहते हैं लेकिन हम किसी को बताते नहीं हैं. अगले हफ्ते मेरी पहचान पर हम एक बहुत ही संजीदा, एक सीरियस कॉन्वर्सेशन लेकर आएंगे और वो होगा ब्रेकिंग द साइलेंस, कल्चरल स्टिग्मा अराउंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ. यस, आज हमने थोड़ा सा इस बारे में जिक्र किया और आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले हफ्ते. तो आप बिल्कुल ना मिस करें हमारा मेरी पहचान शो. वैसे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकती हैं 666-22107 पर, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ सकते हैं हमारे FM 107 के, या फिर आप आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकती हैं. देखिए, ये शो खास तौर से हमारे लिए हमने डिज़ाइन किया है. तो कोई भी बात जो आपको लगता है, जिसका जिक्र नहीं होता है, जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, उसका सजेशन भी आप मुझ तक पहुंचा सकती हैं. फिलहाल के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाजत. इंजॉय कीजिए आपका रेस्ट ऑफ द डे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बज रही है ठीक 11:01 और सफा के साथ मुलाकात का टाइम हो गया है, यानी कि टाइम हो चला है सन एंड साउंड का FM 107 पर।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: जी हाँ, कबीर भाई ने भी आप लोगों को ये बता दिया कि सफा के साथ आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, तो सुनते रहिए क्योंकि मेरा और आपका साथ रहेगा अब से लेकर, यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और साथ ही आप लोगों को याद दिलाती चलूं कि इस शो में हमारी गुफ्तगू रहेगी आपस में, हम कुछ मज़ेदार टॉपिक्स पे बात करेंगे और हम 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद हम बॉलीवुड ट्रिविया का गेम भी खेलेंगे। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर मुझे मैसेज करना पड़ेगा या तो फिर आपको मुझे कॉल करनी पड़ेगी। तो मैसेज के लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 666-22107 मैसेज के लिए नंबर है। क्या नंबर है? 666-22107 मैसेज के लिए नंबर है, और कॉल करने के लिए नंबर है 4434377।

8843443777. और अगर चाहें तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है FM 107 कतर। चलो भाई पार्टी अब स्टार्ट करते हैं। गोविंदा फुल्लो कहाँ से? देखो मुझे पता है गर्मी की शिद्दत में कोई कमी पेशी नहीं आने वाली, लेकिन वेदर रिपोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है ना। तो भाई देखें, आपकी फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए आपको थोड़ी सी वेदर रिपोर्ट दे देते हैं। मुझे पता है आपकी गाड़ी का टेम्परेचर का जो मीटर है वो आपको सब कुछ बता रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा अगर आपकी अभी तक नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर तो फिर भी आपको बता दिया जाए। इस वक्त जो है वो टेम्परेचर चल रहा है 43 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन फील हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस का। और हवाओं की रफ्तार आज ज़्यादा है। सुबह में जब आई थी, जब धूप कड़ी भी सख्त धूप नहीं निकली थी, तब भी हवा तेज़ थी, और मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि हाँ आज कुछ तूफ़ानी करने का माहौल हो रहा है हवा का। तो भाई अगर हवा की रफ़्तार आप जानना चाह रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवाएं चल रही हैं 37 किलोमीटर पर आर की रफ़्तार से। मतलब ये कि जो दुबले पतले जो लोग हैं वो अपनी जेबों में पत्थर डाल के घूमें मेहरबानी करके। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आप उड़ते हुए जा रहे हैं और हम आपको पकड़ रहे हों। ह्यूमिडिटी इस वक्त 19 पर है, यानी कि 19% पर है। यूवी इंडेक्स एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब पता है क्या है? सनस्क्रीन की 3-4 लेयर्स तो लगा ही लो। वैसे अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है कतर में तो मतलब आपको कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन अपनी बचत के लिए सनस्क्रीन तो लाजिम है भाई। समर में सनस्क्रीन लाजिम है, लाजिम है। ख़ासतौर पर मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब से मुझे कहा है ना कि मेहरबानी करके आप जो है वो सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो मैं भी आप लोगों को मुफ्त का ज्ञान दे रही हूँ, बिल्कुल मुफ्त सनस्क्रीन लगा कर घूमो भाई। अच्छा, क्लाउड का कवर जो है वो देखें इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती थी हीट, लेकिन क्लाउड कवर जो है वो 33% है, तभी हमारी फिर भी थोड़ी बहुत बचत हुई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वेदर फॉरकास्ट से आगे बढ़ते हैं। गर्मी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गर्मी के बारे में एक फैक्ट बताया जाए। आज गर्मी के फैक्ट से बात शुरू की जाए। देखें अगर आप इन दिनों ना गर्मी में बाहर निकलते हैं और आपको ये लगता है कि भाई धूप आपको कहीं ज़्यादा नॉर्मल से जला रही है, तो भाई अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि भाई देखो भाई सख्त गर्मी के दिन चल रहे हैं, ये कहा जाता है ना। नॉर्मली हम ये कहते हैं देखो भाई सख्त गर्मी के दिन आ गए, 44 डिग्री पे गर्मी पहुंची हुई है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, इस शदीद तरीन गर्मी के दिनों को पूरी दुनिया में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चलो हम देसी लोग तो बोल लेते हैं ना भाई सख्त गर्मी चल रही है, और कभी कभी हम कराची वाले ना इस जो मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश का जो फ्रेज बताने वाली हूँ उसको हम लोग लिटरली उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इंग्लिश में ना इसको कहा जाता है डॉग डेज ऑफ समर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप कहेंगे सफा आपने बता तो दिया डॉग डेज ऑफ समर कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है बताया नहीं। अच्छा चलें इसकी आपको एक थोड़ी सी तफसील दे देती हूँ। नहीं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेचारे गली में जो डॉग्स घूम रहे होते हैं उनको जाकर मार कुटाई शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें इसका मतलब सीधा सा है। देखें अब अगर आप ये सोच रहे हैं इसका मतलब ना बड़ा दिलचस्प सा है, इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको कहानी बताती हूँ। अब आप सोचेंगे कि यार गर्मी का बेचारे गली के डॉग से स्ट्रीट डॉग से क्या क्या लेना देना है, तो चलिए आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर लेकर चलते हैं। इसका ताल्लुक ज़मीन से नहीं है, इस फ्रेज का ताल्लुक आसमान से है। अब इसकी कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी डिटेल में आपको बताती हूँ। इसकी कहानी रिलेटेड है आसमान के सबसे चमकते हुए सितारे से। अच्छा, जब हमसे अरबों अरबों अरबों मील दूर ना अरबों मील दूर आसमान में एक सितारा है जिसे कहा जाता है साइरस। अच्छा, ये जो सितारा है ना ये पूरी रात के आसमान में जब हम देखते हैं ना पूरी रात के आसमान में जब हम सितारे देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा साइरस ही होता है। अच्छा, इस सितारे का एक और नाम है जिसे कहा जाता है द डॉग स्टार, क्योंकि ये कैनिस मेजर नाम की एक कॉन्स्टेलेशन होती है। जो कॉन्स्टेलेशन वो होती है जो सितारों के झुरमट होते हैं ना, उन्हें कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ये उसका एक हिस्सा होती है। अब इस बेचारे का कसूर ये है कि भाई जुलाई और अगस्त के हफ्तों में कुछ ऐसा होता है कि जब सुबह सूरज निकलता है ना तो ये डॉग स्टार यानी कि साइरस जो है वो भी सूरज के साथ साथ वॉक पे निकलता है। दोनों बिल्कुल साथ साथ आसमान पर चलते हैं। अब मसला ये है कि ये

इज जो मैंने आपको बताया कि डॉग डेज ऑफ समर, ये फ्रेज जो है ना बहुत पुराना है. मतलब ये हजारों साल पहले ना जब एंशियंट रोमन्स ने ये देखा ना कि यार भाई साल के इन्हीं

यानी कि जैसे कि हमारी अम्मा कहती है ना, तुम्हें खांसी हुई है मोबाइल की वजह से हो रहा है, तुम्हें जुकाम हुआ है इस मोबाइल की वजह से हो रहा है, तुम्हें जो है ना तुम लेजी पड़े हुए हो इस मोबाइल की वजह से हो रहा है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है इस मोबाइल की वजह से हो रहा है। उन्होंने भी बिल्कुल यही काम किया, उन्होंने कहा जो गर्मी हो रही है ना इस सितारे की वजह से हो रही है, क्योंकि क्योंकि उनका मानना था कि इस सितारे की एक्स्ट्रा हीट की वजह से जमीन पर आग बरसने लग जाती है, यहाँ पर गली के जो डॉग्स होते हैं वो पागल हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने इन दिनों को नाम दे दिया डॉग्स डे। लेकिन साथियों देखें, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो आपको याद दिलाती चलूँ कि साइंस ने ये क्लियर कर दिया है कि साइरस बाबू जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल हम कह लें इनको कटघरे से बाहर निकाल लिया जाए, इनके ऊपर इल्ज़ाम न दिया जाए, वो सितारा हमसे बहुत दूर है भाई, उसकी रोशनी तो ज़मीन पर मतलब हमें दूर से नज़र आ रही होती है चमकती हुई, लेकिन उसकी हीट रस्ते में ही ख़त्म हो जाती है। असल गर्मी तो हमारी अपनी ज़मीन को ये सूरज चाचू दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट होती है तो उसकी वजह से गर्मी पड़ती है उन जगहों पर ज़्यादा। तो भाई अगली बार जब आप जुलाई और अगस्त में आपको शदीद गर्मी लग रही हो ना, तो मेहरबानी करके ये बेचारे गली के जो डॉग्स होते हैं ना इनके ऊपर गुस्सा नहीं उतारना, इनको डंडे सोटे नहीं मारने, इनको पत्थर नहीं मारने, वो तो बस बेचारे भाई वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। असल में ये सारा जो किया धरा है ये वो पुराने रोमन्स है ना जो उन्होंने ऐसा नाम दे दिया था गली के स्ट्रीट डॉग्स से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई एक काम करते हैं इसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना, जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हज़म करने में भी टाइम लगता है। तो भाई चलिया आ रहा है आपकी तरफ, चलो भाई चलते हैं श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, सुनते हैं एक मज़ेदार गाना। श्रेया घोषाल तो भाई, सुनिधि चौहान कॉम्पैक्ट भाई। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ब्रेक के उस पार हमने अपना आज का मुद्दा जो ना शुरू करना है, ठीक है। सुनते रहे एफएम 107 पर सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

0: ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: देखें मरने मारने की बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं, यानी कि आज के मुद्दे पे आते हैं। क्या कहते हो गोविंद फुल्लो, आ जाओ जरा लाइन में आ जाओ। वेलकम बैक साथियों, आज का मुद्दा शुरू करते हैं भाई। देखो देर नहीं करते, कहते ना स्ट्रेट स्ट्रेट बात पर आ जाते हो, ठीक है भाई तो आ जाते हैं कोई बात नहीं। पहले तो ये बताओ कि अटेंडेंस किस किसने नहीं लगवाई भाई, ये क्या गलत बात हो रही है, किसी ने आज अटेंडेंस नहीं लगवाई, क्यों भाई? मैसेज का नंबर भूल गए हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैसेज का नंबर मैं एक दफा फिर दोहरा देती हूँ, 666-22-107 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज। जहां जहां से सुन रहे हो वहां वहां का पता ही दे दो, मतलब पूरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, गली नंबर हाउस नंबर ये बताने की जरूरत नहीं, बस बता दो कहां से सुन रहे हो, ताकि मुझे पता चले भाई हाँ ट्रांसमिशन यहां से वहां तक अच्छी ही चल रही है। वैसे चलनी तो अच्छी ही चाहिए। और भाई हमारा जो है वो कॉलिंग का भी एक नंबर है, गुफ्तगू करना चाहते हैं तो जरूर करें, किसने मना किया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, द नंबर फॉर कॉलिंग इज 443-443-77। और भाई गुफ्तगू किस बात पे करेंगे ये भी बता देती हूँ ना भाई, आज के मुद्दे पे आते हैं। देखो मैं जो ना गजनी हूँ, तो इससे पहले कि मैं दाएं बाएं निकल जाऊँ शुरू ही कर लेती हूँ मैं बात। चले भाई देखें, सुने सुने सामीन इत्तलाए आम है मेरे प्यारे गोविंदिया फुल्लो, थके हारे वीकेंड के इंतजार वालों, आज मैंने चुन के जो है ना मैंने मुद्दा चूज किया है। देखिए ये आपकी और मेरे हम सब के दिल की बात है, जितने लोग जॉब करते हैं ना मेरे ख्याल से उनके दिल की बात है ये। तो भाई बात ये है कि आज गोविंदिया फुल्लो हम बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है द ग्रेट ऑफिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमने करना ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी मर्जी से टॉर्चर चूज करें, तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूं, मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, आपने किस में गिरना है, अब आपने मुझे बताना है कि आप किस तरफ लुढ़कना पसंद करेंगे। देखिए आपने मुझे ये बताना है कि सोचिए अगर खुदा ना खास्ता आपकी मर्जी का टॉर्चर चुनने का मौका मिले आपको, तो आप कौन सा पंगा लेना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर वन ये है कि हफ्ते में 4 दिन काम, ठीक है हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन काम, कहते 7 दिन होते ना बाबू मुशाय, सिर्फ 4 दिन काम करो गोविंदिया फुल्लो, सिर्फ 4 दिन, लेकिन एक शर्त है ना, ऐसे थोड़ी मिलती है कोई चीज, आपको पूरे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी मंडे से लेकर थर्सडे तक ऑफिस में ही आप तंबू गाड़ के बैठ जाएं, लेकिन फ्राइडे की सुबह आंख खुले तो पूरे 3 दिन की आजादी, हाय हाय हाय हाय, लेकिन काम उन 4 दिनों में आपने करना है कितना, 10 घंटे का। अच्छा फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ भी आ जाते हैं, रुको जरा, दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हर दिन पूरे 13 घंटे इस आफत को झेलो, ऑफिस की आफत को 13 घंटे काम करो, यानी सुबह आप सुबह निकले भाई फजर से भी पहले अंधेरे में, और जब आप वापस आए तो आपसे पड़ोसी पूछे भाई क्या तुम क्या किसी वर्ल्ड टूर पे गए थे क्या, ट्रिप पे गए थे क्या, लेकिन इस 13 घंटे 14 घंटे की जॉब के बाद पूरा आपको आप कह लें कि 4 दिन अयाशी ही अयाशी हो, नो बॉस नो ईमेल्स नथिंग, बताओ गोविंदिया फुल्लो बताओ, थोड़ी लंबी ऑफिस आवर्स आप बर्दाश्त कर लेंगे या 3 दिन में अपना मैराथन आप खत्म कर लेंगे और आप कहेंगे भाई चलो ओके भाई चलो ठीक है, क्या करना पसंद करेंगे? आपने मुझे ये बताना है कि सिर्फ 3 दिन ऑफिस लेकिन 13 घंटे काम, या सिर्फ 4 दिन ऑफिस लेकिन 10 घंटे काम। चलो भाई शुरू हो जाओ भाई, गोविंदिया फुल्लो आ जाओ खुशबू लगाकर और चलो शुरू हो जाओ, अपने दुख भरे मैसेजेस मुझे भेजो और मुझे मजेदार से जवाब चाहिए भाई। देखो सीरियस मोड पे हम बात नहीं करते, सीरियसनेस ना मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती, तो भाई आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आप क्या करेंगे, 4 दिन काम 10 घंटे ड्यूटी या 3 दिन काम और 13 घंटे जॉब, क्या करोगे भाई क्या करोगे, आपको क्या लगता है आपको क्या कर पाओगे, कौन बनेगा हफ्ते के तीन दिन या चार दिन वाला सुपर हीरो? बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल। चलो एक कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बहन? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमजा भाई टाइप की आवाज है?
2: जी मैं ही।
0: अरे वाह,
2: आपको याद रहने लगे ना।
0: अरे मतलब मुझे गजनी का टाइटल छोड़ना पड़ेगा अपना? ऐसा तो ना करें भाई, देखो ऐसा ना करो ना। हमजा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है।
0: हमजा भाई वैसे आपसे जो ना वो मैंने कहा ना वो वही वाला सीन याद आता है मुझे, कबीरा कॉलिंग वाला। आपसे वो काम करवाया जा सकता है। समझ जाए बस। कबीरा कॉल, सीरियस मोड वाला काम। अच्छा भाई ये बताए कि गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह रोजी
0: भाई देखिए रोजी रोटी एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं।
2: शुक्र
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी। अच्छा ये तो बताएं, आज मैंने सवाल बड़ा मजे का किया है, आप भी जॉब वाले लोग हैं, हम भी जॉब वाले लोग हैं।
2: मैं आपके सवाल की तरफ ही जा रहा था।
0: हाँ जी,
2: आपने थर्ड ऑप्शन भी देना चाहिए था।
0: नहीं देखिए ये थर्ड ऑप्शन की बात नहीं थी, हम सिर्फ देखें हम दो के ऊपर बिलीव करते हैं, हम इवन रखते हैं चीजों को, ऑड नहीं करते।
2: मसला कुछ ऐसा है कि ऑड वाली कहानी हमारे साथ हुई पड़ी है ना।
0: अच्छा ऑड वाली कहानी क्या हुई है भाई?
2: हम जो है बेसिकली हमारा ये होता है कि शिफ्ट का सीन होता है, हमारे अपने ऊपर होता है कि हम लोग कितने शिफ्ट उठाए, लेकिन हमें जो है वो अपना टारगेट जो है वो पूरा करना पड़ता।
0: अच्छा,
2: तो उस हाँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो है एक्स्ट्रा शिफ्ट उठा लें और छुट्टी कोई ना करे। तो आपको ये ऑप्शन भी देना था कि बगैर छुट्टी के 14-14 घंटे ड्यूटी।
0: अरे भाई ये तो फिर जुल्म है ना। हम तो ये तो भाई बहुत जुल्म है, मतलब ये वाला टॉपिक ना बड़ा
2: नहीं आदत सी हो चुकी है,
0: दिल बर्दाश्त टॉपिक हो जाएगा ये।
2: अब पता नहीं चलता, अब वो जिस दिन छुट्टी कर लेना तो वो हमारा दिन नहीं गुजरता।
0: अच्छा
2: हमें ऐसा लगता है यार बहुत कुछ खाली खाली है।
0: हमजा भाई ये एक मामला है जो वर्कहोलिक लोग होते हैं ना, जिनका काम के ऊपर फोकस होता है, जिनका लाइफ में प्रोग्रेसिव होने का फोकस होता है ना, फिर चाहे वो पैसा कमाने में हो, फिर चाहे वो एजुकेशन में आगे बढ़ने का हो, फिर चाहे वो अच्छी डेजिग्नेशन पे आने का हो, तो उनको अगर आप 30 दिन या 40 दिन छुट्टी के भी दे दो ना, जो कि एनुअल लीव के होते हैं भाई, बावले हो जाते हैं हम उस 30 दिन में। समझ नहीं आता क्या करना है।
2: मैं ना पाकिस्तान में जब था ना तो मैं अपनी फैमिली से ना मैंने स्टोर में जो काम करा था, अपनी शॉप है तो मैं उस पर लगा हुआ था, तो मैं वाले साहब से ये बोलता था कि वाले साहब एक दिन की छुट्टी हफ्ते में मेरी बननी चाहिए।
0: सही।
2: तो वाले साहब बोलते बच्चा अभी जो वक्त है अगर इस वक्त तुमने मेहनत कर ली ना तो आगे जाके कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो वो मेरा स्टार्टिंग पीरियड था काम करने का, लेकिन खैर अब आके वो एहसास होता है कि यार अब छुट्टी करने का दिल नहीं करता।
0: अब हम जो है ना
2: बोलते हैं कि हाँ कि यार कुछ ना कुछ लगे रहेगा, छुट्टी हो भी जाए तो बाहर कहीं दोस्तों के साथ उठ बैठ लिया कि यार कम से कम माइंड डाइवर्ट रहे।
0: अब हम अपने अम्मा अब्बा के उस एरा में आ गए हैं जिस एरा में वो खड़े होकर हमें ज्ञान दिया करते थे। हम मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज।
2: हमारे मेरे वाले साहब ना पंजाबी में जब आपको प्यो बनता ना
0: जिम्मेदारियां जब आती है ना तो फिर पता लगता है,
2: जिम्मेदारी इंसान को बहुत कुछ सिखाती।
0: अच्छा भाई मुद्दे पर आए ना, मुद्दे पर अभी तो आज तो दो ही ऑप्शन है, आज तो दो ही ऑप्शन है भाई।
2: ऐसे ही मेरा दिल खुश कर रहे हैं।
0: अच्छा खुदा ना खास्ता हमारे हाथ में दे दिया जाए तो
2: मैं खुश हूँ,
0: खुदा ना खास्ता हमारे हाथ में दे दिया
2: तो मैं खुश हूँ।
0: नहीं एक एक एक देखें ये दो लूंगा वाला सीन नहीं हो रहा, ये प्रमोशन नहीं चल रही है यहाँ पर, सेल नहीं लगी हुई। एक एक उठाना है।
2: मैंने आपको अपनी कंडीशन बताई है ना, मैं दोनों सूरतों में इसलिए खुश हूँ कि मैं दोनों सूरतों में एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है मुझे 10 घंटे भी चलेगा, मुझे 13 घंटे भी चलेगा, छुट्टी मिलनी चाहिए।
0: छुट्टी मिलनी चाहिए भाई। अच्छा छुट्टी ज्यादा चाहिए आपको कम वाली छुट्टी चाहिए? देखें एक ऑप्शन ये है कि आप 4 दिन काम करो और आप जो है ना 10 घंटे की शिफ्ट 4 दिन में करो, ठीक है। और एक ऑप्शन ये कि आप सिर्फ 3 दिन काम करो, लेकिन उस 3 दिन की भरपाई ये होगी कि भाई आपको 13 घंटे काम करना पड़ेगा।
2: वो फिर ये है कि छुट्टी ज्यादा हो जाएगी, फिर बंदा जिस वक्त काम पे जाने की बारी आती है उस वक्त आलस हो जाता है, तो कम छुट्टी चलेगी।
0: कम छुट्टी चलेगी, अरे भाई कम
2: छुट्टी चलेगी,
0: मतलब 4 दिन 4 दिन काम करेंगे 10 घंटे। हाँ अच्छा ऑप्शन है,
2: क्योंकि माइंड जो है ना फिर फ्रेश होता है।
0: हाँ।
2: और जिस वक्त वो अक्सर आप लोग सुने वीकेंड वाले हैं ठीक है, आप जिस वक्त संडे को काम पर आते हैं या संडे आप लोगों को सैटरडे की नाइट आप लोगों की क्या फीलिंग होती है, यार इतनी जल्दी संडे क्यों आ गया,
0: ये
2: एक दिन की छुट्टी हो रही
0: है। कभी कभी ऐसा लगता है हर सैटरडे की नाइट को ना ऐसा लग रहा था भाई मुझे बुखार चढ़ गया, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे फिटिंग हो रहा है, पता नहीं क्या।
2: हर असल में ये फीलिंग्स है ना, स्कूल टाइम पे ये फीलिंग्स आती थी बच्चों को, तो हम सोचते थे कि यार बड़े जो है वो उनको ये फीलिंग्स नहीं आती होंगी, लेकिन जिस वक्त बड़े हमें पता चला कि ये फीलिंग्स बड़ों में ज्यादा आती है,
0: ये जो है ना बस कंप्लेन करना छोड़ देते हैं।
2: हाँ,
0: ये दुख,
2: लेकिन फीलिंग्स बढ़ जाती है। शायद आज सुबह मेरा बहुत उठा, मुझे कॉल करके बोले आज ऑफिस की छुट्टी है,
0: बॉस सुबह उठ के कहे कि एक महीने की तनख्वाह तुम्हें वैसे ही दी मैंने, जो छुट्टी एक्स्ट्रा छुट्टी।
2: हाँ,
0: चले
2: विदाउट एनी रीजन,
0: आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ, फिर हम कहेंगे बॉस आपको अल्लाह खुश रखे और डबल डबल खुश रखे।
2: तो आप खाली खुशी की बात, आपने तो फिर वो हमारे जैसे होंगे ना बॉस, आज पार्टी हमारी तरफ से, आ जाए आप, आज आपको बकरा खिलाया जाएगा,
0: हम एक्स्ट्रा अपनी तनख्वाह में से एक्स्ट्रा देंगे, आपको खुश वक्रम रखे, हम सब की मुश्किलात में आसानी फरमाए, आमीन। चलो भाई जितने सुन रहे हैं सब आमीन बोलो, चले जी, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह
0: हाफिज। जिसने सुना ना सब आमीन बोलो, सब आमीन, कोरस में, कोरस में, तो जुम्मे की नमाज में कोरस में कहते हैं ना आमीन, कितना खूबसूरत लगता है, क्या हुसन है हमारे दीन का भी। चले अच्छा भाई मैसेजेस की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सफा जी, क्या हाल हैं आपके, ठीक हैं आप जी? मैं तो बिल्कुल ठीक और ठाक, अल शाहानिया में हूँ मैं अभी। और कौन है भाई शाहानिया में? उई अदील भाई, शाहानिया से, शाहानिया मेरा, शाहानिया से बहुत बचपन का गहरा ताल्लुक है। मेरे अब्बा जो है ना वो काम किया करते थे टीवी स्टेशन में, और वहाँ पे ना वो ऊँटों की रेस होती थी ना, वो उसकी जब कवरेज होती थी ना तो मैं जाती थी अब्बा के साथ। अच्छा वो अभी का नहीं, वो उस वक्त का है, कब, 1998 समथिंग के टाइम पर, छोटी सी होती थी मैं, और मुझे याद है अब्बा के साथ शौक से ना तैयार होकर गले में लटक कर अब्बा के साथ हार की तरह मैं जाती थी, मैं कहती मुझे वो ऊँटों वाली रेस देखनी है। तो शाहानिया का वो वाला एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ मेमोरीज हैं कुछ। अच्छा भाई और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें जो है वो हमें मैसेज किया हुआ है। भाई वेस्ट वॉक से, हमें कौन सुन रहा है वेस्ट वॉक से? अकील भाई सुन रहे हैं। अकील भाई हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना है? अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, ये वो वाले मेहमान हैं जो खाने के टाइम से थोड़ा सा पहले आते हैं तो कहते हैं हमें खाना, मतलब अगला खाना देगा ही ना, तो भाई तो अच्छा भाई मीसा से बात कर रहे हैं, कौन है? हेलो मोहम्मद गाजी, मोहम्मद गाजी भाई आपका नाम बहुत अच्छा है, मुझे गाजी नाम बहुत अच्छा लगता है, मेरे कज़न भाई है मेरा छोटा, उसका नाम भी गाजी है। तो अम्मी सही से बात कर रहे हैं, इतनी दूर दराज क्या कर रहे हैं, ऑफिस है क्या इतना दूर, एड्डी दूर से बात करना कर दे पे हो। चलो भाई कॉल की तरफ चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम, गुड मॉर्निंग सपा।
0: गुड मॉर्निंग अजू भाई, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन।
0: अजू भाई अर्जेंटीना के बारे में बात ना करेंगे नहीं करेंगे,
3: कल मेरे को हार्ट अटैक होने वाला है।
0: देखें अल्लाह ताला सबको सेहत दे, मुझे भी ऐसे मिनी हार्ट अटैक आया था पोर्चुगल के टाइम पर,
3: लास्ट 3 गोल सेव माय लाइफ।
0: ये अर्जेंटीना का बट इजिप्ट का मैच विद अर्जेंटीना वाज गुड, इट वाज टफ, ये तो मानना पड़ेगा। The guys gave them a tough time.
3: After last quarter minutes, Egypt lose their control. That's why Argentina score very fast.
0: अच्छा, अर्जेंटीना का ना एक चीज है, अर्जेंटीना को सामने वाली टीम को कंफ्यूज करना और थकाना आता है मसला ये है।
3: The world famous team, you know, so
0: they have the strategies.
3: Strategy how to play. Yeah, they have the strategy how to play because they are playing club and how many years they are playing international tournaments.
0: लेकिन एक बात है इजिप्ट टीम वर्ल्ड चैंपियंस को, इजिप्ट की टीम ने टफ टाइम दिया भाई, अर्जेंटीना के बरक्स मतलब आउटस्टैंडिंग है कि उनके आप जो ना ओपोनेंट में आकर दो गोल कर जाओ, इट वाज गुड। अर्जेंटीना का आखिर में गोल हो गया वो एक अलग बात थी, अपना प्लेयर छुपा के रखते हैं हुक्म का इक्का होता है ना, आखिर में रखते हैं। स्ट्रेटजीज है उनकी भी, लेकिन दो गोल, इट वॉज अ गुड मैच, गुड मैच.
3: नियरली टीवी बंद करके सोने के लिए.
0: अच्छा ये मेरे साथ था, मैंने कहा भाई जीतता है अर्जेंट, इजिप्ट जीत जाएगा. हमारे घर में भी एक तूफान मचा हुआ था कि इजिप्ट जीतेगा, क्योंकि इस दफा के वर्ल्ड कप में दिस वॉज द थिंग दैट इतने आगे तक वो टीम्स आ रही हैं जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था. मतलब कोई पीपल डोंट एक्सपेक्ट इट ना, तो वो
3: डोंट एक्सपेक्ट
0: या बट इट वाज अ गुड
3: लाइक जर्मनी दे हैव अ गुड टीम बट दे लूज
0: लाइक लास्ट टाइम ना. लास्ट टाइम मुझे याद है 2022 में हमारे पास जब वर्ल्ड कप हुआ था तो मोरक्को की टीम आगे निकली थी एंड पीपल वर लाइक एस्टोनिश्ड, ये कौन सी टीम है, मोरक्को की कौन सी टीम है, क्या है. और इस दफा ना वो काम इजिप्ट ने कर दिया है.
3: Exactly.
0: वर्ल्ड चैंपियंस के सामने खड़े होकर दो गोल कर लेना, इट्स नॉट इजी बट इट वॉज अ गुड मैच. इट वॉज दे गिव टफ टाइम, वेरी गुड मैच. तो मतलब अगर अर्जेंटीना के डाई हार्ड फैन टीवी बंद करके जाने लगे थे तो इसका मतलब था कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि खत्म है, खत्म, बस आखिरी गोल हो गया. मेरा, क्या करें.
3: मेरा दोस्त फोन किया था, अर्जेंटीना स्कोर 1, देन आई वाज सिट ऑन द टीवी
0: बट इजिप्ट प्लेड वेरी वेल, द मैच वाज वेरी गुड
3: इजिप्ट प्लेड वेरी वेल, द मैच वाज वेरी गुड. After Messi goal and after the third goal is very nice.
0: Very nice, yeah. But still, मुझे पोर्चुगल का बहुत दुख हो रहा है. Now I'm waiting for the match of Norway and England and I hope कि सामने जो है ना आगे से आए नॉर्वे का और अर्जेंटीना का मैच. ओए होए होए. I just want to have that scene of that match. I just want to watch it. I hope.
3: Me too. Hope to see.
0: Yeah, it would be a good match. I'm not saying that who will win, but it would be a good match. It would be a match to watch. Worth it.
3: Exactly.
0: अच्छा भाई, अब आते हैं अज्जू भाई मुद्दे पर. मतलब ये कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक ये है दैट लाइफ गिव्स यू अ चांस कि भाई चलो अपनी मर्जी से बाय योर विल इफ यू गेट अ चांस एवर यू वर्क 4 days अ वीक बट The shift time is 10 hours a day.
3: ठीक है, मैं आपको एक पूछ रहा हूँ. मेरा ड्यूटी आवर्स डेली 12 आवर्स.
0: हाँ, ठीक है.
3: With continuous 4 days, ये मेरा third morning है.
0: अरे भाई, अभी हम दूसरा ऑप्शन यही तो दे रहे थे. 3 days of work but 13 hours of shift.
3: No. We are in 4 days work, 4 days off, and another 4 days work, 4 days off. And sometimes 2 days day shift, 2 days night shift, like that.
0: So if you get an option that you will have weekends, you will get weekends, okay? If let's say you will have weekends, but for those weekends, what will happen is that you will have to do is 4 days calm, 10 hours or 3 days office and 13 hours of work. Which one would you prefer? तुम क्यों मुझसे 4 दिन की छुट्टी छीन रही हो. चले भाई, आप तो माशाल्लाह
3: पहले से ऑफशोर में था, उसी दिन दैट टाइम 28 days वर्क 28 days लीव.
0: ये अच्छे चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं. चले भाई, आप अपनी 4 दिन की छुट्टी में खुश रहे अज्जू भाई.
3: टुमारो द लास्ट एंड द 4 days लीव.
0: चले भाई, मतलब आप 4 दिन तक फिर हमें कॉल नहीं करेंगे, छुट्टी पर होंगे ना.
3: नहीं, मैं मोबाइल में आपका ऐप में 107
0: चलता ना, वो गुड भाई,
3: वो मैं सुनता रहेगा.
0: गुड गुड गुड गुड चलिए भाई अज्जू भाई,
3: मेरा पीसी में 107 का वेबसाइट में लाइव रहता है, वो डाल के रहता है।
0: सही, चलें भाई। QMC Now करके भी एक ऐप है, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करें तो वो भी चलती है। QMC Now
3: यस, ओके
0: QMC Now,
3: मोस्टली आई एम यूजिंग ब्राउजर ओनली, आई विल डाउनलोड दैट, थैंक यू।
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। चार दिन की छुट्टी वाले एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों, बाय बाय भाई। ये मस्त है माशाल्लाह, चार दिन की छुट्टी। हाँ लेकिन वीकेंड नहीं है ना, मुझे कोई बोले ना वीकेंड नहीं है तो मुझे एकदम से खलबली मच जाती है, मेरा दिल नहीं मानता। फिलहाल तो मेरा दिल ये कह रहा है कि भाई एक ब्रेक पे जाया जाए, एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। और ब्रेक के बाद अजान भी है ना, तो अजान से फारिग होकर फिर आपसे मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते रहें FM 107 सन एंड साउंड विद सपा, दिल से देसी।

0: भाई पुराने का तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि 2007 में इमरान हाशमी ने और बॉलीवुड ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि भाई उनकी बैड बॉय इमेज को फ्लिप कर दिया जाए। अच्छा भाई अगर इस गाने के बारे में बात करूँ ना तो मुझे ये पर्सनली गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 2007 में ये फिल्म रिलीज हुई थी आवारापन, आप लोगों को याद होगा, जो जो इमरान हाशमी के फैंस हैं उनको याद होगा। और इस ज़माने में ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उसकी बड़ी अच्छी कोलैब चल रही थी, तो मोस्टली पाकिस्तानी सिंगर्स गाना गाते हुए सुनाई देते थे इंडियन मूवीज़ में। और इस मूवी का भी कुछ ऐसा ही हिसाब था कि मुस्तफ़ा जाहिद ने अपनी आवाज़ दी थी इस मूवी के कुछ गानों में। और इस मूवी का कमाल कुछ ऐसा था, यूँ समझ लें कि बॉलीवुड में ना मिलकर डिसाइड किया कि भाई हर बैकग्राउंड होना चाहिए हर एक हार्ट ब्रेक सीन का। और इमरान हाशमी की इमेज इस मूवी ने कुछ ऐसी चेंज कर दी, फ्लिप कर दी, वो जो बैड बॉय इमेज होती है ना, लेकिन इस मूवी में ये आंखों में जो दर्द देखा गया था, जो लॉयल्टी देखी गई थी, वो उनकी प्रीवियस मूवियों में नहीं देखी गई। अच्छा इस गाने का अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊँ ना, तो ये एक ऐसा गाना है जिसका ओरिजिनल वर्जन जो उसका नाम रखा जा रहा था, तो वो रखा जा रहा था क्या मुझे याद पड़ता है, आना जाना करके इसका नाम रखा जा रहा था। लेकिन फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक, ऐसा होता ना कि अक्सर औकात स्क्रिप्ट बदली जाती है, तो फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक लिरिक्स चेंज किए गए और फिर ये गाना तेरा मेरा रिश्ता बन गया। तो भाई वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ इमरान हाशमी। और इसके अलावा जो इस मूवी में बाकी भी गाने थे, जैसा वो था तो फिर आओ, ओ माय गॉड, भाई वो गाने अभी भी सुनो तो बस आपके ऊपर नहीं बीती होती लेकिन आप इमरान हाशमी के साथ साथ रो रहे होते हो। तो भाई साथियों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और मुद्दे की बात करें मैं कहाँ 2007 में चली गई, देखा मैं ऑफिशियली गजनी हूँ, मैं 2007 में फंस के रह गई। देखें चलें आगे बढ़ते हैं दिल पे पत्थर रखकर। तो भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। हमारा आज का मुद्दा ये चल रहा है साथियों कि अगर आपको ज़िंदगी में अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। मतलब ये कि ये जो ऑफिस है, जो ये ऑफिस का झंझट है डेली का, 5 दिन का 7 दिन का, जो भी जिसका भी जैसा चलता है, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि 4 दिन काम करो लेकिन 10 घंटे काम करो, बाकी के दिन आप ऑफ ले लो 7 दिन से। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई 3 दिन काम करो लेकिन शिफ्ट लंबी करो, 13 घंटे की पर डे की शिफ्ट करो, तो आप क्या करोगे। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ भाई बात कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: अरे भाई याददाश्त आ रही है, अरे यार मेरी याददाश्त वापस आ रही है,
1: अरे
0: यार
1: अरे
0: आ गए भाई, ये आ गई वापस याददाश्त। अरे भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? नहीं आजकल गर्मी शर्मी ज्यादा पड़ रही है ना।
1: हाँ जो भी मेरे को थोड़ा ज्यादा गर्मी लग रहा है बाकी के।
0: क्यों भाई क्या हो गया है, खैर है, कहाँ खड़े हुए, कौन से शहर में चले गए?
1: वैसे तो
0: लस्सी वस्सी पिए
1: थोड़ा सा
0: 1-2 डिग्री ज्यादा होता है, 2-3 डिग्री वहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको टेम्परेचर। मतलब अगर मैं 44 का टेम्परेचर बता रही हूँ तो वहाँ पे आपको शायद 1-2 डिग्री ज्यादा, उससे ज्यादा और मिले, मे बी 45 मिले, मे बी 46 मिले, क्योंकि वहाँ पर साइंस काम करती है, वो फिजिक्स है, साइंस है, तो जो बिल्डिंग है ना कांच की, वो भाई कुछ ऐसा एटमोसफियर क्रिएट कर देती है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, दुनिया है, होता है बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बात।
1: ठंडी है, गर्मी है तो ठंडी भी आएगी
0: महीने में। ये बात खुशबू लगा के घूमेंगे हम, क्योंकि हम कतर में और हम ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा ये तो बताएं, एक बात पूछनी थी आपसे,
1: हाँ जी,
0: किसकी किसकी कौन सी सालगिरह है? ये बोले ना 3 साल हो गए, मैं कह रही हूँ, कह रहे तीसरी शादी की सालगिरह है, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, आपने बोला ही ऐसे।
1: देखें ग्रामेटिकली कुछ और बन रहा था ना मैंने तभी डबल पूछा, मैंने तभी दोबारा से पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे जो समझ में आ रहा है गलती हो गया, ऐसा ना करी ना, ये तो मिनी हार्ट अटैक दे दिया था आपने मुझे। अच्छा चले शादी की मतलब ये अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ 3 साल हुए,
2: अभी तो
1: अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह

0: हमारी तरह जब 15-16 साल आपको गुजर जाएंगे तो फिर आपसे वापस से रिव्यू लूंगी फिर आपके
1: फिर आप बोलेंगे कि अभी तो हमारे 32 साल हो गएंगे तो आपसे बात करेंगे
0: फिर जो है ना 15 क्योंकि 15 साल बाद जो है ना 15 से 16 साल बाद माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला जब तक जिंदगी रही तब तक और जो है ना भाई उसके मतलब 15-16 साल 10 साल जब गुजर जाते ना तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है ये लोगों को बयान करना कि जिंदगी कैसी गुजर रही है फिर आप कुछ बोलने
1: माशाल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है बहुत अच्छी अब कौन सबर कर रहा है और कौन शुक्र ये तो बाद में पूछेंगे हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप टेंशन ना लें अंडरस्टैंडिंग है तभी तो अभी और साल गुजारने इंशाल्लाह
1: देखिए
0: अब देखिए हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना कि देखें दो बर्तन एक साथ होंगे तो बजेंगे तो जरूर
1: तो
0: वो तो वो बस आप कुछ साल गुजारने दें वो कभी कभी की जगह जो है ना
1: अगर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट अगर मिस्टेक हुआ तो बजेंगे
0: वो तो होगा जैसे साल गुजरते जाएंगे वैसे वो रेशो बढ़ता जाएगा कभी कभी से चले अल्लाह ताला खुशो खुरम रखे सबको किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना हमें दूसरों का गार्डन ग्रीनर लग रहा होता है अच्छा भाई आरिफ भाई ये बताएं कि ये जो अपनी जॉब वाला मामला है हम ये जो 9 to 5 वाले लोग हैं इसके अंदर हमारा मामला ये है कि आज हमने डिसाइड किया आज हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे हकीकत में नहीं कर सकते तो वो अलग बात है
1: कतर में तो और मुमकिन नहीं है ऐसी ऐसी कंपनी है कि हमें क्या ही बताऊं
0: देखिए
1: जिनकी है अच्छी वो माता
0: देखिए सीरियस होकर तो हम किसी बात को लेते नहीं ना सीरियस तो हम बात करते ही नहीं हम बात कर रहे हैं अगर हमारे हाथ में होता तो देखिए हम ख्याल पुलाव वाले लोग हैं हमारे ख्याली पुलाव बिरयानी से भी बेहतर होते हैं
1: पुलाव ही पकाना है तो पुलाव छोड़ो बिरयानी बनाओ
0: हाँ तो फिर बिरयानी बनाते हैं ठीक है अब बिरयानी में मसाले 2 किस्म के हफ्ते में 4 दिन काम करो और 10 घंटे जॉब करो और फिर दूसरा मसाला ये है कि 3 दिन काम करो और 13 घंटे की शिफ्ट पकड़ो आपको कौन सी पसंद आएगी कौन सी वाली बिरयानी
1: 13 घंटे काम और 4 दिन
0: नहीं नहीं 13 घंटे काम और 3 दिन ऑफिस हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ सही बोल रही
1: मैं वही मेरे को आदत है 13 घंटे ड्यूटी करने का डेली कर भी रहा हूँ
0: माशाल्लाह चलिए भाई हम दुआ करते हैं दुआ अच्छा ये तो बताएं बाकी के जो 4 दिन होंगे उसका क्या करेंगे
1: 4 दिन मजा से सोऊंगा
0: मेरे भाई हैं आप तो बस जिंदगी में सोना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं खाना और सोना
1: 4 दिन बिना उठे सो सकता हूँ ऐसा मेरी मतलब मेरे पास वो खूबी है आप खूबी बोलो उसे जो बोला है आप बोलो
0: देखिए भाई आपके साथ हाई फाइव हो जाएगा हाई फाइव ये मेरा भी ये हाल है मैं कहती हूँ मुझे पूरा साल सोने दो पूरा साल सो लूंगी मैं मुझे जिंदगी में कोई चीज प्यारी नहीं है सिवाय खाने के और सोने के
1: एक दिन जैसे स्पोर्ट्स डे का छुट्टी मिला था ना तो मैं जिस दिन काम करके आया खा के सोया फिर नेक्स्ट डे काम के लिए उठा था
0: देखें स्पोर्ट्स डे पे लोग फिटनेस मना रहे होते हैं और हम कहते हैं नहीं हमें फिट नहीं होना हमें फिट बिल्कुल भी नहीं होना फिटनेस किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता हमें सोने दो
1: एक दिन काम करके भाग दौड़ करके तो आदमी फिट हो ही जा रहा है तो एक दिन रेस्ट मिल रहा है फिटनेस डे के नाम से तो सो लिया
0: क्या ही कोई फर्क पड़ेगा एक दिन की फिटनेस हमें सोने दो हम दोनों एक जैसे चल रहे हैं भाई आरिफ भाई ये आपने मजे की बात की देखें ये आपने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज किया है
1: मैंने क्यों चूज किया वो क्यों अभी हम लोग डेली 10 घंटे 12 घंटे ऐसा ड्यूटी करते हैं कंपनी हो तो 10 घंटा 10.5 घंटा होता है
0: सही
1: और रमजान महीना आता है तो 13 घंटे 14 घंटे भी हो जाते हैं वो इफ्तारी का भी टाइम नहीं मिलता है
0: सही
1: इसलिए मैंने चूज किया क्यों अभी तो आदत है 13 घंटे का
0: सही सही
1: 4 दिनों दो ही रेस्ट मिल जाए
0: आपके लिए वो गाना चलाना पड़ेगा अब तो आदत सी है मुझको आतिफ असलम याद आ गया मुझे अच्छा ये बताएं अब तो हमारे 12 भी बज गए मतलब हमारे 12 नहीं बजे मतलब बज गए टाइम है तो ये बताएं कि 2 मिनट हमारे साथ रहेंगे
1: मुश्किल नहीं है मैं रह लूंगा
0: एक नहीं दो भी नहीं हाँ 2 मिनट लाइन पे रहें आपसे वापस से बात शुरू करते हैं क्योंकि आप ही से गेम खेलना शुरू करना
1: जिंगल
0: है
1: बजा के
0: हाँ जी बिल्कुल जिंगल बजा के बस 2 मिनट वापस आए कॉल पे रहिएगा ठीक है
1: ओके ओके

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम बैक साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बज रहे हैं ठीक 12:05 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ। शो का नाम है सन एंड साउंड।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: थैंक यू कबीर भाई, आपने इन्फॉर्मेशन दी। चलिए एक और भाई हमारे साथ बैठे हैं, आरिफ भाई थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी आरिफ भाई, वापस आ गए। वेलकम बैक जी। अच्छा वैसे आरिफ भाई एक बात है आपस की, आप पास हो गए भाई, आप टेस्ट में पास हो गए। 3 मिनट बंदे ने सुकून से इंतजार किया है, मतलब आपकी बेगम जो है ना वो बहुत लकी है।
3: बात बताऊं, मैं सुबह मैंने 12-15 मिनट वेट किया था, एक कलर एक साथ हम लोग चले गए थे सुबह का समय।
2: सुभान
3: अल्लाह, मैं 15 मिनट वेट किया था।
2: बर्दाश्त वाला आदमी है, मतलब मैं बता रही हूँ, जब तक है जान। बेगम आपकी बड़ी खुश रहेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो आदमी साबिर होता है ना उसके घर बने रहते हैं।
3: अब दो में से एक तो चुप रहना पड़ेगा।
2: ये आपने मेरे घर में मुझे ये कहा जाता है, मुझे ताना दिया जाता है, दोनों में से एक को तो चुप रहना पड़ेगा। सफा तुम तो रह नहीं सकती, तुम्हारे साथ वाले को चुप रहना पड़ेगा,
3: तो बात लंबी जाएगी, झगड़ा पड़ेगा।
2: तो
3: देखिए
2: अब जो है ना वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अब लेडीज नहीं आदमियों से कहा जा रहा है भाई तुम थोड़ा वो हो जाओ, ये तो छुपनाऊंगी, इनको छोड़ दो।
3: अब इनको क्यों कहा जाता है, किधर भी मतलब कुछ होता है ना, तो ये तो चुप नहीं होगी, तुम ही चुप हो जाओ भाई, छोड़ो जाने दो।
2: देखें अब क्या करें, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, अपनी बुराई अपने मुंह से क्यों ही करूं मैं। चले आरिफ भाई, हम जो है ना वापस चलते हैं गेम की तरफ, बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चलते हैं। देखें राज नहीं खोलें, अब बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, फिर ऑन एयर ऐसी बातें नहीं करते ना, फिर लोग कहेंगे कि देखें गड़बड़ हो जाएगी। चले बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चलते हैं, सबका हाल दिल पसल जाएगा ना एक दूसरे को। चले भाई बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चले। अरे भाई क्या कहते हैं, बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चला जाए।
3: चला जाए, पर फर्स्ट मैंने कॉल किया था, मैं पूरी तरह हारा था कि मेरे को समझ नहीं
2: आया। क्या ही हार जीत जीत जीत मतलब क्या हार के जीतने वाले को, हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं,
3: बाजीगर।
2: हाँ बाजीगर कहते हैं, तो बस याद रखें ये शाहरुख खान का ही डायलॉग। अच्छा ये बताएं कि आपको ये पुराने टाइप के गाने पसंद है कि मिक्स चलेगा,
3: 90s, 20 के ऐसे गाने चलेगा।
2: कुछ 2000s के।
3: हाँ
2: 90s के भी सुनते हैं ना आप।
3: हाँ 90s भी सुनता हूँ, मैं नए गाने नहीं सुनता हूँ, 90s ही सुनता हूँ, 90s, 80s, 70s का।
2: अच्छा चले आपको दिया जाएगा 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर आपको गाने के हुक सुनाए जाएंगे। आपने मुझे जो है वो

क्या करके बताना है, आपने मुझे बताना है मूवी का नाम और गाने का टाइटल, दो चीजें, मूवी का नाम, गाने का टाइटल. ओके

0: नहीं, आमिर खान कहाँ आ गया उसके अंदर?
1: आमिर खान
0: कयामत से रिलेटेड है।
1: कयामत से कयामत तक
0: बहुत बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। चले ये जो है ना, ये अच्छा, ये वाला

0: देखो ये गाना सुन रहे हैं, मैं इनको हुक सुना रही हूँ, ये गाने में मसरूफ और मशगूल है। ये बताए
1: मैंने फर्स्ट नहीं बोला था आपको, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ।
0: अरे भाई अच्छा, टाइम तो वैसे आपका खत्म हो गया, चले हम नेक्स्ट कॉलर से पूछ लेंगे, लेकिन हिंट के साथ आपको दो पॉइंट दे ही देते हैं हम। चले तरक्की तो हुई थोड़ी सी तरक्की तो
1: पहले
0: हुई,
1: दिन जीरो था, दो हो गया।
0: हाँ वो धक्का देना पड़ता है थोड़ा सा,
1: पुरानी गाड़ी है।
0: चले भाई कोई मसला नहीं, धक्का देके चला लेंगे पुरानी गाड़ी को। चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, और कल थोड़ा सा और हाई स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू।
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों अगर आप भी हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलें, आपको किसने मना किया है। 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और अगर चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, 666-22107 मैसेज कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले द गेम कह के मुझे मैसेज कर दें अगर चाहते हैं तो। या अगर कोई गाना ऐसा है जो आपको याद आ रहा है और इनको याद नहीं आ रहा कॉलर को, तो उनका आप बता सकते हैं कौन सा था। भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक,
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
2: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
0: मुदस्सिर भाई ये बताएं कि जिंदगी कैसी गुजर रही है?
2: जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। और ये बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलने के लिए तैयार हैं?
2: हम बॉलीवुड से हम नहीं तैयार हैं।
0: क्या चीज क्या चीज?
2: मैं कह रहा हूँ हम तो तैयार नहीं है।
0: नहीं? तो भाई जाएं खुशबू खुशबू लगा कर आए, अच्छे वाले ईद वाले कपड़े पहने।
2: मालूम नहीं होता है ना, एक महीने भी सुना तो मैं तुमको एक गाने का भी नहीं बताऊंगा।
0: ले जी चलो जी, यहाँ पे तो इन्होंने पहले ही क्विट कर दिया, ऐसे कैसे?
2: नहीं मैं गाने सुनता हूँ लेकिन शौक से नहीं सुनता हूँ ना, वो जो शौक से सुनते हैं तो उन लोगों को पता होता है गाना किसने गाया, किस फिल्म का है, कौन है कौन नहीं है।
0: अच्छा अच्छा चलें आपके साथ गेम नहीं खेलते, आपके साथ एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? सवाल ये है कि आप जिंदगी में क्या प्रेफर करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप 3 दिन जॉब करें लेकिन 13 घंटे की शिफ्ट रखें, और या तो फिर आप 4 दिन काम करें और सिर्फ 10 घंटे की शिफ्ट रखें?
2: 13 घंटा काम करेगा उसका क्या है?
0: 3 दिन काम करें 13 घंटे,
2: ओके,
0: बाकी 4 दिन छुट्टी।
2: बाकी 4 दिन छुट्टी,
0: हाँ। और जो दूसरा है ये कि आप 4 दिन काम करें और सिर्फ 10 घंटे काम करें और बाकी 3 दिन छुट्टी।
2: तो वो 13 घंटे वाला शिफ्ट अच्छा है।
0: 13 घंटे वाला? अरे ज्यादा काम करेंगे?
2: दोनों काम करेंगे।
0: मैं तो काम पे सो जाऊँ अगर 13 घंटे की शिफ्ट हो भाई। तो
2: क्योंकि हम ऐसे ही आदत हमारा बन गया है ना।
0: सही,
2: तो बात अच्छी है कि इधर तो 4 दिन पे छुट्टी मिलती है ना,
0: फिर 4 दिन सो लेंगे।
2: हाँ तो फिर 4 दिन आराम से सोएंगे, मजे करेंगे।
0: मतलब कोई सो सकता है 4 दिन मेरे अलावा? मुझे सुनकर हैरानी हो रही, मेरे अलावा भी कोई 4 दिन सो सकता है?
2: मैं तो सो सकता हूँ।
0: सही है भाई, हम मेहनती लोग हैं, देखिए हम मेहनत करते हैं और फिर हम सोते हैं।
2: जी लोगों को नींद बोलते हैं ना, नींद नहीं आता है
0: हमें, इतनी नींद आती है।
2: नहीं नींद तो किधर से आएगा, तुम काम शाम नहीं करते हो तो सिर्फ सोते हो तो तुम्हारा मेमोरी फुल हो गया ना, तो हम सारा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा नींद करोगे तो तुमको खुद इतना नींद आएगा कि नींद से तुम उठ नहीं सकोगे।
0: मेरा भी यही हाल है, मैं खुश हूँ मुझे सोना है, मैं उदास हूँ मुझे सोना है, मैंने काम कर लिया मैंने सोना है।
2: सुकून सिर्फ किस चीज में? सुकून सिर्फ सोने में।
0: बिल्कुल,
2: काम करो सो जाओ,
0: सो जाओ, काम करो सो जाओ, रिचार्ज नहीं हो पाता बंदा नहीं तो। चलें ठीक है मुदस्सिर भाई।
2: जी जी, वो कल मैंने कबीर भाई को फोन किया था।
0: जी जी,
2: मैंने इसको बोला कबीर भाई आपका

0: भतीजा कैसा है? ठीक है, अच्छा कौन भतीजा, कौन है मेरा भतीजा? मैंने कहा तुमको नहीं मालूम, मेरे को साहब बोल रहे तो कबीर तो मेरा चाचू है। मेरा चाचू है वो तो तेरा भतीजा बन गया ना।
1: अरे वाह, मतलब पहला बंदा जिसने कबीर को भी जो ना वो दिमाग से खाली कर दिया, कबीर को स्पीचलेस कर दिया। मैं चले, मेरी चाचू भतीजे की जोड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे।
0: मेरे साथ हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि उसके साथ एक आदत बन गया था ना हमारा।
1: सही,
0: और 11 बजे से 1 बजे तक टाइम का पता भी नहीं चलता है, आपके साथ भी टाइम का पता नहीं चलता है। ये 1 से 3 तक होता था तो फिर हमें बहुत मजा आता था।
1: चलें कुछ इसका भी ये वाला स्केड्यूल भी हमारा मेरे ख्याल से अगस्त तक ही रहेगा, अगस्त के बाद फिर एक और फेरी आएगी तो देखते हैं उसमें क्या होता है।
0: जी जी,
1: अगस्त तक तो यही वाला हिसाब रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों, अगर आप बॉलीवुड ट्रिविया खेलना चाहते हो, सन एंड साउंड चल रहा है सफा के साथ और मैं बॉलीवुड ट्रिविया आपके साथ खेल रही हूँ। अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, द नंबर इज 6662107 मैसेज। चाहे तो मुझे मैसेज कर दें और मुझे मैसेज करके बोल दें आई वांट टू प्ले द गेम, तो खेल लेते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है भाई गेम का। मैं आपको एक हुक सुनाऊंगी, मैं आपको एक यूं समझ लें एक गाने का एक छोटा सा टोटा पीस सुनाऊंगी और आपने मुझे बताना कि मूवी का नाम क्या है और इस गाने का टाइटल क्या है। अच्छा भाई, मैसेज आया हुआ है किसका? यूसुफ भाई का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग सफा जी, होप ऑल इज वेल। यस भाई, ऑल इज वेल। हैप्पी वेडनेसडे मॉर्निंग, आपको भी हैप्पी वेडनेसडे आफ्टरनून। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन है हमारे साथ?
2: जी हमारा नाम शहनवाज
1: है। शहबाज,
2: शहनवाज।
1: अरे बड़े टाइम बाद मैंने नाम सुना है, बड़ा शहाना नाम है शहनवाज। ऐसा लगता है जैसे किसी मुगल, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने बड़े टाइम बाद सुना है ऐसा नाम शाहनवाज। ऐसा था मुगल दरबार में खड़े हुए शाहनवाज।
2: नाम ही बस मुगल है।
1: नहीं भाई, इंसान दिल से बड़ा होता है, दिल से बड़ा होना चाहिए। खैर है, बाकी सारी चीजें तो दुनिया में आती जाती रहती है। तो शाहनवाज भाई ये बताए, दिन कैसा गुजर रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपना तो वही एवरीडे रूटीन, कुछ डिफरेंट नहीं है।
1: चलें भाई, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चल ही रहा है। चलें चलते चलते गेम खेल लें।
2: जी खेले, बस वो थोड़ा सा रह गया था, वो टाइम में फोन करना सोच रहा था लेकिन वो नहीं पाया।
1: चलें,
2: मुझे शिफ्ट पे बात कर रहे थे।
1: अच्छा अच्छा, शिफ्ट पे चलें, आप शिफ्ट पे बात कर लें। शिफ्ट बता दें आपको, कौन सी वाली शिफ्ट पसंद है?
2: अभी फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो तो एवरीडे 12 आवर का है।
1: 12 आवर्स की शिफ्ट ऑलरेडी चल रही है एवरीडे। वीकेंड मिलता है आपको कि नहीं?
2: एवरीडे और वीकेंड में ईयरली मिलता है, वो भी ओनली ईद में 2 डेज, सेकंड ईद में 2 डेज।
1: आप मुझसे कह रहे हैं कि 7 डेज अ वीक आप काम करते हैं बगैर छुट्टी के?
2: बगैर छुट्टी के सालों साल सेम काम, और ये तो आप 13 घंटे 3 दिन 4 दिन 4 दिन छुट्टी का 13 घंटे बोल रहे हो?
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया।
2: एवरीडे 14 घंटा 15 घंटा हर दिन होता है हमारा।
1: ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। तो अगर आपको चांस दिया जाए कि आप कोई ऐसी शिफ्ट चूज करें जो कि 13 घंटे की हो लेकिन हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो, और या तो फिर आप 4 दिन काम करें, सॉरी 4 दिन काम करें और 10 घंटे की शिफ्ट हो, या 3 दिन काम करें और 13 घंटे की शिफ्ट हो, तो आप क्या करेंगे?
2: हम 13 घंटे पे हम तो 6 दिन कर ले, हम तो उससे भी हो जाएंगे।
1: नहीं मतलब आप अपने अपने ईज में, आपका क्या दिल कहता है?
2: हमारा दिल तो 4 दिन जो काम रहे 3 दिन छुट्टी रहे, बहुत हाँ। बढ़िया है।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, करम करेगा, हम सबकी जेब में आएगा ये वाला हिस्सा। अच्छा भाई चलें बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चलते हैं। आमीन आमीन
2: आमीन।
1: ये बताएं बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ चलें कि नहीं चलें?
2: चलें
1: चलें भाई। अच्छा आपको किस टाइप के गाने पसंद है, पुराने कि नए?
2: फिलहाल तो नए,
1: फिलहाल
2: क्योंकि वो नाम बताने का था, वो
1: अच्छा एक
0: मूवी का नाम बताने में डिफरेंट हो जाएगा।
1: अच्छा चलिए ये वाला सुनाती हूँ मैं आपको, मुझे लगता है ये वाला तो सबको ही आता होगा। चलिए शुरू करते हैं भैया आपके साथ, आपको दिया जाएगा एक मिनट और आपने मुझे मूवी का नाम बताना है और गाने का टाइटल बताना है, ठीक है?
0: ठीक है जी।
1: 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, और आपका गाना ये रहा। ये कुछ सुनने में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको? माधुरी नहीं, मेरी फेवरेट श्रीदेवी है।
0: पिक्चर का भी नाम है मिस्टर इंडिया।
1: यस ओके, गाने का क्या नाम है?
0: वही है ना?
1: गाने का क्या नाम है? क्या नाम है? वेरी गुड भाई। अच्छा नेक्स्ट गाना ये वाला बताइएगा, ये वाला
3: देख लो हमको करीब से।
1: नहीं नहीं नहीं ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये उतना ही है जितना हवा हवाई है तकरीबन। अरे भाई अभी आरिफ भाई ने भी मुझे, आरिफ भाई ने भी मुझे एक मूवी का नाम नहीं बताया था, मैंने मूवी का नाम बताया था कि किससे रिलेटेड है, अगर आपने इससे अच्छा। पहली वाली कॉल सुनी थी तो उसी मूवी का ये गाना, और ये इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी है कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने मूवी नहीं देखी। अरे अच्छा? भाई अरे भाई अरे भाई 1998 की मूवी है ये, लेकिन बहुत जबरदस्त मूवी।
0: कम से कम 2005 के बाद हमको लगता याद होगा।
1: आपने तो उसका ही बता दिया हवा हवाई का भी।
0: नहीं, वो तो सुना है लेकिन।
1: चलें कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कॉलर को हम पकड़ेंगे और पूछेंगे। तो भाई आपका आज का स्कोर क्या हुआ? आपका आज का स्कोर हुआ है 2 का। दो का स्कोर किया
0: है, एक का है।
1: देखें एक सॉन्ग में ना हम 2 पॉइंट्स देते हैं, एक आपने गाना बताया और एक आपने मूवी का नाम बताया। तो भाई तालियां हो जाए, तालियां तालियां तालियां। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया। तो नॉट बैड, कल फिर से कॉल कीजिएगा, आपको नए नए वाले गाने सुनाएंगे फिर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। चलिए मेरे साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107, और एक छोटा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, लेकिन सोच रही हूँ कि कॉल लूँ कि ब्रेक लूँ। देखिए मुझे ना आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा सा एक ब्रेक लेती हूँ, फिर एक ठप करके कॉल आ जाती है मुझे, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलर इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चलो भाई देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: जी कैसे हैं आप? मैंने कहा ना मेरे जो 2 बाल बच गए ये उनके उनकी ताक में हैं कि बस ये किसी तरह से बाकी के सफायद हो जाएं। सब अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, आप बताएं। और वैसे मुझे तो नाम आपका याद हो गया, मुझे कोई और दादी अम्मा कहता नहीं, लेकिन कॉलर्स को तो बता दें कि कौन बात कर रहा है। मैं ओए ओए ओए ऐसा लगा बोले मैं हूँ डॉन, वो ऐसा वो क्या क्या बोल रहा है 007।
4: आप क्या आगे कोई डॉन बन सकता है?
1: ओह क्या, तो देखिए मुझे कॉलर चढ़ा, बस कभी गुरूर नहीं किया, कॉलर मैंने आज पहने नहीं है, नहीं तो मैं कॉलर चढ़ा के बात करती, बस कभी गुरूर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये आपने तारीफ कर दी है बहुत ज्यादा,
4: अब तो पूरा बाल काले हो जाएंगे।
1: हाँ ये गलती कर दी ना, आपको फिर से वापस से रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ेगा बार बार बोल बोल कर।
4: अच्छा
1: अच्छा है। अच्छा रसीम भाई ये बताएं कि तबीयत कैसी है, सब खैर आफियत है?
4: अल्हम्दुलिल्लाह तो है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे?
4: ये तो मेरे को नहीं मालूम।
1: अरे भाई क्या नहीं मालूम, अच्छा आप आपको
4: जानकारी नहीं,
1: सिर्फ नाम बताना है,
4: एक कान से दूसरा कान से निकल,
1: सिर्फ नाम बताना है और मूवी का नाम बताना है, गाने का नाम बताना है, ज्यादा कुछ नहीं है।
5: याद ही नहीं, तो बताया।
1: अच्छा ये बताएं,

0: पुराने गाने सुनते हैं कि नए गाने सुनते हैं?
1: जो आ जाता है रेडियो पर सुन लेता
0: है। चलें आपके साथ गेम खेलते हैं, ठीक है? देखें आपको कहां तक पता है, ठीक है?
1: ओके,
0: ये वाला गाना कहां कहां, ये वाला, ठीक है? आपको एक मिनट देती हूं मैं, और एक मिनट कहां गया भाई टाइमर, 1 2 3 एंड गो।

0: बारे साला नमाज सुनना।
1: अरे भाई ना करें, ये इतना मशहूर गाना है कि इसका रीमेक भी हुआ है। ये 1970 में बना था गाना, और फिर ये गाना इतना पॉपुलर था कि ये 2025 में फिर से इस गाने को रीमिक्स किया गया था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक दफा भी नहीं सुना लग रहा।

0: आपको गुस्सा आ रहा है मेरे सुना?
1: नहीं भाई, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, खाली दिमाग में घंटी भी नहीं बजी।
0: वही बोल रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? सुना रहे?
1: अरे भाई दिमाग की बत्ती जलाए ना। अब ये तो पुराना भी है और ये गाना नया भी है। मजे की बात ये, नया जुबिन नौटियाल ने गाया था।
0: जुबिन नौटियाल? अच्छा।
1: चलें कोई नहीं, कल फिर कॉल कीजिए नसीम भाई, और फिर बाल मेरे वापस सफेद करवाइएगा। अच्छा, दादी अम्मा बोलकर ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। भाई ये क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है, कहाँ हैं शौकीन लोग, शायकीन लोग कहाँ हैं? और भाई आरिफ भाई ने अपनी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी तस्वीर भेजी है। एक सॉन्ग रिक्वेस्ट, कोई भी आपको पसंद, आपकी पसंद का सॉन्ग हो एनिवर्सरी के लिए। देखे ये जो है ना, ये बड़ा एक आपने कमाल की बात कर दी, और मुझे जो गाना जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो आपके लिए एक गाना मैं लगा सकती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हैं, एक ब्रेक ले ली जाए क्या? चलो भाई कोई नहीं, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह गेम भी अपनी कंटिन्यू रखेंगे, और आपसे जो है मजीद बातचीत भी चलती रहेगी। तो भाई एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? और ये वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, मजे का सॉन्ग है भाई, ये मजे का। वॉल्यूम हाई कर लो भाई, एंजॉय करने वाला सॉन्ग है ये, रोने धोने वाला नहीं है। आप सुन रहे हैं सफा के साथ, सन एंड साउंड ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस

0: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से

तो भाई अगर जग घूम ही लिया है, इतना घूम घुमा के मेरे पास वापस आ जाओ। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107 दिल से देसी। ओह ये क्या चल गया, नहीं नहीं नहीं ये नहीं था, जज्बात में आकर गलत वाला फेडर हो गया। अच्छा भाई सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप सफा के साथ। साथियों जग घूम फिर कर आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए इस गाने के बारे में। देखें ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स था जो कि सलमान खान का जो इमेज है ना एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि उनका ईगोइस्टिक एक्शन वाला जो मोड था उससे निकाल कर इस गाने ने उन्हें बड़ा एक अच्छा सा एक जग मतलब जग घूमने वाला इमोशनल लवर इसके अंदर सलमान खान का नजर आया था। थोड़ा सा हटके था गाना सलमान खान की इमेज से लेकिन अच्छा था। इट वॉज अ गुड सॉन्ग। ये बताएं इस गाने को सुनकर किस किस को अपने लाइफ पार्टनर याद आ गए, बताओ बताओ। मैसेज करो 666-22107 पर या कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और खेल सकते हैं हमारे साथ गेम जो कि चल रहा है बॉलीवुड ट्रिविया का। वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको आप जैसे ही सुनते हो ना आपके दिमाग में एक शख्स आ जाता है उभर कर। तो ये गाना सुन के आपके दिमाग में कौन आया? मेरे दिमाग में कौन आया? हाँ मेरे दिमाग में तो मेरे पसंदीदा शख्स आएंगे ना, आपका आपको पता होगा। तो भाई अगर बॉलीवुड ट्रिविया खेलना है तो मेरे साथ ज्वाइन इन कर लें 4434377 पर मुझे कॉल कर सकते हैं या चाहें तो मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22107 पर। देखो भाई नहीं अच्छा जी मुझे मैसेज आया था किसका ये कौन है, फरहत भाई हैं मोर फरहत और इन्होंने भाई इन्होंने मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इन्होंने गानों के मुझे ऐसे नाम और मूवीज़ के नाम बताएं और पता चल रहा है कि बंदा अच्छा प्लेयर है लेकिन हमारी हार्ड लक ये है कि कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहे मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और इस वक्त मैं कॉल नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई मैं कॉल कर लीजिए, नहीं नहीं देखें मेहरबानी मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। तो उन्होंने लिफ्ट ना कराई ज़्यादा लेकिन इनके मैसेजेस से पता चल रहा है कि ये बंदा गानों का शौकीन है, ये सुनते हैं और इनको नॉलेज है। ये ट्रिविया में अगर खेलते तो अच्छा होता भाई लेकिन हमारी हार्ड लक। तो फिर मैंने इनको ये लिखकर भेजा भाई हमारी हार्ड लक कि आप जो है ना नहीं खेल रहे। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया नहीं भाई मेरा बैड लक है क्योंकि लोग कितना कॉल्स करते हैं उनकी कॉल नहीं लगती, आप खुद मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ बिजी हूँ। तो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह किसी और दिन मज़ा आता है ना कोई अच्छा प्लेयर हो ना जिसको मज़े की नॉलेज हो तो मज़ा आता है गेम खेलने का। मुझे याद है कल किसने 6 और 8 का स्कोर किया था भाई, कल मज़ा आया था खेलने में। यूसुफ भाई ने भी खेला था कल तो मुझे याद है मेरे ख्याल से यूसुफ भाई ने किए थे 8 का कि 6 का स्कोर किया था लेकिन कल खेलने में मज़ा आया था। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई सर्वर भाई को मिस कर रहे हैं तो मैंने कहा सर्वर भाई वाला टच क्यों ना दे दिया जाए, क्या कहते हैं सर्वर भाई वाला टच दिया जाए। वैसे सर्वर भाई वाली चीज़ तो सर्वर भाई ही कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता लेकिन क्योंकि आपको सर्वर भाई की इतनी याद आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ मजे की रेसिपी शेयर कर ली जाए। भाई गर्मियों का माहौल हो या सर्दियों का माहौल हो एक चीज हम सबको बहुत पसंद है क्योंकि हम अरब कंट्री में रहते हैं तो एक चीज तो मस्ट है जो कि हम खाते पीते रहते हैं और वो है शीश टाउक। तो मैंने कहा क्यों ना आज उसकी मजे मजे की चिकन शीश टाउक की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। वैसे सर्वर भाई वाले टैक्स और टिप्स उतने एक्यूरेटली तो ना हो पाएंगे लेकिन अपना एक टच डाल के हम जरूर उसको आगे आपको बता सकते हैं। तो भाई आज हम आपको बता रहे हैं कि मजे मजे के चिकन शीश टाउक घर में कैसे बनाए जाएं। साथियों देखिए आपको इसके लिए रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा 1 kg चिकन। आप ले सकते हैं चिकन ब्रेस्ट या थाइज। वैसे जब शीश टाउक बनाया जाता है ना तो उसके लिए रेसिपी में थाइज लोग कहते हैं बड़े अच्छे होते हैं तो उन चिकन थाइज़ को आपने करना ये है कि तकरीबन 1.5 inch की क्यूब्स में आपने काट लेना है इन्हें। ये याद रखें कि थाइज़ जो होती हैं वो ज़्यादा जो है ना वो जूसियर रहती हैं जब आप इन्हें बनाते हैं तो मैरिनेशन भी इसकी अच्छी खासी होती है। तो भाई अब आ जाते हैं मैरिनेट करने पर। मैरिनेट के लिए आपको कुछ इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे होगा 1/2 cup प्लेन वाइट योगर्ट जो कि घर में ईजिली दस्तियाब होता है, उसके साथ साथ आपने 1/4 cup फ्रेश लेमन जूस का लेना है। अच्छा फ्रेश लेमन जूस भी ये बड़ी आसानी से घर में अवेलेबल होता है, आपने लेमन काटा थोड़ा सा जूस निकाला उसका और
एक चौथाई कप आपको ऑलिव ऑयल की भी जरूरत पड़ेगी. अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो ऑलिव ऑयल भी घर में ही होगा. इसके अंदर इस मज़े की इतनी रेसिपी है कि इसके अंदर वो डेली लाइफ की जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ना घर के अंदर, वो सारी वही हैं. हाँ, इसके अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, जो मेरी फेवरेट है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन. आपने लहसुन को पीसना है, अच्छा सा पेस्ट बनाना है, और उसके तकरीबन आपने वो जो लहसुन होते हैं ना, लहसुन के क्लोव्स होते हैं, वो तकरीबन 6 से 8 लहसुन के क्लोव्स आपने ले लेने हैं. उनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है. जितना लहसुन ज़्यादा होता है उतना ही मज़ा, टेस्ट ज़्यादा आता है भाई. अच्छा, फिर इसी के साथ साथ आपने जो है वो 1 टेबल स्पून लेना है टोमेटो पेस्ट का. अच्छा, टोमेटो पेस्ट अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो जो है एक बड़ा सिग्नेचर सा लुक होता है, ऑरेंज कलर का शीशतऊ का. मुझे तो बोलते हुए भी जो ना मज़ा आ रहा है, मैं बस अभी दिल कर रहा है स्टूडियो छोड़ कर जाऊँ और शीशतऊ बना के खाऊँ. तो भाई जब आप टोमेटो पेस्ट डालते हैं ना तो बहुत ब्यूटीफुल सा उसका सिग्नेचर ऑरेंज लुक आता है शीशतऊ का. तो अगर हो सके तो 1 टेबल स्पून अगर घर में मौजूद है टोमेटो पेस्ट का तो वो डाल दीजिएगा. और उसी के साथ साथ आपने थोड़ा सा 1 टीस्पून पेपरिका का डाल देना है, 1 टीस्पून आप ड्राइड ओरिगो ओरिगैनो जो होता है, या जो हमारे पास थाइम होता है उसका डाल देना है, हाफ टी स्पून आपने जो है वो एक मसाला होता है ऑल स्पाइसेस वाला, वो डाल दें इसके अंदर तो आपका काम आसान हो जाएगा. और आपने जो है वो तकरीबन 1 से हस्बे ज़रूरत जैसे हम कहते हैं 1 से 1.5 चमचे आपने इसके अंदर नमक डाल देना है, और तकरीबन हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल देना है. और आपने करना ये कि इन चीज़ों को आपने एक बोल लेना है अलग से, उसके अंदर आपने जो है वो दही, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, आपका जो लहसुन था, टोमेटो पेस्ट था, और जो आपके सूखे मसाले थे वो सारे ऐड कर देने, और उनका एक अच्छा सा परफेक्ट सा स्मूथ सा पेस्ट बना देना है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी ज़िंदगी ने हमारा बना दिया है. तो भाई अच्छा सा उसको पेस्ट बना दें. और फिर आता है मेन काम जो कि आपने करना है, वो जो चिकन क्यूब्स आपने बड़ी मेहनत से घंटे लगाकर काटी थी 1.5 इंच की, वो आपने इसके अंदर मैरिनेट कर देनी है. इस मसाले को परफेक्टली आपने ब्लेंड करना है अच्छे से, और इस प्रोसेस को आपने बिल्कुल उतना ही सब्र व तहम्मुल से करना है जितनी सब्र व तहम्मुल से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं. आपने रखना है इसको 4 से 4.5 घंटे तक मैरिनेशन के लिए. मेहरबानी करके अगर 4 से 4.5 घंटे से ज़्यादा हो तो ज़्यादा रख लीजिएगा, या ओवरनाइट रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मैरिनेशन होती है फिर वो अच्छी वाली होती है ना, वरना ज़िंदगी का मज़ा कहाँ ही आएगा भाई. और फिर आपने करना ये है कि फिर जब ओवरनाइट के बाद या 4.5 घंटे बाद जब आप इस बोल को खोलेंगे तो आपका मज़े मज़े का शीशतऊ अभी रेडी नहीं हुआ, इसको पकाना भी बाकी है. ऐसा नहीं कि जल्दी में यूँ ही हड़प जाए, ऐसा नहीं है भाई, इसको पकाना भी है. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो अगर आप चाहें तो बारबेक्यू के लिए भी बाहर लेकर जा सकते हैं इसे. वैसे तो घर में बना रहे हैं तो आप एक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर बना रहे हैं तो चारकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चारकोल पर तो और ही मज़े होते हैं. लेकिन अगर घर में बना रहे हैं तो वो जो स्टिक्स मिलती है ना, बैम्बू स्टिक्स मिलती है, इनको हम स्क्यूअर्स कहते हैं, वुडन स्टिक्स होती हैं, थोड़ा सा उनको आप पानी में भिगो कर रख लीजिएगा 1/2 घंटे तक, ताकि वो गीली हो जाएं और वो आग ना पकड़े या जले नहीं. और जब वो थोड़ी सी गीली हों तो उसके अंदर अच्छे से आप ये जो आपके क्यूब्स थे शीशतऊ के चिकन के, आपने इनको पिरो लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिलाई कढ़ाई करते हैं. अगर आपने सिलाई कढ़ाई नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, इसको काम को करते हुए आप सिलाई कढ़ाई भी सीख जाएंगे. तो भाई आपने उन स्क्यूअर्स में अपने चिकन पीसेस आपने टक इन करने हैं, और फिर आपने ये करना है कि प्री हीट करना है अपना ग्रिल या अपना जो पैन है उसको मीडियम से हाई हीट पर आपने प्री हीट करना है. हल्का सा आप चाहें तो उसके ऊपर ऑयल डाल दें तो बेहतर होगा. और फिर आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट एक एक साइड को फ्लिप करके आपने उसको अच्छा सा ब्यूटीफुल सा डार्क कलर देना है, जैसा कि होता है. ये नहीं कि जल्दी में, खाने की जल्दी में आप उसको जल्दी जल्दी उतार दें और वो कच्चा रह जाए, नहीं नहीं भाई, उसको आराम से हर एक साइड को 5 से 7 मिनट दें. और ये बात याद रखें कि जब आप स्क्यूअर्स पर जो है वो अपनी चिकन आप लगाएंगे तो उनको क्लोजली थोड़ा सा पैक कीजिएगा, जितना क्लोजली वो जो है पीसेस रहेंगे एक दूसरे के उतना जो है आपका शीशतऊ जूसी बनेगा, ठीक है. तो फिर भाई आपने उसे 5 से 7 मिनट हर साइड पर दिया, अच्छे से उसे आपने पकने दिया. अगर आप अपना ओवन यूज़ कर रहे हैं
तो आप जो ग्रिल होता है हमारा

यूज कर रहे हैं तो उसको आप 165 फारेनहाइट पर रख सकते हैं और फिर भाई आराम से फ्लिप कर उसे अच्छे से आप बना सकते हैं. ठीक है भाई, फिर क्या होगा कि आप की जब ये स्टिक्स बन जाएंगी तो आप इन्हें थोड़ा सा अच्छे से पेशकश करें ना, इनकी आसपास इनके स्क्यूअर्स के आप थोड़ा सा हरा धनिया रखें, गार्निशिंग के लिए आप थोड़ी सी जूलियन कैरेट कट करें और उसके आसपास डेकोरेशन करें, और चाहें तो सर्विंग करते हुए लेमन के पीसेस भी, कुछ लोगों को लेमन ज़्यादा अच्छा लगता है स्क्यूअर्स पर, तो आप लेमन के पीसेस भी साइड में कट करके रख सकते हैं. अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के रखें भाई, मास्टर शेफ बनना है आपने. चलें भाई, ये आज की हो गई हमारी चिकन शीश तव की तैयारी. आपको इतना बताने के बाद अब मुझे भूख लग गई है, अब क्या करूं मैं. अगर अभी भी किसी ने ना बनाया ना तो आफरीन है भाई, आफरीन है. भाई एक काम करती हूँ कि मैं जो हूं ना स्टूडियो से अब आपसे अलविदा लेने की कोशिश करती हूँ. साथियों, ये जो हमारा आज का मुद्दा था, चार घंटे की जॉब और कितने घंटे की ड्यूटी थी, हाँ नहीं सॉरी चार दिन की जॉब, 10 घंटे की शिफ्ट, 3 दिन की जॉब और 13 घंटे की शिफ्ट. मामला ये है कि शिफ्ट चाहे जितने टाइम की भी हो, इंसान का जहाँ दिल लगता है ना, या आप कह लें कि कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने का आपका दिल होता है, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके पीछे आप भागते हैं, तो जब आपके वो ख्वाब, जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर आती हैं, तो शिफ्ट चाहे 13 घंटे की हो या 9 to 5 की जॉब हो, इंसान को करनी ही पड़ती है. और मुझे याद पड़ता है हमारे एक भाई थे, वो कह रहे थे ना कि भाई मैं तो 7 दिन काम करता हूँ और एक साथ हमें एक ही दफ़ा में छुट्टी दी जाती है. तो भाई हैट्स ऑफ है, और ख़ासतौर पर जो मर्द हज़र आते हैं, मैं तो उनका कहूँगी अल्लाह ताला सबके घर वालों को सलामत रखे और सबके ऊपर उनके, हम कहते हैं ना कफील जो है हमारे हाकिम जो है उनका साया बरकरार रखे. क्योंकि एक बात ये भी है कि मर्द हज़रात, ख़वातीन बेशक घर संभालती हैं लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो बाहर जाकर मेहनत करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो उनको नहीं दिया जाता. बाहर की सख्ती हो, गर्मी हो, लोगों के तलख लहजे हों, चाहे वो 13 घंटे काम करें चाहे वो 10 घंटे काम करें, वो हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं. तो भाई हैट्स ऑफ, चाहे आप 12 घंटे काम कर रहे हैं चाहे आप 13 घंटे काम कर रहे हैं. हाँ, ज़िंदगी अगर मौका दे इंशाल्लाह तो अपनी मर्ज़ी से, क्या पता अपनी मर्ज़ी से अपनी रूटीन भी सेट करेंगे हम इंशाल्लाह. फिलहाल तो साथियों मेरा आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ गया है. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ये याद रखें कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो किसी और का भी ख्याल नहीं रख सकता. वैसे मुझे आज अफसोस हुआ कि भाई हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलने के लिए आज मज़ा नहीं आया. एक काम करो, कल जो है ना पॉलिश कर कराओ अपनी स्किल्स और फिर कल खेलते हैं फिर बॉलीवुड ट्रिविया. 8 का स्कोर कौन ब्रेक करता है, अभी तक जब से खेलना शुरू किया 8 का ही स्कोर हुआ है, कौन ब्रेक करेगा भाई इस स्कोर को. तो भाई सफ़ा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी. और फिलहाल तो आफरी आफरी पे छोड़े जा रही हूँ आपको, आफरी आफरी. मुझे गाना बहुत पसंद है, आपको पसंद है वॉल्यूम हाई कर लो अगर पसंद है तो. भाई आपकी पसंद का गाना लगा रही हूँ, ये गाना वॉल्यूम अप में ही अच्छा लगता है. और अभी का जो टाइम है ना, थोड़ा सा लेजी सा जो टाइम है, उसके अंदर तो ये बेहतरीन लगता है. एंजॉय करें, रिलैक्स करें और अपने पसंदीदा शख्स को याद करें. सुनते रहे FM 107 पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स. मुझे दीजिए इजाजत, सुन रहे थे आप सन एंड साउंड विद सफा, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सभी का इस्तकबाल है और ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जहां हम रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र करते हैं और दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक हम पहुंचाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जहांगीर खान के बारे में, और जहांगीर खान के बारे में इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि स्क्वाश के अगर कोई लेजेंड है तो वो है जहांगीर खान। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और अगर हम क्रिकेट में डोनाल्ड ब्रैडमैन को जानते हैं फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 99.96, तो जहांगीर खान को भी हम जानते हैं इन द स्क्वाश फील्ड फॉर हिज यूनिक रिकॉर्ड, जिसके बारे में हम आगे बढ़े। और स्पोर्ट्स की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, लगन और कमाल की मिसाल बन जाते हैं। और स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान का 555 मुसलसल विक्ट्रीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं में से एक है। 555 नंबर ऑफ विक्ट्रीज अर्न बाय रिकॉर्डेड बाय जहांगीर खान, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ स्क्वाश। ये रिकॉर्ड आज भी दुनिया के मिलतरीन और काबिल हैरत स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में शुमार होता है। दोस्तों जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां स्क्वाश को बहुत अहमियत हासिल थी। उनके वालिद रोशन खान खुद इस ओपन चैंपियन रह चुके थे और बचपन से ही जहांगीर खान ने स्क्वाश में दिलचस्पी दिखाई और बहुत कम उम्र में अपनी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत देना शुरू कर दिया। जहांगीर की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू था कि बचपन में डॉक्टर्स ने उन्हें दिल की एक बीमारी की वजह से सख्त फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेहनत, डिसिप्लिन और मजबूत इरादे के जरिए उन्होंने ना सिर्फ स्क्वाश खेलना जारी रखा बल्कि दुनिया के अजीम तरीन एथलीट्स में अपना नाम लिखवा दिया। 1981 में सिर्फ 17 साल की उम्र में जहांगीर खान ने वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप जीत कर दुनिया को अपनी सलाहियत का एहसास दिलाया और इसी साल उन्होंने स्क्वाश के सबसे बड़ा इवेंट ब्रिटिश ओपन भी जीत लिया। इस कामयाबी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के सफ में ला खड़ा किया। लेकिन जहांगीर खान की असल कहानी उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने एक ऐसी विनिंग स्ट्रीक का आगाज किया जो आज किसी और प्रोफेशनल एथलीट के लिए मुश्किल नजर आती है। 1981 से 1986 के दरमियान 5 साल जहांगीर खान ने प्रोफेशनल स्क्वाश में लगातार 555 मैचेस जीते। सोचिए 5 साल तक दुनिया का कोई भी स्क्वाश प्लेयर उन्हें शिकस्त नहीं दे सका। यह सिर्फ एक सीजन या एक टूर्नामेंट की बात नहीं थी। इस दौरान जहांगीर ने मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले दर्जनों टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। हर टूर्नामेंट में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनके मुकाबला थे, लेकिन नतीजा अक्सर एक ही होता था, जहांगीर खान की विक्ट्री। 555 मुसलसल

0: जीत का ये सिलसिला इतना गैर मामूली था कि लोग इन्हें द ग्रेटेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री कहने लगे। और वाकई बात सही, स्क्वाश एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रिकॉर्ड की अहमियत सिर्फ स्क्वाश तक महदूद नहीं, तमाम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कंसिस्टेंसी और डोमिनेंस की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। जहांगीर खान की कामयाबी का राज उनकी फिटनेस थी। उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती थी, वो रोजाना कई घंटे प्रैक्टिस करते और अपनी फिजिकल फिटनेस पर खास तवज्जो देते। कोर्ट पर उनकी स्पीड, स्टैमिना और मेंटल स्ट्रेंथ गैर मामूली थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अक्सर मुकाबिल खिलाड़ी पहले ही प्रेशर में आ जाते क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि जहांगीर को हराना कितना मुश्किल है। उनका खेल भी बहुत मुनफरिद था। जहांगीर हर पॉइंट के लिए पूरी तवज्जो और मेहनत लगाते। वो ना सिर्फ अटैक में मजबूत थे बल्कि डिफेंस में भी लाजवाब थे। इसी वजह से उनके मुकाबिल खिलाड़ी अक्सर थक कर गलतियां करते और जहांगीर मैच अपने नाम कर लेते। दैट्स अ यूनिक वे ऑफ विनिंग मैचेस इन स्क्वाश ड्यूरिंग द टाइम व्हेन जहांगीर खान वाज अ लीडिंग स्क्वाश प्लेयर। 555 मैचेस की ये विनिंग स्ट्रीक आखिरकार 1986 में खत्म हुई जब न्यूजीलैंड के स्क्वाश प्लेयर रॉस नॉर्मन ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में शिकस्त दी। दैट वाज द एंड ऑफ जहांगीर खान्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ विक्ट्रीज 555। ये शिकस्त स्क्वाश की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि 5 साल बाद किसी ने जहांगीर खान को हरा दिया है। लेकिन इस एक शिकस्त ने जहांगीर खान की अजमत को कम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी उन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ब्रिटिश ओपन टाइटल जीते। उनका नाम स्क्वाश की तारीख के सबसे अजीम खिलाड़ी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। और अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो जहांगीर खान ने अपने करियर में 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स, 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल जीते। और ये कामयाबियां खुद में बहुत बड़ी हैं, लेकिन 555 मुसलसल विक्ट्रीज का रिकॉर्ड उनकी पहचान बन गया। दुनिया भर के स्पोर्ट्स हिस्टोरियंस और एनालिस्ट आज भी इस रिकॉर्ड को इंसानी परफॉर्मेंस की इंतहा करार देते हैं। पाकिस्तान के लिए भी जहांगीर खान फख्र का बायस बने। उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और स्क्वाश को मुल्क की पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, उनकी कामयाबियों ने हजारों नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब किया और उन्हें ये पैगाम दिया कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को कस्त दी जा सकती है। आज जब स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स की बात होती है तो जहांगीर खान का 555 मुसलसल विक्ट्रीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा नुमाया नजर आता है। कई रिकॉर्ड्स वक्त के साथ टूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स इतने अजीम होते हैं कि वो दौर बदलने के बावजूद कायम रहते हैं। और दिस इज जहांगीर खान रिकॉर्ड। जहांगीर खान का ये रिकॉर्ड भी उन्हीं में से एक है। 555 लगातार जीतों की ये कहानी सिर्फ स्क्वाश की कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि इंसानी इरादे, मेहनत और एक्सेलेंस की कहानी है। इसीलिए जहांगीर खान को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का अजीम तरीन स्क्वाश चैंपियन माना जाता है। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी स्पोर्ट्स की तारीख के सबसे बड़े और काबिल एहतराम रिकॉर्ड में शुमार होता है। और ये रिकॉर्ड फॉर योर नॉलेज आज भी अनब्रोकन है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विद मोहम्मद अमीन।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा इस्तकबाल है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले हमने जिक्र किया अबाउट जहांगीर खान्स अनबीटन स्ट्रीक ऑफ विक्ट्रीज 555। लेकिन आप चलते हैं एथलेटिक्स की दुनिया में, जहां आज हम बात करेंगे किपचोगे के रिकॉर्ड। एथलेटिक्स की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड एलियुड किपचोगे का नाम है। यहाँ दोस्तों 2019 में किपचोगे पहले

लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में इसे एक तारीखी माइलस्टोन समझा जाता है। किपचोगे ने साबित किया कि नो ह्यूमन इज लिमिटेड। अब बढ़ते हैं क्रिकेट के पिच पर, और क्रिकेट में आज हम बात करेंगे एक रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड बिलोंग करता है सचिन तेंदुलकर के नाम। या दोस्तों, क्रिकेट की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन, एवरीबॉडी नोज सचिन तेंदुलकर, एवरीबॉडी नोज कब उनका डेब्यू हुआ था, कब उन्होंने लास्ट मैच कब खेला, सबको पता है। ये सचिन दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी स्कोर की हैं। उन्होंने टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट यानी वन इंटरनेशनल क्रिकेट मिलाकर कुल ये अजीम कारनामा अंजाम दिया। तकरीबन 24 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए सचिन ने दुनिया के हर बड़े बॉलिंग अटैक का सामना किया और मुसलसल रन्स बनाए। यह रिकॉर्ड उनकी कंसिस्टेंसी, टैलेंट और डेडिकेशन का सबूत है। आज तक कोई भी बैट्समैन उनकी 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज के करीब नहीं पहुंच सका, इसीलिए यह रिकॉर्ड बहुत खास माना जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम बात करेंगे अबाउट लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान और अर्जेंटीना के डिफेंडिंग टीम का, अगर मैं कहूँ कप्तान, मेरिटोरियस लेजेंडरी फिगर मॉडर्न फुटबॉल, जो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहा है इन अमेरिका। 2006 में डेब्यू करने के बाद 2026, पूरे 20 साल में उन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स कवर कर लिए और फुटबॉल की तारीख का एक अजीम रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। मेसी ने एक कैलेंडर ईयर यानी 2012 में 91 गोल्स यानी 91 गोल्स स्कोर करके दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के फॉर्मर फुटबॉलर गार्ड मुलर के पास था। मेसी ने बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए 69 मैचेस में 91 गोल्स किए, जो फुटबॉल की तारीख में एक गैर मामूली कारनामा माना जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी, फिनिशिंग और क्रिएटिविटी ने दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को मुतासिर किया। आज भी एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल्स का यह रिकॉर्ड फुटबॉल के मुश्किल तरीन रिकॉर्ड में शुमार होता है। नाउ टेनिस कोर्ट्स फ्रेंच ओपन इज ओवर, लेकिन नोवाक जोकोविच को आज भी हम याद करते हैं। नोवाक जोकोविच वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स ऑफ मॉडर्न टेनिस, एंड रॉजर फेडरर के रिटायरमेंट के बाद, राफेल नडाल के रिटायरमेंट के बाद, नोवाक जोकोविच इज स्टिल वेरी मच इन एक्शन विद द यंगर जनरेशन। जी दोस्तों, टेनिस की दुनिया का एक लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के नाम है। जोकोविच ने ATP रैंकिंग में सबसे ज्यादा हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन रहने का रिकॉर्ड कायम किया। ATP सीरीज में ये होता है कि साल भर के बहुत सारे मैचेस आपको खेलने पड़ते हैं, बहुत सारे टूर्स में आपको खेलने पड़ते हैं। टू मेंटेन दैट रैंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सख्त एक चैलेंज है। फिटनेस, स्टैमिना, बहुत सारी चीजें, इंजरी को ओवरकम करना, लेकिन जोकोविच ने ये रिकॉर्ड अपने पास रखा एंड मुसलसल कई हफ्तों तक ही वॉज वर्ल्ड नंबर वन। उन्होंने 400 से ज्यादा हफ्ते, 400 से ज्यादा हफ्ते मीन मोर देन अ ईयर, दुनिया के नंबर वन टेनिस प्लेयर के तौर पर उन्होंने अपना जो दबदबा है उसको कायम रखा, जो टेनिस की तारीख में किसी भी मेंस खिलाड़ी लिए सबसे ज्यादा है। और ये रिकॉर्ड उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और हर सरफेस पर कामयाबी का सबूत है। हर सरफेस से मुराद क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, हर तरह के कोर्ट्स पे टेनिस खेला जाता है। आप लोगों को पता है, आपने देखा होगा ग्रास यानी विंबलडन में, क्ले यानी फ्रेंच में, ऑस्ट्रेलिया में, और अगर हार्ड कोर्ट की बात करूँ तो ओपन में। तो ये सब कोर्ट्स में जोकोविच ने अपना दबदबा मेंटेन किया है। ही इज अ यूनिक प्लेयर। आज अगर मॉडर्न टेनिस में कुछ यंगस्टर्स हैं जैसे कार्लोस अल्काराज हैं और सिनर हैं जो कि इटली के हैं, इन दोनों के दरमियान तो मैं समझ सकता हूँ कि यू नो चैलेंजेस हो, कुछ फाइट्स हो, कुछ यू नो द डोमिनेशन हो, लेकिन यहाँ पे एक यू नो इनसे ज़्यादा उम्र दराज अगर कहूँ कि नोवाक जोकोविच हैं, और नोवाक जोकोविच त्रॉयका यानी इस ट्रायंगल एक यू नो जो फाइट्स हैं जो आज के डेट में मॉडर्न टेनिस में जो लड़ाई है कि वर्ल्ड नंबर वन कौन है, तो इस लड़ाई में आज भी नोवाक जोकोविच इन दोनों यंगस्टर्स को भी मात देते हैं। जोकोविच ने कई दफ़ा रैंकिंग्स की टॉप पोजीशन हासिल की और सालों तक

अपनी बर्तरी कायम रखी। इसी वजह से दोस्तों उन्हें टेनिस के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। गर्मी काफ़ी हो रही है, चलिए स्विमिंग पूल चलते हैं। एंड स्विमिंग पूल में एक डिप लगाने से पहले, कूदने से पहले एक रिकॉर्ड को जान लेते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्विमिंग की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड कैटी लेडिस्की के नाम है। कैटी लेडिस्की ने विमेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल में कई सालों तक दुनिया की सबसे तेज परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड अपने नाम रखा और इस इवेंट में गैर मामूली बर्तरी दिखाई। उन्होंने मुख्तलिफ ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी अजमत साबित की। उन्होंने साबित की कि आई एम द चैंपियन 1500 मीटर फ्री स्टाइल। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फ्री स्टाइल लोग कहते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन अगर 1500 मीटर में आपको अगर तो कहा जाए कि भाई चलिए आप 1500 मीटर का फ्री स्टाइल रेस करके दिखाइए इन द स्विमिंग पूल, आई थिंक इट इज अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। मुझे लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट, बटरफ्लाई है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, यू नो मेडली है, वो सारे चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्री स्टाइल, हाँ फ्री स्टाइल में आपके हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है बहुत ईजी है, लेकिन ईजी ही है। जो स्विमर हैं उनसे पूछिएगा, थक जाते हैं वो। तो यहाँ पे लेडिस्की ने ये साबित किया कि इसमें, इस पर्टिकुलर इवेंट में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में शी इज़ द बेस्ट, एंड उन्होंने प्रूव भी किया। लेडिस्की की खास बात यह है कि वो लंबी डिस्टेंस रेसेस में अपने मुकाबले स्विमर से बहुत आगे निकल जाती हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस ने स्विमिंग की दुनिया में नए मायार कायम किए और उन्हें हर दौर की बेहतरीन स्विमर्स में शामिल कर दिया। अच्छा, काफ़ी हो गया स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल से निकलने के बाद चलते हैं थोड़ा सा बास्केटबॉल, थोड़ा सा बास्केट कर लेते हैं, मज़ा आता है। अलगराफा में बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं और आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं बास्केटबॉल चैम्पियनशिप्स, बास्केटबॉल लीग्स इन कतर। आप अलगराफा कोर्ट में जाएंगे तो हर एज ग्रुप्स के बास्केटबॉल लीग, सीनियर, जूनियर, वीमेन, सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर आज हम बास्केटबॉल के एक अजीम तरीन रिकॉर्ड के बारे में जिक्र करेंगे और वो रिकॉर्ड बिलोंग करता है स्टीफन करी के नाम। स्टीफन करी NBA की तारीख में सबसे ज्यादा 3-पॉइंट शॉट्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 में रे एनन का रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद भी अपनी टैली को मुसलसल बढ़ाया। करी ने अपनी गैर मामूली शूटिंग रेंज और एक्यूरेसी की बदौलत बास्केटबॉल के खेल का अंदाज ही बदल दिया। बास्केटबॉल में यू नीड एन एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी, या आपको बास्केट देखकर नो बॉल को, जो बास्केटबॉल है उसको आपको फेंकना होता है, थ्रो करना होता है, एंड पिन पॉइंट रेंज में वो बास्केट के अंदर गिरे तो पॉइंट स्कोर। और यहाँ पे 3-पॉइंट स्कोर जो है टेक्निकल बात है, कभी और हम बास्केटबॉल के बारे में जब जिक्र करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे करी ने बेसिकली करी उन्होंने करी बना दिया है बास्केटबॉल की पिन पॉइंट एक्यूरेसी को लेकर। उन्होंने अपनी गैर मामूली शूटिंग रेंज और एक्यूरेसी की बदौलत बास्केटबॉल का अंदाज ही, यू नो जो स्कोर करने का अंदाज है, उसको चेंज कर दिया। दुनिया भर के खिलाड़ी उनकी शूटिंग स्टाइल से मुतासिर हैं और आज हर टीम 3-पॉइंट शूटिंग को ज्यादा अहमियत देती है। करी का ये रिकॉर्ड मॉडर्न बास्केटबॉल के सबसे अहम और यादगार रिकॉर्ड में शुमार होता है। अब हो गया बास्केटबॉल कोर्ट, हम लेट नाउ मूव ऑन टू द लुसेल ट्रैक, यानी द मोटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे। और मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया का एक तारीखी वर्ल्ड रिकॉर्ड माइकल शुमाकर के नाम है। दोस्तों माइकल शुमाकर आपको पता है, यू नो हु इज ही, बताने की जरूरत नहीं है। माइकल शुमाकर ने फॉर्मूला 1 में लगातार 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने सन 2000 से 2004 तक हर सीजन में टाइटल अपने नाम किया और फरारी को मोटर स्पोर्ट्स की सबसे कामयाब टीमों में शामिल कर दिया। उनकी स्पीड, स्ट्रेटजी और रेस मैनेजमेंट ने उन्हें अपने दौर का सबसे डोमिनेंट ड्राइवर बना दिया। शुमाकर के इस रिकॉर्ड ने फॉर्मूला 1 की तारीख बदल दी और आज भी उनका नाम मोटर स्पोर्ट्स के अजीम तरीन चैंपियंस में लिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि एक हादसा में वो इंजर्ड हो गए हैं एंड उनका अभी कुछ पता नहीं है। उनके फैमिली सोर्सेज के मुताबिक ही इज़ इन कोमा, ही इज़ नॉट इन कोमा। एक स्कीइंग में वो हिस्सा ले रहे थे एंड आज से तकरीबन 10 साल पहले, एंड तब से माइकल शुमाकर को किसी ने देखा नहीं है। बीच में माइकल शुमाकर के बेटे के बारे में हमें पता चला था, ही इज़ ऑल्सो इन टू मोटर रेसिंग। तो माइकल शुमाकर कहाँ है, जर्मनी में डेफिनेटली है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहाँ पर है?

है, टोटली एक प्राइवेसी मेंटेन किया गया है फ्रॉम शुमाकर फैमिली. सो ऑल सल्यूट टू माइकल शुमाकर, जिन्होंने सन 2000 से 2004 तक हर सीजन में टाइटल जीता और फरारी को मोटर स्पोर्ट्स की सबसे कामयाब टीमों में शामिल कर दिया. ही इज अ लेजेंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैमल रेसिंग. जी हाँ, कैमल रेसिंग यानी ऊंट भी दौड़ में हिस्सा लेते. एंड यही बात हम पिछले कई एपिसोड्स में हमने बताया, शेयर किया. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कतर में या हमारे इस रीजन में, ऊंट रेसिंग इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन. तो कैमल रेसिंग की दुनिया का एक दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड कतर के मशहूर अलशानिया कैमल रेस ट्रैक से वाबस्ता है. यह ट्रैक दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर कैमल रेसिंग वेन्यू माना जाता है, जहां हर साल हजारों रेसिंग कैमल्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं. कैमल रेसिंग गल्फ कल्चर का अहम हिस्सा है और कतर ने इस खेल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए नए मकाम तक पहुंचाया है. रोबोट जॉकीज के इस्तेमाल ने भी कैमल रेसिंग में इनकलाब बरपा किया. अशहानिया में होने वाले बड़े फेस्टिवल्स और रेसेस दुनिया भर के कैमल ओनर्स और फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, जिससे ये खेल और भी मकबूल हुआ है. मैं हमेशा से कहता हूँ, इस प्रोग्राम में हमेशा से मैंने जिक्र किया अबाउट कैमल रेस की, आप लोगों को भी जाना चाहिए अशहानिया रेस ट्रैक में, आप लोगों को देखना चाहिए, कैमल रेसिंग को इंजॉय करनी चाहिए. और एक बात आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल एक इवेंट मैंने कवर किया था यहाँ पर इन दोहा में, वेयर कैमल रेसेस को हैंडबॉल स्पोर्ट के साथ एक कॉन्कॉक्शन बनाया गया था. और यू नो, ऊंट पर चढ़ते हुए, ऊंट पर आप सवार हैं और आप हाथ में आपके पास हैंडबॉल है, आपको गोल करना है. सो बाहर के ममालिक से कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने आके बड़ा ही वाह वाह किया कि अबाउट कतर की इनोवेशन. कतर हैंडबॉल एसोसिएशन और कतर कैमल रेसिंग एसोसिएशन, इनके साथ एक यू नो एक समझौता है और इस तरह के गेम्स को पॉपुलर करने के लिए दे आर इनवाइटेड लॉट ऑफ इंटरनेशनल यू नो आई वुड से इंटरनेशनल जो कैमल लवर्स हैं उनको बुलाया. इनफैक्ट एक कोलंबिया से एक कैमल लवर, एक कैमल बंदा, आई मीन कैमल का वो मतलब आई वुड से ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन कैमल, उन्होंने भी उतने दूर से कोलंबिया से कतर आए थे और उन्होंने हिस्सा लिया इसमें. एंड उन्होंने वो ताज्जुब रह गया कि यार कैमल रेसिंग में भी हैंडबॉल, ये कैसे. मूविंग ऑन टू थर्ड सेगमेंट एंड कतर एंगल, दैट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन आवर ओन स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम. दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में मैंने इस शो में, इस हमारे स्पेशल शो स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में पिछले 4-5 एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं. एंड इस रिकॉर्ड्स नॉट ओनली जस्ट अ रिकॉर्ड बट कि एक लेगेसी है फॉर कतर स्पोर्ट्स, फॉर कतर इंफ्रास्ट्रक्चर. खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम स्टैंड्स सच अ यूनिक पोजीशन है. आज अगर आप, मतलब मैंने पिछले बार भी कहा था कि अगर आप अलसद की तरफ से जा रहे हैं टूअर्स यू नो टूअर्स द विलाजियो की तरफ जा रहे हैं या स्पोर्ट्स सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक तो टॉर्च टावर दिखेगा जो कि लैंडमार्क है, और इंटरनेशनल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम भी आपको दिखेगा जो कि रहेगी जटिंग आउट वेलकम करने के लिए कि आइए हमारा जो है दर्शन कीजिए, हमें यहाँ पे आप लोगों को स्वागत करने के लिए हमें खड़ा कर दिया गया है. सो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पोजीशनिंग है इज़ यूनिक, एकदम शहर के बीचों बीच और मेट्रो का यू नो द स्टेशंस जटिंग आउट, 4-5 स्टेशंस तो वहीं हैं. आई मीन द यू नो द एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स हैं. और ये बनाया गया था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. एंड वर्ल्ड कप से पहले बताता चलूं कि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम बेसिकली वाज इनॉग्रेटेड आज से 50 साल पहले, लेकिन इस स्टेडियम को रेनोवेट किया गया. और मुझे याद है 2012 में जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आमिर का फाइनल कवर करने गया था, दैट स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा जो है, वो वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन उसको थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया और थोड़ा सा आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उसको थोड़ा सा और रेनोवेट करके थोड़ा मॉडर्नाइज, ब्यूटिफिकेशन की जो बात हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2022, कतर गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई किया है. एंड उसके साथ साथ मेट्रो स्टेशंस का भी यू नो आई वुड से मेट्रो स्टेशंस का जो इन्वॉल्वमेंट, मेट्रो स्टेशंस को बनाया गया है जस्ट टू हैव अ डायरेक्ट लिंक टू द स्टेडियम, सो दैट वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जितने भी शायकीन आए थे बाहर से, उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेडियम. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल स्टेडियम है थ्रू द मेट्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवर हियर.
क्योंकि अगर अब लोसेल की बात करें और रयान

0: स्टेडियम यानी अहमद बिन अली स्टेडियम की बात करूँ या और भी मुख्तलिफ जो भी वर्ल्ड कप स्टेडियम थे, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. लेकिन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही आप स्टेडियम से निकलते हैं, यू जस्ट हैव टू वॉक आई थिंक 5 मिनट वॉकिंग, हार्डली 10 मिनट वॉकिंग. तो दोस्तों आज ये रिकॉर्ड है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, एट खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, और ये हुआ था 2019 में मुनक्किदा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के दौरान. और एक और तारीखी वर्ल्ड रिकॉर्ड सब लोगों ने देखा जब अमेरिकन एथलीट एलिसन फेलिक्स ने इस चैम्पियनशिप की तारीख में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया इसी स्टेडियम पर, इसी ट्रैक पर. दोहा में हुई मिक्स्ड 4x4 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीत कर उन्होंने कुल 12 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए. और उसैन बोल्ट, आप लोगों को पता होगा उसैन बोल्ट द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ एंड 100 मीटर रेस का वर्ल्ड चैंपियन, और आज भी वो रिकॉर्ड यू नो नोबडी हैज ब्रोकन इट, 9.58 द मैजिकल फिगर याद रखिएगा. और उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आई मीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 12 गोल्ड मेडल्स हासिल करके उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया. हु एलिसन फेलिक्स, एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से. इस कामयाबी के साथ एलिसन फेलिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की सबसे कामयाब एथलीट बन गई, एंड इसके साथ साथ शी बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स ऑफ द मॉडर्न एथलेटिक्स. खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हासिल किया गया ये कारनामा एथलेटिक्स की तारीख के यादगार लम्हों में शुमार किया जाता है. एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पिछले महीने यहाँ पर 19 जून को दोहा डायमंड लीग वॉज होस्टेड. आई मीन दोहा डायमंड लीग वन ऑफ इवेंट है और दोहा स्टॉप ओवर है. देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो इस टूर्नामेंट को, इस चैम्पियनशिप को होस्ट करते हैं. तो दिस दोहा डायमंड लीग एक्चुअली कतर स्पोर्ट्स क्लब में हमेशा से होते आ रहा है, लेकिन दोहा डायमंड लीग इस मुतबा बिकॉज ऑफ द वेदर उसमें ये बताया गया था फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अब इसको खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में करते हैं, क्योंकि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम आप लोगों को पता है कि एसी डक्ट्स हैं. एसी डक्ट्स मीन्स पूरे स्टेडियम में 360 डिग्री में एसी डक्ट है, तो मतलब अंदर की जो फीलिंग है इट विल बी क्वाइट कूल. 26, 27 की टेम्परेचर, जब बाहर के तापमान अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको महसूस होगा. तो इसीलिए इस चैम्पियनशिप को, आई वुड नॉट से इट्स अ चैम्पियनशिप, इट्स अ दोहा डायमंड लीग, और इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था द खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, विच वॉज अ यूनिक डिसीजन गिवन द फैक्ट दैट एक्सट्रीम वेदर में किया जा रहा था. जून में टेम्परेचर वॉज वेरी हाई. तो जैसे कि मैंने कहा था कि 2026 का जो दोहा डायमंड लीग का जो कैलेंडर रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रहा है कि कतर इज़ वन ऑफ द स्टॉप ओवर है. इससे पहले 16 मई को हुआ था शंघाई, 4 जून को हुआ था रोम में, दोहा वॉज द थर्ड स्टॉप ओवर सिटी, और इसके बाद जुलाई में 10 जुलाई में मोनाको में, उसके बाद अगस्त में इन पोलैंड सिलेसिया शहर में, चामेन इन चीन में, स्टॉकहोम में होना है, पेरिस में होना है, लंदन में, उसके बाद ज्यूरिक, उसके बाद इस तरह से देखा जाए कि रबत जो कि मोरक्को में, ऑस्लो नॉर्वे में, यूजीन यूएसए में, लोसेन इन स्विट्जरलैंड, और ब्रसल्स जो है आखिरी जो इवेंट होने जा रहा है ऑफ दोहा डायमंड लीग दैट विल बी इन ब्रसल्स 4-5 सितंबर. लेकिन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम स्टैंड्स एट द टॉप विटनेसिंग अ मार्वेलस रिकॉर्ड दैट वाज क्रिएटेड इन 2019 बाय दिस अमेजिंग एथलीट, अ वुमेन एथलीट हु गोज बाय द नेम ऑफ एलिसन फेलिक्स. तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह जहांगीर खान ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान और स्क्वाश को बुलंद किया, स्पोर्ट को एक जगह पहुंचाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया. और दोस्तों ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सीलेंस का रिकॉर्ड है. मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन, अगले किस्त में हम किसी और एक अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
5: आज ही राबता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: FM 107 टाइम चेक. चेक चेक चेक टाइम चेक. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर.
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून. हाँ जी, आई एम वेरी सर्टन कि अब तक का आपका जो दिन है वो बड़ा शानदार गुजरा होगा और अब शानदार भी होगा, जानदार भी होगा, क्योंकि आपको चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज मिलते जाएंगे. भाई बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज एस्केप रूम की सिचुएशन इतनी कमाल की है कि पूछिए मत. मतलब वैसे तो हमें हमारे घर के सारे दरवाज़ों के बारे में पता होता है कि ये दरवाज़ा खोलो तो क्या है, वो दरवाज़ा खोलो तो क्या है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप एक ऐसे मैंशन में जाएँ और वहाँ जाके कैद हो जाएँ जहाँ पर 1, 2, 3, 10, 100, 1000 नहीं 1000 से भी ज्यादा दरवाजे हैं. और अब इन दरवाजों में से एग्जिट कौन सा है ये ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. बट यस, चैलेंज लेना ही तो एस्केप रूम की फितरत है और जो भी एस्केप रूम में आया समझो थोड़ा सा फंसा और दिमाग लगाकर बाहर निकल भी गया. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की होने वाली है पर अभी म्यूजिकल ब्रेक पर जाएंगे हम और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें कि अगर आप 1000 से भी ज़्यादा दरवाज़ों वाले मैंशन में कैद हो गए तो एग्जिट कैसे ढूंढेंगे. सोचिए सोचिए सोचिए. और ये नंबर याद रखिए 666-22107, 666-22107, इसके जरिए हम रब्ता कायम करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा।

0: हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for अमिता। भाई एस्केप रूम की गलियों में आप आ चुके हैं। आई होप कि आपने थोड़ा सा इस म्यूजिकल ब्रेक में अपने आप को तैयार कर लिया होगा। वेल, आज हम कदम रखने वाले एक बड़े ही शानदार से बड़े, मतलब इतना मैसिव है वो मैंशन कि आपको देख के बस मज़ा ही आ गया कि वाह क्या खूबसूरती है। लेकिन जैसे ही आपने अंदर कदम रखे, भाई देखिए 1,000 से भी ज़्यादा दरवाजे वाला ये मैंशन है। सारे दरवाजे खुले थे लेकिन आपको देख के एक एक करके बंद होते चले गए। उफ, आप थोड़ा घबरा गए कि भाई ये मतलब हो क्या गया। लेकिन आप समझ लीजिए, अब आपके चारों तरफ जो है ना सैकड़ों दरवाजे हैं, आइडेंटिकल वुडन डोर्स हैं। ठीक है, कुछ किचन्स की तरफ खुलते हैं क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एक नहीं है, कई है, इसलिए जो किचन है वो किचन्स हैं, एक किचन नहीं है। तो कुछ किचन्स की तरफ खुलते हैं, कुछ बेडरूम्स की तरफ खुलते हैं और कुछ सीधा एक पत्थर की दीवार यानी ब्रिक वॉल पर ये दरवाजे खुलते हैं। अब यहाँ की जो मास्टर की है वो घर के ही पास है और वो एग्जिट डोर तभी आपको दिखाएगा जब आप ये साबित करेंगे कि आपका ध्यान भटका नहीं है और हर एक कमरा उसमें कोई ना कोई क्लू छुपा है। सो आर यू रेडी? अगर रेडी है तो चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए। मैंशन के अंदर तो हम आ ही चुके हैं, पहले कमरे में कदम रखते हैं। वाला आपने जब पहले कमरे में कदम बढ़ाया तो आपने देखा कि जब आप अंदर गए तो एक टेबल दिखी आपको। उसमें टेबल पर 3 खूबसूरत कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और सामने रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के दरवाजे भी हैं और दीवार पर आपका क्लू या यूं कहें आपके लिए पहेली लिखी है। अब क्लू नंबर 1 इज, मैं आसमान का रंग हूं पर उड़ नहीं सकता, मैं ओशंस की रंगत हूं पर कभी भिगाता नहीं हूं। तो बताइए आपको किस डोर को चुनना होगा। यस, आगे का रास्ता आपको ढूंढना है तो इस अगले दरवाजे को खोलना होगा। 3 रंग के दरवाजे हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। क्लू नंबर 1 है कि मैं आसमान का रंग हूं पर उड़ नहीं सकता, मैं ओशंस की रंगत हूं पर कभी भिगाता नहीं हूं। तो बताइए आपको किस डोर को चुनना होगा। कम ऑन, थिंक अबाउट इट, सही दरवाजे को चुनिए अपने नाम के साथ। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने जवाब हम तक पहुंचाइए ताकि हमें पता चले कि आज आपने सही जवाब दिया और लेवल 1 पार कर लिया है। ठीक है, वक्त भागते जा रहा है, म्यूजिकल ब्रेक आपको सोचने के लिए दिए जा रहे हैं, तो थिंक थिंक एंड थिंक और सही जवाब हमें दे दीजिए। और अभी एनर्जी बूस्ट करना जरूरी है, सो वील एंजॉय द म्यूजिक। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम के सफर में हम सब साथ में चल रहे हैं। भाई देखो एक बहुत ही ग्रैंड मैंशन है, वहाँ पर हम आए, हमने कदम रखा और जैसे हमने कदम रखा हजार से भी ज़्यादा दरवाजे इस मैंशन में है, सब एक एक करके जो खुले थे वो बंद होने लगे। ओए होए होए होए होए और हम ये देखकर थोड़े से डर गए कि ये क्या हो रहा है, बट देन वी अंडरस्टूड कि अब एक नया चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। हर एक दरवाज़ा आइडेंटिकल वुडन डोर्स बिल्कुल इस तरह के हैं, ठीक है, कुछ किचन्स की तरफ खुलते हैं, कुछ बेडरूम्स की तरफ, कुछ गार्डन्स की तरफ, कोई पत्थर की दीवार की तरफ भी खुलता है। अब यही मज़े की बात है, इस घर में ही, ठीक है, मास्टर की है, मतलब इस घर के पास ही मास्टर की है, ये घर अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है, और ये आपको मास्टर की तब देगा यानी कि एग्जिट डोर तब दिखाएगा जब उसको समझ में आएगा कि आपका जो ध्यान है वो कहीं भटका नहीं है, मतलब आप बिल्कुल फोकस्ड हैं। तो आपने क्या किया, आप मैंशन के अंदर आए, आपने पहले कमरे में एंट्री मारी, वहां पर टेबल पर 3 कलर्स रखे हुए हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और दीवार पर आपके लिए क्लू नंबर 1 है, मैं आसमान का रंग हूं पर उड़ नहीं सकता, मैं ओशंस की रंगत हूं पर कभी किसी को भिगाता नहीं। तो बताइए आप किस डोर को चुनने वाले हैं, ठीक है। कुछ हमारे लिसनर्स ने ग्रीन लिखा है, देखिए ग्रीन आपने चुन तो लिया लेकिन समहाउ ये सही जवाब नहीं है, सही जवाब है ब्लू। जोरदार तालियां भाई उन सारे हमारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने ब्लू कलर चुना है, आइए उनके नाम ले लिए जाए। तो अली है, जैद है, मोहम्मद यूसुफ खान है, रमेश है, महफूज है, इरफान है, मिस्टर मोहिद्दीन है और अरफत है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया और पहला लेवल पार कर लिया, क्या बात है। जैसे ही आपने ब्लू आसमान का रंग ये कहा, ये चुना, ये दरवाज़ा, आपने नीले दरवाजे से एंट्री ली और अब आप एक ऐसे कमरे में हैं जो घड़ियों से भरा हुआ है। वाह क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत घड़ियां हैं, वॉचेस, और आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर एक जो वॉच है ना वो एक ही वक्त पर आकर रुक गई है। अब अगला रास्ता खुलने का राज इस वक्त में छुपा है, ठीक है, और क्लू नंबर 2 आपको इस कमरे की दीवार पर लिखा हुआ मिला है, मेरी बड़ी सुई 12 पर है और मेरी छोटी सुई 5 पर। तो बताइए इस घर में वक्त किस मुकाम पर फ्रोजन है। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, बस लॉजिक लगाइए और बताइए सही जवाब। 666-22107 666-22107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर आंसर्स और क्लू नंबर 2 तभी सॉल्व हो पाएगा। आई रिपीट अगेन, मेरी बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 5 पर। तो बताइए इस घर में वक्त किस मुकाम पर फ्रोजन है, इस सिंपल से क्लू का जवाब दीजिए और अपने एग्जिट की तरफ और बढ़ते जाइए, ठीक है। मुझे इंतज़ार है आप सभी के सही जवाब का। 666-22107 666-22107 इज़ आर नंबर, अपने नाम के साथ सही जवाब हम तक पहुंचाइए और अपने एनर्जी लेवल्स को गिरने ना दीजिए। शानदार म्यूजिक आपकी राहों में, इन्जॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: हाँ जी, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:01। भैया आपको दुआ करनी है कि हर कीमत पे आप हजारों दरवाजों में से जो एग्जिट उसे चुन पाएं और उस दरवाजे से बाहर निकल पाएं, क्योंकि इस वक्त आप कैद हैं।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए।
2: Yes, my desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप और एस्केप रूम में इस वक्त कैद हैं और हजारों की तादाद में दरवाजे आपके सामने हैं। समझ में नहीं आ रहा आपको कि करें क्या। एक बड़ा ही ग्रैंड मैंशन था, आपने उसमें कदम रखा, सारे दरवाजे जो खुले थे वो बंद हो गए और हर एक दरवाज़ा कहीं ना कहीं खुलता है, कुछ किचन की तरफ, कुछ बेडरूम, कुछ डाइनिंग रूम, कुछ ड्राइंग रूम, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ और कुछ सिर्फ पत्थर की दीवार पर। भाई देखो, जो ये मास्टर की है ना इस घर की, वो घर के ही पास है और वो आपको एग्जिट डोर तब दिखाएगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि आपका ध्यान नहीं भटका है। ठीक है, आपको 1, 2, 3 करके क्लूज सॉल्व करने हैं और तीनों लेवल्स को पार करना है। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था ब्लू यानी नीला रंग। दूसरे क्लू पर हम आए, दूसरा क्लू था कि मेरी बड़ी सुई 12 पर है और मेरी छोटी सुई 5 पर है, तो बताइए इस घर में वक्त किस मुकाम पर फ्रोजन है। ये बड़ा ही सिंपल है, अब आपको बताना है क्योंकि आप एक ऐसे कमरे में आ जा सर बहुत सारी घड़ियां हैं और सब घड़ियां सिर्फ एक ही वक्त पर आकर रुकी हैं, तो क्या सही जवाब हो सकता है। जाहिर सी बात है द राइट आंसर इज 5 यानी कि शाम के 5। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां, क्या बात है। सही जवाब दिया हमारे लिसनर्स ने, उन सब के लिए जोरदार तालियां। भैया आप अपनी जो पीठ है थपथपा लीजिए, आइए जरा देखें जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। मुकम्मल, अली, जैद और कौन है हमारे साथ, अरफत ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है, रमेश ने भी सही जवाब दिया है एंड महफूज ने भी सही जवाब दिया है, जसविंदर सिंह ने, रमनीतू ने भी सही जवाब दिया है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। और जैसे ही आपने कहा 5 बज गए घड़ी में, तो दीवार पर एक नया दरवाज़ा निकल आया जिस पर 5 लिखा था। ठीक है, अब आप एकदम हॉल के एंड तक पहुंच गए हैं, मतलब सोचिए मैजिकल डोर्स हैं सारे, अब एंड तक पहुंचे हैं, अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे हैं। एक डोर हमेशा सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ, मतलब एक अब सच और झूठ में अब आपको किसको चुनना है ये आपको डिसाइड करना है और यहाँ पर प्योर लॉजिक ही काम आने वाला है। ठीक है, तो एक दरवाज़ा सच बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है और इन दोनों दरवाज़ों के ऊपर लिखी है आपकी पहेली यानी कि क्लू नंबर 3। अब ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ एक ही दरवाज़ा हूँ जो गार्डन तक जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही दरवाज़ा है जो गार्डन तक जाता है। मुझ पर एग्जिट लिखा है और मेरे भाई पर भी, दूसरे दरवाजे पर भी एग्जिट का साइन है। अगर आप उस दूसरे झूठे दरवाजे से सवाल करें कि रास्ता कौन सा है, तो वो मेरी तरफ इशारा करेगा, तो बताइए रास्ता मैं हूँ या वो। अब आपको चुनना है कि पहला दरवाज़ा सच बोल रहा है या दूसरा दरवाज़ा सच बोल रहा है। बहुत सिंपल है बॉस, लेकिन हाँ ये पहेली आपको उलझा सकती है, मैं फिर से दोहराऊंगी, ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ एक ही दरवाजा हूं जो गार्डन तक जाता है, ये तो आप समझ गए। अब सुनिए, मुझ पर एग्जिट लिखा है, ठीक है, पर मेरे भाई दूसरे दरवाजे पर भी एग्जिट का साइन है। ऑलराइट, अगर आप उस दूसरे झूठे दरवाजे से सवाल करेंगे कि रास्ता कौन सा है, तो वो मेरी तरफ इशारा करेगा, तो बताइए क्या सही जवाब है, कौन सा दरवाजा आप चुनेंगे, पहला या दूसरा? जवाब दीजिए मुझे 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, एंड इस क्लासिक लॉजिक को लगाते हुए लेवल 3 को पार कीजिए. देखते हैं कि आज आप इस हजारों से भी ज्यादा दरवाजे वाले मैंशन से बाहर निकल पाते हैं या नहीं.
1: From India to Miami.
2: Slowly सोचिए, आई एम वेरी सर्टन आप बाहर निकल जाएंगे. फिलहाल गुरु रंधावा एंड पिटबुल का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, एंजॉय. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। चलते चलते कहाँ आ गए हम, हाँ एक ग्रैंड मैंशन के अंदर थे, बहुत ही खुशी खुशी सोचा कि वहाँ जाके इंजॉय करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने कदम रखा चैलेंज हमारे सामने आ गया। 1000 से भी दरवाजे वाला ये मैंशन, हर एक दरवाज़ा अपनी अपनी कहानी लिए हुए है। हर एक दरवाज़ा खुलता है, कभी किचन की तरफ कुछ खुलते हैं, गार्डन की तरफ कुछ खुलते हैं, बेडरूम की तरफ, एंड लिस्ट गोज ऑन। कुछ सिर्फ दीवार की तरफ भी खुलते हैं। आपने अपना अपने आप को संभाला और आपने कहा कि चलो भाई अब चैलेंज लिया जाए। आपने एंट्री मारी, पहले कमरे में गए, आपके लिए पहेली आई, सही जवाब ब्लू। दूसरे जैसे ही आपने ब्लू का सही जवाब दिया, एक नया चैलेंज एक नए कमरे में आपको मिला और आपने सही जवाब दिया, दैट वॉज 5 o'clock। तो दो लेवल्स आपने पार किए। 5 o'clock बोलने पर एक नया दरवाजा आपके सामने आया जिस पर नंबर 5 लिखा था, और अब इसको इसके सामने अब सिर्फ दो दरवाजे हैं। अब सिर्फ दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा सच बोलता है, एक झूठ बोलता है, और दोनों पर ही एग्जिट का साइन है। अब आपको सही दरवाजा चुनना है और एग्जिट करके गार्डन के रास्ते बाहर निकल जाना है, ठीक है? तो एक बार फिर से आपके लिए क्लू नंबर 3 दोहराया जाएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम किस दरवाजे को चुनने वाले हैं। आई कैन सी माई आंसर्स, हमारे लिसनर्स थोड़े से कन्फ्यूज हो गए इस क्लू नंबर 3 को लेकर, और जवाब तो मैं नहीं बताऊंगी, बट यस सवाल फिर से दोहराती हूँ। सो क्लू नंबर 3 इज, मैं सिर्फ एक ही दरवाजा हूँ जो गार्डन तक जाता है, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, दो दरवाजे, उनमें से एक ही दरवाजा है जो सच बोलता है। अब मुझ पर एग्जिट लिखा है और मेरे भाई जो कि दूसरा दरवाजा है उस पर भी एग्जिट का साइन है। अगर आप उस दूसरे झूठे दरवाजे से सवाल करेंगे कि रास्ता कौन सा है, तो वो मेरी तरफ इशारा कर देगा। तो बताइए रास्ता कौन है, मैं या वो, पहला दरवाजा या दूसरा दरवाजा? क्या सही जवाब होगा? कम ऑन, थिंक एंड टेल मी। 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और एस्केप रूम की सिचुएशन से एग्जिट कर लीजिए। कम ऑन, मैं सिर्फ एक ही दरवाजा हूँ जो गार्डन तक जाता है, मुझ पर एग्जिट लिखा है और मेरे भाई दूसरे दरवाजे

पर भी एग्जिट का साइन है। अगर आप उस दूसरे झूठे दरवाजे से सवाल करेंगे कि रास्ता कौन सा है, तो वो मेरी तरफ इशारा कर देगा। बताइए, रास्ता मैं हूँ या वो? कम ऑन, थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर एंड लेट मी सी आज आप में से कितने लोग इस सिचुएशन से एस्केप कर पाते हैं। भाई देखो, आखिरी मुकाम पर पहुंच गए हैं, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं और सही जवाब की तरफ रुख करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब क्या हाल चाल है? वेल एस्केप रूम में आज आप एक बड़े ही कमाल के मेज या यूं कहें कि ऐसे मैंशन में है जहाँ पर हज़ारों से भी ज़्यादा दरवाजे हैं, हर एक दरवाज़ा एक अलग जगह खुलता है और ये पूरी जगह एक मेज़ की तरह है। आप परेशान हुए लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपको क्लूज मिलते गए और आपने सवालों के सही जवाब देकर एग्ज़िट डोर तक अपने कदम बढ़ा लिए। क्लू नंबर 1 का सही जवाब था ब्लू, क्लू नंबर 2 का सही जवाब 5 o'clock और क्लू नंबर 3, हाँ जनाब यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, दो एग्जिट दरवाजे, ठीक है। एंड आपका क्लू ये रहा, मैं सिर्फ एक ही दरवाज़ा हूँ जो गार्डन तक जाता है, मुझ पर एग्जिट लिखा है और मेरे भाई दूसरे दरवाजे पर भी एग्जिट का साइन है। अगर आप उस दूसरे झूठे दरवाजे से सवाल करें कि रास्ता कौन सा है तो वो मेरी तरफ इशारा करेगा, तो बताइए रास्ता कौन सा है? मैं हूँ या वो? या दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने लिखा है फर्स्ट डोर या पहला दरवाज़ा या पहला भाई, ओके। कुछ ने डेफिनेटली सेकंड डोर, दूसरा दरवाज़ा, दूसरा भाई ये जवाब दिए हैं। हाँ तो देखिए दूसरा दरवाज़ा जो है वो झूठा है, तो दूसरा दरवाज़ा ही सही जवाब है। हाँ जी

क्योंकि वो आपको सच नहीं बताएगा, है ना? वो चाहता है कि आप एग्जिट करें ही ना. लेकिन जब आप उससे सवाल करेंगे कि कहाँ एग्जिट है, तो वो पहले दरवाजे की तरफ इशारा करेगा. तो दूसरा दरवाजा इज द राइट आंसर. और जिन्होंने भी ये जवाब दिए हैं भाई, जोरदार तालियां आप सभी के लिए. क्या बात है, क्या बात है. लेकिन विनर तो कोई एक ही होगा जिसे हम आज चुनने वाले हैं. और विनर कौन होगा, पहले हम चलिए उनका उनके नाम गिना देते हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है. दूसरे दरवाजे को लेकर कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया है? नितुरम है जिन्होंने सही जवाब दिया है, महफूज ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है, रमेश ने भी सही जवाब दिया है. इनका नाम क्या है, आइए ज़रा इनका नाम भी देखें. हमारे लिसनर्स सही नाम अपना नहीं लिखते हैं. सो मोहम्मद बिलाल ने भी सही जवाब दिया है, अली और रायद ने भी सही जवाब दिया है, अरफत ने भी सही जवाब दिया है. और आज के हमारे लकी विनर हैं रमेश. भाई जोरदार तालियां आपके लिए, मुबारकबाद, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस. क्या बात है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब दिए. आप सभी के लिए जोरदार तालियां. भाई देखिए, अगर आप ना हो तो हमारे एस्केप रूम में, वो कहते हैं ना, वो जान नहीं रहेगी. तो आप सब ने जो पूरा एक घंटा हमारा साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. भाई देखिए, वो कहते हैं ना कि हम एक मैंशन में आज थे, और ज़िंदगी भी इसी की तरह है कि हज़ार दरवाजे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है? एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें सही रास्ते तक नहीं पहुंचने देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में भी ना थोड़ा फोकस्ड रहें, ताकि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और सही रास्ते पर ही चलते रहें. और अगली बार एस्केप रूम में हम फंसने वाले हैं एक हॉन्टेड स्टोरी बुक के अंदर. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो कल दोपहर 1:30 बजे अपनी एफ और अमिता को एस्केप रूम पर सुनना ना भूलें. और अभी क्या करना है, हमारे एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए. सोशल मीडिया पर आपकी अमिता भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप उससे बातचीत कर सकते हैं. और अभी इत्मीनान से आराम कीजिए. और जाते जाते तो कहना बनता है, भाई हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. चलते चलते हमारी मुलाकात हमेशा होती रहेगी. फिलहाल ये बेहतरीन सा गाना सिर्फ आपके लिए. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107. दिल से

अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ जफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 कतर। देखिए भाई, हर एपिसोड में हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी लाइफ को भी बेटर बनाती हैं और हमारी अर्थ को भी बेटर बनाती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली एप्स। अच्छा, अब नाम सुनते ही शायद आप भी भाई यही सोचेंगे कि भाई सफा आप भी तो बचा सकती हैं एनवायरमेंट को, और जवाब है बिल्कुल भाई। देखिए मैं भी बचा सकती हूँ, मैं भी सुपर सफा हूँ आखिर, बिल्कुल ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल हमारा स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं रहा, ये हमारा वॉलेट भी है, डायरी भी है, कैमरा भी है, शॉपिंग असिस्टेंट भी है, कभी कभी तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। तो फिर अगर ये इतने सारे काम कर सकता है तो एनवायरमेंट के लिए ये कुछ क्यों नहीं कर सकता? जरा सोचिए, आप सुबह सुबह आंख खुलती है आपकी और सबसे पहला काम आप क्या करते हैं उठते? पानी का ग्लास पीते हैं? नहीं। मसवाक करते हैं? शायद उस पे भी नहीं। फोन का अलार्म बंद करते हैं, अपने मैसेजिंग की एप्स चेक करते हैं, फिर कभी कभी तो वेदर भी देख लेते हैं। वेदर ना भी देखें तो सोशल मीडिया तो जरूर। एक आंख से एक आंख बंद होगी और एक आंख खुली भी होगी और उससे हम अपना फोन चेक कर रहे होते हैं, है कि नहीं? मतलब हमारी सुबह जो है वो हमारे फोन से शुरू होती है और रात भी हम इसी फोन पर ही खत्म करते हैं अपनी। तो भाई अगर हम हर रोज इतना टाइम अपने फोन के साथ गुजार रहे होते हैं तो क्यों ना इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाया जाए, एक ऐसा हेल्पर बना दिया जाए जो हमारी एनवायरमेंट को फ्रेंडली चॉइसेस हमारी करने में मदद करे, हमें सिखाए। तो भाई एक बात बताएं, फोन की बैटरी जब आपकी 15% होती है या 20% होती है तो क्या होता है? हलचल मच जाती है ना, अचानक से हर इंसान क्या करने लगता है, स्विच ढूंढने लगता है कि भाई मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे कहाँ लगाऊं। कोई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पावर बैंक लेकर साथ में घूम रहे होते हैं, बहुत ही कोई ऊंची चीज होते हैं वो, कि उनको ये होता है कि एक सेकंड भी हमारा फोन के बगैर ना गुजरे। तो भाई इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो जब घर की लाइट्स बिना जरूरत के जल रही होती हैं, या एसी खाली रूम में चल रहा होता है, या फ्रिज का खाना एक्सपायर होकर डस्टबिन में चला जाता है, तब हम इतना पैनिक क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? शायद इसीलिए क्योंकि हमें उस वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इको फ्रेंडली एप्स असल में वही नोटिफिकेशन बन जाती हैं साथियों। ये हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ फोन की बैटरी नहीं, अर्थ की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ऐसी एप्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, या रोजाना ट्रैवल करते हुए कितना कार्बन इमिशन क्रिएट कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब नंबर्स हमारे सामने आते हैं तो आदमी खुद ही सोचने लगता है कि भाई चलो इस बार कुछ थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ। इसीलिए कहते हैं भाई कि अवेयरनेस ही चेंज का पहला और सीधा रास्ता होती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ग्रोसरी शॉपिंग की बात करते हैं, ठीक है? मुझे यकीन है बहुत से लोगों के साथ ये मामला होता होगा या ये हुआ होगा कि मार्केट से आप दही लेकर आए हैं और घर आकर पता चलता है कि भाई फ्रिज में पहले से ही एक डब्बा रखा हुआ है। ये मेरे साथ भी एक दो दफा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद एक्सपायरी डेट गुजर जाती है और सीधा क्या होता है, वो डब्बा हमें फेंकना पड़ जाता है, कहाँ? डस्टबिन में। पैसा भी गया और खाना भी वेस्ट हुआ। तो भाई आजकल फूड मैनेजमेंट एप्स आपको ये याद दिलाती रहती हैं कि घर में ज्यादा चीज ऑलरेडी मौजूद है और किस चीज को पहले यूज करना चाहिए। कुछ एप्स तो रेसिपीज भी सजेस्ट कर देती हैं भाई, मतलब फ्रिज में जो आपका खाना बचा हुआ है ना, उसी से आप नया खाना और बना सकते हैं। एनवायरमेंट भी खुश रहेगी और आपका वॉलेट भी इससे बचा रहेगा भाई। और जब बात ट्रैवल की हो तो टेक्नोलॉजी वहाँ भी काम करती है भाई। देखें, हम अक्सर शॉर्टेस्ट रूट चूज करते हैं, लेकिन हर शॉर्टेस्ट रूट फ्यूल इफेक्टिव नहीं होती। देखें, कुछ नेविगेशन एप्स ना ट्रैफिक को देखते हुए ऐसी रूट्स सजेस्ट करती हैं जहाँ गाड़ी कम रुकती है। जब गाड़ी कम रुकेगी तो फ्यूल भी कम जलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और कुछ एप्स कार पूल ऑप्शंस भी दिखाती हैं। सोचिए, अगर चार लोग अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में ऑफिस जाएं तो कितना फ्यूल बचेगा? ज्यादा ही बचेगा ना। अब अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में पुरानी बैटरीज, चार्जर्स या ब्रोकन इलेक्ट्रिक

0: इलेक्ट्रॉनिक्स जमा हो जाते हैं और फिर हमें उनका समझ में नहीं आ रहा था कि उनका करना क्या है. हमने होता क्या है, डस्टबिन में फेंक देते हैं या उन्हें हम संभाल कर रख लेते हैं. देखिए इको फ्रेंडली रिसाइक्लेबल एप्स जो होती हैं ना, इसी कंफ्यूजन को दूर करती हैं. ये बताती हैं कि कौन सी चीज रिसाइकल हो सकती है और उसे कहाँ जमा करवाया जा सकता है. जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है भाई. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज एनर्जी मॉनिटरिंग एप्स हैं. अगर आप स्मार्टफोन डिवाइसेस यूज करते हैं तो ये एप्स आपको बताती हैं कि घर में इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है. कभी कभी हमें ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा केयरफुल चल रहे हैं, लेकिन जब हम असली फिगर्स देखते हैं ना तो फिर जाके पता चलता है कि एसी या कोई और अप्लायंस अननेसेसरीली चल रहा है. भाई इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई अवेयरनेस के बाद ना इंसान नेचुरली अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है और सिर्फ अर्थ का ही नहीं अपने फोन का भी ख्याल रखता है. देखिए साथियों अक्सर औकात तो ये होता है कि हम इतनी सारी एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं कि आधी एप्स का तो हमें नाम भी याद नहीं होता. बहुत सी एप्स बैकग्राउंड में बैटरी और इंटरनेट कंज्यूम करती रहती हैं, इसीलिए हर कुछ महीनों बाद फोन का क्लीनअप जरूर करें. जो ऐप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर दें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और जितना हो सके डिजिटल नोट्स और डिजिटल बिल्स का इस्तेमाल करें. पेपर कम यूज होगा तो भाई ट्रीज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट ही करेंगी ना उससे. चलिए हम चलते हैं आज के इको से चैलेंज की तरफ. ठीक है, आज सिर्फ 10 मिनट अपने फोन को देखिए. ठीक है, देखिए कितनी सारी एप्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्टोरेज खा रही हैं आपका. उन्हें डिलीट कर दें मेहरबानी करके, उनकी जगह कोई इको फ्रेंडली ऐप इंस्टॉल कर लें. चाहे वो रिसाइक्लेबल गाइड हो, चाहे वो फूड रिमाइंडर हो, चाहे वो एनर्जी मॉनिटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानर हो. सिर्फ एक ऐप भी आपकी डेली रूटीन में पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है साथियों. तो भाई साथियों अगली बार जब आप अपने फोन को अनलॉक करें ना, एक बार जरूर सोचिएगा क्या ये डिवाइस सिर्फ मेरी लाइफ को इजी बना रहा है या मेरी अर्थ को भी थोड़ा सा बेहतर बनाने में मेरी मदद कर रहा है. इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल प्रैक्टिकल और ग्रीन आइडिया के साथ. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों से ताल्लुक मजबूत रखने के बारे में। रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाना और उनका ख्याल रखना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। ये सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है। अक्सर बिजी रूटीन की वजह से हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि उनसे राब्ता बरकरार रखें, उनका हाल पूछें और ज़रूरत पर उनकी मदद करें। ये अमल रिश्तेदारों में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करता है और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान और खुशगवार होती है। आज का अमल ये है कि किसी एक रिश्तेदार को कॉल करें या मैसेज भेजें और उनसे राब्ता बरकरार रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
3: और दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत एक्साइटिंग भी, और आपको और हमारा इस टॉपिक को जानना जरूरी भी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है AI गवर्न्ड सिटीज। देखिए, AI गवर्न्ड सिटीज यानी ऐसे मुस्तकबिल के शहर जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर चीज को मैनेज करेगी, ट्रैफिक से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके सिक्योरिटी। वैसे आज के दौर में भी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर पूरा जो शहर है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करेगा जो रियल टाइम डेटा देखकर डिसीशंस लेगा। अब AI गवर्न सिटीज है क्या? AI गवर्न सिटीज असल में एक तरह की स्मार्ट सिटीज का अपग्रेडेड वर्जन होगा। स्मार्ट सिटीज में सेंसर्स, कैमरास, इंटरनेट यूज होते हैं, लेकिन AI गवर्न सिटीज में सिस्टम खुद ब खुद डिसीशंस लेगा। यहाँ हर जगह सेंसर्स लगे होंगे, रोड्स पर, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और ये सब डेटा AI सिस्टम को देते रहेंगे, फॉरवर्ड करते रहेंगे, पास ऑन करते रहेंगे। AI फिर इस डेटा को एनालाइज करके खुद ब खुद फौरन से फैसला करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ट्रैफिक जाम हो रहा हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सिग्नल चेंज कर देगा। इस तरह शहर एक लिविंग सिस्टम बन जाता है जो हर वक्त सिचुएशन को समझकर एडजस्ट करता रहेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में AI का रोल किस तरह का होगा? दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर सिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज भी दुनिया के बहुत से शहरों में AI यूज हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर और बहुत सारी चीजें। AI ट्रैफिक सिग्नल को रियल टाइम कंट्रोल करता है। अगर किसी रोड पे ज्यादा कार्स हैं, तो ग्रीन सिग्नल ज्यादा देर तक जो है वो रहेंगे। अगर रोड खाली हो जाए तो सिग्नल जल्दी चेंज अपने आप हो जाएंगे, इससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोगों का टाइम भी बच जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं AI सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो फ्यूचर में गाड़ियां खुद चलेंगी यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। इन गाड़ियों में AI सेंसर्स और कैमरास होते हैं जो रोड, सिग्नल और दूसरी गाड़ियों को देखकर डिसीशन लेते हैं। ये सिस्टम एक्सीडेंट्स को भी कम करेगा क्योंकि AI थकता नहीं है और हर वक्त फोकस में रहता है। वहीं पर अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, तो AI बसेस, मेट्रो, ट्रेन्स का स्केड्यूल ऑटोमेटिकली चेंज रहेगा। अगर किसी रूट पर रश ज्यादा हो तो सिस्टम वहां ज्यादा बसेस भेज देगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फास्ट और रिलायबल हो जाएगा। वहीं अगर हम AI हेल्थ केयर की बात करें,

0: यहाँ पर मैं आपसे इजाजत लूंगी और कल वापस आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एआई का रोल हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह का होगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। स्मार्ट सिटीज के बारे में तो हम और आप अच्छे से जानते ही जानते हैं, लेकिन अब जानना है एआई गवर्न सिटीज के बारे में जो फ्यूचर को डोमिनेट करेंगी। तो कल यानी जब वापस इस सेगमेंट में आपकी हमारी मुलाकात होगी तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगी। आज थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कल आऊंगी तो बात करेंगे हेल्थ केयर के रोल के बारे में। फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है, एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।

0: ने उनका नाम सुना है, ये सिर्फ उनके काम की वजह से था जो उनके दर्जाए इल्म और एक मशहूर इल्मी शख्सियत के तौर पर दिया गया था। आइए सामीन, अब नजर डालते हैं उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के ऊपर। जाबिर इब्न हय्यान ने अपनी तालीम बगदाद में हासिल की, जो उस वक्त इल्म का एक बड़ा मरकज था। उनको अपने तारीखी इल्म को समझने में बहुत मदद मिली। जाबिर इब्न हय्यान ने ज्यादातर अपना इल्म मशहूर इल्म दराजों के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर्स और फिलोसफर्स से हासिल किया। उन्होंने ग्रीक, पर्शियन और इंडियन साइंस को भी अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया। वक्त के साथ साथ जाबिर इब्न हय्यान ने केमिस्ट्री, एल्केमी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक जैसे इल्मों पर अपनी रिसर्च और काम शुरू कर दी थी। उनका काम सिर्फ एक साइंटिस्ट तक महदूद नहीं था, वो एक इल्मदार फिलोसफर भी थे, जिन्होंने साइंस और फिलोसफी को एक दूसरे से जुदा नहीं समझा। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा साइंस की दुनिया में। जाबिर इब्न हय्यान ने कई असरदार इल्मी काम किए। उन्होंने सबसे पहले तो एलकेमी में अपनी रिसर्च से केमिस्ट्री के लिए बहुत बुनियादी काम किया। उनका सबसे मशहूर काम किताब अलकीमिया था, जो कि एलकेमी की दुनिया का एक मशहूर दस्तावेज था। उन्होंने मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी काफी गौर व फिक्र की। दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान ने जो काम किए, उसने एलकेमी को एक नए दौर में दाखिल किया। उन्होंने खुद एक यूनिक टेक्निक डेवलप की थी, जिसे डिस्टिलेशन का तरीका कहा जाता है, और इस तरीके की मदद से वो लिक्विड्स को अलग करने में कामयाब हुए। ये तरीका अब तक मॉडर्न केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जाबिर इब्न हय्यान ने जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डेवलप की थी, उसका असर केमिस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च पर काफी गहरा था। उन्होंने मेटल्स की प्योरिटी, प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस पर भी काफी काम किया। ये वो जमाना था जब साइंटिफिक मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत नया नया था, लेकिन उन्होंने अपने तजुर्बात से इसे आगे बढ़ाया।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: उन्होंने एसिड और अल्काली के रिएक्शंस को भी स्टडी किया। इसके अलावा उन्होंने एलॉयज और वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बनाए। जाबिर इब्न हय्यान ने लेबोरेटरी टूल्स और एपरेटस का भी बेहतरीन यूज किया, जैसे कि एलेम्बिक, जो आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए जरूरी इक्विपमेंट समझा जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं जाबिर इब्न हय्यान की इम्पैक्ट ऑन एलकेमी एंड केमिस्ट्री। जाबिर इब्न हय्यान अपने इल्म के जरिए एलकेमी को एक साइंटिफिक दौर तक ले आए। उन्होंने इससे एक प्रैक्टिकल साइंस बनाया, जो कि उस वक्त के मशहूर फिलोसफर्स और साइंटिस्ट के लिए गाइड का काम करता था। उनकी लिखी हुई किताबें बहुत दिनों तक यूरोप और अरब वर्ल्ड में स्टडी की जाती रहीं। उन्होंने केमिस्ट्री के तरीके और बेसिक प्रिंसिपल्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जो बाद में मुख्तलिफ साइंसदानों ने यूज किए। जाबिर इब्न हय्यान के काम की वजह से जब वेस्टर्न वर्ल्ड में रेनेसेंस का दौर आया, तो उनकी किताबें और आइडियाज काफी पॉपुलर हुए और उनका असर बहुत ज्यादा था। दोस्तों, कुछ मुसन्निफ का कहना है कि वो एक बहुत ही बड़े मुसन्निफ थे, जिन्होंने फलसफे पर 300 किताबें, मैकेनिकल डिवाइसेस पर 1300 किताबें और एलकेमी पर हजारों किताबें लिखी। ये बहुत बड़ी अरेबिक किताबों का मजमुआ था, जिनमें से कई बहुत ही दिलचस्प हैं, जो जाबिर इब्न हय्यान के नाम से जानी जाती हैं। कॉर्पस जिब्रेनियम में 500 से ज्यादा टाइटल्स हैं, जो दूसरे मुसन्निफ के मुताबिक जाबिर ने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि ये उनके स्टूडेंट्स या फॉलोवर्स के जरिए लिखी गई थी, और इन्हें जाबिर की एलकेमी स्कूल का हिस्सा समझा गया। कुछ लोगों का कहना था

0: FM 107. Time check.
1: स्वागत है हजरत हजरत हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल ये शो दिलकश शो फिलहाल टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:01
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: भाई साहब जिस तरह से गर्मी हो रही है हर रोज गाना होना चाहिए यार गर्मी के ऊपर हर गर्मी वेल इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का एफएम 107 में 4-5 हमारा और आपका साथ और बेहतरीन गाने आपके अपने मर्जी के हर रोज शाम 4-5 एफएम 107 लगता है जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं और हर रोज एक थीम भी होती है तो जावेद अख्तर की राइटिंग वाले गाने हो या फिर ऋतिक रोशन के गाने हो सलमान खान के हो सुनिधि चौहान के हो बेस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के गाने हो कैसे भी गाने वो यहाँ पर चलते हैं और हर रोज एक नई थीम होती है और आज है 8 जुलाई। बड़ी जल्दी वक्त गुजर रहा है ऐसा लग रहा है यार कल ही 2-3 तारीख थी यार इतनी तेजी से है अगर अच्छी बात है ऐसे क्या होता है सैलरी जल्दी आती है। फिलहाल आज जो गाना है हमारे पास वो जबरदस्त होने वाले हैं क्योंकि आज का थीम है फास्ट पेस सॉन्ग का तो ऐसे गाने जो फास्ट पेस्ड हैं जिनमें अच्छी बीट्स हैं जो नए जमाने के गाने हैं तो मीका से लेकर नेहा तक और बादशाह से लेकर सुखविंदर तक जुबिन नौटियाल से लेकर टोनी कक्कड़ तक सारे गाने आज आप हमसे प्ले करवा सकते हैं लेकिन वो दिल दिया गल्ला वाला भाई वो कहीं अगर आ गया तो प्ले करना पड़ेगा भाई क्योंकि आज तो फास्ट पेस है लेकिन दिल दिया गल्ला में वो बात नहीं है बट है दिल दिया गल्ला वो वाला तेज तो गाना नहीं है इसमें लेकिन अगर रिमिक्स मिल गया जिसमें ढिकचिक ढिकचिक भी डाल दिया तो मैं अपन प्ले कर देंगे बाबा अपन रुकेंगे नहीं तो गाने बताइए जल्दी जल्दी एफएम 107 पे प्ले करेंगे और जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। फिलहाल 4:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए। हिशाम साहब ने पहले ही अपना इमोजी भेज दिया सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा भाई कैसे हैं। उसके अलावा ये कौन है हाँ खुद सैयद खादिम हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम फजल भाई गुड इवनिंग फजल भाई अभी तो फ़ोन भी नहीं आया जल्दी जल्दी मैसेज इंक्लूड करो हैं अच्छा नया है देखो ये तो हमारे हाथ में है लेकिन क्या है थोड़ी बातें बातें भी अपन कर लेते हैं इसी बहाने तो नए फ़ोन का तो अलग ही माहौल है भाई साहब मैंने इस नए फ़ोन को अभी तक भाई 50% से कम देखा ही नहीं है चार्ज होते हुए मतलब आप सोचो एक फ़ोन जो बेचारे को मैंने कभी देखा नहीं कि 50% से ज़्यादा रहा हो एक फ़ोन जो 50% से ज़्यादा ही रहा है कम देखा ही नहीं मैंने है इससे पता चलता है कि हर इंसान का हर टेक्नोलॉजी का समय आता है सबका वक्त आता है समय समय पे। बाकी यूसुफ भाई का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ हैप्पी वेंसडे इवनिंग आपको भी इवनिंग की बहुत बहुत मुबारकबाद। तैनू का चश्मा जचता है तैनू काला चश्मा अरे तैनू का चश्मा ये कौन सा है एक कंपनी है कहीं उसका तो नहीं कह रहे तेनू काला चश्मा जचदा ये गाना अच्छा है भाई दवे तेनू तो नहीं है काला चश्मा के नाम से होगा हाँ ये लेकिन वो वाला है कि नहीं लेट मी चेक देन ये वही वाला है तो ठीक है तो मजा आएगा हाँ ये वही वाला है सही है काला चश्मा काम ढिलोन का ये गाना है एफ 107 पे लेकिन यहाँ पर मूवी वाली मूवी नहीं लिखी लेकिन मैं काला चश्मा डालकर देखता हूँ हो सकता है एकदम एग्जैक्ट क्योंकि ये तो किसी मूवी का गाना ये मेरे को पता है लेकिन मूवी का नाम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। वेल एनीवे अगर ये गाना वही है जो आप प्ले करवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं अपन ये गाना प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहला गाना अपने को मिल गया है और यह है एहसान अली की रिक्वेस्ट पे बहुत ही उम्दा। फिर है अरिजीत का एक सॉन्ग मेरी वफा। भाई देखो रोने वाले गाने नहीं चलेंगे मैं बता रहा हूँ मैं रोते रोते कहूँ कि यार अगला गाना खादिम भाई ने रिक्वेस्ट किया है।

0: और गाने का नाम है मेरी वफा तेरी वफा भाई अरिजीत सिंह। ये अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है? तो अच्छे गाने ऐसे नहीं हो कि इंसान जो है गाड़ी चलाते चलाते अरे खाई दिख रही है, लाओ जरा दाएं मोड़ ही देता हूं आज। जिंदगी की इस डोर को आज खत्म कर ही देते हैं, ऐसा ना सोच ले लोग। इसलिए प्लीज प्लीज ऐसे गाने जो दुख दर्द पीड़ा सैडनेस को आगे ना बढ़ाएं, ऐसे गाने जो दुख दर्द पीड़ा सैडनेस को कम कर दें और खुशियों को बढ़ाएं, ऐसे गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका फर्ज है ऐसे गाने की रिक्वेस्ट करना। सलाम फजल भाई, क्या हाल है फजल भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। रंग शेयर मौसम से चांदनी, क्या रंग सरे मौसम से? लिखा तो नहीं है आपने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सही ढूंढ लूँ। रंग सारे मौसम से, ये गाना तो नहीं है। रंग सारे मौसम से चांदनी में डालकर देख लेता हूँ भाई। आपने कहा है चांदनी मूवी का ये ट्रैक है, तू टीटा सब ऐसी दिख रहा है, रंग से तो कोई ना दिख रही है भाई। चांदनी मूवी का एक और ट्रैक है, लगी आज सावन की कंगना तेरा नी सानू। भाईजान वो गाना नहीं है जो आप गाना ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। चांदनी 1989 की कौन सी, बहुत पुरानी अगर मूवी का आप कह रहे हैं तो आई एम सॉरी, एक मैसेज है बस। मेरी तरफ से आपके लिए पश्तो सॉन्ग प्ले बिलाल। देख रहे हैं भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें कि मेरे को जमाना लग जाएगा भाई बिलाल का पश्तो सॉन्ग ढूंढना। अब बिलाल सईद भी है और बिलाल अशरद भी हैं, है उसके बाद बिलाल के भी हैं, फिर बिलाल के नाम के इतने हैं कि मेरे को जमाना लग जाएगा भाई, मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। मैं कहूँगा आपसे कि
1: अरे बेटा बिलाल कौन सा गाना सुनना चाहते हो ये बताओ।
0: आपका नाम बिलाल है तो अलग बात है, ठीक है। तो बिलाल भाई, अगर आपका नाम बिलाल है तो मैं पश्तो सॉन्ग देख लेता हूँ। पश्तो में तो वही है यार, जामा सरदारा, यारा वफादार है, और एक और गाना था कांगे, बहुत अच्छा था वो गाना यार, अपने को मिल नहीं रहा। अगर वो गाना मिल गया तो मेरे, हाँ पेशावरी गाना था यार वो, आई गेस याद नहीं आ रहा, लेकिन पी से शुरू होता था वो। खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल काला चश्मा आपके लिए प्ले करते हैं FM 107 पे। वापस आएंगे तो अपन बाकी जो मैसेज हैं वो भी लेंगे। आप अपने मर्जी की रिक्वेस्ट करें, बस इतना ध्यान रखिएगा हाई बीट वर्जन वाले सॉन्ग होने चाहिए। FM 107 ये गाने आपके लिए प्ले करेगा। व्हाट्सएप नंबर 6622107। काला चश्मा, कायम ढुलो की आवाज में, दिल से दही सी।

काम ढिलो की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे। फिलहाल 4:13 हमारे स्टूडियो घड़ी में। अला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू, क्या है हाल चाल। और 4:13 पे अब आपके और भी लाजवाब गाने आने वाले हैं। और म्यूजिक मंच मसीक का है, अबू सिदरा ने रिक्वेस्ट किया है वो गाना जो सुनने में मजा आ जाएगा। ये गाना है हाई रेटेड गबरू आय हाय, जिसके कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं गुरु रंधावा। सो गुरु रंधावा के ये गाने अपन प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 गाने हैं गुरु रंधावा। एक तो फीमेल वर्जन है, वो तो नहीं ऑब्वियसली, फिर जिसमें नेहा कक्कड़ भी हैं, और 2 गाने हैं इंडियन पॉप और नवाबजादे मूवी का हाई रेटेड गबरू। सो ये यहाँ पर मैंने लिस्ट तो कर दिया है, लेकिन ये गाना क्या वही है? हाँ, ये वाला अपन प्ले करते हैं FM 107 पे। उसके अलावा एक भाई ने कहा था पश्तो गाना प्ले करने के लिए, तो अबू सिदरा का सबसे पहले नहीं, सेकंड नंबर पे आएगा, उससे पहले जमा सरदार आएगा, सूफिया कैफ का ये गाना है और जिसे रिक्वेस्ट किया है बिलाल साहब ने। ओके, उसके बाद हाई रेटेड गबरू, ये किस का गाना है? अबू सिदरा का। ओके डन, ये हो गया। फिर उसके बाद दिल गया मेरा दिल गया, रमेश दिल गया मेरा दिल गया मूवी तुमसे अच्छा कौन है। भाई थोड़े नए ज़माने का गाना, अगर क्योंकि आज का जो थीम है वो थोड़ा सा अपबीट वर्जन का है, वो ज़्यादा पुराने ज़माने का नहीं है। फास्ट पेस सॉन्ग जो सुनने में लोगों के दिमाग में, लोगों के कान में छा जाए, ऐसे गाने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा नसीम भाई ने कहा मियाँ फज्जू, मियाँ मत बोलो मेरा भाई, अब ये हक किसी और को है। नसीम भाई बताते हैं ऐसे बोले, रिक्वेस्ट आपकी मर्जी मेरी। कहा जा सकता है ऑब्वियसली, अब ऐसे भी गाने ना कर दो कि यार वो अपन प्ले ना कर पाए, लेकिन देखो यार पश्तो गाना मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक भाई ने रिक्वेस्ट किया बिलाल ने, तो मैं अपन वो गाना प्ले करेंगे। फिर आज दिन है पानी पानी, ये गाना कहाँ आ गया, तो बहुत दिन से नहीं सुना यार। आज दिन है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। एहसान अली, आपको लग नहीं रहा आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए, थोड़ा भटक गए? देखो एक भाई ने अलग ही जिंदगी में खेल मचा रखा, कह रहे हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, ये सॉन्ग प्ले करो। आरके साहब, और कोई गाना नहीं मिला था आपको? इतने सारे गाने हैं भाई, आपको और कोई गाना नहीं मिला? ये तो वही वाली बात हो गई, लड़का जो है इंडिया का है उसको पूरे संसार में कोई समझ नहीं आया, लेकिन फॉरेनर एक लड़की समझ में, उनसे ही ब्याह करेंगे। ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसे गाने जो थोड़ा अच्छा हो यार, अब कह अच्छा मैं कह रहा हूँ कि कुछ और गाना बता दो भाई, कह रहा है ये नहीं यही चाहिए, हम 5 दोस्त हैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पूछा तो यही बता रहा कि ये वाला गाना प्ले करो। अच्छा इन्होंने मतलब गूगल से सर्च इंजन से पूछा तो वो कह रहा है यही वाला सर्च इंजन। अम्मा यार जिंदगी में सर्च इंजन नहीं बचा है आपके, बताओ अच्छा वाला गाना करवा लो। AP ढिल्लो और हनी सिंह का एक आदत, पक्का ये आदत गाना। हाँ ये एक भाई हैं जिनको आदत का चरस लग गया भाई, हुसैन साहब को एकदम ऐसा चस्का लगा हुआ है

सिर्फ आदत गाना सुनना चाहते हैं, इनको एपी ढिल्लो अली हनी सिंह का ये अकेला इकलौता गाना इनके दिमाग में, इनके जहन में ऐसा छपा हुआ है, ये छोड़ना नहीं चाहते, यही गाना सुनना चाहते। चलो ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं तो अपन प्ले कर देंगे, अपने को किया ही प्रॉब्लम है। तो हाई रेटेड गबरू से शुरू करेंगे, जमा सरदारा से होते हुए बेजफ पे ये गाड़ी रुकेगी, सॉरी आदत पे ये गाड़ी रुकेगी। FM 107 पे ये तीन गाने बैक टू बैक एंजॉय कीजिए।

0: एपिडल और हनी सिंह की आवाज में आदत, ये ट्रैक और हनी सिंह और एपिडल की आदत तो लग गई है भाई साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिलहाल टाइम हो गया है 4:27 और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसलिए जल्दी से गाने और ज्यादा मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। और रिक्वेस्ट आ गई है, तो एक गाना है अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह का, ये गाना है दिल चीज तुझे दे दी। लोगों की पसंद देख रहे हैं साहब, शाहिद भाई की पसंद जो है बिल्कुल अलग है। दिल चीज तुझे दे दी, फिर उसके बाद एक और शख्स है, और अच्छा ये वाला जो है अपनी अपनी पसंद है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बड़े ही नवाबी शौक है, लेकिन आमिर इनका नाम है, और कहते हैं कि बेबी को बेस्ट पसंद है। मतलब शौक है यार अपना अपना भाई, इसमें कोई मसला नहीं है, मेरा कोई तोहमत भी नहीं है कि अच्छा बड़े ही नवाबी शौक, लेकिन ठीक है अपनी चॉइस है, इंसान का दिल है क्या भाई, डोल नहीं सकता। और फिर अपने दिल के करीब रखते हुए किसी एक शख्स के लिए सोलमेट गाना जो अरिजीत सिंह और बादशाह ने गाया है वो प्ले करवाना चाहते हैं हमारे वन एंड ओनली अब्दुल साहब, अब्दुल रफी का नाम है, क्या बात है। सो ये गाना रफी भाई की रिक्वेस्ट पे बड़े ही खूबसूरत गाने की फरमाइशें कर ली हैं इन तीनों ने। सो सबसे पहले दिल चीज तुझे दे दी, फिर बेबी को बेस पसंद, और उसका सोलमेट। अच्छा एक और गाना है ये, लेकिन इन तीन गानों के बाद आएगा, कॉल्ड पसूरी, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार का है। नाम नहीं लिखा भाई, अगर आप नाम लिख देते तो ये आसान हो जाता। उसके अलावा मुझे बताएं आज किस सॉन्ग किसके सॉन्ग्स चलेंगे। अच्छा आज जो है हाई बीट वाले गाने जो है वो चल रहे हैं, और थोड़ी नई वाइब जो है उनको बनाने के लिए, ठीक है थोड़ा सा माहौल बने। कुछ कह नहीं सकता, पर आज मैं पूरी ट्राई करूंगा विनर बनने के लिए, दानिश आजाद का कहना है। ये आमिर डैश डैश डैश खाता है, क्यों भाई ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो, हैं क्या चाहते हो मेरा गला कट जाए। खलील पाचा कहते हैं सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, यू आर डूइंग प्रोग्राम गुड। खलील पाचा बहुत शुक्रिया मेरा भाई। फिर सर पश्तो समझ तो नहीं आती है, लेकिन सॉन्ग बहुत कमाल के होते हैं, मज़ा आता है सुन के। जुनैद साहब हाँ यार ये बात तो है, इनके जो म्यूज़िक है जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़े से अलग होते हैं आमतौर पर, जो आप ढोलक और बाकी चीज़ें सुन, इनका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है झुमरी तलैया से लेकर जो भी होता हो लगता लाजवाब है भाई। जुनैद साहब बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही हैं। और एक गाना है, देखो गाना ऐसा कोई रिक्वेस्ट करे कि इंसान ढूंढते ढूंढते उसकी जान निकल जाए, उसकी उसके अंगूठे जो है छिल जाए, उंगलियों के नाखून ख़त्म हो जाए, लेकिन गाना ना मिले, ये कोई गाना है बॉम शकला का। मोहम्मद साहब ये कैसे कहाँ से ये गाने सुन के आ रहे हो, पहले तो मुझे ये बता किस जगह से राबता है आपका भाई, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गाने कौन सुन रहा है। मुझे तो नहीं लगता भाई बहुत लोग ये कोई गाना सुन रहा हो, बॉम शाका लाका ये कोई गाना है। और मुझे यार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया करो, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं। एक भाई ने मुझे कहा है चलाओ सितारे प्ले करो, अब मैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन है भाई, मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरा एग्जाम ले रहे हो भाई, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार मिलके, होता है ना वो एक कहावत है एक लाइन है ओम शांति ओम मूवी की, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसे मुझे लग रहा है आज बाहर जो सुनने वाले हैं कि फजील को अगर जलाना हो तो पूरे FM 107 की कायनात मिलकर फजील को जलाने के लिए ऐसी ऐसी लाइनें ऐसे ऐसे बोल बचन वाले गाने रिक्वेस्ट कर रही कि जल जाए मेरी याद। ये चलाओ सितारे प्ले कर, ये कौन सा गाना है जो मैं प्ले कर दूं भाई, मतलब मेरे सपने में भी नहीं आ रहा है, मेरी उंगलियां टाइप कर भी देंगी तब भी यहां पर एक हमारा डेटाबेस भयंकर गानों से भरा पड़ा है, लेकिन जो लोग उम्मीद करते हैं जो लोग गाने की रिक्वेस्ट करते हैं वो गाना यहां मिलता ही नहीं है भाई। आप लोगों का डेटाबेस अलग है यहां से कहीं ज्यादा। खैर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड करो यार, मेरी जिंदगी को आसान बनाओ। बाकी नसीम कह रहे हैं कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग ख़राब है, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। चलो ठीक है, अगर आप इतना ही दो लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली है तो हमारा दिमाग ख़राब ही है जो हम ये गाना प्ले कर रहे हैं।
1: ये कोई गाना है, मतलब सेंसिबल गाना नहीं प्ले करवाना, लेकिन लोगों को अपनी अपनी पसंद है, फिर वही वाली बात है। हमारा दिमाग
0: हमारा, मैं ढूंढूंगा भाई, हम पागल नहीं है, यहां से होगा ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है भाई। इस तरह के गाने अगर प्ले कर रहे हैं तो मैं तो इस बात पे हामी भरूंगा कि कुछ तो मैटर है। बाकी ये गाना मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर मिल जाता तो मैं जरूर प्ले करूंगा। और ये नसीम भाई ने कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, ये मैसेज खादिम साहब, हाँ नहीं, हाँ खादिम का है, पेखावर हो पेखावर, हाँ ये गाना है इरफान खान की आवाज़ में पश्तो सॉन्ग, बिल्कुल। लेकिन अभी तो फिलहाल ये गाने को नहीं प्ले करेंगे, थोड़ा सा रुक के। फिर एक और गाना है, वो कौन सा था, अस्सलाम वालेकुम फसल भाई, प्लीज़ प्ले डीलर बाय अरिजीत सिंह। ये कब गाना आया है, डीलर बाय अरिजीत सिंह नहीं, दिलजीत दोसांझ। अच्छा, मैंने सर्च किया था लेकिन ये गाना मुझे मिला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फजुमिया, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं भाई, ये हाई बीट वर्जन है, ये नए जमाने का गाना है। बताओ हम यहाँ पर एपी ढिल्लो, बादशाह, हनी सिंह, अरिजीत सिंह को प्ले कर रहे हैं, ये सुनना ही बहुत पुराना चाह रहे, तो हम क्या करें। कबीर भाई, कबीर भाई बॉम शकला बिहारी रैप है, अरे यार कहाँ से ढूंढूं, ये नहीं है मेरा भाई हमारे डेटाबेस में। शाका बूम बूम, हाँ तो थोड़ा सा और क्लियर लिखो तो मैं कोशिश करूँ ढूंढने की किसने गाया है, कौन सी मूवी का है। बूम बूम से देख लेता हूँ भाई, ये भी नहीं है, और बताओ। आज जो है क्या रंगीन गानों की रिक्वेस्ट करी, अब्दुल अजीज, हिमेश रेशमिया, अच्छा इनका नाम है अब्दुल अजीज और हिमेश रेशमिया के गाने सुनना चाहते हैं, पूरी और बात लिखिए, थोड़ा सा और डिटेल में आइए। फजील, आपके फैंस को अच्छी तरह पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई कोई कोई भी सॉन्ग का एक वर्ड बोल दे तो फजील ढूंढ लेंगे। अरे हमारी उंगलियां, पता है हमारी उंगलियां लंबी हुआ करती थी, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट शो में मैंने सर्च कर लिया है, छोटी हो गई भाई। अब मेरे रिंग फिंगर में रिंग नहीं आ रही है, इतनी छोटी हो गई है मेरी उंगलियां भाई, क्या इतना मत सर्च करवाओ मुझसे। उसके बाद तेरे लिए, तेरे लिए अगेन थोड़ा सा स्लो सॉन्ग है, आई एम सॉरी, नियाज भाई ने, अच्छा जी अब्दुल्ला ने कहा है सलाम वालेकुम, गाना सुना दो यार एक। अच्छा तो हम यहाँ पर क्या आटा गूंद रहे हैं? नहीं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गाना ही तो सुना रहे हैं मेरा भाई अब्दुल्ला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। वही सुनना है शाका लाका बूम बूम, अरे मेरा भाई अब्दुल अजीज भाई ने पता नहीं कौन सा पानी पिया है, ज़्यादा केसर हो अगर पानी में तो भी हल्का सा इंसान जो है मदहोश हो जाता है। अब्दुल अजीज भाई थोड़ा कम केसर का पानी पिए, कोई मसला नहीं हैगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इस मदहोशी को हटाना है तो करेले की सब्जी खा लो भाई, थोड़ा सा दिन की रोशनी में आ जाएंगे आप। आगे लड़की ब्यूटीफुल करके चल, देखो ये होते हैं गाने, हैं नए जमाने के गाने हैं, गाना भी अच्छा है। लड़की ब्यूटीफुल, किधर हो तुम, इधर आ जाओ, तुम्हारे गाने की रिक्वेस्ट आई है, कर गई चुल, कर गई चुल से मुझे मिल जाएगा ये गाना। ओके, अरे भाई आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो गाने मिलेंगे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे लग रहा है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल भी नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, चुल तो मिल जानी चाहिए। चुल तो मिल जानी चाहिए। फिलहाल बाकी गाने मैं प्ले कर ले रहा हूँ। सबसे पहला गाना दिल चीज़ तुझे दे दी, फिर बेबी को बेस पसंद है, और उसके बाद सोलमेट, ये तीन गाने आ रहे हैं आपके लिए FM 107 पे, इसे एंजॉय करें, बाकी गाने धीरे धीरे मैं ढूंढ कर ला रहा हूँ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: को बेस पसंद है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

अरिजीत सिंह और बादशाह की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे 4:48। और भाई अब और लोग जो पीछे पड़े हैं आज इस बिहारी रैप के लिए जिसका नाम है बूम शका। अच्छा अभी जाके एक सही फोटो भेजी है, इसका नाम असल में है बूम शका जो कृष्णा और धंधा नेवली वाला का। अब जाके मुझे पता चला, अब ये बॉम शका लाका लाका लिख रहे हैं तो मेरे को कैसे पता यार ये कौन सा गाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्योर इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर ऐसा कोई गाना है जो थोड़ा सा नया है या है अच्छा लेकिन यू नो इसका इस तरह से नाम बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है, तो बूम शका लाका लाका मैं कहाँ से ढूंढूं भाई, और वो भी बॉम लिखा है इन्होंने। ठीक है लेकिन फाइनली अब जो है वो वक्त आ गया है जहां पर हम पहचान कौन गेम खेलेंगे। और एक और भाई है हुसैन भाई ने भी बूम शेक लिखा है। अब देखो एक बूम शेक लिख रहा है, सुफियान भाई है ये शायद, हाँ हुसैन नहीं है ये सुफियान है, ये लिख रहा है बूम शेक भाई कृष्णा भाई, बूम नहीं है मतलब है बूम लेकिन शाका लाका लाका नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा गाना प्ले करते हैं और पहचान कौन गेम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सो क्योंकि आज तेज हाई बीट वाले वर्जन के गाने प्ले किए थे मैंने, तो आज ऐसे ही गाने अपन गाड़ के रखे हुए हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये गेम कैसे खेला जाता है। बहुत ही फेमस कोई सॉन्ग जिसके लिरिक्स मैं बीच से प्ले करता हूँ, कभी लिरिक्स होते हैं कभी इंस्ट्रूमेंटल कभी म्यूजिकल होते हैं, और आपको पहचानना होता है गाने का नाम, और ये बीच के लिरिक्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और अगर आपने सही पहचाना बहुत ही उम्दा, फिर तो बादाम मिलता ही है मेरी तरफ से। और अगर नहीं पहचाना तो नया ट्राई करने का मौका मिलता है, यानी कि नेक्स्ट गाना भी आप ट्राई कर सकते हैं या फिर अगले दिन भी ट्राई कर सकते हैं। वक्त आ गया है चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना पहचान कौन में आज है ये।

0: बताइए इस गाने का नाम जश्न है फुल, सारी लाइनें इन्होंने बोल दी है और उम्मीद है कि ये गाना आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि वादा किया था दानिश ने सबसे पहले बता दिया है इस गाने का नाम, बहुत ही उम्दा और सॉन्ग है सेलिब्रेशन। इस गाने में ये लाइन ज़रूर है बट गाने का नाम ये नहीं है, यूसुफ भाई। ओके, हेशाम भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। और फिर एक और ये मैसेज है खादिर अब्दुल हादी का, लेकिन ये गलत जवाब है। खादिर साहब एक बार फिर से ध्यान से। आई बेट कि ये गाना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन जहां से मैंने ये म्यूजिक निकाला है, जो लिरिक्स निकाली है, बहुत मुश्किल है। असल में ये गाने का नाम है
1: आज की पार्टी मेरी तरफ से, पार्टी मेरी तरफ से, उतरे पलक से, हाय हाय।
0: मेघा सिंह की आवाज में ये गाना था आज की पार्टी, और इसमें सेलिब्रेशन वाली लाइन भी है। यूसुफ भाई बिल्कुल सही, वैसे बहुत कम लोग इसे पहचान पाए, लेकिन दूसरा गाना भी पहचानने का मौका है आपके पास। एटलीस्ट दो गाने तो पहचानो। दूसरा गाना क्या है, तीसरे से पहले, ये रहा दूसरा गाना आज का। बस बस बस बाबू भैया, इसके आगे नहीं बताओ।
1: दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके, आवन से यूं मैं सुनिए तेरे नाल नाल नहीं।
0: हां जी बताओ गाने का नाम, इस गाने का नाम क्या है। FM 107 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107। एक भाई ने कहा है सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई कहते हैं, सर कब है आपकी पार्टी? भाई मेरी पार्टी में डायरेक्ट बिरयानी आएगी, समझ रहे हो, मैं नहीं हूँगा उसमें फिर। शायद कितने दिन बाद, उसी दिन होता है ना, 13वीं 14वीं तो नहीं होता। डायरेक्ट बिरयानी, अब कौन सी बिरयानी खाएंगे ये आप बता सकते हैं। हाँ, अपनी अपनी चॉइस भी होती है, चिकन भी रहेगी, मटन भी रहेगी, है ना, तो जो आपका दिल करे। असली पार्टी उसी दिन होगी, ठीक है भाई, है अरबाज साहब। बाकी गाने की तरफ बढ़ते हैं, किसने सही जवाब दिया है। सबसे पहले जवाब दिया है अगेन, बिल्कुल सही है दानिश ने, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, हालांकि दो तीन लफ्ज़ है इसमें, बट ठीक है, समझ गया, बहुत ही उम्दा दानिश, सही खेल रहे हो तुम। फिर हेशाम ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, फरहत ने कहा है ठीक है, बिल्कुल सही कहा है, कैसर भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है, एहसान अली ने गलत जवाब दिया है। बस इसी का ऑपोजिट दे दो यार, आखिरी का जो लफ्ज़ लिखे है ना तुमने एहसान भाई, इसी का ऑपोजिट कर दो, सही जवाब हो जाएगा। यूसुफ भाई ने, हाँ ठीक है, अगेन यूसुफ भाई आज लग रहा खुद खेल रहे हैं, आज बस वो लाइन नहीं लिख रहे हैं, वो लफ्ज नहीं लिख रहा है जिस लफ्ज से या जिस वर्ड से गाने को सेव किया गया है, सेव किया गया, लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है, आपने जो जवाब दिया ऑब्वियसली वो भी ठीक है। ये मकसूद साहब ने, ठीक है, ये बहुत ही सेफ, मकसूद साहब ने लिखा है पार्टनर, क्या बात है यार, मकसूद साहब बहुत सेफ खेल रहे हैं यार। कादिर अब्दुल हादी ने कहा है, और ये इन्होंने भी बहुत सही कहा है, इन्होंने आखिर के लफ्ज ही नहीं लिखे, इन्होंने पार्टनर तक नहीं लिखा है। दो लफ्ज में बहुत ही सेफ खेल गए। फिर उसके बाद बिल्कुल सही एहसान आपने करेक्ट कर दिया है। अरबाज क्या लिखते हैं, सर मुझे वो वाली बढ़िया ही चाहिए जिसमें बकरा हो, ऑन बिरयानी चाहिए जिसमें बकरा हो। अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा सर आपका, घर में चुगली करनी पड़ेगी आपके खिलाफ, अरे बिरयानी खाने की इतनी जल्दी। ओके, तो ये

सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में गाना सुना आपने, और तीसरा गाना आज का चैलेंज यहाँ पर खत्म हो जाएगा अगर आपने तीनों गाना सही बता दिया। तो तीसरे नंबर का गाना,

0: बहुत ही उम्दा यार दानिश भाई, एक बार फिर से आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब मुझे दानिश के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है कि ये चीटिंग करते हैं।
1: हाँ मतलब इतना भी ज्यादा करेक्ट कैसे हो सकता है कोई भाई? 100 में से 100 नंबर कहाँ सिर्फ मैथ में आता है भाई, वो भी तब जब सारे आपने सॉल्यूशन एकदम करेक्ट कर दिए हो, आपने प्लस माइनस सही किया हो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब सही कर दिया हो यार, तब होता है। मैं मान ही नहीं सकता यार, हर बार 3 दिन से लगातार ये पूरे एग्जैक्ट स्कोर कर रहे हैं, 100 में 100% लेकर आ रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? और हिशाम साहब ने भी आज पहली बार मेरे ख्याल में 3 के 3 सही जवाब दिए। वैसे हिशाम भाई भी लगातार सही जवाब देते हैं, दानिश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, सही पहचाना है। यूसुफ भाई ने भी सही पहचान लिया है 100 में से 100। कैसर साहब ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, और ओए होए फरज साहब ने भी बिल्कुल सही पहचाना है। फिर उसके बाद एक ने लिखा फतंग, फतंग का तो मतलब मुझे पता नहीं है। जाकिर हुसैन नूरी ने कहा है ओए होए ये कुड़िया शेर।

पाजी दलेर मेहंदी और नेहा कक्कड़ ने आग लगाई है इसमें एफएम 107 पे, बिल्कुल सही पहचाना है सभी ने। ये गाना है कुड़िया शहर दिया और मुझे लगता है नेक्स्ट गाना यही आना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ एहसान अली का वो गाना कर गई चुल ये मैंने लगाया था वो नहीं लगा सकता, बट पसूरी आपको याद हो एक ने कहा था प्ले करने को, तो मैं वो पसूरी गाना प्ले करने जा रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट किया है नावेद भाई ने, तो नावेद भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना मैं प्ले करूंगा, लेकिन कल पक्का ये गाना मैं कोशिश करूंगा अगर थीम वैसी हुई तो, कुड़िया शहर दी अगर ये गाना प्ले हो जाए तो मजा आ जाएगा। साथ ही और भी लोगों ने सही जवाब दिया, मोहम्मद इस्लाम ने सही जवाब दिया है, भाई वॉइस सर्चिंग करते हैं चीटिंग, हाँ मुझे खुद भी लगता है एग्जैक्टली मैं श्योर हो गया हूँ, ठीक है मैं एक दिन लाइव खेलूंगा दानिश भाई, अब आपकी चीटिंग पकड़नी पड़ेगी अगर ऐसा है तो, बाकी अगर नहीं है तो फिर तो आप लाइव ही पहचान जाएंगे। चलो खान साहब ने भी लिखा है सब चीटिंग करते हैं, अच्छा सब कह रहे सब चीटिंग करते हैं। उसके अलावा दानिश भाई ने एक ऑडियो भेजा, अब ऑडियो में हम इनको पर्सनल मैसेज कर लेंगे क्या इन्होंने भेजा है और फिर क्या इन्होंने कहा है अपन कल बताएंगे, ठीक है डन हो गई। चलो अभी बेहतरीन से गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एंड दिस सॉन्ग इज संग बाय अरिजीत सिंह एंड तुलसी कुमार, बहुत ही ज्यादा ये गाना फेमस हुआ था और इस गाने का नाम है पसूरी, नवेद भाई ना, हाँ नवेद भाई ने रिक्वेस्ट किया था, सरदार G3 मूवी का ट्रैक है जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ ने, नहीं पसूरी अलग है, पसूरी अलग है, ये है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार वाला पसूरी, ठीक है तो यहाँ पर पसूरी गाना अपन लेकर बैठ गए और इस गाने को प्ले करते हैं एफएम 107 पे, एंजॉय करें और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम 4 बजे, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: तो फिर क्या हुआ, मैं बात कर रहा था एकदम से फिर
3: आया तो फिर मैं चप्पल गाय मेरी चप्पल वो दरवाजे पे कोई है। आ रहा हूँ भाई यार, हद कर दी, धनिया बो दिया।

0: क्यों हाँ भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा भाई के ढंग से। बाकी मैसेज तो आपके आने चाहिए। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी भाई, यहीं रोक के रहूंगा मैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा मैसेज नहीं आएगा तब तक। 666-22-107 नंबर है भाई, व्हाट्सएप दो रहे मैसेज चाहिए पहले। एक मैसेज है, बूम शाका लगा। अच्छा आप थे क्या? ओहो, ये भाई सब रिक्वेस्ट करी थी मोहम्मद भाई ने, बूम शाका लगा चलेगा भाई, 6 बजे चलेगा भाई, इसमें अलाउड नहीं है इस घंटे गाने चलाना, 6 बजे चलाएंगे बढ़िया करके बूम शाका लगा। ओवेस अहमद साहब को मैसेज आया, वालेकुम अस्सलाम। खादिर अब्दुल अजीज साहब, वालेकुम अस्सलाम। एम के साहब, वालेकुम अस्सलाम। दिल के साथ मेरे भाई को दिल भे मैं भेज देता हूँ। एक मैसेज है, कैन आई क्वेश्चन? यस प्लीज़ क्वेश्चन। कौन है? मुजम्मिल अली। मुजम्मिल अली साहब प्लीज़ क्वेश्चन, पर व्हाट इज़ द क्वेश्चन? और ओवेस भाई ने भी दिल भेज दिया है, बिल्कुल सुरख लाल भेजा है एकदम सुरख। एक मैसेज है हिशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, कैसा है मेरा भाई? वालेकुम अस्सलाम पार्टी, क्या हाल है अब्दुल भाई? और खादिम हुसैन साहब, वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं, कबीर भाई ढेर सारा प्यार और दुआएं आपके लिए, मेरी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं रखी आप। और यूसुफ भाई कह रहे हैं, हैप्पी वेंसडे इवनिंग। अरे वेंसडे हो गया आज? और ले भाई, मैं तो अभी भी ट्यूसडे में जी रहा था, बहुत बढ़िया हो गया। ए भाई हमेशा मैं का सॉन्ग नहीं भाई, मैं रिक्वेस्ट नहीं चला सकता अब्दुल अजीज़ भाई, उसके लिए मैं दिल से माजरत चाहता हूँ, रिक्वेस्ट आर जा चुका है। खादर अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं, धुरंधर एंट्री, एंटरटेनमेंट सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी। बिल्कुल भाई, स्टार्टेड टू मेक एंटरटेनमेंट ड्रम्स, बजाओ अभी चला देंगे भाई। लुसेल के पास, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा क्यूट सा भेज दिया आपने, ये हमें भेजा है वसीम भाई ने। वसीम भाई बढ़िया मैस्कॉट घूम रहा है। अकील हैदर साहब, वालेकुम अस्सलाम। और सैयद हमजा भाई लिखते हैं, हाउ आर यू, इन्जॉयड यस्टरडे स्टोरी? वालेकुम अस्सलाम। से पहले तो लॉट, हाउ ही फूल्ड एवरीवन। हमजा भाई बस इसलिए तो भेजता हूँ आप आराम से सुन सकें। गुड मॉर्निंग बॉस, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट अब्दुल नवीद साहब प्रेजेंट, आपा भी प्रेजेंट। हाँ एक मैसेज है, वेलकम वेलकम। ओके तो देखिए, क्या स्टोरी सुनाओ कोई अच्छी वाली? हाँ अभी तक तो बहुत बुरी सुनाई है मैंने नियाज भाई, मुझे तो पीटने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। ये यहीं पे विनुमरान में आए थे, मैं डर के अंदर ही था, मैं रात के 12 बजे तक निकले ही नहीं स्टूडियो से, मैंने कहा खामखा पीटेंगे। कह रहे स्टोरी का अच्छी वाली सुनाओ, मुझे वाली फीलिंग आ रही है, वो मुशायरे में होता ना साहब, कोई अच्छा शेर सुनाइए, चलो कुछ किसी और का ही सुना दो। अच्छी स्टोरी सुनाएंगे नियाज भाई, कमी थोड़ी है भाई, एक ही काम तो आता है हमें, दूसरा तो कोई काम भी ना आया करे भाई, सुना देंगे। और लव फ्रॉम यूपी, तो यूपी वालों को भी बहुत सारा प्यार। करो कोई अच्छी कहानी सुनाओ। नहीं भाई आज मैं सबसे बुरी कहानी आज सुनाऊंगा मैं। जहर घोल गया एकदम प्याले में। मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम, प्लीज ड्राइव सेफली। कबीर भाई यू स्टॉप द कार प्लीज, मूव वी स्टक। गाड़ी अब चलेगी भाई। मकसूद भाई मैं साइड कर लेता हूँ, इधर से निकल जाओ। कह रहे हैं 10 रुपये का ढोल बजा दो, रुको भाई किधर का भाई, मारे ढोल ढूंढना पड़ता ना भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, रुक जाओ। DHOL ढोल, ये है किधर गया मेरे ढोल, मेरे ढोल किधर गया? एलो जी, हाँ जी 10 रुपये और 15 रुपये की रिक्वेस्ट आई है, हम 15 रुपये का ढोल बजाएंगे। मैं क्या जी, थर्सडे करीब दिख रहा है, मेरा नाम दोहा वाला कबीर है। और बस 15 के ही थे, 15 रुपये की तो बजा दिया भाई हमने, थैंक यू। अब 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है? कह रहे हैं स्टोरी लाइक भूत वाली। देखो भाई इनका नाम क्या है, एक सेकंड। नियाज भाई कह रहे हैं भूत वाली स्टोरी। भाई भूत वाली स्टोरी तो अगर मिल गई तो सुना देंगे, आज तो कोनी भाई, आज कोनी स्टोरी भूत वाली। भूत आलेगा कल को अगर आना होगा तो, वरना आज तो बढ़िया सी कहानी है आपके लिए, छोटी सी कहानी लेकिन बढ़िया है। 20 मिनट और बजा दो ढोल ले। अकील हैदर साहब, 20 मिनट की आपको पता है कितनी कीमत लगती है? मैं भाई साहब 500 की गड्डी बिल्कुल करारी करारी, मेरे मुंह पे फेंक के मारो, मैं पूरे 1 घंटे चलाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद इंशाल्लाह। कह रहे आई विल पे। मेरा भाई बहुत प्यार बहुत प्यार। 11 मिनट 2 सेकंड के बाद शाम के तार के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जाना नहीं है आपने। और एक काम तो बड़ा आसान है जो कर सकते हैं, रुको मैं सिंपैथी गेन करता हूँ, एक्टिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। एक्शन। तो यार आप कोई आर्टिस्ट को सुन रहे हैं, कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकते हैं उसकी हौसला अफजाई के लिए। नंबर 666-22-107 इतना तो कर ही सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

base de gaquian, अच्छा मैं एक चीज सबसे पहले शुरू करने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ. तो एक रील हो सकता है आपके पास भी पहुंचे. उस रील में क्या है कि एक खातून है और वो जो है बता रही है कि उनकी आरजे की आवाज कैसी है और असल जिंदगी में आवाज कैसी है. प्लीज उस रील को मत देखिए क्योंकि उससे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है. उसमें वो बता रही है कि उनकी आरजिंग की आवाज अलग है उनके बोलने की. भाई मैं ऐसी असल जिंदगी में भी बोलता हूँ और ऐसी मैं यहाँ बोल रहा हूँ. सो वॉइस डजंट चेंज. ठीक है, वो बात और है कि अगर मैं कोई ऐड करने लग जाऊँ तो बात चेंज हो जाएगी. समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैसेज किया है अम्मार यासिर भाई ने, बोलूँ कि आज ही मिलिए अम्मार यासिर भाई से, तो यहाँ चेंज करी मैंने. पर शो करने की आवाज़ और मेरी असल आवाज़ यही है भाई. ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा बिकॉज वो रील जो है लोगों तक पहुंच रही है. मेरी जिंदगी में लोगों ने धनिया वो दिया सोशल मीडिया पे भेज भेज के. ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं. देखिए एक आपने देखा होगा ना, वो लोग क्या करते हैं, उनका एक ही तरीका है बोलने का. वो आएंगे और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा मैं ऐसे बोलता हूँ. वो आएंगे और बोलेंगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग दोहा और मैं आज गाँव के साथ. और ये ऐसे नहीं से कौन बोलता भाई, ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे ऐसे नहीं बोलने का. अच्छा क्लियर कर दिया भाई, क्योंकि आपको ऐसे आरजेस मिलेंगे बोलते हुए ना, बिकॉज दिल काम अपन से के आज के और ये ऐसे ये आई से नहीं. ठीक है, तो जैसे मैं हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं असल जिंदगी में भी साउंड करता हूँ. अगर मैं रोज रोज पिछले 14 सालों से आवाज़ बदलता रहता ना कसम उड़ान चल ले कि आप मुझे एक्सेप्ट ही ना करते. कहते अरे आगे जाओ बाबा. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बता दो

0: आप वॉइस एक्सरसाइज भी करते हो या कितनी प्रैक्टिस? भाई नो एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो यहाँ भाई कोई एक्सरसाइज नहीं है भाई, आज की कोई एक्सरसाइज नहीं है, मुझ जैसा लेजी आदमी एक्सरसाइज बस अल्लाह मियां ने कहा कि ये मेरा बंदा बहुत आलसी है, इसको मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं करूँगा क्या है, दे दी गवाही, सही बात है भाई, सही बात कह रहा हूँ, नहीं कह रहा वैसे भाई, करना पड़ता है भाई, एक में से भाई आप जैसे ही बोलो हम कबूल है, नहीं भाई मैं असल ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँगा। एक वॉइस नोट है तो मैं अभी सुनूंगा, ये मुझे वॉइस नोट भेजा आमिर भाई ने, आमिर भाई नसीम भाई कह रहे हैं अच्छा जी ऐसा क्या भाई, ऐसे ही है, वो रील पहुँचेगी आप लोगों तक, मैं जानता हूँ ना क्योंकि कुछ लोगों तक पहुँची, उन्होंने मुझे भेजी। राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, फिर अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, थैंक यू सो मच। या तो मैंने कहा सबसे पहले ये जरा कर दें, एक मैसेज है, आई होप आप ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम फरहत भाई, हमें एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, हमें क्या होगा, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई देखो आज की जो कहानी है जो मैं बस कुछ देर में शुरू कर दूंगा 5:30, उस कहानी की बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि ये वन इन अ मिलियन चांसेस वाली कहानी है, ठीक है। तो आप इस कहानी को हो सकता है प्रिडिक्ट कर लें, लेकिन आपके प्रिडिक्शन के भी परे जाएगी ये कहानी, इस बात की मैं पूरी पूरी गारंटी दे रहा हूँ आपको क्योंकि जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, सुना, देखा, परखा, तो समझ में आया कि ऐसी कहानी तो बाप रे बाप, एंड दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जहाँ पे कम वक्त में आपको एक ऐसा कॉन्टेंट मिल जाता है, आपको लगता भाई ये तो मैं रिश्तेदारों को सुनाएगा क्या। तो ये कहानी अभी कुछ देर में आ जाएगी। मीन वाले भाई ने मुझसे पूछा है, कबीर भाई ये बताइए कि आप कुछ खाते हैं आवाज़ के लिए क्या? मैं क्यों खाऊंगा, नहीं भाई कुछ नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं भाई, तो मोमो खाता हूँ भाई, मोमो पे जिंदा हूँ मैं। सैयद फरोज भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, शानदार एंट्री भाई, विल नॉट गेट अ चांस टू मैसेज वाइल ड्राइविंग बट टुडे आई मैनेज्ड, वेरी गुड जॉब। और एक भाई ने जो मुझे मैसेज किया था, भाई कह रहे थे कॉल करने के लिए, भाई किस लिए कॉल करनी है? उमर शहजाद भाई कोई बात वाच कोई अभी तो सवाल, मैं आज सवाल कर भी नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ आज जो है फ्री स्टाइल बात कीजिए आप लोगों से, बिकॉज क्या होता है कि हम सिर्फ बात कर रहे थे टॉपिक्स पे ही। आज आप बताइए क्या बात करना चाहते हैं, वो सवाल जो आप पूछना पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक उस दिन तो मुझसे क्या क्या नहीं सवाल पूछे जा रहे थे, आप अपने फेस पे कौन सा कोरियन प्रोडक्ट लगाते हैं बताइए, ये सवाल भी मुझसे पूछा जा चुका है मैं कौन सा वैसी त्वचा है जो मैं फैशन वीक में चलूंगा भाई कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है मुझे जुमेरात रन भाई ने, भाई थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग। एक भाई ने बोला है भाई ज़रा ये बताइए कि आरजे की ज़िंदगी में क्या ख़ास है। बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है ऐसा, तो मतलब ख़ास तो काम ही है भाई, अगर पैशन है तो बहुत बढ़िया। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि मोमोज से गला ठीक होता है नहीं, मोमोज पे गला ठीक नहीं होता है, मेरे मोमोज से थॉट्स अच्छे आते हैं, है ना, एकदम लाल चटनी हो उसको एकदम सालन की तरह खाया जाए, आ हा हा हा हा हा हा, फिर यूसुफ भाई जो मज़ा आता है ना, वो लाल चटनी जब हिट करती है उससे थॉट्स आते हैं, कमाल के थॉट्स आते हैं। एक मैसेज है यस्टरडे स्टोरी, मोहम्मद अयाज भाई आपको नहीं मिली थी कहानी? कोई गल नहीं पाजी, मैं भेजदा कल दी कहानी, बहुत लंबी आ फिर भी भेज देता हूँ आपको, भेज दीजिए। एक और मैसेज है, अच्छा तो आज क्वेश्चन आंसर राउंड, हाँ मैंने सोचा आज ये करते हैं यूसुफ भाई, क्योंकि वी आर क्लोज टू द वीकेंड, कल वैसे भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी कहानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पूछना नहीं है बताना है। अच्छा आपको मैं मतलब सबको बताना है, मेरे को बताना है, उमर शहजाद भाई मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ, तो बताइए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं आप। और एक मैसेज है, चलो मैं आपको कॉल कर ही लेता हूँ इफ़ यू वांट टू टेल मी। एक मैसेज है, भाई आप कौन सा टूथपेस्ट और माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं? माउथ वॉश इतना महंगा नहीं हूँ मैं बुडुश किया बुडुश और आ गया, माउथ वॉश तक की कहानी नहीं है मेरी आया भाई ये तो आपने मतलब वो कर दिया, बड़ी बात कह दी बहुत, मैं तो बुडुश करके आ जाता हूँ भाई, बुरुश किया बढ़िया एकदम और आ गए। एक कॉल करनी है तो मैं कॉल कर ही लेता हूँ, ये जो मेरा तिरन भाई कह रहे हैं। और कमाल भाई वालेकुम सलाम, कमाल भाई आज कोई सवाल नहीं है भाई, आज मैं ही सवाल हूँ, मैं ही जवाब हूँ। भाई को कॉल करी तो है पर उठा लें तो बात है, भैया जी कॉल उठाई, हाँ अस्सलाम वालेकुम
1: जी, वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल चाल है भाई के?
1: शुक्र अल्लाह का करम है जनाब।
0: हाँ भाई क्या कहना चाह रहे थे आप, कहिए। आप
1: कहना चाह रहे थे जनाब आपका मुंह मीठा करवाना है हमने।
0: अरे मुबारकबाद दूं, किस बात की देनी है ये बता दो
1: हाँ जी पहले मुबारकबाद तो दीजिए।
0: मुबारक हो मेरे भाई को, मुबारक हो मबरूक, अब बताओ। अरे रे रे रे, मुबारक हो मेरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए मेरा भाई, बहुत बहुत खुश हूँ मैं।

0: तो
1: भाई ये दुआओं का नतीजा है, ये दुआओं का नतीजा आपके सामने मेरे भाई, ये तो आपके भाग खुल गए मेरी जान। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक उमर भाई।
0: पहले दो बेटे थे मेरे,
1: अल्लाह
0: पाक ने
1: बेटियां दी है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू भाई, बहुत बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए।
0: भाई ये किधर मिठाई लेके आऊँ फिर?
1: अरे भाई मिठाई कैसे खिलाओगे, मैं कैसे बताऊँ आपको? अच्छा मैं मैसेज बता दूंगा आपको, पर ये बताओ क्या कहते हैं, कुछ नाम वाम अब डिसाइड हुआ? नाम अभी नहीं, कितना वक्त हो गया? नाम वाम रखा है अभी? नाम रखा है क्या बिटिया का कुछ?
0: नहीं अभी नाम नहीं रखा जनाब, दो दिन हो गए।
1: अच्छा दो दिन ही हुए हैं? हाँ अच्छा अच्छा ओके ओके। नहीं भाई सब
0: है? सजेशन दीजिए
1: सजेशन भाई, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, ये आपका अपना जाती मामला है, इसमें आप डिसाइड करें नाम, हमें तो बता दीजिएगा बस, ताकि और दुआएं भेज सके। हाँ
0: ना इसी कहा कि लोगों की राय लेनी चाहिए।
1: अच्छा
0: अपने बहन को भी कहा है, अपने वाले साहब को भी कहा है।
1: अच्छा
0: अभी आपको भी कह रहा हूं।
1: तो भाई कोई जहन में आएगा मैं आपको तुरंत मैसेज करूंगा भाई, अब मैं पूरे शो में सोचूंगा ये, मैं डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। और हम सबकी तरफ से मुबारकबाद जो भी सुन रहे हैं आपको, आई एम प्रीटी श्योर सबकी तरफ से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, खुश रहिए ऐसी। जजाकल्ला
0: भाई,
1: जजाकल्ला भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत प्यार आपको। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब भाई का एक मैसेज आया है, अविस भाई कह रहे हैं आज का सवाल ये है कि आज का सवाल कौन है, मैं हूँ आज का सवाल। एक मैसेज, सलाम भाई मुदस्सर, व्हाट्स द एब्रीवेशन ऑफ आरजे? आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी मुदस्सर भाई। कुछ जगहों पर डीजे भी यूज़ होता है विच इज़ डिस्क जॉकी, पर मोस्टली आरजे यूज़ होता है विच इज़ रेडियो जॉकी, सो इसका मतलब आरजे। एक मैसेज है, यूसुफ भाई कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन शायद कोई पूछे लेकिन फिर से पूछ रहा हूँ, आप हमेशा बंडाना यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द जेन्युइन रीज़न फॉर दिस? मैंने कभी आपको विदाउट बंडाना नहीं देखा। मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखिए, है विदाउट बंडाना भी फोटोज़ है। और रीज़न ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं रेडियो में आया था तो पहचान बन गई थी, तो मैंने कहा लेट्स कैरी दैट पहचान, तो बस दैट इज़ द ओनली रीज़न। रेडियो जॉकी इसका मतलब क्या है भाई? रेडियो जॉकी मतलब आरजे, आरजे मतलब रेडियो जॉकी, आर मतलब रेडियो, जे मतलब जॉकी, ये है जी मतलब, और को नहीं मतलब। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और भाई कह रहे हैं हॉरर का, एक ने मैसेज किया आसिफ भाई हॉरर कब सुना रहे हैं? हॉरर आज नहीं सुना रहा भाई, आज नहीं, वीकेंड तो आने दो भाई। कबीर भाई जॉकी ये मतलब सर, हाँ भाई वैसे ही कुछ है भाई, वैसा ही कुछ है, कह रहे रेडियो जॉब इज आरजे रेडियो, हाँ ठीक है आप जो बोले भाई, आपसे ज्यादा है क्या मोहम्मद भाई? बदलवा दूं मैं पूरी, वो चेंज करवा दूं फुल फॉर्म इसकी। एक मैसेज है मेरे सामने, ओके बड़ी वाली गाड़ी है, इस टाइम ऑन द रोड। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, जरा बच के जरा हटके निकल जाना। रेडियो जॉकर नासिर भाई, अच्छा आपने जोकर नहीं बोला, मेरे दिल पे लग जाती है अभी मैं झगड़ा करने के लिए बैठा हुआ था। एक मैसेज है, आज की कहानी छूट गई याद से भेज देना। है आज की कहानी छूट गई है, सुनाई ही नहीं मैंने अभी तक, तो मैं तो अभी मतलब अभी तक नहीं सुनाया मैंने। एंड एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रहे हैं भाई? मैं समझा नहीं, मतलब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ का मैसेज, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सी लिपि लिखी है आपने? हिंदी तो नहीं लग रही है। भेज दो भाई वापस, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैसेज है, एडवांस में क्या? अच्छा एडवांस में कह रहे हैं, आपने लिखा कहानी छूट गई है, तो मैंने कहा अच्छा छूट गई है तो मैंने सुनाई नहीं है, क्योंकि ड्यूटी खलास हो गई है, मैं अक्सर गाड़ी में सुन लेता हूँ लेकिन ड्यूटी लेने पर ही सुननी पड़ती। कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू, नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा बस एक अलग पहचान, हाँ ये बहुत जल्दी बंडाना भी हटने वाला है दिस ईयर ओनली, बट नो प्रॉब्लम यूसुफ भाई, आई लव्ड इट कि आपने पूछा। एक मैसेज है, क्या पूछा है? ऑलराइट तला भाई, वालेकुम अस्सलाम पार्टी, क्या चल रहा है तला भाई? एंड तला भाई के बाद एक और मैसेज आया है, हेलो कबीर अंकल, माय नेम इज़ अयान, आई एम सिटिंग विद माय बाबा। अयान बहुत सारा प्यार बड़े। एक मैसेज, आपने पास्ट में किसी और रेडियो स्टेशन पर स्टोरी सुनाई? कभी नहीं। मैंने बहुत सालों पहले हॉरर स्टोरीज बनाई थी, स्टोरी सुनाई थी भाई, बट वो कैसा था, उसमें लोग कैरेक्टर्स प्ले करते थे, तो वो मेरी आवाज़ नहीं थी, हम लोग फिक्शनल कहानी सुनाते थे, वो असली कहानियाँ नहीं होती थी। शुरू कर दो भाई, ठीक है भाई शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं बढ़िया। एक चाय दो खारी, कबीर भाई सब पे भारी। अरे भाई जाकिर हुसैन भाई ये बढ़िया भाई, ये मैं टी शर्ट पर लिखवाऊंगा पिच्चों की तरफ, एक चाय दो खारी कबीर भाई सब पे भारी मेरा भाई क्या आपको गाड़ी में सुनना हो, थैंक यू। एक क्या, एक कबूतर कबीर भाई की कार पर कुछ कचरा करता था, क्या वो कबूतर जिंदा है या नहीं? उस कबूतर को ना मैंने बस आगे मत पूछो। मैसेज है कबीर भाई, वालेकुम सलाम, अल्लाह ने मुझे 10 साल बाद बेटी दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माय एंजल नेम इज़ मनाल। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। एक ज़रा कॉल लेते हैं फिर कहानी शुरू करते हैं, कॉल कट गई है तो अब हम कहानी शुरू कर लेते हैं। कहानी बस आने वाली है विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। कबूतर किलर नहीं, अरे तला भाई फौरन इल्ज़ाम। अच्छा ये बताओ, अ जॉकी प्राइमरी रेफर्स टू अ प्रोफेशन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेसेस, सो डज रेडियो जॉकी राइड्स द रेडियो, राइड्स द एयर वेव, राइड्स द एयर वेव इन दैट सेंस। मेरा सवाल है, आप रेडियो स्टेशन वाले पैसे कैसे कमाते हैं? गवर्नमेंट दीदी, गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा भाई?
1: बढ़िया भाई, और इनका मैं जवाब दे दूं, कह रहे हैं रेडियो जॉकी पैसे कैसे कमाते हैं। भाई रेडियो स्टेशन पैसा कमाते हैं एड से, लेकिन हमारा जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। आप बताओ भाई क्या कह रहे थे आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो आप? ठीक ठाक?
1: बढ़िया भाई, एकदम टनाटन। आप सुनाइए क्या हाल है?
2: आपने बोला कॉल कट गई, मैंने ऐसे कैसे कट गई भाई,
1: ऐसे कैसे कट गई भाई,
2: पकड़ लिया ना भाई।
1: हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई को। और बताओ क्या चल रहा है मेरे जान, कहाँ घूम रहे हैं?
2: मैं मजे की बात बताऊँ, मैं आ गया था सुनाइए वापस रूम के पास ही, मैंने खाना छाना खाया, मैंने टाइम देखा, मतलब 5:24 हो गए, मैं लड़के बैठे हुए, मैं उठ के वापस गाड़ी में आ गया, मतलब रेडियो सुनना भाई से बात करनी है।
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल,
2: बैठा हुआ गाड़ी में।
1: नहीं आज आज
2: क्या रहा टॉपिक आज का?
1: आज कोई टॉपिक नहीं था, मैंने कहा भाई जो कुछ पूछना है पूछ लो, तो लोगों ने अतरंगी सतरंगी सवाल पूछ लिए, बात जो है शुरू हुई और खादिम भाई जो है उसे कबूतर तक ले गए, फिर कबूतर तक की बात हो गई, अभी बस कहानी की तरफ बढ़ा हुआ है, मजे आ गए
2: भाई। ये हुआ, एक पर्सनल सवाल मैं पूछूं?
1: हाँ पूछो ना।
2: एज बताना ना आपको।
1: मेरी एज भाई 93 से खींच के अभी तक लगा लो 33 साल का होने वाला हूँ भाई मैं।
2: करीब करीब ही हो, ज़्यादा दूर नहीं।
1: हाँ बस महीना बाकी है भाई, 30 अगस्त को बर्थडे आपके भाई का।
2: जी ओ, हम तो भाई दिसंबर वाले।
1: अच्छा दिसंबर वाले हैं आप, कौन सा ईयर है?
2: ठंडे तरीन वाले, 4 दिसंबर
1: 1997। ओहो अब तो मैं भाई साहब अब ऑर्डर चलाऊंगा, मैं 4 साल छोटे हैं। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, ये रेडियो सुनते रहते हो 24 घंटे, क्या ये चक्कर है? है पढ़ाई क्यों नहीं हो रही
2: भाई? पढ़ाई वाले चक्कर से निकल रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं कल परसों ढूंढ रहा था, मैं एक दो कोर्सेस वगैरह कोई करूँ अपना को लेवल बूस्ट करें, बहुत पीछे बैठे हैं।
1: नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज डू इट, अच्छे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नाम रोशन करो भाई सबका, क्या ठीक है भाई?
2: मैं इस चीज में आपसे सजेशन लूंगा, क्या सजेस्ट करोगे?
1: प्लीज भाई प्लीज आ जाओ, मैसेज
2: करो, मुझे मैसेज करना।
1: डन भाई, डन डन डन, नो प्रॉब्लम।
2: ओके बाकी बैठा हूँ इंतजार कर रहे हैं।
1: हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू कीजिए, शुरू कर रहा हूँ बस।
2: कल वाली तो अभी तक दिमाग से नहीं निकली,
1: आज वाली भी नहीं निकलेगी देखना,
2: वो तजर्बे नहीं भूल रहे,
1: आज वाला तजुर्बा भी नहीं छोड़ पाऊंगा।
2: मैं
1: शुरू कर,
2: मैं उससे मोटिवेट हुआ, मैं जब भी बोला मैंने लेवल अपना बूस्ट करना भाई।
1: अरे भाई पटरी पर मत चलाने लग जाना चीजें। चलो मैं अब कहानी शुरू कर रहा हूँ मेरे जान, आ जाओ सुन लो ठीक है?
2: ओके
1: मेरा भाई, चलो अल्लाह हाफिज। एक मैसेज है कबीर भाई, आप रिकॉर्ड कितने घंटे तक रिकॉर्ड है? मेरा लगातार शो करने का रिकॉर्ड है 106 घंटे का भाई, AI भी बता देगा आपको गूगल पे भाई। एक मैसेज है, स्टोरी नरेशन का कैसे आइडिया आया? बहुत सडन आइडिया आया था जब मैं FM 107 पे आया था, एकदम से मैंने एक स्टोरी देखी, मैंने कहा यार ये सुना के देखते हैं, और मुझे पहली स्टोरी याद है, पहली जो स्टोरी थी वो एक जहाज़ की कहानी थी, फ्लाइट 491 आई थिंक। नाजिया मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट अ स्टोरी। ओके तो अब एक प्रोमो के बाद शुरू कर रहे हैं, एरा प्रोमो, प्रोमो के बाद हम जो है आपको सुनाई कहानी कहेंगे, प्रोमो ये ओके, एक प्रोमो एंड देन द स्टोरी बिगिंस।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब आप तैयार होंगे। मैं भी बस हाँ हो गया, मैं भी तैयार हूँ एकदम कहानी सुनाने के लिए। तो आज की जो स्टोरी है इट्स नॉट दैट लॉन्ग, कल की तो पूरी 37 मिनट्स की थी, पर आज उतनी लंबी कहानी नहीं। मुझे स्टोरी की वजह से गाड़ी धीरे धीरे मैं शुरू करता हूँ भाई को, गाड़ी धीरे नहीं चलानी पड़ेगी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कहानी का मकसद किसी जिस बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा। आज का किस्सा भी एकदम असली है और इसलिए ही हद से ज़्यादा हैरत अंगेज़ भी है।

ओके लेट्स बिगिन, वॉल्यूम बढ़ा ली जॉय. तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको टाइमलाइन में थोड़ा और पीछे ले चलता हूं. और पीछे आज के किस्से के लिए चलते हैं 1967 में, 1967, ठीक है. दिसंबर का महीना, 24 तारीख थी, हॉलीडेज चल रहे थे और इस वक्त रात के 3 बजे बहुत कुछ एक जगह पे एक साथ हो रहा था. ये जगह थी सील रोड, फीनिक्स सिटी, अलबामा, यूएसए. यहां पर एक लड़का रहता था 26 साल का, उस वक्त 26 साल का था, सैमी ब्राउन जूनियर. सैमी ब्राउन जूनियर उन लड़कों में से था जो खानदान में सबसे ज्यादा रिबेलियस होते हैं ना, जो बच्चे जो इन्हें शरारती नहीं कह सकते, शरारती से थोड़े से एक लेवल ज्यादा होते हैं. तो सैमी ब्राउन जूनियर, सैमी ब्राउन सीनियर के लड़के, ये पूरे खानदान में सबसे ज्यादा रिस्की बच्चा था. ये मतलब ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी, आउट ऑफ कंट्रोल. एंड घर वाले अक्सर परेशान रहते थे इसकी आदतों को लेके, मगर क्योंकि वो 26 साल का हो चुका है. एंड अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, हम इंडिया में भी कहते हैं यार 26 साल के हो गए हो तुम, तो यूएसए में तो बहुत जल्दी वो लोग कह देते हैं कि घर से बाहर चले जाओ. तो ये बंदा घर से बाहर अभी तक निकला नहीं था, ही वाज जस्ट होम. लेकिन अपनी जिंदगी अलग जीता था, अलग इसका कमरा था और घर वालों से कोई ज़्यादा इसका लेना देना नहीं था, जैसे यूएस में मोस्टली हो जाता है आजकल भी. यू नो, टीनेजर्स जब आगे जाते हैं अपनी जिंदगी में, सो दे टेक अ डिफरेंट राउट. तो वही इसने किया. अब रात के 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के बीच में, अराउंड इस टाइम पे सैमी ब्राउन जूनियर अपनी गाड़ी में था. और इससे पहले, क्योंकि जैसे 24 दिसंबर आप समझ गए होंगे कि वो वक्त है जब वेकेशंस होते हैं, तो कुछ ज्यादा ही जश्न मना लिया इसने, कुछ ज्यादा ही जश्न मना लिया. एक तो होश में नहीं था, समझ गए होंगे आप, ज्यादा जश्न मना लिया, और ऊपर से इसको आ रही थी नींद, दोनों चीजें एक साथ थी. और ये चला रहा था गाड़ी और इस वक्त जा रहा था सील रोड फीनिक्स सिटी में. एक तो गाड़ी सीधी नहीं चला पा रहा था और जब आंख झपकती थी तो फिर गाड़ी और ज्यादा खराब हो रही थी. इसने अपने आप को होश में लाने की कोशिश करी, बोला अरे अरे बस बस कुछ देर की दूरी पर मेरा घर है, बस पहुंच जाऊं. और ये अपने आप को जगाने की कोशिश में गाड़ी चला रहा था, बस जैसे तैसे अपने आप को पिंच कर करके. हुआ क्या कि इतने में एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि इस गाड़ी में कुछ दिक्कत है, ये अजीब तरीके से चल रही है. और पुलिस वाले पीछे लग गए सैमी ब्राउन जूनियर के, सैमी ब्राउन जूनियर के पीछे पीछे पुलिस वाले और सैमी आगे आगे आगे आगे. सैमी को पता लगा कि पुलिस वाले ठीक उसके पीछे हैं और उन्होंने अपना सायरन ऑन किया. और जैसे ही ऑन किया, ये समझ गया अरे बाप रे, और ये पकड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज अगर ये पकड़ा गया तो बहुत दिक्कत होगी. दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि ये नशे में है, दिक्कत इसलिए होगी इसके अलावा कि इसके पास लाइसेंस ही नहीं है. इसने सोचा था कि घर तो करीब ही है, आना जाना कर लूंगा, मगर लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से ये होश में नहीं है, ऊपर से नींद आ रही है और पीछे लगी हुई है पुलिस. अब इसका दिमाग जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे कुछ करना पड़ेगा. और इसने एक्सेलेटर पे और ज्यादा तेज प्रेस किया और जो रोड था उस पे ये 100 क्रॉस कर चुका था, फिर 110, 120, 130, फिर ये हाईवे खत्म हुआ. अभी तक पुलिस वाला पीछे था, इसको लगा पुलिस वाले ने मेरा पीछा छोड़ दिया, मगर जो पुलिसमैन था वो भी बहुत तेज था और वो गाड़ी इसको लिटरली टेल कर रही थी, वो पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं था. और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी थी. जब हाईवे खत्म हुआ तो सैमी एक ऐसे रोड पे आ गया जिसका उसे डर था. ये 2 लेन का रोड था, सिर्फ 2 लेन का. अब मुश्किल ये थी कि जो स्पीड वो पीछे से बना के आया था 130 की स्पीड से पूरा भाग के, यहां पे वो जा ही नहीं पा रहा आगे, क्योंकि उसके ठीक आगे गाड़ी थी और वो स्पीड लिमिट में चल रहा था बंदा. और जो रोड की दूसरी साइड थी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, वहां से गाड़ियां आ रही हैं. तो अब सैमी ने कहा मैं क्या करूं, और पीछे पुलिस वाला आ रहा है, बहुत करीब आता चला जा रहा है. इसने कहा मैं क्या करूं, क्या मैं कट मारूं और मैं देख के फिर गाड़ी निकालता हूं. तो उसका प्लानिंग, इसके प्लान ये था कि ये गाड़ी जो है लेफ्ट में करेगा, फिर एकदम से राइट में कर लेगा. मगर दिक्कत ये थी कि एक तो ये होश में नहीं था, गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा था, पर अभी क्योंकि पुलिस वाले पीछे थे
उसने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, और इसने क्या किया, आगे बहुत हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाता रहा, लेकिन आगे जो गाड़ी थी वो तो स्पीड लिमिट में थी, तो उसने अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया, वो भी ढीठ थे, उन्होंने कहा मैं क्यों बढ़ाऊं, मैं तो स्पीड लिमिट से जा रहा हूं। तो इसने जो है डिसाइड किया कि ठीक है अब मौका देख के मैं गाड़ी को लेफ्ट लूंगा फिर राइट मार लूंगा एकदम से। तो उसने लेफ्ट में देखने की कोशिश करी, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, और इसने फिर एकदम से लेफ्ट की साइड कट मारा। पर जब इसने कट मारा तो वो ठीक से हुआ नहीं, और इसकी गाड़ी का एक हिस्सा कट मारते हुए आगे वाली गाड़ी के पीछे साइड पर टकरा गया, एकदम से क्लिप करके निकल गया। जब क्लिप किया वो लगी गाड़ी ठीक आगे वाली गाड़ी के, तो दोनों की दोनों गाड़ियां पूरे रोड पे घूमती एक जगह पे जाके रुकी। मीनवाइल पीछे किस्मत अच्छी थी कि देर रात थी तो ज़्यादा गाड़ियां नहीं थी, मगर ये दोनों गाड़ियां एकदम घूम घूम के रुक गई। मेटल की आवाज़ें, धुआं उठ रहा है, और कार में जो सैमी था वो तो पूरी तरह से हिल चुका था, उसे तो लगा था कि वो बचेगा ही नहीं, उसने अपने आप को देखा कि मैं जिंदा तो हूँ, हाँ मैं जिंदा हूँ। और उसने फिर बाहर देखा कि जिस गाड़ी से वो टकराया जो ठीक उसके आगे चल रही थी, उसने देखा कि एक बंदा उस गाड़ी से निकला, तो उसे शुक्र मनाया उसने, चलो भाई ये भी बच गया, ऊपर वाले तेरा शुक्र। वो बंदा गाड़ी से निकला और अपनी गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया, क्योंकि वहां से धुआं उठ रहा था। ये बंदा 60 साल के करीब होगा, और इसी की गाड़ी सैमी ने ठोकी थी। तो सैमी जो था वो गाड़ी से बाहर आया, उसने बोला आई एम रियली सॉरी सर, पर सॉरी वॉरी कह पाता इतने में तो पुलिस वहाँ पे आई चुकी, तो पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। पर सैमी को इस बात की खुशी थी कि चलो भाई किसी की जान तो नहीं गई। सैमी की किस्मत ने उसका फिर से साथ दिया। दरअसल अमेजिंगली उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो नशे की हालत में गाड़ी भी चला रहा था, फिर भी उसे जेल टाइम नहीं मिला, उसे जेल में नहीं डाला गया, और उससे जुर्माना लिया और उसे छोड़ दिया गया। और इसी वजह से शायद सैमी ने कुछ सीखा नहीं। साल बदल गया, 1968 आ गया। सैमी जो था एक पार्टी में होकर आ रहा था, बिकॉज ही वॉज अ पार्टी एनिमल, एक पार्टी से निकला था, और पार्टी से निकलते हुए उसने देखा कि एक बंदा कोई जाना पहचाना सा उसे लग रहा है, और वो बंदा सामने एक हाइपर मार्केट से निकलता हुआ आ रहा था। सैमी जो था वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, रैंडम नहीं होता आप गाड़ी में बैठे हुए, कुछ करने को नहीं है, दिस वॉज 1968, तो हाथों में फ़ोन भी नहीं है। तो देखा इसने, करे इस बंदे को यार मैं कहीं देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा है। और वो बंदा जैसे जैसे आगे आ रहा था, सैमी की नज़र उस पर गड़ी हुई थी, वो नोटिस करना चाह रहा था यार इसे कहीं तो देखा है। इतने में हुआ ये कि उसकी नजरों के ठीक सामने साइड से गाड़ी आई, ज्यादा तेज तो नहीं थी मगर वो गाड़ी आई, और सामने आते इस शख्स पे जिसे सैमी देख रहा था उससे टकराई। ये बंदा नीचे गिरा, और फिर सैमी अपनी गाड़ी से निकल के फौरन भागता हुआ मदद करने के लिए गया, बोला आप ठीक तो हैं। फिर सैमी ने जब उसे करीब से देखा तो सैमी को याद आया ये बंदा कौन है। ये बंदा वही था जिसकी गाड़ी सैमी के आगे चल रही थी, जिसकी गाड़ी सैमी ने ठोक दी थी। सैमी ने उसे याद दिलाया, सर आप मुझे जानते हैं, याद आया आपको। और फिर उसने भी बहुत देर तक देखा, पर वो दर्द में कुछ कह नहीं पाया। सैमी उन्हें खुद लेके गया अस्पताल, और वहां पे जाके सब कुछ होने के बाद बता, हाँ हाँ आई रिमेम्बर यू, तुम ठीक हो, ठीक से चला रहे हो गाड़ी, अब तो ठीक चला रहे हो। हाँ मैं सर मैं एकदम ध्यान दे रहा हूँ, सही से चला रहा हूँ। ये बातचीत हुई और खत्म हो गई। अभी इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा था, बिकॉज बैक इन द डे पीपल डोंट रियली केयर, इतने कोई आईडी की जरूरत नहीं होती थी। हॉस्पिटल में नाम लिखवाने के टाइम पे नाम लिखवाया और भूल गया, सैमी को भी याद नहीं इनका नाम क्या है, उसको भी याद नहीं इसका क्या नाम है, इट डजंट रियली मैटर फॉर देम। सैमी उस बात को भूल गया। ये साल बीतते बीतते वापस एक दिन आया, और ये दिन था सैटरडे का, दिस वॉज द मंथ ऑफ सितंबर, और सैटरडे के दिन वापस सैमी भाई साहब पार्टी कर रहे थे। पार्टी में फिर से बेकाबू हो गया, और फिर से बेकाबू होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो फिर से वही करेगा, इस बार ढंग से करेगा। और रिस्क लेने के लिए वो निकला रेस्टोरों से और उस गाड़ी में बैठा जिसमें उसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसके पास फिर से वही गाड़ी थी, फिर से लाइसेंस नहीं था, और फिर से उसी रास्ते पे जाना था जिस पे वो पहले था, सील रोड फिनिक्स अलबामा। तो इसी रोड पे निकल गया, इस बार पीछे पुलिस नहीं थी,
मगर ये आराम से जाता हुआ और फिर से थोड़ी सी बेहोशी की हालत में गाड़ी चला रहा था। इस बार भी सेम सिचुएशन आई, वो दो रोड के सामने थे और इस बार सामने कुछ अलग गाड़ी थी, मगर फिर से सिचुएशन वही थी। इसे जल्दी से घर पहुंचना था कि इससे पहले कोई देख ले, कोई पुलिस वाला शक ना कर ले। तो उसने सोचा यार फिर से वहीं फंस गया, मगर इस बार ये करीब नहीं था, इसके पास जगह थी कि लेफ्ट में कट मारे फिर राइट में कट मारे और आगे आ जाए। तो सैमी ने कहा ओके फोकस, लेट मी फोकस, पिछली बार तो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि पुलिस पीछे थी, अभी मैं कर लूंगा। सेम रोड पे सैमी ने पहले गैप दिया कि आगे ना टकरा जाऊं, और फिर सैमी ने लेफ्ट की तरफ देखा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब उसे अंदाजा हो गया कोई गाड़ी नहीं आ रही, उसने लेफ्ट में मोड़ा और जैसे ही राइट में करना चाहा, सामने पूरी लाइट हेडलाइट उसके मुंह पर जैसे पूरी छा गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सामने से एकदम से एक और मिड एसयूवी आई और टकराई, और जब टकराई गाड़ी वापस घूमी पूरी तरह से, उसके आगे वाली गाड़ी भी घूमी और दोनों की दोनों गाड़ियां रुकी एक जगह पे जाके। सैमी ने अपना सर पकड़ लिया, उसकी गर्दन में इस बार बहुत जोर की लगी थी, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी वो बच गया। ही जस्ट कुड नॉट बिलीव दिस। सैमी की गाड़ी की हालत खराब थी। सैमी लेकिन गाड़ी से बाहर निकला क्योंकि इस वक्त उसे लगा था कि गाड़ी में आग न लग जाए। वो गाड़ी से बाहर निकला और चेक करने लगा इधर उधर जो दो गाड़ियां थी, और उसमें से एक गाड़ी के पास हो गया। उसने फिर वहां चेक करना चाहा, जब उसने गाड़ी के अंदर झांका, ही वॉज लिटरली इन शॉक, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो दूसरी गाड़ी उसके आगे चल रही थी जिसमें ये जाके टकराया, उसके अंदर वही शख्स बैठा था जिसे इसने पहली मर्तबा ठोका था। सेम 60 साल का बंदा जिससे वो दूसरी मर्तबा भी मिला मॉल के सामने। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था, नो कनेक्शन एट ऑल। इनफैक्ट ये जो 60 साल का बंदा था, ये कभी इस रास्ते पे जाता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। इत्तफाकन वो साल भर बाद यहां से जा रहा था और ऑलमोस्ट सेम एक्सीडेंट को रेप्लिकेट किया एक तरीके से सैमी ने। इत्तफाकन सेम कंडीशन, सेम रोड, सेम गाड़ी एंड सेम डे एज वेल। इट वॉज अ सैटरडे। सैमी ने इस वक्त ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि वो इत्तफाक पे ज्यादा फोकस करे। उसने गाड़ी से उनको बाहर निकाला, उनकी मदद करी। बोला अब सर आई एम रियली सॉरी, मगर इस वक्त वो खुद होश में नहीं थे। और इस वक्त दोबारा से पुलिस आई और इस बार सजा दी गई सैमी को, और उसके घर वालों ने उसे छुड़ा लिया। बहुत डांट पड़ी, बहुत सुनना पड़ा, और सैमी जो था वो 6 महीने की जेल के बाद वापस निकाल लिया गया। सैमी ने अब डिसाइड किया कि वो घर वालों के साथ नहीं रहेगा और सैमी ने शिफ्ट होने का फैसला किया। सैमी डिसाइडेड टू लिव अलोन, और इस बार उसने लाइसेंस भी लिया। लाइसेंस लेने के बाद उसने कहा नाउ आई विल बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और वो इस बार एक पार्टी के अंदर किया। पार्टी करने के बाद अगेन द सेम थिंग दैट ही डिड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और वो था ज्यादा अपने आप को बेहोशी की हालत में कर लेना, और तब तक जब तक चला ना जाए। सैमी निकला इस बार कॉन्फिडेंटली बिकॉज ही हैड अ लाइसेंस। सैमी गाड़ी में बैठा, सैमी अपने घर की तरफ जा रहा था, और सैमी इस बार अलग जगह पे क्यों रहता था तो अलग राउट लिया था उसने। सैमी जो था एक ऐसे रस्ते से जा रहा था जहां पे लिटरली कुछ नहीं था, आसपास लिटरली फॉरेस्ट एरिया था। ज्यादा घना फॉरेस्ट नहीं था मगर पेड़ थे वहां पे जा रहा था, और कैसा रूट था ना कि अगर आप राइट हुए तो मिट्टी में, लेफ्ट हुए तो मिट्टी में, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ रोड, थोड़े से कर्व आएंगे बीच में, और वहां पे सैमी ड्राइव कर रहा था किसी एक पॉइंट पे, और ये खाली रोड है। किसी एक पॉइंट पे सैमी को आ गई नींद इस खाली रोड पे बाय द वे, और जब सैमी की आंख लगी तो गाड़ी फिर धीरे धीरे स्वे अवे होते हुए स्वर्ल होती हुई राइट की तरफ जा रही थी, और जब आंख खुली तो गाड़ी जाके टकराई और उसकी आंख खुली।

एकदम से, वो समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या हुआ। और उसकी जब आंख खुली, बिफोर ही कुड प्रोसेस के हुआ क्या, उसने देखा कि गाड़ी में आग लगने लगी है। वो गाड़ी से सीधा बाहर की तरफ भागा और फिर इधर उधर देखने लगा, रही मैं ये मैं कहूँ बिकॉज उसके हेड में ये चल रहा था कि सड़क तो खाली थी, ठीक है मुझे नींद आया, बट इट वॉज एन एम्प्टी रोड, क्या मैं पेड़ से टकरा गया। बट देन ही सॉ अ कार राइट इन फ्रंट ऑफ हिज कार एंड उसका चीखना चिल्लाना पैनिक करना एकदम से बंद हो गया और एक अजीब सा एक हॉरर उसके दिल में जागा कि ये गाड़ी आखिर आई तो आई कहां से। ही जस्ट कुड नॉट बिलीव, अरे पूरी सड़क खाली थी, कोई नहीं था, ये कहां से आ गया। और वो गाड़ी की तरफ गया, उसने देखा कि एक बंदा उस स्टीयरिंग पे उसका सर लगा हुआ था, हॉर्न बज रहा था, उसके सर से खून निकल रहा था। और उसे देखकर इस बार सैम इस कदर सैमी डर चुका था जैसे उसने लिटरल भूत देख लिया हो। दिस वॉज अ 60-year-old मैन जिसका नाम था फ्रांसिस पैटरसन। फ्रांसिस वही बंदा है जो बार बार बार सैमी के रास्ते में आता रहा। ये दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते, दे डोंट नो ईच अदर, दे नेवर मेट बिफोर, इन्हें तो अपने नाम तक नहीं बताते एक दूसरे के। और इस बार भी वही हुआ, इत्तफाकन अ वेरी वेरी वियर्ड कोइंसिडेंस, फ्रांसिस पैटरसन गाड़ी साइड में लगाए हुए खा रहा था और वो भी इत्तफाकन उसी रोड से जा रहा था जहां से उसको जाने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि वो वहां रहता तक नहीं है। पूरे खाली रोड पर उसको सिर्फ एक ही गाड़ी ने ठोका, वही गाड़ी जो उसको पिछले दो मर्तबा सेम रोड पर मार चुकी थी, वही शख्स सैमी ब्राउन जूनियर फिर से पीछे था। 60 साल के फ्रांसिस पैटरसन को हॉस्पिटल ले जाया गया बट दिस टाइम अराउंड ही कुड नॉट बी सेव्ड एंड ही डाइड। बट दिस वॉज एन एक्सीडेंट जिसकी सजा पूरी तरह से उसे मिली। और जब ये इत्तफाक बाहर आया तो जो फ्रांसिस पैटरसन की फैमिली थी उन्होंने इनफैक्ट कोर्ट ऑर्डर लिया कि ये बंदा सैमी ब्राउन जूनियर हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि सैमी को पता है कि वो जानता ही नहीं है। सैमी डज नॉट इवन केयर, वो उसे पता ही नहीं है कौन है बंदा, उसे नाम ही उस दिन पता लगा था। और वो चिल्लाता रहा कि साहब मैं नहीं जानता इनकी फैमिली को, हाँ मेरा इनका एक्सीडेंट पिछली बार भी हुआ है, उससे पिछली बार भी हुआ है, बट वी डोंट नो ईच अदर, मैं ढूंढ के कैसे इनकी गाड़ी को मार सकता हूं, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर कोर्ट के ऑर्डर दिया गया और कहा गया कि तुम 100 meters के दायरे में भी नहीं दिखने चाहिए हो इनके आसपास। उस दिन के बाद से सैमी ने कभी गाड़ी नहीं चलाई एंड ही स्टॉप्ड ड्राइविंग एनी व्हीकल। और ये वियर्ड कोइंसिडेंस जब हुआ तो ये एक छोटी सी जगह से एक नेशन वाइड न्यूज़ बन चुकी थी। पीपल वर आफ्टर इट, पीपल वर फॉलोइंग इट, क्योंकि इसके पुलिस डॉक्यूमेंट्स भी थे एंड सब शॉक थे। इसको समझा पाना, इस इत्तफाक को किसी के लिए भी आसान नहीं था एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है। तो प्लीज कुल मिला के ड्राइव सेफली। और ये किस्सा आपको कैसे लगा ये जरूर जरूर बताइएगा, आई वुड लव टू नो। 666-222-107 666-222-107 पर इंतजार में हूं आपके मैसेजेस के, बिकॉज आई नो ये सुन के आपको थोड़ा तो शौक लगा होगा। और भाई जो कह रहे थे बूम शाकला का, चला देते हैं भाई, किधर गया ये लो। जब तक आप जो है मुझे बता दो कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। 666-222-107 भाई अल्लाह में ऐसे तबाक से बताए बचा ले बस, आमीन। चलो भाई बूम शाकला का ढांढा न्यू।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी भाई साहब, सुन के मौज आ गई आपको। दुनिया में ऐसे बहुत अजीब अजीब इत्तफाक हैं, मैं तो खुद ये कहानी ढूंढ ढूंढ के मैं क्या बताऊँ मुझे कौन कौन सी कहानियाँ मिलती है जो मैं सुना भी नहीं, आधी कहानियाँ जो मैं आपको नहीं सुनाता हूँ ना, सुना नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, वो इतनी वियर्ड होती हैं कि आप सोच नहीं सकते मैं सही बता रहा हूँ, बस वो अपने अंदर में घोट के पी जाता हूँ, फिर वो कहानी सुनाता हूँ पूरी फिल्ट्रेशन वाली जब तक पहुंचे। सोचिए ये कहानी फिल्टर होकर आप तक आई है, तो इसके अलावा कितनी और अजीब कहानियां होंगी जो बस मत पूछो भाई, म्यूजिक चला दे मेरा भाई।

और हाँ, ये भाई कह रहे थे कि ये जो आपका म्यूजिक चलता है, अली भाई कह रहे थे, अली भाई ने मैसेज किया था ना, हाँ वो कह रहे थे कि जो चलता है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, ये कौन सी लाइन है? आमिर भाई कह रहे थे, मुझे खुद नहीं पता भाई, ये बच्चन सबसे पूछ लीजिए। और जया जी बड़ा दवाई है, आए दवाई है।

0: हाँ भाई शाबाशी तो मिलनी चाहिए, मतलब इतनी वियर्ड कहानी की तरह लिए नंबर कितने मिले मुझे। फराज भाई कह रहे हैं ये तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया भाई, छोटी कहानी थी आज की, और लिखते हैं कि बहुत कोइंसिडेंस वियर्ड थे जी भाई। हमजा भाई कहानी भेज दूंगा, और कोई सजेशन भी, सजेशन किस चीज़ का मेरी जान। और मैसेज आया है माइंड बॉगलिंग स्टोरी, हाउ इज इट इवन पॉसिबल ईच टाइम सेम पर्सन। या भाई यही तो कहानी का वो है, जिस्ट है जिस्ट। और ये एक मैसेज आया है हमारे असर भाई, कह रहे बॉब रे बॉब। और यूसुफ भाई ने मुझे मैसेज किया था, इनफैक्ट फातिमा ने मुझसे पूछा था कि कहानी आप देख के पढ़ते हैं कैसे बोलते हैं। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स स्वीट हार्ट, जस्ट द बुलेट पॉइंट्स। वैसे मैंने उसको अलग से वॉइस नोट बता दिया, जस्ट द बुलेट पॉइंट्स, बेसिकली नाम जगह, बाकी तो इतना पढ़ चुका होता हूँ कि कहानी याद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: हाँ मेरे भाई, क्या हाल है भाई?
1: एकदम अच्छा है।
0: एकदम अच्छा, बढ़िया चल रहा है कि ना?
1: एकदम धका धक चल रहा है।
0: एकदम बढ़िया चल रहा है। मुझे लग रहा है आज भाई की नींद पूरी हो गई है।
1: कहानी आगे तो और
0: मजा आ गई। चलो,
1: लेकिन लास्ट टाइम आप उनको मार ही डाला है ना?
0: अरे हमने नहीं मारा भैया, एक्सीडेंट हुआ है। हम कहे, हमारा नाम कहे ला रहे हैं, हमने कुछ नहीं किए हैं, हम तो थे भी नहीं। 1967 का कहानी है, हम तो थे भी नहीं भैया, हम नहीं मारे हैं।
1: लेकिन एक अजीब इत्तफाक है ना
0: भाई,
1: दो बार टकराने के बाद तीसरा बार उसको टपका दिया।
0: टपका दिया? आप तो इल्जाम लगा रहे हैं जैसे जानबूझ किसने गाड़ी ठोकी हो। ढूंढ के हमारा घर ढूंढ के। नहीं भैया,
1: अजीब इत्तफाक है ना।
0: हाँ भाई, ऐसे इत्तफाक से अल्लाह मियां बचाए, ये कुछ अच्छे वाले इत्तफाक नहीं है। तो प्लीज जरा ड्राइव सेफली। कहाँ निकले हैं वैसे आप, कहाँ पर हैं अभी?
1: मैं अलवाब में हूँ।
0: अच्छा, अलवाब में
1: होलसेल मार्केट के पास जा रहा हूँ।
0: अरे मुझे लगा घर पे आराम कर रहे हो भाई, हमेशा ऐसा लगता है भाई एकदम सेठ जी की तरह बैठे हुए दुकान पे गल्ले पे। और बताओ यार, मुझे भी तुमने अंगड़ाई लेने में मजबूर कर दिया मेरे भाई। और क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: एकदम अच्छा चल
0: रहा है। अरे भैया ठीक है, चाय वाय पियोगे, मंगाते हैं?
1: नहीं
0: चाय
1: नहीं, अभी तो सुलेमानी चाहिए।
0: क्या चाहिए? सुलेमानी चाहिए। चलो ठीक है, एक आधे घंटे की नींद खींच लो, उसके बाद सुलेमानी मंगाते हैं। ठीक है
1: ठीक है।
0: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया कहानी को लेके कॉल करी आपने, बेहद मोहब्बत। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो ऐसा है भाई, जो है क्या कह रहा था मैं, कहाँ ये कहाँ उठा मैं। हाँ तो एक मैसेज आया है सिद्दीकी साहब को, लिख रहे कोइंसिडेंस सेम लाइक स्टोरी पैनकेक वाली। हाँ पैनकेक वाली वैसी कहानी थी, बट वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग स्टोरी एंड योर नैरेटिव स्टाइल इज अमेजिंग। जज़ाकअल्लाह, बहुत सारा प्यार सिद्दीकी भाई को। और और एक और मैसेज है, दिल बना के भेजा है ने भाई, थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, बट भाई इंटिल नाउ स्टोरी इज अमेजिंग, कांट हियर मोर ड्यू टू वर्क। अरे कम काज के वास्ते कैसी वाजें निकाल रहा भाई। अरमान भाई मेरी गलती को नहीं भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की स्टोरी सुन नहीं पाया, शेयर विद मी, लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को। ये हमारे संतोष भाई ने मैसेज किया, संतोष भाई थैंक यू। फरद भाई ने मैसेज किया है, फराज भाई वो फरद भाई भी कह रहे हैं भाई चाय पीनी पड़ेगी भाई, चाय की तरह हो रही आज तो, कह रहे हैं इसको समझाओ ऐसी वासे ना निकाले। अच्छा बहरहाल कहानी कैसे लगी आप बता सकते हैं। आई विल बी वेटिंग 666-22107 पर, 666-22107 पर। और अगला गाना है किना चिर तैनु दिल ते लुका के रखिया, आर एन ए प्रोफेसी ऑन द बीट। ओए अच्छा एक कॉल डालो, जज्बाती नहीं होना है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, नींद उतरी? नींद उतरी आपकी?
0: अरे भाई वो तो लोरी सुना के चले गए।
2: अरे भाई इस सुबह के टाइम भी नींद की इनकी आवाज कुछ ऐसी है, तो सुबह के टाइम भी आते हैं ना तो लगता है एक बार ऐसे ही भाई अभी भी सो के उठा। लेकिन भाई का एंट्री पता ही क्या होती है? शेर से।
0: अच्छा शेर सुना था? अरे मैं बच गया, भाई ने शेर नहीं सुनाया। मुझे क्यों छोड़ दिया, अरे मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी शेर सुनाते यार, रद्द हो गई। चलो खैर,
2: मैं वही देखा, मैं आज शेर नहीं बोला भाई ने, भाई की आवाज में
0: तो शेर भी, शेर भी थक जाता है भाई, शेर भी थक गया होगा भाई सुबह से लेकर शाम तक, शेर को भी नींद आती है इसलिए मैंने नहीं सुनाया, मर्जी भाई।
2: यार मेरे साथ आज ट्रेजेडी हो गई भाई, मैं स्पेशली कार में बैठा था आपकी कहानी सुनने के लिए, पीछे से कॉल आ गई, बड़ी जान छुड़ाई लेकिन बस वो कहानी पहले छूट गई।
0: वो ये वाली कॉल थी क्या, वो वाली कॉल थी क्या, और सुनाओ वाली कॉल थी क्या? लेवल बूस्ट करने के लिए क्या मतलब, एक्चुअली में क्या देखना है आपको, कुछ
2: या कुछ भी ऐसी स्किल हो जो मैं सीख सकता हूँ या कुछ ऐसा?
0: देखो भाई आजकल आजकल सबसे पहली बात
2: तो लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर सकता
0: भाई। देखो अभी तो फ्री कोर्सेज हैं बहुत सारी जगहों पे एआई के, मैं उनमें से एक आपको भेज दूंगा, देयर आर मेनी मेनी कोर्सेज जहाँ पे आप एआई सीख सकते हैं, सीख लीजिए, मेरी बात मानिए, बिकॉज बहुत काम आने वाला है, भर भर के काम आएगा मेरे साथ। और बाकी तो आप, आपके शौक पर है, आपकी कोई स्किल है जो आपको, आपने शायद डिस्कवर की हो हाल फिलहाल में, यू नेवर नो कि आप शायद बोल सकते हो या कुछ कर सकते हो, बिकॉज एआई की स्किल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मेरे भी कजन के बच्चे हैं और वो भी वही कर रहे हैं एंड उनके लिए बहुत काम आ रही है, तो मैं तो पब्लिक को भी कहूँगा भाई सीखो एआई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा भाई, अभी हल्के में
2: बताना ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा कि मैं जाके सीख सकूं।
0: डन डन डन, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इट्स ऑनलाइन,
2: ये तो वैसे भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन?
0: हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन मेरे भाई, पूरा का पूरा, इट्स लाइक वीडियो कॉल पे, हाँ तो आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। हां
2: बाकी एक बात और, मैसेज पे आपसे पूछूंगा
0: जी भाई,
2: मैं थोड़ी देर में करता हूं आपको मैसेज।
0: डन डन डन मेरे भाई, डन, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके मेरा, जज़ाकअल्लाह,
2: ओके भैया,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सलाम। मैसेज आया है, मुझे भी भेज दें, ओके मैं भेजता हूँ अभी एक मैसेज, कबीर भाई सेंड मी द स्टोरी प्लीज, ओके आई विल, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, स्टोरी पूरी नहीं सुन पाया, कल की भी भेज दोगे मेहरबानी आपकी, ओके जी भाजी। ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, गुड इवनिंग, एक कप टी पियोगे नींद भाग जाएगी, लव यू लॉट। भाजी मैं नींद में नहीं था, आप समझे नहीं, तौकीर अहमद भट्ट साहब मेरे को नींद में लाया गया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम एंजॉयिंग योर प्रोग्राम भाई, अल्लाह ब्लेस यू। वालेकुम सलाम अहमद भाई, मे अल्लाह ब्लेस यू टू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। एक मैसेज, ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो आपसे मुलाकात हो जाए फिर क्या बात हो जाए भाई, बहुत छोटी बात है ये तो यार, मन भाई इसके लिए इत्तफाक की ज़रूरत थोड़ी है भाई। एक मैसेज, कबीर भाई मेरी सिचुएशन अभी कहानी के लड़के जैसी है, सुबह 8 बजे से टिल नाउ कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहा हूँ, नींद आ गई बस, स्टोरी अच्छी थी भाई। भाई ए भाई इनको रोको, मुदस्सर भाई प्लीज़ गाड़ी साइड में लाओ, पहले नींद पूरी करो मुदस्सर भाई, मेरे को डरा दिया आपके मैसेज ने यार, कमाल कर मुदस्सर भाई, नींद खींचने का ठीक है, नींद ज़रूरी है, बाकी काम होते रहेंगे। एक मैसेज है, कबीर भाई का गाड़ी ठोकनी पड़ेगी अरे मेरी गाड़ी को ठोकनी पड़ेगी, ये क्या बात है बताओ, हैं बदला ले रहे हो अब्दुल भाई, अब्दुल भाई मेरी गाड़ी ढूंढ के ठोकेंगे और एक और मैसेज है, भाई आरजे के लिए अप्लाई करना हो तो कहाँ और कैसे? भाई सबसे पहले तो रेडियो सुनना पड़ेगा लगातार, क्योंकि लगता है कि रेडियो में सिर्फ बोलने का काम है, बोलने से ज़्यादा बाकी काम होते हैं, ज़्यादा काम एज इन के आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए। क्रिएटिविटी कैसे, मतलब मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे सोच के बताइए कि इस गर्मी में हम कुछ स्पेशल शो क्या करें लोगों के लिए, अब आप अगर ये सोच सकते हैं कुछ तैयार कर सकते हैं तो मुझे बताइए, इफ़ योर ब्रेन कैन थिंक दिस वे, बिल्कुल बढ़िया। आर्जिंग तो बहुत बात की बात है, अब बात आती है अप्लाई करने की, यहाँ पे जो जो रेडियोज़ होते हैं वो अगर इंटर्नशिप देते हैं तो इंटर्नशिप से शुरू होता है, बिकॉज बैक इन इंडिया इट्स ईजियर, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समटाइम्स दे पे यू समटाइम्स दे डोंट, तो ये है मामला। मैसेज है, भाई को सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई को सलाम, सऊद आजमी साहब ने मैसेज किया, आपका शो सबसे अच्छा है, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे रखे, आएगा लिंक भेज दो, मैं भेजता हूँ सऊद आजमी भाई।

मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, कहता है क्लास में लेट हो गया, बिजी था भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, बिजी होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, खाली लोगों से डर लगता है मुझे। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं पहले ज़रा खबरें पढ़ देता हूँ जो कतर में बहुत जरूरी है आपके लिए जाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ और इस्लाम का फेज ने लॉन्च किया है 2026 का एडिशन ऑफ इट्स एनुअल समर प्रोग्राम, जिसका नाम है आर समर आर वे, एंड दे आर वेलकमिंग अराउंड 1000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 10 दावा सेंटर्स। और नो आइडिया प्रोग्राम है, और इसमें जो कोशिश है आप जानते ही हैं, इस पूरे हॉलीडे जो समर हॉलीडेज हैं इसमें प्रोडक्ट यूज़ करना है इन छुट्टियों का, और स्ट्रेंथर करना, ताकतवर बनाना इस्लामिक वैल्यूज़ को, लाइफ को डेवलप करने की जो स्किल्स हैं, और नर्चरिंग द यंग टैलेंट जो ऑलरेडी ऑलरेडी इसमें है। ओके, क्या मैसेज है भाई, पता नहीं कैसे बट जितना मैं शिद्दत से स्टोरी सुनना चाह रहा हूँ उतना ही मिस हो रही है। किसी दिन ऐसी खामा खाम मोहम्मद भाई बैठ जाओ, हो सकता है खामा खाम सुन लो आप। एक मैसेज है, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर खान, मोहम्मद जुबैर भाई ऐसे अलग से बात करते हैं। एक मैसेज है, इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन कहानी भूल गया, अरे मार ही दिया आखिर, अच्छी स्टोरी थी एम के भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। वालेकुम अस्सलाम मंसूर, मैंने मैसेज किया मंसूर भाई, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। एंड फिलहाल टेम्परेचर का हाल भी आपको बताता चलूँ, एक कॉल उठा लेते हैं पहले। अस्सलामु अलैकुम।

0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
1: हाँ जी क्या हाल है तला भाई? बढ़िया
0: भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल हवाल है।
1: भाई, एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह।
0: भाई एक बात बताओ, तुम जलते क्यों होता
1: है किससे?
0: जिंदा लोगों से?
1: अरे मैंने कल कल तो पूरा बचाया ना भाई, 37 मिनट की कहानी में एक को भी कुछ नहीं किया मैंने।
0: अबे क्या बचाया उसको भाई, 1 मिलियन की बेचारा मांग क्या रहा था, बस 1 मिलियन तो मांग रहा था।
1: तो मैंने थोड़ा तड़पाना भी तो जरूरी है ना, सिडिस्टिक नेचर।
0: 1 मिलियन के चक्कर में उसने 50 मिलियन का दिमाग लगा दिया, वो नहीं देख रहे तुम तो।
1: हाँ वो तो है। पर देखो कोई
0: तो
1: कोई गया नहीं तला भाई, किसी को कुछ हुआ नहीं। एक
0: अजान बात सुने मेरी, आप बड़ा आज क्या सच्चाई बता दो। देखो टॉपिक जो होता है जेनरिक था ना, कुछ भी पूछ सकता है।
1: हाँ
0: सच्चाई
1: बिल्कुल
0: बता दो क्या हुआ था बचपन में, कोई हादसा वादसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम बताते नहीं। तुम आप बड़ा से निकाल दो, तुम्हें ना
1: ये
0: आवाज मिल गई है बोलने के लिए।
1: राज भी मेरे साथ ही जाएगा तला, ये राज मेरे
0: नहीं
1: साथ जाएगा।
0: ये राज मैं निकलवा कर रहा हूँ भाई, कैसा आदमी यार तुम, एनालाइज करो। सोच रहा था अगर
1: अरे
0: स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 80-90% बंदा मारा है भाई तुम।
1: ये तो है, आई एग्री, आई लव इट, इंजॉयमेंट है,
0: आज
1: लेट्स
0: मैं जा रहा हूँ,
1: इंजॉयमेंट।
0: मैं यकीन करो मैं पाकिस्तान नहीं जा पा रहा तुम्हारे चक्कर में। मैं अगर तुम्हारे जैसे पायलट मिल गया तो फिर तो हो गया काम मेरा
1: जिस दिन जाने वाले को उस दिन बताना, मैं एविएशन की ढूंढ के स्टोरी लेके आऊंगा, ढूंढ के।
0: भाई। ऐसे ही चल रहा है, मैं तो परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये तो बंदा बंद पता चला कोल्ड पी के बोला जांच तुम्हारा भाई चलाएगा आज, मैं तो मर जाऊंगा ना।
1: ज्यादा होगा भाई चलाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपके फ्लाइट होगी उस दिन मुझे बताना। वैसे अभी तो बैचलर जिंदगी जी रहे हैं आप, कहाँ जाने का मन है आपका? मुझे लगता तो नहीं अभी जाने का मन मन हो रहा होगा।
0: यार मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, बताऊंगा नहीं तुम्हें।
1: अरे बताओ तो
0: नहीं
1: सही,
0: बताऊंगा,
1: जहाज से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, माने का जहाज है क्या है?
0: चाचे जा रहा हूँ, हवाई जहाज।
1: हवाई जहाज से जा रहे हो, तारीख तो बता दो मुझे, तारीख भाई बता दो, तारीख बता दो, तारीख भाई क्या है?
0: क्या मुझे मुझे क्या उसने कहा है जिसको हम पप्पी पप्पी बोलते हैं?
1: अरे ऐसे कौन सा राज में जा रहे हो भाई, ऐसा कौन सा राज है यार, ये क्या राज है?
0: बीच इलेक्ट्रो।
1: अच्छा ठीक है, मत बताओ।
0: फॉरेन फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ।
1: फॉरेन कंट्री जा रहे हैं आप?
0: हाँ।
1: अरे यार बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है भाई हमारी, तो क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अबे यार चंदा लेके जा रहा हूँ, पागल आदमी
1: चंदा लेके जा रहा हूँ।
0: ऐसे की कमी नहीं है मुझे,
1: हाँ
0: किसी भी को दान ले लूंगा।
1: हाँ वो तो कितना है सर पे अभी? मैं तो इमेज क्लियर करवा रहा था, देखा मैंने मेरी चाल देखी आपकी, फौरन इमेज क्लियर हो गई अगले ही सेकंड में, देख रहे हैं
0: भाई। बहरहाल तुम ना सही आदमी नहीं हो, सही आम भी नहीं हो, आदमी नहीं हो तो आम भी, सही आम भी नहीं हो तुम।
1: हाँ
0: बात को
1: अगली
0: सुनो, एक और आखिरी सवाल ना, छोटा सा सवाल
1: पूछो पूछो।
0: तुम्हें बताना है, तुम्हें बिरयानी बनानी आती है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: कैसे बनती है
1: ये मैं आपको फ्राइडे को बताता हूँ कैसे बनती है इंशाल्लाह।
0: आती तो है तुम्हें बनानी तो भाई, ये 3 साल से तुम क्या कढ़ाई में चमचे घुमा रहे हो?
1: नहीं मुझे घर वाले किचन में जाने नहीं देते, उन्हें डर लगता है, वो जान का खौफ और तो क्या। छोटी
0: अगर मुझसे दोबारा मुलाकात हो घर वाले, घर वाले घर में भी नहीं आने देंगे तुम्हें?
1: ना जी ना, इस बार तो पक्का भाई, इस बार मैंने बोल दिया ना, आ गया।
0: मैंने जो है ना इस फ्राइडे का नहीं हुआ दीदार,
1: हाँ
0: तो मैंने जुम्मा खत्म होते ही ना 12:01 में जुम्मा हफ्ते की
1: पहले
0: सुबह,
1: पहले गाना गा के सुनाओ, दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे।
0: यार बहुत बुरा लग रहा, नहीं रहा, बहुत बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा, नहीं कर सकते, नहीं कर।
1: अच्छा तो लगा आपको कहीं ना कहीं?
0: मैं इमेजिन कर रहा हूँ बंगाला पहना बंदा जुल्फे हिलाता हुआ कैसा लगा दीदार।
1: देखा, सोचा ना यानी कि कहीं ना कहीं दिल में अच्छा लगा आपको, बता रहा हूँ। लिख के
0: वाहियात।
1: अरे भाई
0: साहब रहने वाला वाहियात।
1: थैंक यू सो मच, ऑल माय प्लेजर मिस्टर तला, थैंक यू।
0: मैं भाइयों की मोहब्बत की वजह से कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ने एक बड़े बड़े मोहब्बत से सलाम किया मुझे, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इसका करियर को मैं खाऊंगा। छोड़ो बचंगाना, बचंगाना मर जाएंगे ये ना, इनको ना छोड़ूंगा मैं।
1: नहीं आपके लिए बहुत सारे मैसेज आए, तला भाई को सलाम, ये फुरकान भाई कह रहे हैं, आप किसी फुरकान
0: भाई? वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: जानता हूँ भाई को, यहीं से रेडियो से जानता हूँ।
1: अच्छा रेडियो से जानते हैं, चलिए आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं वो, ठीक है जी।
0: फिकर करो, गवर्नमेंट के पैसे खाने वाले। सुन लिया।
1: अच्छा पब्लिक को बता दो कहाँ काम करते हो, बताओ बताओ।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं
1: बताओ, बताओ ना।
0: अरे मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मुंह से निकल
1: गया। देखा देखा, अभी बताओ बैकग्राउंड में सीरियल वाला म्यूजिक चलेगा, धुमता ना ना ना ना धुमता ना ना,
0: ये बिजली कड़कने वाला।
1: हाँ हाँ, मजा आ गया आज, मुझे मजा आया। कम बैक, हैशटैग कम बैक। अरे भाई साहब, तारा भाई बहुत सारा प्यार है, तारा भाई बहुत सारा प्यार।
0: चलो
1: ओके मेरे भाई, लव यू टू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो एंड में फंस गए हो, एक मैं सिद्धू मूसे वाला गाना लगा दो भाई। भाई 1K47 होगा, पवित्र सिंह जी चला देंगे, पवित्र सिंह जी भाई गाना गुना होगा तो ला देंगे। एक मैसेज है, आप दोनों की बात ही लग गया। फरद भाई बहुत सारा प्यार भाई को। एक मैसेज है, हेलो कबीर भाई, गुड इवनिंग, स्टोरी एज ऑलवेज ऑन टॉप, आई एम एन इंडियन पंजाबी, टुडे समवन फ्रॉम पाकिस्तान फैसलाबाद ब्रॉट सोहन हलवा इन आर ऑफिस। भाई ज़बरदस्त चीज़ है, मस्ट ट्राई। मैंने ट्राई किया भाई एक बार, और लिखते हैं आई ट्राइड फर्स्ट टाइम, पाकिस्तानी भाइयों को बनता है ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें, कतर में भी लाओ भाई। सोहन अलवा, पाकिस्तानी भाइयों, ये हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज़ बताएं, हमें खिलाएं प्लीज़। अभी भाई ने भी जिक्र कर दिया है, और JSK भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तानी भाइयों को बनता है कि ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें कतर में लेकर आएं। डेली हिडन जैम का बेकार खाना खा खा के थक गया है। कह रहे डेली हिडन जैम वाला खाना खा खा के थक गया हूँ मैं। अच्छा आप भी हिडन जैम के चक्कर में फंसे क्या? स्केम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरे
1: प्यारे। अरे करीम भाई, सोहन अलवा का जिक्र हुआ और आपने कॉल कर दी मेरा भाई।
0: यार मैं भी कॉल करने का मूड था, वो आप पाकिस्तान वाली बात कर रहा था, पिछले दिन बंदा आया यार, बस थोड़ा इमरजेंसी में।
1: हाँ ये बताओ सोहन अलवा कब खिला रहे हो? सब बातें साइड करो, सोहन अलवा
0: मुझे पूछ रहा था कि अभी मुझसे पूछ रहा था कि कबीर भाई से बात हो रही है।
1: हाँ।
0: मेरा अपना रूममेट है ना।
1: अच्छा
0: मैंने कहा बस अभी मिला रहा हूँ यार, मैंने कहा यार
1: भाई जलवे है आपके, यार जलवे है करीम भाई के,
0: खुश है भाई, बहुत बढ़िया, अल्लाह से राजी है। आप सुनाए, आप कैसे हो?
1: बस आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, सोहन अलवा कब खिला रहे हैं अभी बताइए, आप पब्लिक ये जानना चाह रही है आपसे।
0: क्या कह रहा सर आपने अभी बताओ?
1: सोहन हलवा,
0: आई हाई सोन हवला, हवला या हलवा?
1: हलवा हलवा हवला क्या?
0: अच्छा मैं अभी सुनो जिशान भाई, सुनो सुनो, 13 तारीख को बंदा आ रहा है, अल्लाह ने चाहा तो सोहन हलवा, अभी ये दो बंदे सुन रहे हैं।
1: हाँ।
0: इंशाल्लाह उसको मैं अभी मैसेज करके के भाई हलवा खरीद के आने का है।
1: क्या क्या बात है, क्या बात है, इंतजाम हो गया भाई साहब।
0: हो गया भाई, सोहन हलवा ये पाकिस्तानी है ना?
1: हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स।
0: हो गया सर, अभी अभी अभी आपसे बात करने के बाद डायरेक्ट उसको आप मैसेज कर देगा भाई, सोहन हवला लाना आप भी हलवा है, हलवा है
1: हवला। मैं अभी जिक्र हो रहा था हलवे का, आपने कहा चलो आपसे एक बार पूछ के देख लेते हैं।
0: हो जाएगा सर, देख मैं बिल्कुल, हम अभी गाड़ी में बैठे जा रहे थे।
1: हाँ।
0: तो इधर ही रयान में भाई ने पूछा कि अपना रूममेट है ना साथ में, उसको पता है कभी कभी सुनते हैं हम लोगों को, तो आपको याद कर रहा था। मैंने कहा देख भाई, हाँ। भाई का आवाज है, बस कॉल मार देते हैं ना भाई से भी।
1: अरे भाई बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू बहुत।
0: खुश रहो सर, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कॉल कटने के बाद जिशान भाई कौन है, कौन है यार? चलो भाई मुझे भी नहीं पता, हमसा भाई ने मैसेज किया है, मुल्तान की सौकत है, सौकत एक सेकेंड, नए नए वर्ड मत सिखाओ, मेरा प्रोसेसिंग यूनिट इस वक्त काम नहीं कर रहा है। सौगात, अच्छा सौगात है, मैं कंफ्यूज हो गया मैं। कबीर भाई दिस इज़ अकील, दिस हलवा इज़ इन माय सिटी मुल्तान। अच्छा मुल्तान में बड़ा खास मिलता है, 13 को मेरा भाई आ रहा है, मंगवा दूँ भाई? इतने सारे सोहन हलवा क्या करूँगा मैं। आप सब लोगों की बहुत बहुत मोहब्बत, ये जो पड़ोसी मुल्क से प्यार है ना, ऐसे बना रहना चाहिए। क्या येलो स्कूल के स्टूडेंट, येलो स्कूल का स्टूडेंट क्या है आप? अरे यार चलो आप सोच के बताते रहो कौन सा क्या क्या है, मैं तो भाई गाना चला रहा हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ जी, वो रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी ना, माइक पे हूँ मुझसे आला वैसे रब्बी शेर गिल, पर भाई मुझसे आला था गाना भाई।
2: Yeah.
1: So, hi.
2: Big Bird.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

जिले नादान तुझे हुआ क्या है, मेरे म्यूजिक की वजह क्या है, लोग पूछ रहे हैं कि लाइन में खड़े होने वाली लाइन का क्या मतलब है, मुझे भी नहीं पता भाई। बच्चन साहब से पूछो।

हाँ जी, कुछ मैसेज आ गए हैं हमारे पास। मंसूर भाई कह रहे हैं कबीर भाई कहानी तो नहीं सुनी, जितनी भी सुनी गाड़ी चलाते हुए नहीं सोना चाहिए, जैसे मैं दोहा से मायदा के सफर में सो जाता हूँ। मेरी वाइफ हमेशा अपने क्या है आंखें खोल कर रखती है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। सेफ ड्राइव लॉन्ग लाइफ भाई, प्लीज प्लीज ख्याल रखें मेरे जाना। बहुत हल्के में बोल गए इस बात को। गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह अबू साद साहब। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टोरी भेजना, मैं भेज दूंगा भाई। और हमजा भाई ने मैसेज किया है, अलनसर अंडर पास में ट्रैफिक जाम है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हाफिज ना। और एक मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, बढ़िया भाई, मैं बढ़िया, शानदार चल रहा हूँ। और एक मैसेज, इट वॉज अ यूनिक स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। तो आई होप कि कल आप एक हॉरर स्टोरी के लिए तैयार हैं, बिकॉज अमजद भाई थैंक यू सो मच। तो कल बढ़िया वाली कहानी आएगी। बाकी आज कुछ दिन है जो इंटरनेशनली मार्क्ड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज वो दिन है जो सुन के मेरी कई मरतबा बहस हो चुकी है लोगों से, बट मैं इस बहस करने को बार बार तैयार हूँ। आज है वीडियो गेम डे, ठीक है? तो जो लोग गेमर्स हैं, गेमर्स जागो, हमें किसी के टोकने पर रुकना नहीं है भाइयों और बहनों, गेमर्स दोनों ही होते हैं ना, तो फिर प्लीज रुकना नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि गेमिंग तो बच्चों को बिगाड़ रही है, भाई साहब बिगाड़ने वाली रील्स हैं, गेम नहीं है। और प्लीज़ समझिए, एक गेम होता है जो आपने लोगों को कोविड में खेलते हुए देखा है, हाँ वो बात नहीं, वो ठीक है, वो अलग कैटेगरी है। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ गेम्स होते हैं जहाँ पे स्टोरी होती है भाई, प्रॉपर कहानी होती है, यू लिव अ कैरेक्टर एंड देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आधे जापान को मैं समझ चुका हूँ जैपनीज गेम खेल खेल के। तो वीडियो गेम्स आर नॉट बैड एट ऑल। ऑफकोर्स कुछ भी चीज़ ज़्यादा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में धनिया बोल सकती है, तो वीडियो गेम्स भी वैसे ही हैं, बढ़िया, दे आर नॉट बैड एट ऑल। ओके, तो नेशनल सॉरी वीडियो गेम डे पे मुबारकबाद तमाम गेमर्स को, आज तो गेम खेलने पड़ेगा। इसके बाद आज है बी अ किड अगेन डे, वापस अपने बचपने को याद कीजिए, बी अ किड डे। और इसके बाद है मैथ 2.0 डे, है जी मैथ 2.0, मैथ 1.0 तो पढ़ी नहीं जा रही है, 2.0 डे है आज। और आज है चॉकलेट विद आमंड्स डे, बादाम वाली जो चॉकलेटा आती है ना, चॉकलेटा बादाम वाली, आज उनका दिन भी है। ये तो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक टाइम पे खर्चा किया है। लड़कों ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी लाइफ में मौका आता है जब उन्हें चॉकलेट की समझ में आती है, क्या ऐसा भी चॉकलेट होती है जब किसी को देनी पड़ती है। एक मैसेज है।

फ्रीजर पॉप डे, ये वही है वो ज़्यादा पन्नी में आती थी ना आइसक्रीम अलग अलग रंगों की, उसका भी दिन है आज। और आज ब्लूबेरी डे भी है, ब्लूबेरी डे। बाकी कुछ मैसेजेस हैं, अस्सलाम वालेकुम, अरे जुल्कन साहब वालेकुम सलाम, एंड मिस हो गया इनसे। ओहो ठीक है पाजी, मैं भेज दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बाकी ट्रैफिक कल बताइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर। एंड मैं शो कर रहा हूँ और आवारापन ना चले, नॉट पॉसिबल। आवारापन टू से ये गाना पता कैसा है, इट्स अ स्लो स्लो पॉइजन, धीरे धीरे चढ़ता है भाई, धीरे धीरे चढ़ता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। वे जुनून सुबोध शर्मा ने गाया गाना आवारापन टू से, और क्या गाया भाई साहब, क्या लिरिक्स है सईद कादरी साहब के। 6:41 आशिकों, बादाम वाली चॉकलेट याद करो और ये याद करो,

मैं एक ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ. मैंने पता है जब पहली मरतबा सुना, मैंने कहा नहीं यार ये वो बात नहीं आ पा रही है जो पहले हमारेपन में थी. लेकिन मैंने इस गाने को 2-3 बार सुना, भाई क्या गाना है, बहुत ही सॉलिड गाना है. सुबोध शर्मा की आवाज़ इसमें और लिरिक्स बड़े कमाल के हैं. सईद कादरी साहब ने लिखा है, उन्होंने पिछले हमारेपन में भी बहुत सारे गाने, इनफैक्ट सारे गाने दिए थे और उन्होंने लिखा भी था तो हमारेपन का. इस बार बहुत, मैं बता रहा हूँ, हिट करा के मानूंगा भाई मैं इस पिक्चर को किसी भी हालत में.

शाबाशी तक मिलेगी, बहुत खूब मिलेगी। जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज क्या भाई ने, अरबाज भाई लिखते हैं कि स्टोरी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, मुझे पता था सर कि आदमी इस बार बार बार टकराएगा। जाकिर साहब वालेकुम अस्सलाम, जरूर मेरे भाई मैं भेजता हूँ कहानी, ऑफिस से लेट निकला, स्टोरी नहीं सुन पाया, नो प्रॉब्लम मेरे भाई मैं भेजूंगा। बाकी एक वॉइस नोट आया अजीज भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड के अलग से तैयारी है, मैं अभी जाके सीधा स्टोरी पे लग जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियली रियली गुड, क्योंकि वीकेंड पे आपको चाहिए होता है ना कुछ बढ़िया सा होना चाहिए। और कल बाय द वे कल आपका भाई जल्दी ऑफिस भी आएगा, तो कल स्पोर्ट्स राउंड अप है, हालांकि सिंपल स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, लेकिन कल आपका भाई 1 बजे आ जाएगा, तो 1 बजे भी अगर आप सुनना चाहें तो आ जाइएगा एफ एम 107 पे, 1 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा। हमारे क्योंकि अमीन भाई जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो छुट्टी पर है, तो उनकी जगह मैं कल स्पोर्ट्स राउंड अप में भी मिलूंगा। कल जल्दी उठना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वीकेंड है, कोई गाल नहीं, लेकिन कल 1 बजे भी मैं यहाँ पर रहूँगा। एक मैसेज है, सर मुझे पता है कि कॉल से आप 1 बजे आएंगे, क्योंकि वो उसने बोला था, मैं सुन रहा था एक दिन। हाँ बोला था उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि अमीन भाई ने बोल भी दिया है, चलो बढ़िया है। हाँ तो कल कुल मिला के कल 1 बजे आऊँगा मैं। बाकी माजिद भाई आपका वॉइस नोट अभी सुनता हूँ मैं, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, पर जाने से पहले वही जो हर बार कहता हूँ, हर शाम कहता हूँ कि याद करिएगा, एक तो कल इंशाल्लाह वापस आपसे मुलाकात होगी एंड बहुत मज़ा आने वाला है। कल इंशाल्लाह एक ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा मैं जो आपको लगे कि हाँ भाई वीकेंड सेट हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी मैं से, तो कल तो फिर आपसे बात होगी 1 बजे भी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे भाई।

बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. 7 बजे आप सुनिए न्यूज़ बुलेटिन. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 5 बजे. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मां सलामा.

0: की जानी परवाज कर रहा था कि मंगल की रात नेविगेशन सिस्टम में मसले की इत्तला दी, जिसके बाद पायलट्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता ख़त्म हो गया। इब्तदाई फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक तैयारे ने लापता होने से कबल बुलंदी में गैर मामूली तब्दीलियाँ की, जिसके बाद वो बहरा अरब में रडार से गायब हो गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तैयारा समुंदर में गिर गया हो सकता है। हुकाम ने तैयारे और अमले की तलाश के लिए मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरिका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया ने फ्रिगेट PNS जुल्फिकार तैनात कर दिया है, जबकि पाक फजाइया फिजाई तलाश में मुआवनत कर रही है। इलाके में मौजूद तजारती बहरी जहाज़ों को भी इमदादी कार्रवाइयों में तआवुन की हिदायत दी गई है। हुकाम के मुताबिक तैयारे के लापता होने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि तलाश का अमल जारी है। सामईन, खबरों के इस मरहले में एक मरतबा फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत आज काबीना का हफ्तवार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरानी हमलों की शदीद मुज़म्मत, ट्रैफिक, सरकारी इमलाक और फ्यूल स्टेशन से मुतालिक अहम कवानीन की मंजूरी दी गई। वजारत तालीम वाला तालीम ने हकूमती स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए एक नई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का आगाज़ कर दिया है। रियासत कतर ने तुर्किया के शहर अनकरा में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर मुनक्किद होने वाले इस्तंबुल तआवुन इकदाम ICIO और नेटो रुकन ममालिक के वजारती इजलास में शिरकत की। और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आज ऐलान किया है कि अमरीकी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात ईरान के खिलाफ किए गए हमलों के दौरान 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन असीला भंडार और न्यूज़ स्टूडियो से इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर पर खसूसी प्रोग्राम MOI, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं रियासत कतर की वजारत दाखिला की जानिब से शाये की गई अहम तरीन खबरें और अवामी खिदमात से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात। तो आइए शुरू करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम MOI की न्यूज़ अपडेट्स।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर।
4: वजारत दाखिला ने शहरियों, मुकीम अफराद और सियाह को मित्राश ऐप के जरिए दस्तियाब अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग की पेश की रजिस्ट्रेशन सर्विस से इस्तेफादा करने की याद दहानी कराई है। वजारत के मुताबिक ये सर्विस सरहदी गुजरगाह पर सफरी कार्रवाई को मजीद आसान, मुनज्जम और तेज बनाती है। वजारत ने बताया कि पेश की रजिस्ट्रेशन के लिए मित्राश ऐप के ट्रैवल सेक्शन में जाकर अबू समरा प्री रजिस्ट्रेशन का इंतखाब किया जा सकता है। उसके बाद दाखिले या खुरूज की नौयत, मुतवक्के तारीख आमद, गाड़ी और ड्राइवर व मुसाफिरों की मालूमात दर्ज करके दरख्वास्त मुकम्मल की जा सकती है। वजारत दाखिला ने यह भी वाजह किया कि मित्राश ऐप में OCR की सहूलत मौजूद है, जिसकी मदद से पासपोर्ट की मालूमात तेजी और दुरुस्तगी के साथ खुदकार तौर पर दर्ज की जा सकती हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए रियासत कतर ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुनाक़िदा अक़वामे मुत्तहिदा के इंसदादे दहशतगर्दी हफ्ते में शिरकत की है। इस मौके पर कतरी वफ्द ने काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नतालिया ग्रिजमैन से मुलाकात की। वफ्द ने अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर अलेक्जेंडर ज़ुएफ से भी मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान रियासत कतर और अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसदाद दहशतगर्दी और काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट के दरमियान जारी तआवुन का जायजा लिया गया। पुलिस अकेडमी ने पुलिस ऑफ टुमारो प्रोग्राम के 7वें एडिशन समर 2026 के पहले और दूसरे ग्रुप की

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: होती हैं,
1: एज रिलेटेड आर्थराइटिस, एज रिलेटेड एक्रोमेक्युलर जॉइंट है वो कभी कभी डिसलोकेट होता है तो उसकी आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या खुद अपना शोल्डर की जॉइंट की आर्थराइटिस होती है उसकी वजह से स्टिफनेस हो सकती है, जैसे कोई ओल्ड ट्रामा है उसकी वजह से हो सकता है।
0: अच्छा ठीक। बस वक्त ये भी होता है कि जैसे मौसम चेंज हुआ है या सर्दी का मौसम आया है तो जो दर्द हैं वो शुरू हो गया, तो ये क्यों ऐसा है?
1: ये आर्थराइटिस में देखें हर चीज़ ने पुराना होना है
0: जी,
1: ठीक है ना, तो जो हमारे मसल्स हैं, जो टेंडन हैं, जो बोन हैं, तो वो एज के साथ उनमें भी वीकनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ डिजनरेशन की तरफ जाती है बॉडी में, ठीक है। तो इसी तरह ये भी है, शोल्डर में भी जो अराउंड शोल्डर मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, जो बोन हैं, कैप्सूल है खुद, वो एज के साथ जो है उनमें भी कमी पेशी होती है, ठीक है
0: जी,
1: तो ये है जैसे उसको ट्रामा हो गया, वो डायबिटिक है या फैमिली हिस्ट्री है या उसमें ये रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर है, ठीक है, तो ये चीज़ें आगे जाके फिर कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर में आके चेंज हो जाती हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारे ये लिसनर हैं, अहमद उनका नाम है, पूछ रहे हैं कि उनके जो बेटा है और वो तकरीबन 16 ईयर्स का है, मगर वो अपने बाजू में, मतलब बाजू में और शोल्डर भी है शायद, तो मगर अपर, मेरा ख्याल है अपर आर्मों का, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा दर्द की जो है वो कंप्लेन करता है, मगर समझ में नहीं आती, वो मुख्तलिफ जो मेडिसिन है वो भी हम देते हैं मगर थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा वो शिकायत शुरू कर देता है, तो ये क्या है?
1: हाँ, उनको देखना होगा, उनके लिए पहले कि उनसे हिस्ट्री लेनी होगी, उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा, उनका उनके लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरे कराएंगे, इन्वेस्टिगेशंस फर्दर, फिर कहीं उस पर पहुँचेंगे कि पेन कहाँ से आ रहा है, वही कि कभी कभी पेन नेक से आता है, कभी कभी पेन हाथ से ऊपर जाता है, कभी कभी एल्बो से जाता है, तो पूरी अपर लेम सर्वाइकल स्पाइन का एग्जामिनेशन करना होगा
0: जी,
1: ठीक है। और उनकी हिस्ट्री लेनी होगी, फिर हम कहीं रिजल्ट पे पहुंचेंगे, डायग्नोस पे,
0: ठीक है। मगर इस एज में जैसे बहुत यंग एज है तो क्या उसकी कॉजेज हो सकती हैं?
1: उसमें कभी कभी अगर अब ये देखना होगा कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है या सिर्फ एक आर्म में हो रहा है, तो हमें कभी कभी जो है टेंडिनाइटिस भी हो सकती है, कभी कभी विटामिन डी की कमी की वजह से, कभी कोई चोट लगी है तो उसको भी देखना होगा, ये सारी चीज़ें हमें एस्कॉर्ट करनी होंगी,
0: ठीक है। या कभी इंजरी है, जो
1: कोई इंजरी ओल्ड हुई हो,
0: अच्छा ओल्ड इंजरी है,
1: 16 साल का है तो हो सकता है 8 साल पहले हुई हो, या वो भी देखना होगा,
0: ठीक। और इसमें डॉक्टर ये भी होता है कि आपकी साइड भी मैटर करती है कि शोल्डर है, जैसे फ्रंट है या बैक है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है कि अगर पेन है, अगर कुछ कंप्लेन करते हैं कि बिल्कुल फ्रंट शोल्डर में पेन है, कुछ बैक शोल्डर में पेन है, तो इसमें क्या डिफरेंस?
1: डिफ्यूज, ये जो फ्रोजन शोल्डर में होगा तो डिफ्यूज होगा,
0: अच्छा
1: ठीक है, वो रेडिएट करेगा अपर आर्म तक या आर्म तक या फोर आर्म तक
0: जी,
1: ठीक है और कभी कभी वो सर्वाइकल स्पाइन की तरफ भी रेडिएट करेगा,
0: ठीक है, तो इसकी कोई मतलब अलग अलग से जैसे,
1: एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, रोटेटर कफ टीयर होता है, रोटेटर कफ हमारे शोल्डर के चार मजबूत पट्टे हैं
0: जी,
1: मसल्स हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम जैसे गाड़ी में बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए पीछे से कोई चीज़ उठाई सडनली, तो रोटेटर कफ के चंद फाइबर्स टीयर हो जाते हैं मसल्स के, तो वो भी पेनफुल होता है बहुत, तो उसमें हमें रेस कराते हैं, देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि कितने ग्रेड का है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, अगर ग्रेड 4 है और फिजिकल थेरापी से सही नहीं हो रहा है, मेडिसिन से सही नहीं हो रहा है, तो फिर आर्थरोस्कोपिक उसकी करके देखते हैं, आर्थरोस्कोपिक शोल्डर की कि कितना टीयर है, फिर उसको बनाना पड़ता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है,
0: ठीक,
1: या डिब्राइडमेंट करके रिपेयर करते हैं उसको,
0: ठीक, इस तरह से जी। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि जैसे आपने कहा कि कुछ ये कर सकते हैं, लेवल्स हैं मसल के, कितनी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड,
1: अगर ग्रेड 1 है तो उसमें तो फिजिकल थेरापी, पेन मेडिसिन, रीएश्योरेंस कराएंगे, तो पेशेंट फिर फॉलो अप में आएगा आपके पास, तो तकरीबन ज़्यादातर सही हो जाते हैं, 99%। ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ग्रेड 4

0: में तो वो फिर आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। यंग बंदा है, एथलीट है, स्पोर्ट्स मैन है, तो फिर आपने एमआरआई करा के और शोल्डर सर्जन को रेफर करना है या उसको आर्थरोस्कोपी करके देखना है शोल्डर की कितना टीयर है, क्या कर सकते हैं उसके लिए।
1: ठीक सब, थोड़ी सी मैं पेन पर बात करना चाहूँगी कि डिफरेंट टाइप्स की पेन्स होती हैं, कभी शूटिंग है, कभी आपको ऐसे में पिंचिंग, या मतलब किस तरह की जो पेन है वो ज़्यादा है या पूरी टाइप्स की होती है?
0: शोल्डर की पूछ रही है?
1: शोल्डर की,
0: शोल्डर में थ्रोबिंग पेन होगा उसको, रात में फील होगा पेन और वो माइल्ड मॉडरेट होगा, लेकिन उसको वो कहेगा कि जी मुझे नींद नहीं करने दे रहा, इतना पेन है। ग्रेडिंग अगर देखेंगे तो 5, 6, 8 तक भी जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा ठीक, इसमें डॉक्टर ग्रेडिंग का थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ग्रेड है, अगर ग्रेड वन है तो
0: देखें, अगर देखें कम्युनिटी को बताना है
1: जी
0: तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर,
1: ठीक है।
0: अगर डॉक्टर्स होंगे या नर्सेज होंगी तो उनके लिए ग्रेडिंग होती है, 1 स्केल होता है 1 to 10,
1: जी जी
0: 10 सीवियर होता है, 1
1: अच्छा अच्छा ठीक
0: होता है, तो इस तरह ग्रेडिंग होती है।
1: ठीक,
0: तो आजकल
1: जैसे आम हम जैसे माइल्ड वो पेन पे डिपेंड करता है या उसके साथ साथ और भी कुछ अलामत?
0: हाँ, उससे ये पूछते हैं कि भाई बर्दाश्त कर सकते हैं या मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, या आप कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कितना पेन है, तो वो पेशेंट आपको बताएगा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये माइल्ड हो गया। अगर वो कहेंगे कि सीवियर तो फिर वो कहेगा कि हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है। मॉडरेट वो कहता है मेडिसिन खाऊंगा, उसे देखूंगा उसके बाद फिर डॉक्टर के पास, तो
1: ठीक ये जो है ये लेवल्स हैं,
0: ये लेवल्स
1: हैं इस तरह से। और फिर बिल्कुल इस तरह
0: से फ्रोजन शोल्डर है उसमें डिफ्यूज पेन होगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, सीवियर नहीं होगा।
1: ठीक है, सीवियर नहीं होगा मगर कांस्टेंट
0: होगा, वो इरिटेट करेगा।
1: ठीक
0: और असल में पेशेंट पेन की वजह से भी आएगा, लेकिन उसको जो मूवमेंट कम हो जाएगी शोल्डर में, रिस्ट्रिक्शन होगी, वो मूव नहीं कर सकेगा, तो उसकी वजह से आएगा आपके।
1: उसमें ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो आपने बताई तो है, मगर फिर पूछना चाहूँगी कि क्या कौन कौन सी मूवमेंट है
0: वो जो एबडक्शन, अगर देखें शोल्डर को हम ऐसे ऊपर उठा रहे हैं,
1: ठीक है,
0: एबडक्शन बोलते हैं, वो नहीं कर सकेगा। एक्सटर्नल रोटेशन इसको अगर हम
1: बाहर की तरफ करें वो भी नहीं कर सकेगा,
0: वो नहीं कर सकेगा। जैसे कुछ ऐसे पत्थर ये बॉलिंग करते हैं जिस तरह,
1: अच्छा वो भी नहीं कर,
0: ऊपर से इस तरह नहीं कर सकेंगे, ये मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, या उसको पूरा घुमाएंगे हम, इसको सर्कमडक्शन कहते हैं, वो नहीं कर सकेगा।
1: अच्छा ठीक, मगर ज़्यादातर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि वो कोम मतलब कंघी नहीं कर सकते,
0: exactly,
1: अपने कपड़े जो है वो मतलब इस तरह से तो वो
0: हाँ जो कंघी नहीं कर सकते,
1: जी जी, क्योंकि अक्सर जो है
0: फीमेल्स
1: में तो इस तरह से ही है, और इसी तरह अपने ड्रेस
0: और ये हाथ पीछे नहीं जाएगा इस तरह, ये देखिए एबडक्शन और ये पीछे अगर करेंगी कमर में लगाएंगी तो वो नहीं आएगा इस तरह।
1: अच्छा ठीक, ये सारी अलामतें हैं, तो इसमें जो फ्रोजन शोल्डर है वो हम क्योंकि बहुत आम है और एज के साथ कुछ हिस्से में जो है वो होता है, फिर ये कि ठीक
0: भी ये बच्चों में नहीं होगा, वो
1: बच्चों में नहीं होता। अच्छा,
0: बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में फिर वो बता,
1: बच्चों में ये ट्रॉमेटिक ज़्यादा
0: ट्रॉमेटिक, उसमें डिसलोकेशंस हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके मसल्स अभी ऐसे नहीं होते हैं कि जल्दी हो जाए।
1: ठीक है,
0: अगर कोई पुराना फ्रैक्चर है और उस ट्रीट सही नहीं हुआ, डिफॉर्मिटी है, तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर एक दो केस देखेंगे वैसे नहीं होगा।
1: अच्छा ठीक है, मगर ये कि दर्द जो है उन्हें उनका भी पेन जो है वो डिफरेंट जो है होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
0: कोई सर्जरी हो गई, उसका फ्रैक्चर हो गया प्रोक्सिमल ह्यूमरस का अराउंड द शोल्डर, कोई सर्जरी है और फिजिकल थेरेपी नहीं हुई है उसकी, या निगलेक्ट हो गया है या खुद निगलेक्ट किया है, तो उसमें हो सकता है फ्रोजन शोल्डर।
1: ठीक,
0: रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होंगी।
1: ठीक,
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जनिसंस, आज हम बात कर रहे हैं कि शोल्डर पेन की, ये कंधे में जो दर्द होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें जो आम तो अगर कोई चोट लगे वो तो है ही, मगर फ्रोजन शोल्डर जो है बहुत ही आम है और बहुत उसकी प्रॉब्लम भी है। अब हम डॉक्टर साहब ने वैसे तो हमें बताया है कि उसके साथ साथ जो है कि डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो पेशेंट हैं उन्हें किस वक्त ये सब अलामतें आमतें बता दी हैं, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो है वो थोड़ी कोई मेडिसिन ली, कुछ एनाल्जेसिक लिए, आराम

0: आ गया और फिर हम छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं अपने आप को, तो किस
1: वक्त वो आएगा? वो पेन की वजह से नहीं आएगा, पेशेंट आता है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से, वो हाथ उठा नहीं सकेगा, अपने कंधे से ऊपर उसका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है, या पीछे अगर वो लेके जाएगा तो उसकी कमर में टच नहीं कर सकेगा बैक पे,
0: ठीक है,
1: तो वो फिर इस वजह से आएगा, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, वही के रीअश्योरेंस, फिजिकल थेरापी, मेडिसिन, और वो इंट्राटिकुलर इंजेक्शन है इसमें, ठीक है, और ज़्यादातर अगर आप पेशेंट को बताएं कि वो कुछ फिजिकल थेरापिस्ट के पास भेजते हैं, कुछ खुद ही उनको बताते हैं कि किस तरह करनी है, ठीक है, मूवमेंट्स, तो वो मूवमेंट ज़्यादातर रिस्टोर करनी है हमें, मूवमेंट शोल्डर की, ठीक है,
0: ठीक है,
1: और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ फिर इंट्राटिकुलर इंजेक्शन विद लोकल एनेस्थीसिया उसका बहुत बड़ा अच्छा रोल है, ठीक है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया करें, तो उसका रिजल्ट अच्छा है और पेशेंट 100% सही हो जाते हैं।
0: अच्छा, ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और शुगर कंट्रोल में करें
0: जी, क्योंकि डायबिटिक हैं तो फिर शुगर जो है वो कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो टेस्ट करा जाता है, उससे MRI कोई
1: अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा है, पहले एक्सरे कराएंगे
0: जी,
1: उसमें देखें कोई पुराना फ्रैक्चर है या आपको आर्थराइटिस नज़र आएगा इस तरह का, या कैप्सुलाइटिस होता है कभी कभी मसल से, एक और कंडीशन में आपको बताऊँ, कभी कभी मसल इंजरी हो गई या कोई इंजरी नहीं हुई तो उससे जो है कैल्सिफिकेशन आपको नज़र आएगी एक्सरे में,
0: अच्छा,
1: तो वो भी बड़ा पेनफुल होता है,
0: ठीक
1: है, उसको भी हम करके अंडर इमेज फ्लोरोस्कोपी उसको भी निकाल लेते हैं,
0: अच्छा,
1: वो भी कभी रिटर्नड और पेनफुल होता है,
0: ठीक,
1: विदाउट एनी कास, विदाउट एनी ट्रामा, कभी कभी ट्रामा के बाद होता है,
0: ठीक ठीक, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि क्यों ऐसा है। जी हाँ लिसनर्स, आप घर में कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं 4434377 पर, व्हाट्सएप पर आप हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिए, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं 6622107। तो आपकी कॉल जो है व्हाट्सएप पर आ रही है, तो आप हमें जो 4434377 पर कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो डायग्नोसिस है वो बस यही होगा?
1: नहीं, एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि एक नेक का एग्जामिनेशन,
0: नेक,
1: हाँ नेक जो है अपर बैक
0: जी,
1: नेक, उसके बाद ये अपर लिम का पूरा एग्जामिनेशन, वो चीज़ें जो जैसे बताया आपको कार्पल टनल है, कार्पल टनल वो एक मीडियन नर्व यहाँ से रिस्ट से दबती है, तो
0: ये जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी जो हाथ में हाथ तक आती हैं और ऊपर से आ रही होती हैं, तो वो सारी मूवमेंट और बाकी जो सेंसिटिविटी है सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है, तो ये मीडियन नर्व उनमें से एक है।
1: हाँ, जी, मीडियन नर्व रिस्ट से कंप्रेस हुई
0: जी,
1: तो उसका भी रेडिएटिंग पेन है, तो उसका भी हमें एक्सक्लूड करना है, फिर हमें नेक का एग्जामिनेशन करना है, अपर बैक का एग्जामिनेशन करना है, एल्बो का एग्जामिनेशन करना है, तो वहाँ से भी जो पेन वहाँ से रेडिएट होते हैं तो उनको भी हमें एक्सक्लूड करने हैं।
0: जी जी, ठीक है, कि इस तरह से हम वो करते
1: हैं, अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है।
0: जी ठीक है, और उसमें जो शोल्डर में आपने कहा कि रेफर्ड पेन जो है ना वो आती है, तो थोड़ी सी हम नेक पेन की भी बात करते चलें, कि उसमें क्या क्या जो है वो कॉजेस हो सकते हैं।
1: नेक पेन कभी कभी पेशेंट आपके पास आएगा तो नेक पेन का नहीं बताएगा आपको, वो बताएगा कि जी पेन हो रहा है शोल्डर में और ऐसे जा रहा है नीचे, वो एल्बो से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको देखते हैं, शोल्डर भी एग्जामिनेशन करना है लेकिन नेक का भी एग्जामिनेशन आपने करना है।
0: अच्छा,
1: अगर नेक में प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है, एज रिलेटेड चेंजेस डिस्क में, मसल्स में, ठीक है, उसका पोस्चर सही नहीं होगा तो उसको बताना है, वो ट्रीट करना है, फिजिकल थेरापी उसमें बहुत बेहतर है, और उसको जो जैसे कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, ठीक है, तो उनको बताना है कि किस तरह बैठना है, ठीक है, और शोल्डर्स में और नेक में किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर बैठना है, ठीक है, और मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसको किस तरह आपने।
0: जी बिल्कुल, यही पूछा कि इसकी जो कॉजेज हैं वो इनमें से है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादातर ये हमारा पोस्टर जो है वो
1: पोस्टर रिलेटेड है, पिलो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का यूज़ कर रहे हैं,
0: अच्छा,
1: कुछ लोग लेट के मोबाइल यूज़ करते हैं
0: जी,
1: और पिलो जो है वो बड़ा लेते हैं बहुत फ्लेक्शन पोजिशन में, तो उससे भी ये नेक पेन बढ़ सकता है।
0: अच्छा, ठीक है, और इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन या कुछ और?
1: उसकी अलामतें फिर अलग होंगी, ट्यूबरक्लोसिस कामन है वहाँ पे, इन्फेक्शन कामन है, डिस्क इन्फेक्शन है,
0: ठीक
1: है, वो लेकिन इतने वो

0: आपको पब्लिक में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड, ठीक है,
1: ठीक है।
0: आपको 80-85 पेशेंट उसके मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके 10-15% जो हैं तो बाकी वो हो सकता है कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसकी ट्यूबरक्लोसिस की अलामतें तो डिफरेंट हैं, उसमें नाइट स्वेटिंग होगी, पेन होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, तो वो फिर पूरा ट्रीटमेंट उस तरफ जाएगा, जैसे हमें एक्सरे चेस कराना होगा, उसका सर्वाइकल स्पाइन का करना होगा, MRI कराना होगा, ठीक है
1: जी,
0: ब्लड टेस्ट कराने होंगे
1: जी, ठीक। इसमें जो नेक की खास तौर पर जैसे कोई और इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कोई और सेकेंडरी मतलब हो रहा है, तो इस वजह से ये हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो आजकल जैसे बहुत यंग एज में भी ये सर्वाइकल मसला है, तो इसकी भी थोड़ी सी कॉजेज ज़ाहिर पता तो है, मगर फिर पूछना चाहूँगी कि कैसे, जैसे खासकर बच्चे भी हैं,
0: हाँ बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्शन में नेक को रख के और बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, तो एक ये काज है बच्चों में, तो बच्चे बहुत आ रहे हैं, ठीक है, सर्वाइकल पेन के साथ, नेक पेन के साथ, वही कंप्यूटर यूज करना उसकी वजह से हो सकता है, वो अपना टेप यूज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताऊं कि एक होती है हमारा स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस एक कंडीशन है वो स्पाइन में होती है, उसमें जो पूरा स्पाइन मुड़ जाता है, निकल जाता है, देखा होगा आपने, मोस्ट इतना कॉमन नहीं है, लेकिन
1: उसमें जो स्ट्रक्चर है वो उसमें भी हम सब
0: बन जाते हैं,
1: पीछे
0: जो भारी बैग उठाने की वजह से भी ये बच्चों में, लड़कियों में ज़्यादा होता है, 13 साल तक जब तक मेनार्की हो उनकी स्टार्ट, तो ये फिर स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है सर्वाइकल स्पाइन का, तो ये भी एक मैसेज देना होगा हमें कम्युनिटी को कि बहुत ज़्यादा जो भरे हुए बैग जो है बच्चों को ना दें।
1: बिल्कुल, बहुत सारी रिसर्चेस भी इस पर हुई हैं, और उसमें ये भी के जो बैग पैक हैं या ट्रॉली बैग्स हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मगर हैं दोनों है की,
0: लेकिन ट्रॉली वाली सही है, बुक्स स्कूल में रखें या थोड़े रखें, थोड़े ले जाएं, और इतना जो मेरे बच्चों का बैग देखा है तो हैरानगी होती है कि भाई इतने क्यों वेट देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे जो हैं वो सर्वे
0: को भी अवेयरनेस देनी होगी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि भाई ये इस तरह हो, इसका काज है स्कोलियोसिस का, तो हमें इसको अवेयरनेस देनी होगी।
1: ठीक ठीक, और इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो
0: ग्रोथ हो रही होती है एग्जैक्टली, तो ग्रोथ जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस की भी टाइप है, फिर काइफोसिस है, बहुत ये बड़े टॉपिक हैं, इंशाल्लाह उस पर लेटर ऑन बात करेंगे
1: जी। ठीक, मगर अभी जैसे फिर उन्हें दर्द महसूस होता है बहुत,
0: हाँ दर्द होगा, और वही जिस तरह बता रहे हैं कि हम्प होगा, ठीक है, और वो थोड़ी सी बैक की पोजिशन चेंज हो जाएगी,
1: अच्छा
0: ठीक है, और शोल्डर एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा,
1: अच्छा।
0: पेरेंट्स आपको हम का बताएंगे, या वो बताएंगे कि एक इसका शोल्डर ऊपर नीचे है, ठीक है, या फिर लिम्फ लेंथनिंग हो जाती है, आप एक लिम्ब बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है, तो ये पेरेंट्स
1: इस तरह, ठीक ठीक, तो ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना फिर, ये तो उनकी पूरी ग्रोथ पे पूरी होल लाइफ जो है वो,
0: फिर उसका भी ट्रीटमेंट है, उसको देखते हैं, उसके एंगल्स होते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसका MRI कराते हैं, किस तरह कौन सा कर्व है, ट्रीटमेंट है उसका, ब्रेसेस देते हैं,
1: अच्छा।
0: काउंसलिंग करते हैं, इस तरह जैसे उनको रोकते हैं कि भाई बैग नहीं उठाएं,
1: अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक। और बिल्कुल, तो ई लर्निंग भी स्कूलों में बहुत,
0: एग्जैक्टली, बच्चों को बहुत पता है उसका
1: जी, बहुत क्विक है
0: जी, बहुत क्विक है
1: बिल्कुल, और हर चीज़ के अपने अपने उनके भी कुछ हैं हैज़र्ड्स, वो अलग हैं, मगर ये कि जब आज हम बात करें शोल्डर और नेक पेन की, तो इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है बच्चों की, अगर बच्चों पर बात करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा, मतलब अगर हम छोटे बच्चों, मतलब छोटे नहीं हम बच्चों की बात करें, जैसे स्कूल गोइंग हैं या कुछ,
0: वही नेक पेन, अपर बैक पेन, वही कंप्लेन जो आप बता रहे हैं कि वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या कंप्यूटर ज़्यादा, या फिर उनका भरे हुए बैग होते हैं, उनकी वजह से बच्चों में वो कॉमन चीज़ें, कभी कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी देखना चाहिए,
1: ठीक है ठीक है,
0: उसकी वजह से भी बॉडी पेन होगा और बच्चों में ज़्यादातर होता है
1: जी, ठीक, कि बॉडी पे विटामिन डी है या कैल्शियम,
0: जी कैल्शियम विटामिन डी, बिल्कुल
1: और بالکل یہ لسنرز, اور یہاں پر ہے بھی زیادہ وائٹمن ڈی ڈیفیشنسی بہت ہے, اور جیسے

0: धूप भी बहुत ज्यादा है मगर उसके साथ साथ
1: धूप में जाते नहीं है,
0: जाते नहीं है
1: क्योंकि एक हमारे जिस्म में विटामिन डी के जो फॉर्म्स होते हैं
0: जी,
1: तो जैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं जब उनको सनलाइट लगती है स्किन को
0: जी,
1: ठीक है, हमें ये खौफ होता है कि भाई हम कलर हो जाएगा, कलर खराब हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ी सी देर में सुबह में ज़रूर जाना चाहिए।
0: ठीक है, और जैसे गर्मी अभी जैसे ज़्यादा है तो वो एक्सट्रीम
1: गर्मी में बिल्कुल नहीं, सुबह में या शाम में,
0: सुबह में या शाम में, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग है यहाँ पे तो और ज़्यादा वो कि अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो हो तो फिर उसी में जी।
1: हाँ, जैसे ही सनलाइट स्किन को टच होगी तो एक्टिव विटामिन डी बनेगा, एक्टिव फॉर्म, तो वही हमें काम आएगा, वही बेहतरीन है।
0: ठीक जी, वो डॉक्टर साहब आपकी एक डॉक्टर साइमा शेख हैं और वो कह रहे हैं कि वेरी केयरिंग डॉक्टर, यानी आप बहुत पेशेंट्स के साथ जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। और ये हैं हमारे साथ, क्या नाम है इनका, अब्दुल हमीद, वो भी कह रहे हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम और शोल्डर जो पेन आज आप जो बात कर रहे हैं बहुत आम है और हर एक को, हमारे जो कोलीग्स हैं किसी न किसी तरह से उन्हें शोल्डर में जो पेन है वो रहता है।
1: Exactly.
0: ठीक, और उसकी जो वजूहत है वो तो यही है ज़्यादातर।
1: Exactly.
0: ठीक है, और हम खुद भी जब बैठते हैं या फ़ोन है तो एक साइड पर फ़ोन जो है वो रख के, और ये बहुत बड़ी वजह है, बस दफ़ा उसमें क्रैम्प्स भी हो जाते हैं,
1: स्पेस। हाँ, अभी जैसे हम इस तरह पकड़ते हैं फ्लेक्शन में तो जो हमारे टेंडन्स हैं एल्बो के दरमियान उनमें पेन हो जाता है, टेंडिनाइटिस हो जाता है, रिस्क के करीब जो टेंडन्स हैं तो उसमें हो जाता है, वही जो आगे शोल्डर की तरफ हैं तो उसमें हो सकता है। ठीक है,
0: ठीक है,
1: तो ये हमें एक मैसेज देना है कि मोबाइल पकड़ के ज़्यादा देर यूज़ नहीं करें, आजकल स्टैंड्स आई हुई हैं या जो जितनी हैं यूज़ करनी है इतनी यूज़ करें
0: जी। ठीक है, और कुछ जो अफराद हैं वो अपनी शोल्डर और कान के दरमियान में रख के तो करते हैं, जैसे जो फोन है तो उससे तो नेक पेन भी और
1: नेक भी और शोल्डर भी डेफिनेटली होगा।
0: ठीक,
1: सही,
0: ठीक, और उसमें भी स्पेज्म हो जाता है और एक तरफ जो है वो दूसरी तरफ कर ही नहीं सकते।
1: हाँ, कर ही नहीं सकते,
0: फिर आप
1: वेरी नेक, उसको कहते हैं वेरी नेक।
0: अच्छा, हाँ, अच्छा,
1: उसमें उसको कन्विंस करते हैं कि क्या उसको करना चाहिए, किस तरह शोल्डर को रखना चाहिए, किस तरह नेक को रखना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग का बड़ा रोल है।
0: ठीक है, ठीक है,
1: जितना आप उनको बताएंगे वो इतना समझेंगे। ठीक, अगर पता नहीं होगा उसको तो ये इसकी वजह से हुआ है तो कंटिन्यूसली करता जाएगा, फिर मसल रिलैक्सेशन, पेन किलर, इनका बड़ा रोल
0: इसमें जी। इसमें डॉक्टर साहब जो है ज्यादातर फीमेल्स तो नहीं इन्वॉल्व होती क्योंकि घर के काम कर रही है और
1: फीमेल बच्चे याद पर सब आ रहे हैं।
0: ठीक,
1: कोई वो इसमें फीमेल या ज्यादा या मेल, अब इसमें मेल्स फ्रोजन शोल्डर में ज्यादा आ रहे हैं और डायबिटिक जो है उसमें ज्यादा आ रहे हैं।
0: ठीक डॉक्टर साहब, इसमें जैसे रिसर्च हुई तो उसमें मैं देख रही थी, शुरू में मैंने अपने लिसनर्स के साथ शेयर भी किया कि ये फोर्थ मेजर कॉज है डिसएबिलिटी की।
1: एग्जैक्टली,
0: तो इसको थोड़ा किस तरह आप हमें बताएंगे कि डिसेबिलिटी जो है किस तरह की।
1: वही है कि भाई हमें इनको मैसेज देना होगा कि भाई ये इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वही अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उनको फिजिकल थेरेपी करानी चाहिए, कंट्रोल शुगर को करना होगा और मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर का रोल है इसमें।
0: ठीक
1: है, और विजिट मतलब फॉलो अप पेशेंट को रखना चाहिए, हाइड्रोथेरेपी, जिम, स्विमिंग, इसका बड़ा अच्छा रोल है हाइड्रोथेरेपी।
0: अच्छा,
1: जो हम वाटर के इनसाइड एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं
0: जी,
1: उसका बड़ा रोल है। और ख़ुद भी आप अगर उनको बताएंगे पेशेंट, आजकल देखें यूट्यूब में देखें चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ उसको बताना है कि ये देखे, चेक करे, करे।
0: ठीक,
1: ठीक है, खुद अगर जो आपको आ रही है वो उनको बताएं क्लिनिक में। मैं अक्सर पेशेंट को बताता हूँ कि इस तरह करनी है, इस तरह करनी है, तो शुरू करते हैं।
0: ठीक, थोड़ा सी इसमें मुश्किल ये है कि बस दफ़ा
1: टाइम निकालना
0: जी, टाइम तो निकालना है, ये कि आपको अगर कोई इंस्ट्रक्ट करता है या डेमो हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे आपने कहा कि फिजियोथेरेपी इसमें बहुत हेल्पफुल है। ठीक, ठीक, और इसी तरह से हम फिर
1: देखिए कभी ऐसा पेशेंट भी होता है सिर्फ उसको आप मस्कोडोल देंगे तो उससे भी रिकवर हो जाता है
0: जी।
1: ठीक है, बाकी उसने फिजिकल थेरेपी की तो उससे सही हुआ, उसका शुगर सही हो गया, उससे सही हो गया। ठीक है, आपने उसको अच्छा काउंसलिंग किया, वो बात को समझ गया। ठीक है, आगे बहुत कम जाते हैं जब वो सब कुछ करके आया और अभी भी उसको रिलीफ नहीं मिला तो फिर और भी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेशन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है
0: जी जी,
1: हाँ तो उससे हो जाता है रिकवर।
0: ठीक ठीक, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सामने रखते हैं कि क्या, और जो डायग्नोज है उसमें हिस्ट्री बहुत अहम है,
1: हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
0: क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
1: ट्रीटमेंट में काउंसलिंग।
0: ठीक है,
1: पेशेंट को बताएं, पेशेंट बात भी माने। ठीक है, वो ऐसे ना हो कि वो एक कान से सुने और दूसरे कान से और उसके जहन में कुछ और हो तो
0: फिर ये तो फिर डॉक्टर्स का स्किल है,
1: डॉक्टर्स का स्किल है
0: जी।
1: एग्जैक्टली,
0: और इस पर भी हमें गौर करना है क्योंकि बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो भी होती हैं डॉक्टर्स के साथ जी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: जनरल, आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर पेन और नेक पेन की, और डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, और जैसे मैं भी आपके ही साथ हूँ, और मुझे कुछ जो लाइफस्टाइल हमारा है मेरा ख्याल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ने जैसे जो जो वजूहत बताई हैं तो उसमें कुछ कसूर हमारा ही सामने आ रहा है कि किस तरह से हम अपने आप को हैंडल करते हैं, कोई टेलीफोन करते हुए, बाकी और डिवाइसेस यूज़ करते हुए, ये बहुत अहम है। और इसके अलावा ये कि आप कोई गेम्स खेलते हैं या अगर कोई चोट लग जाती है तो उसमें भी बहुत अहम है कि आपने उसे इग्नोर नहीं करना है। दर्द तो है ही, मगर दर्द को किस तरह से और कब डॉक्टर के पास जाना है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। और ख़ासतौर पर जब फ्रोज़न शोल्डर की बात करते हैं तो बहुत आम ये प्रॉब्लम है और बहुत बहुत मुश्किल में होते हैं पेशेंट्स हैं जी।
1: फ्रोजन शोल्डर अबव 40 उसको ट्रीट टाइम के साथ करना चाहिए।
0: ठीक है ठीक है, इसमें जो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी, आपने बताया है कि उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं, जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं या कोई
1: इंजेक्शन से पहले देखिए, पहले तो काउंसलिंग है उसकी
0: जी जी।
1: ठीक है, क्या करना
0: मतलब है, अगर हम स्टेप वाइज पूछें,
1: अगर पेशेंट उस तरह सोता है तो उसको पेन होता है तो उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह नहीं सोना है। ठीक है, उसमें हीट का बड़ा रोल है।
0: अच्छा।
1: रात को उसको बोलेंगे कि हीट को ऐसे पानी का बेग होता है पुराने जमाने में इस तरह, वो अपने पास रखे या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जिसको हीट हो वो लगाए शोल्डर के अराउंड, उसका बड़ा रिलीव है। मसल लेक्सेंट टेबलेट जैसे मस्कोडॉल है या दूसरी भी काफ़ी हैं। अगर पेन उसको शदीद है तो पेन मेडिसिन भी ले, फिजिकल थेरेपी की तरफ जाए ज़रूर। ठीक, और उसके बाद जो है उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैनिपुलेट करेंगे। पर मैनिपुलेट वो है कि उसको एनेस्थेसिया देते हैं, अंडर एनेस्थेसिया करते हैं, उसको फिर मैनिपुलेट करके खोलते हैं, उसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया। और इंट्राटिकुलर इंजेक्शन का भी बड़ा अच्छा रोल है मैंने जैसे बताया, फिर उसको फिजिकल थेरेपी की तरफ भेजें, बड़ा उसका फायदा है
0: जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो मसाज भी वो क्या है, किस तरह से
1: मसाज, ये एक तो फिजिकल थेरेपी वाले करते हैं। ठीक है, और बाकी जो जिस तरह फिजिकल थेरेपी के बाद जो फिजिकल थेरापिस्ट होते हैं तो उनके कुछ मैन्यूवर्स होते हैं
0: जी,
1: वो उन पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह करने।
0: ठीक है जी, डॉक्टर साहब इसमें जो अगर खुदा नास्ता ना मतलब हों तो फिर क्या आप जो है वो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती है?
1: कभी कभी मैनिपुलेशन के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन होती है।
0: डॉक्टर साहब अभी हम चलेंगे अपने लिसनर्स की तरफ और सुनते हैं कि कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, प्रोग्राम हेल्थ गाइड जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछा जाए? जी जी,
6: आप लोग जो प्रोग्राम में वो बोल रहे हैं वो बैक में दर्द है ऊपर गर्दन का
0: जी जी,
6: वो जो हम सोने से हो ये चीज हमारे साथ होता है। मतलब एक्साइटमेंट ज्यादा होता है ना, एक्साइटमेंट तो कभी कभी ऐसा दर्द महसूस होता है, तो बस मैं पैनाडोल खा के फिर सही हो जाता हूँ, लेकिन कोई मेरे

0: सब क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: बस वही, जैसे हम अब आज हमारी बात हुई है शोल्डर पे, तो वही अर्ली डायग्नोसिस देखें, कुछ हफ्ते मेडिसिन खाएं, अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स की बढ़ रही है और बायलेटरल फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, अब तो फौरन जाना चाहिए आपके फैमिली फिजिशियन के पास, वो फिर आगे बढ़ाएगा आपको, पहले ट्रीटमेंट खुद ही करेगा, अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो फिर आगे फिजिकल थेरेपी का उनको बोलेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे और शुगर को कंट्रोल करेंगे।
0: बिल्कुल। और लिसनर्स, इसके साथ ही प्रोग्राम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत अच्छा मैसेज है कि अपना जो ख्याल करना है और शुगर लेवल का, और इसके अलावा जो है हमारी जो हेल्थ है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए हम फिर शोल्डर पेन और नेक पेन से भी दूर रहेंगे, डिवाइसेस से ज़रा दूर रहेंगे। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और फौजिया शफीक हमारे साथ रहे, असली भंडारा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, FM 107 कतर के लिसनर्स को ढेर सारी खुशामदीद. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम सिर्फ मेडल्स और मैचेस के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन कहानियों को भी समझने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी और जेंडर नॉर्म्स को रीडिफाइन करती हैं. आज का मौजू भाई बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के उस पावरफुल रोल की जो लड़कियों की जिंदगी बदल रही हैं. भाई देखें, पहले जहां स्पोर्ट्स को बॉयज डोमेन समझा जाता था, अब वही फील्ड्स लड़कियों के लिए भी एम्पावरमेंट का जरिया बन रही हैं. साथियों, टूर्नामेंट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं रहे बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां टैलेंट को पहचान मिलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सोसाइटी की सोच आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगती है. जब कोई लड़की एथलीट किसी टूर्नामेंट में जीतती है ना, तो वो अपने इलाके, अपने मुल्क, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है. तो वो सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए प्राइड का मोमेंट होता है. देखिए, फैमिलीज जो पहले हेजिटेट होती थी ना, अब प्राउडली अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स फील्ड तक ले जा रही हैं. ये चेंज सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है. आज हम एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, यानी कि हम बात करेंगे इब्तिहाज मोहम्मद के बारे में. फेंसिंग जैसे इलीट और टेक्निकल स्पोर्ट्स में उनका नाम सिर्फ मेडल्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी और करेज की वजह से भी जाना जाता है. इब्तिहाज मोहम्मद ने दुनिया को ये दिखाया कि एक औरत अपनी पहचान

पहचान के साथ भी टॉप लेवल स्पोर्ट्स में कम्पीट कर सकती है। उनकी ओलंपिक जर्नी इस बात की मिसाल है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो बैरियर्स सिर्फ सोच में होते हैं, हकीकत में नहीं। उन्होंने जब हिजाब पहनकर इंटरनेशनल अरीना में पार्टिसिपेट किया तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही थी बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए एक मैसेज था जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अनसर्टन होती थी। साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये विजिबिलिटी देते हैं। जब कोई लड़की टेलीविजन पर या स्टेडियम में परफॉर्म करती है ना, तो वो सिर्फ एक एथलीट नहीं रहती बल्कि एक रोल मॉडल बन जाती है। छोटी छोटी लड़कियां उन्हें देखकर ये सोचती हैं कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, और यही इंस्पायरेशन डायरेक्टली ड्रीम्स को डायरेक्शन देती है। स्कूल्स और कम्युनिटीज में अब गर्ल्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, और ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर भी मबनी है, और उन्हें भी एनहेंस कर रहा है। हर जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं होती बल्कि माइंडसेट पर भी होती है। अच्छा, अगर हम सोसाइटी के लेंस से देखें ना, तो टूर्नामेंट्स एक ब्रिज का काम करते हैं जो ट्रेडिशनल थिंकिंग और एम्पावरमेंट के दरमियान जो गैप है ना, उसको कम करते हैं। जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनकी बेटी किसी कॉम्पिटिशन में जीत कर घर का नाम रोशन कर रही है, तो उनका पर्सपेक्टिव नेचुरली इवॉल्व होता है। ये प्राइड एक पावरफुल, आप कह लें कि कैटलिस्ट है जो लॉन्ग टर्म कल्चरल चेंज ला रही है। आज जो लड़कियां कोर्ट्स, ट्रैक्स और फील्ड्स में नजर आ रही है ना, कल वही लीडरशिप पोजीशंस और डिसीजन मेकिंग रोल्स में भी नजर आएंगी। तो साथियों, जरा सोचिए, गर्ल एथलीट अपनी आइडेंटिटी, अपनी मेहनत और अपने मुल्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती है, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल रही होती, वो हिस्ट्री लिख रही होती है। आज का एपिसोड हमें ये याद दिलाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक एम्पावरमेंट है, एक मूवमेंट है जो जेंडर नॉर्म्स को रीशेप कर रही है और नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल रही है। आप हमें चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, जिसका हैंडल है FM107 Qatar, और आप अपनी राय भी हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हर कहानी एक नई जीत की शुरुआत है। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में, मतलब ये कि शुरू करते हैं ग्राउंड लेवल से। देखिए, आज का फोकस है एक बहुत ही टेक्निकल, फास्ट और मेंटली डिमांडिंग डिसिप्लिन पर, यानी के सेबर फेंसिंग पर। और इसके साथ हम कतर में वुमेन के लिए इस स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, सेबर फेंसिंग सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और मेंटल शार्पनेस का कॉम्बिनेशन है, जहां हर सेकंड डिसीजन मेकिंग होती है और हर मूवमेंट विक्ट्री या डिफीट का फैसला कर सकता है। देखिए, कतर जैसे मुल्क में जहां स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली डेवलप हो रहा है, वहां सेबर फेंसिंग ग्रेजुअली एक इमर्जिंग डिसिप्लिन बन रहा है, खासतौर पर यंग फीमेल एथलीट्स के लिए जो अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स बाउंड्रीज से बाहर निकलकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स और प्रिसिजन बेस्ड डिसिप्लिन में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। अगर हम कतर के वुमेन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को देखें ना, तो लास्ट डेकेड्स में पार्टिसिपेशन रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन और मुख्तलिफ स्कूल लेवल प्रोग्राम्स के थ्रू लड़कियों को अब स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिल रही है, जहां फेंसिंग इंस्पायर्ड एगिलिटी ड्रिल्स और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल लेवल गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम तकरीबन 40% से ज्यादा इंक्रीज हुई है, और इसमें सेबर फेंसिंग जैसे डिसिप्लिन को भी अवेयरनेस लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक माइंडसेट ट्रेनिंग है, जहां लड़कियों को क्विक डिसीजन मेकिंग, बैलेंस और फोकस सिखाया जाता है। साथियों, दोहा और उसके सराउंडिंग एरियाज में कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, जहां फेंसिंग इंस्पायर्ड ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये सेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाते बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सेल्फ डिसिप्लिन पर भी फोकस करते हैं। यंग गर्ल्स जो पहले कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इनएक्सेसिबल समझती थीं,
अब वो बेसिक सबर फेंस

डांसिंग, फुटवर्क और रिएक्शन ड्रिल्स सीख रही हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो ग्रेजुअली स्पोर्ट्स कल्चर को रीशेप कर रहा है। कतर के यूथ डिपार्टमेंट विजन के अंडर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां गर्ल्स के लिए सेफ, स्ट्रक्चर्ड और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम ग्लोबल प्रस्पेक्टिव देखें ना, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन फेंसिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पास्ट अगर 10 साल में देखी जाए तो 60% यानी कि 60% तक इंक्रीज हुई है। इस ट्रेंड का असर कतर पर भी नजर आ रहा है साथियों, जहां स्कूल्स और एकेडमीज ओलंपिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम इंक्लूड कर रही हैं। अच्छा, इन प्रोग्राम्स का एम सिर्फ कंपटीशन नहीं है बल्कि एक्सपोजर देना है कि लड़कियां मुख्तलिफ ओलंपिक डिसिप्लिन को एक्सप्लोर कर सकें। सिबर फेंसिंग इस लिस्ट में एक यूनिक पोजीशन रखता है क्योंकि ये सिबर फास्ट फेंसिंग कैटेगरी है, जहां एग्रेशन और कंट्रोल दोनों एक साथ रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, कतर में फीमेल एथलीट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में अब वुमेन कैटेगरीज को ज़्यादा विजिबल हो रही हैं। पहले जहां पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती थी ना, अब स्ट्रक्चर्ड कोचिंग और फेडरेशन लेवल सपोर्ट की वजह से लड़कियों को ट्रेनिंग पाथवे मिल रहे हैं। ये डेवलपमेंट सिर्फ परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जहां टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर सिबर फेंसिंग को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भाई फ्यूचर में कतर में विमेन सिबर फेंसर्स का एक कॉम्पिटिटिव पूल डेवलप होने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अक्सर औकात आपने देखा होगा हमारा ये जो स्पोर्ट्स डे का इवेंट होता है उसमें भी जगह जगह इस वाले स्पोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, जो एक्टिविटीज लगाई जाती हैं उसमें भी सिबर फेंसिंग इंक्लूडेड होती है। तो इससे पता चलता है कि कतर इज वर्किंग ऑन इट। अच्छा, सिबर फेंसिंग की ट्रेनिंग में जो स्किल्स डेवलप होती हैं ना, वो सिर्फ स्पोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहती। ये रिफ्लेक्सेस, डिसिप्लिन और मेंटल रेजिलियंस को इन्हेंस करती है। कतर की यंग गर्ल्स जब इस डायरेक्शन में मूव जो अभी कर रही हैं ना, उनके लिए एक एम्पावरमेंट टूल बनकर सामने आ रहा है। जब एक गर्ल एथलीट फेंसिंग स्ट्रिप पर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है, ओपोनेंट को रीड करती है और स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेती है, तो वो सिर्फ स्पोर्ट नहीं खेल रही होती बल्कि लीडरशिप और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होती है। साथियों, आज कतर में जो स्पोर्ट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें सिबर फेंसिंग एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ग्रेजुअली फेंसिंग अवेयरनेस सेशंस इंक्लूड कर रहे हैं और कोचेस को इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है, जहां कतर अपनी विमेन एथलीट्स को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें ना, तो भाई चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो अभी भी अवेयरनेस और एक्सेस एक बैरियर है। सिबर फेंसिंग एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट है जिसमें इक्विपमेंट, कोचिंग और फैसिलिटीज की जरूरत होती है, लेकिन कतर की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इस गैप को फिल करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट कर रही हैं। कम्युनिटी अरेंजमेंट प्रोग्राम्स और स्कूल पार्टनरशिप्स इस गैप को ब्रिज करने में मदद कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पेरेंट्स का माइंडसेट भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, जो किसी भी स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर होता है। अच्छा, आने वाले वक्त में अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहा ना, तो कतर में विमेन सेबर फेंसिंग एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनकर सामने आ सकता है, जहां नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन तक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट नहीं है बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट है, जहां लड़कियां अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड और इंटेलिजेंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो साथियों, ये थी एक डिटेल इनसाइट ऑन सिबर फेंसिंग और कतर में विमेन्स स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर। ये सिर्फ एक स्पोर्ट की स्टोरी नहीं है साथियों, बल्कि एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की कहानी है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर। शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपने इंस्पायरिंग सफर को शुरू करते हैं, यानी कि अपनी स्टोरी ऑफ द वीक में लेकर चलते हैं आपको।

ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की तरफ जिन्होंने सिर्फ फेंसिंग स्ट्रिप पर नहीं बल्कि दुनिया के माइंडसेट पर भी अपनी एक गहरी निशानी छोड़ दी। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
1: देखें आज की कहानी है इब्तिहाज मोहम्मद की, एक ऐसी खातून एथलीट की जो सिर्फ एक ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, करेज एंड रिप्रेजेंटेशन बन चुकी हैं। उनकी स्टोरी को समझने के लिए हमें उनके बचपन से शुरू करना होगा, जहां से उनका सफर एक आम सी जिंदगी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओलंपिक स्टेज तक जाता है। देखें इब्तिहाज मोहम्मद का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है, जहां वो एक डाइवर्स और कल्चरली रिच फैमिली में पैदा हुई। उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी जहां आइडेंटिटी, फेथ और एम्बिशन तीनों चीजें साथ साथ ग्रो कर रही थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा ये सिखाया कि अपनी पहचान को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बल्कि उसे स्ट्रेंथ बनाना। बचपन से ही उन्हें डिसिप्लिन और फोकस का एलिमेंट नजर आने लगा था अपने अंदर, और ये क्वालिटी ही उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ ले गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इब्तिहाज के लिए स्पोर्ट्स एक लैंग्वेज थी जिसमें वो अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करती थी। अच्छा, जब उन्होंने फेंसिंग चूज किया ना, तो ये डिसीजन कोई कॉमन चॉइस नहीं था। फेंसिंग जैसे स्पोर्ट्स में एंटर करना आसान नहीं होता साथियों, क्योंकि ये एक हाईली टेक्निकल और एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, जहां ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, कोचिंग और इक्विपमेंट्स का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन इब्तिहाज ने इस स्पोर्ट में अपना फ्यूचर देखा, उन्होंने सोचा, समझा। उनके लिए फेंसिंग सिर्फ सॉर्ड फाइट नहीं थी बल्कि एक मेंटल गेम था, जहां हर मूवमेंट, हर सेकंड और हर रिएक्शन एक स्टोरी लिखता था। उन्होंने अपनी अर्ली ट्रेनिंग के दौरान ये समझ लिया था कि भाई, इस स्पोर्ट में सक्सेसफुल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होना बल्कि मेंटल शार्पनेस और डिसिप्लिन से ही मिलता है सक्सेस इस स्पोर्ट में। उनके अर्ली कॉम्पिटिटिव डेज ईजी नहीं थे। अच्छा, उन्होंने मल्टीपल चैलेंजेस का सामना भी किया, जैसे कि हर स्पोर्ट्समैन करता है। सबसे पहला चैलेंज रिप्रेजेंटेशन का था। देखिए, यूएस फेंसिंग सर्किट में मुस्लिम विमेन या हिजाब पहनने वाली एथलीट का कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं था। दूसरा चैलेंज क्या था भाई? दूसरा चैलेंज कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो थी ना, जहां उनकी आइडेंटिटी को कभी कभी क्वेश्चन किया जाता था। और तीसरा चैलेंज विजिबिलिटी का था, क्योंकि विमेन फेंसिंग इटसेल्फ मीडिया स्पॉटलाइट में इतना हाईलाइट नहीं होता था जितना मेंस स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज पता है क्या था? इलीट लेवल कंपटीशन का प्रेशर था, जहां हर मैच एक टेस्ट होता है एंड्योरेंस का, स्ट्रेटजी का और मेंटल कंट्रोल का। लेकिन यहाँ पर इब्तिहाज मोहम्मद की रियल स्ट्रेंथ सामने आती है भाई। उन्होंने हर बैरियर को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। जब दुनिया उन्हें डिफरेंट कहती थी, उन्होंने उस डिफरेंस को अपनी आइडेंटिटी बना दिया। उनका सबसे पावरफुल डिसीजन ये था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर हिजाब में कम्पीट करेंगी। ये सिर्फ एक क्लॉथिंग चॉइस नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कह रहा था कि भाई, आइडेंटिटी और एलीट स्पोर्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ चल सकते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया भाई। देखें 2016, हाँ जी 2016 रियो ओलंपिक्स उनके करियर का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था, जहां 2016 रियो ओलंपिक्स के स्टेज पर इब्तिहाज मोहम्मद ने हिस्ट्री लिखी। वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून बनी जो ओलंपिक्स में हिजाब के साथ कंपीट कर रही थी, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी बल्कि उन्होंने अपनी यूएस फेंसिंग टीम के साथ ब्राउन्ज मेडल भी जीता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अचीवमेंट सिर्फ मेडल तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल मैसेज था कि डिटर्मिनेशन, आइडेंटिटी और एक्सीलेंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनकी ओलंपिक

0: सक्सेस ने दुनिया भर में डिस्कशंस चेंज कर दी। स्पोर्ट्स अपीरल इंडस्ट्री से लेकर ओलंपिक कमेटीज तक भाई रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी का टॉपिक सीरियसली लिया जाने लगा। मुस्लिम वुमेन की पार्टिसिपेशन इन एलीट स्पोर्ट्स को एक नई विजिबिलिटी मिली। ये सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं थी बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट था जो चीख चीख कर दुनिया को ये बता रहा था कि स्पोर्ट दुनिया की हर आइडेंटिटी के लिए ओपन होने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साथियों, रियो ओलंपिक्स के बाद विमेन पार्टिसिपेशन अवेयरनेस कैंपेन्स में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ था, इंक्रीज हुआ था, खास तौर पर फेंसिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। इब्तिहाज मोहम्मद की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ थी। उनके पास फैमिली सपोर्ट था, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रेजिलियंस थी। उन्होंने उन स्पेसेस में सर्वाइव किया जहां वो अक्सर डिफरेंट फील करती थी, लेकिन उन्होंने डिफरेंस को वीकनेस नहीं बना दिया, उन्होंने उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। हर सेशन, हर डिफीट और हर चैलेंज उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाता गया। ये मेंटल टफनेस ही उन्हें एलीट एथलीट बनाने में मददगार साबित हुई। साथियों, ओलंपिक के बाद उनका रोल सिर्फ एथलीट तक लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने अपनी वॉइस को एक प्लेटफॉर्म बनाया। वो स्पीकर बनी, ऑथर बनी और एडवोकेट बनी। उन्होंने आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन और स्पोर्ट्स एक्सेस पर ओपनली बात की। उनकी बुक और पब्लिक टॉक्स ने हजारों यंग गर्ल्स को इंस्पायर किया कि वो अपनी आइडेंटिटी को कभी हाइड ना करें। उनकी स्टोरी ने ये प्रूव किया कि एक एथलीट का इम्पैक्ट फील्ड से बाहर भी उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना फील्ड के अंदर होता है। अगर हम उनके इम्पैक्ट को नंबर्स और इन्फ्लुएंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो उनकी ओलंपिक अचीवमेंट ने ग्लोबल मीडिया कवरेज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया। मुस्लिम विमेन एथलीट की विजिबिलिटी में मेजरेबल इंक्रीज देखा गया पास्ट 2016 एरा में। अच्छा, फेंसिंग पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स में डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को बूस्ट मिला और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इंक्लूसिव पॉलिसी पर ज्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया। ये सब इनडायरेक्टली इब्तिहाज मोहम्मद की लेगेसी का पार्ट है। अच्छा, आज उनकी स्टोरी कतर जैसे मुल्क के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है जहां वुमेन स्पोर्ट्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं ना। FM 107 कतर और हमारा शो विमेन इन स्पोर्ट्स इसलिए इन स्टोरीज को हाईलाइट करता है क्योंकि ये सिर्फ पास्ट की कहानियां नहीं है बल्कि फ्यूचर का रोड मैप है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। साथियों, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 कतर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 666-22107। इब्तिहाज मोहम्मद की कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत मेडल नहीं होती बल्कि अपनी पहचान के साथ दुनिया को जीतना होता है। और यही वो सोच है जो हर यंग एथलीट, खासतौर पे गर्ल एथलीट को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ी हो सकती है ना, तो वो दुनिया की किसी भी स्टेज पर आराम से खड़ी हो सकती है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपनी स्पेशल सी बात पर आते हैं। विमेन स्पोर्ट्स में एंटर करते हैं एक ऐसे फेज में जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते बल्कि उस स्टोरी के डीप मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो अभी हम करने लगे हैं, बियॉन्ड द गेम के बारे में बात करने लगे हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इब्तिहाज मोहम्मद की जर्नी हमें फेंसिंग स्ट्रिप से बाहर क्या सिखाती है, क्योंकि हर एथलीट की कहानी सिर्फ मेडल्स और मैचेस तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि उनकी डिसीजंस, स्ट्रगल्स और माइंडसेट से एक पूरी की पूरी फिलॉसफी जन्म लेती है जो सोसाइटी को रीशेप करती है। देखिए, सबसे पहले और सबसे पावरफुल लर्निंग जो हमें इब्तिहाज मोहम्मद की स्टोरी से मिलती है वो ये है कि कॉन्फिडेंस कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं होती। नो, ये एक बिल्ट इन प्रोसेस होता है जो टाइम, फेलियर और रेपिटेशन से डेवलप होता है। इब्तिहाज ने दुनिया को ये दिखाया कि कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ होना नहीं होता बल्कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके हर स्पेस में कॉन्फिडेंटली एंटर करना होता है। जब वो अपनी गेम में उतरती थी ना, तो वो सिर्फ एक एथलीट नहीं होती थी बल्कि एक मैसेज होती थी कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ। ये माइंडसेट यंग गर्ल्स के लिए बहुत पावरफुल है, खास तौर पर उन सोसाइटीज में जहाँ आइडेंटिटी को कभी कभी लिमिटेशन समझा जाता है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन डिसिप्लिन है। फेंसिंग जैसे फास्ट पेस स्पोर्ट्स में जहां मिली सेकेंड्स में डिसीजंस चेंज होते हैं, वहां डिसिप्लिन लाइफ लाइन होती है। फेंसिंग में एथलीट्स को सिर्फ फिजिकल फिट नहीं होना पड़ता बल्कि मेंटली अल्ट्रा फोकस्ड रहना पड़ता है। स्टडीज के मुताबिक एलीट फेंसर्स एक मैच में एवरेज 300 से ज्यादा माइक्रो डिसीजंस लेते हैं। इब्तिहाज मोहम्मद ने इस लेवल की डिसिप्लिन को अपनी ट्रेनिंग का डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। ये डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, ना ना ना ना, बल्कि उनकी लाइफ फिलॉसफी बन गया है। हर ट्रेनिंग सेशन, हर रेपिटेशन और हर डिफीट उनके लिए एक लर्निंग स्टेप था। अच्छा, तीसरा मैं कहूँगी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पब्लिक विजिबिलिटी का है। देखिए, इब्तिहाज मोहम्मद ने मुस्लिम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज पर रीडिफाइन किया। 2016 रियो ओलंपिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जहां वो पहली अमेरिकन मुस्लिम वुमेन बनी जो हिजाब के साथ ओलंपिक्स में कम्पीट कर रही थी। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मोमेंट नहीं है बल्कि ग्लोबल विजिबिलिटी शिफ्ट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियो ओलंपिक्स के बाद ग्लोबल मीडिया कवरेज को मुस्लिम वुमेन एथलीट्स में नोटिसेबल इंक्रीज देखा गया और फेंसिंग फेडरेशंस ने डाइवर्सिटी कैंपेन्स को एक्सपेंड किया। अच्छा, चौथा लेसन हमें ये मिलता है लीडरशिप का। लीडरशिप सिर्फ कैप्टन बनना या मेडल्स जीतना नहीं होती बल्कि इंस्पायरेशन देना होती है। इब्तिहाज मोहम्मद ने अपनी प्रेजेंस से एक नई लीडरशिप डेफिनेशन दी। वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेल रही थी बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन रही थी जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अनसिक्योर होती हैं। उनकी लीडरशिप का इम्पैक्ट ये था कि आज कई कंट्रीज में विमेन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंटेशन अवेयरनेस मॉड्यूल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन है जो स्लोली बट पावरफुली स्पोर्ट्स कल्चर को चेंज कर रही है। अच्छा, पांचवा लेसन हेल्थ और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल होती है, लेकिन इब्तिहाज मोहम्मद ने ये प्रूव किया कि स्ट्रेंथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होती है। एलीट फेंसिंग में रिएक्शन टाइम एवरेज 300 मिली सेकेंड से कम होता है, जो एक ब्लिंक से भी तेज होता है। साथियों, इस लेवल पर कम्पीट करने के लिए सिर्फ फिटनेस नहीं चाहिए होती, ना बाबा, मेंटल हेल्थ चाहिए होती है, मेंटल क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड होती है। इब्तिहाज ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये बैलेंस अचीव किया जहां उनके बॉडी और माइंड दोनों सिंक्रनाइज थे। अच्छा, छठा और सबसे डीप लेसन जो है ना, वो रिस्पेक्ट का है भाई। देखें, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती बल्कि अर्न की जाती है। इब्तिहाज मोहम्मद ने अपनी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी के थ्रू ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिटी का रिस्पेक्ट जीता। उनका हिजाब में कम्पीट करना इनिशियली डिस्कशन का टॉपिक बना था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने सब डाउट्स खत्म कर दिए भाई। ये रिस्पेक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि सोसाइटी लेवल पर उन्हें एक रिस्पेक्टेड वॉइस बना दिया। अच्छा, और गहराई में बात करें तो इब्तिहाज मोहम्मद की स्टोरी हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती है। क्या हम अपनी आइडेंटिटी को दूसरों से छुपाते फिरें या उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं? ये सिर्फ स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं है बल्कि जिंदगी का क्वेश्चन है। हर यंग गर्ल जो किसी फील्ड में एंटर करती है, उसके सामने ये डिसीजन होता है ना कि वो अपनी यूनिकनेस को कॉम्प्रोमाइज करे या उसे सेलिब्रेट करे। इन दो चीजों में से उसे चूज करना होता है। इब्तिहाज मोहम्मद ने दुनिया को ये सिखाया कि ट्रू सक्सेस तब होती है, असली सक्सेस तब होती है जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ सक्सेस अचीव करते हैं। अच्छा, कतर जैसे मुल्क के लिए ये स्टोरी बहुत रेलिवेंट है जहां वुमेन स्पोर्ट्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। स्कूल्स, अकेडमीज और नेशनल प्रोग्राम्स में गर्ल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्पोर्ट्स लास्ट डेकेड में, यानी कि 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना सिर्फ स्पोर्टिंग अचीवमेंट नहीं था बल्कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था जहां डाइवर्सिटी और एक्सीलेंस के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। ये मोमेंट दुनिया के लिए एक रिमाइंडर था कि भाई, टैलेंट किसी कल्चर, रिलीजन या अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं होता। अगर हम और ज्यादा गहरी एनालिसिस करें तो उनकी जर्नी हमें ये समझाती है कि रेजिलियंस एक एथलीट का सबसे पावरफुल वेपन होता है। वो उस स्पेस में बिलोंग नहीं करते। इब्तिहाज मोहम्मद ने ये गैप फिल किया। उनकी प्रेजेंस ने फेंसिंग और ओलंपिक स्पोर्ट्स में मुस्लिम वुमेन के लिए एक विजिबल पाथवे क्रिएट किया। ग्लोबल स्पोर्ट्स डाटा के मुताबिक ये शो होता है कि 2010 के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्पोर्ट्स नियरली 40-50% तक इंक्रीज हुई है और इस ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है और विजिबिलिटी कैंपेन्स हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है बल्कि रियल लाइव्स का चेंज है भाई। साथियों, मैं हूं सफा और उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा। आज का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। स्पोर्ट्स सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है बल्कि ये माइंड, आइडेंटिटी और सोल का गेम है और जो लोग अपनी पहचान के साथ इस गेम में एंटर करते हैं ना, वो सिर्फ विनर्स नहीं होते, वो हिस्ट्री लिखते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट सफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्रिकेट हो,
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
6: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आप सबका खैर मकदम है। समय कराम तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। कुरान मजीद दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन सवाल ये है क्या हर दौर में, खुसूसन आज के दौर में, क्या इफ़हाम व तफहीम के हवाले से भी लोगों ने इसका हक अदा किया है या नहीं। ख़ास तौर पर मग़रिबी दुनिया में बहुत से लोगों ने कुरान को पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसके उसलूब, उसकी ज़ुबान और उसके अंदाज़ बयान को पूरी तरह समझ न सके। 19वीं सदी में ब्रिटानिया के मशहूर मुफक्किर और मौर्रख थॉमस कार्लाइल ने हीरो एंड हीरोस वर्शिप के उन्वान से मशहूर लेक्चर्स दिए। इन लेक्चर्स में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम पैगंबर और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर पेश किया। उस ज़माने में ये बात ब्रिटानवी माशरे के लिए गैर मामूली बल्कि बाज़ हलकों के नज़दीक हैरान कुन थी, क्योंकि उस दौर में बरतानिया की मुस्लिम दुनिया के कई इलाकों में सियासी और फौजी मौजूदगी थी और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ आम थी। उसी माहौल में कुछ ऐसे इंसाफ पसंद मगरबी अहले इल्म भी थे जिन्होंने महसूस किया कि इस्लाम और यूरोप के दरमियान असल मसला जंग नहीं बल्कि एक दूसरे को न समझना है। उन्हीं में से एक नाम सर एडविन अर्नॉल्ड का भी है जो मशहूर अखबार डेली टेलीग्राफ के मुदीर थे। उन्होंने पहले बुद्धमत के तारुफ के लिए अपनी मारूफ किताब द लाइट ऑफ एशिया की लिखी ताकि अंग्रेज अवाम बुद्धमत को सही अंदाज में समझ सकें। बाद में उन्होंने इस्लाम के बारे में भी एक किताब द पर्ल्स ऑफ फेथ तसनीफ की, क्योंकि वो चाहते थे कि मगरबी दुनिया इस्लाम को तासुब के बजाय इल्म और तहकीक की बुनियाद पर समझे। थॉमस कार्लाइल ने कुरान के बारे में एक दिलचस्प बात भी लिखी। उन्होंने कहा कि कुरान उन मुश्किल तरीन किताबों में से है जिन्हें उन्होंने पढ़ा। उनके जहन में सवाल

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मासलामा
1: बस बहुत हो गया रूटीन नीड एन एस्केप एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ एफएम 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन यहां ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se, Desi.
3: Maximum music, maximum fun.
4: On FM 107, Dil Se, Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे अब्दुल्ला अल खुलैफी के बारे में। अब्दुल्ला अल खुलैफी कतर के उभरते हुए मोटर स्पोर्ट सितारों में से एक नाम माना जाता है। उन्होंने कम उम्र से ही रेसिंग और हाई स्पीड कॉम्पिटिशन में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत के जरिए मुल्क की और बैनुल अक्वामी सतह पर पहचान बनाई। उनकी ड्राइविंग स्टाइल में रफ्तार के साथ स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन भी नजर आता है, जो उन्हें मुश्किल ट्रैक्स पर भी मजबूत मुकाबला करने के काबिल बनाता है। कतर में मोटर स्पोर्ट्स की तरक्की के साथ अब्दुल्ला अल खुलैफी जैसे ड्राइवर्स ने टैलेंट के लिए मिसाल बन रहे हैं। वो ट्रेनिंग, फिटनेस और टेक्निकल समझ पर खास तवज्जो देते हैं, क्योंकि मॉडर्न रेसिंग सिर्फ तेज गाड़ी चलाने का नाम नहीं बल्कि प्रेसिशन और

0: हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों लिमोजिन चलाने

0: लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट हमारी तवानाई और मेटाबॉलिज्म पर कैसे असरअंदाज होता है। मेटाबॉलिज्म तो आपको पता है, उस अमल को कहते हैं जिसके जरिए हमारा जिस्म खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। रात भर सोने के बाद जिस्म की तवानाई कम हो जाती है और सुबह का जो नाश्ता है वो मेटाबॉलिज्म

0: को एक्टिव करता है और जिस्म को दिन भर काम करने के लिए ईंधन फ्राहम करता है। जो अफराद नाश्ता नहीं करते वो अक्सर सुबह के वक्त सुस्ती, कमजोरी और तवज्जो की जो कमी है वो महसूस करते हैं। इसके बरक्स जो अफराद जूस अच्छा नाश्ता करते हैं तो मतवाजन नाश्ता करने में खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखने यानी उसका जो बैलेंस है उसे रखने और फिर हमारे जिस्म को मुसलसल जो एनर्जी है या तवानाई फराहम करने में मदद देता है। बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो की जा रही हैं कि नाश्ता जो है कितना हेल्पफुल है, तो तहकीकात से ये भी साबित हुआ है कि ब्रेकफास्ट वज़न को भी बैलेंस में रखता है और बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जब आप दिन का आगाज़ एक अच्छी ग़िज़ा से करते हैं तो बाद में गैर ज़रूरी भूख, मीठी या चिकनाई वाली अशिया खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। सेहतमंद नाश्ते के लिए जैसे कि बोरिज है या जो होल ग्रेन ग़िज़ा है वो आप लीजिए। ताज़ा फल, अंडे, लोबिया और दालें उसमें आप ले सकते हैं और इसी तरह लो फैट जो मिल्क है या योगर्ट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह के वक्त ज़्यादा मीठी अशिया जैसे केक है, पेस्ट्री है या मीठे मशरूबात हैं उनसे ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये वक्ती तवानाई तो देते हैं लेकिन बहुत जल्द थकन और कमजोरी का एहसास भी हो सकता है। पानी पीना नहायत जरूरी है। दिन का आगाज एक गिलास पानी से कीजिए ताकि जिस्म जो है वो हाइड्रेट रहे। अगर आपको सुबह नाश्ते करने की आदत नहीं तो इब्तदा किसी हल्की गिज़ा जैसे कि एक केला है, एक कप दही है या चंद बादाम है उनसे कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, सेहतमंद नाश्ता दिन भर की तवानाई, बेहतर मेटाबॉलिज्म और अच्छी सेहत की बुनियाद है। सेहतमंद रहिए, मतवाजन ग़िज़ा खाइए और अपने दिन का आगाज एक बहुत ही अच्छे से नाश्ते से कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum everyone. मैं हूँ ज़फ़ा और आप सुन रहे हैं Eco Switch on FM 107 Qatar. देखिए भाई, हर एपिसोड में हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी लाइफ को भी बेटर बनाती हैं और हमारी अर्थ को भी बेटर बनाती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली एप्स। अच्छा, अब नाम सुनते ही शायद आप भी भाई यही सोचेंगे कि भाई सफा आप भी तो बचा सकती हैं एनवायरनमेंट को, और जवाब है बिल्कुल भाई। देखिए, मैं भी बचा सकती हूँ, मैं भी सुपर सफा हूँ, आखिर बिल्कुल ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल हमारा स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं रहा, ये हमारा वॉलेट भी है, डायरी भी है, कैमरा भी है, शॉपिंग असिस्टेंट भी है, कभी कभी तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। तो फिर अगर ये इतने सारे काम कर सकता है तो एनवायरनमेंट के लिए ये कुछ क्यों नहीं कर सकता? जरा सोचिए, आप सुबह सुबह आंख खुलती है आपकी और सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? उठते पानी का ग्लास पीते हैं? नहीं। मसवाक करते हैं? शायद उस पे भी नहीं। फोन का अलार्म बंद करते हैं, अपने मैसेजिंग की एप्स चेक करते हैं, फिर कभी कभी तो वेदर भी देख लेते हैं। वेदर ना भी देखें तो सोशल मीडिया तो जरूर, एक आंख से एक आंख बंद होगी और एक आंख खुली भी होगी, और उससे हम अपना फोन चेक कर रहे होते हैं, है कि नहीं? मतलब हमारी सुबह जो है वो हमारे फोन से शुरू होती है और रात भी हम इसी फोन पर ही खत्म करते हैं अपनी। तो भाई अगर हम हर रोज इतना टाइम अपने फोन के साथ गुजार रहे होते हैं तो क्यों ना इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाया जाए, एक ऐसा हेल्पर बना दिया जाए जो हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेंडली चॉइसेस हमारी करने में मदद करे, हमें सिखाए। तो भाई एक बात बताएं, फोन की बैटरी जब आपकी 15% होती है या 20% होती है तो क्या होता है? हलचल मच जाती है ना, अचानक से हर इंसान क्या करने लगता है, स्विच ढूंढने लगता है कि भाई मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे कहाँ लगाऊं। कोई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पावर बैंक लेकर साथ में घूम रहे होते हैं, बहुत ही कोई ऊंची चीज होते हैं वो, कि उनको ये होता है कि एक सेकंड भी हमारा फोन के बगैर ना गुजरे। तो भाई इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो जब घर की लाइट्स बिना जरूरत के जल रही होती हैं, या एसी खाली रूम में चल रहा होता है, या फ्रिज का खाना एक्सपायर होकर डस्टबिन में चला जाता है, तब हम इतना पैनिक क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? शायद इसीलिए क्योंकि हमें उस वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इको फ्रेंडली एप्स असल में वही नोटिफिकेशन बन जाती हैं साथियों। ये हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ फोन की बैटरी नहीं, अर्थ की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ऐसी एप्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, या रोजाना ट्रैवल करते हुए कितना कार्बन इमिशन क्रिएट कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब नंबर्स हमारे सामने आते हैं तो आदमी खुद ही सोचने लगता है कि भाई चलो इस बार कुछ थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ। इसीलिए कहते हैं भाई कि अवेयरनेस ही चेंज का पहला और सीधा रास्ता होती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ग्रोसरी शॉपिंग की बात करते हैं, ठीक है? मुझे यकीन है बहुत से लोगों के साथ ये मामला होता होगा, या ये हुआ होगा कि मार्केट से आप दही लेकर आए हैं और घर आकर पता चलता है कि भाई फ्रिज में पहले से ही एक डब्बा रखा हुआ है। ये मेरे साथ भी एक दो दफा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद एक्सपायरी डेट गुजर जाती है और सीधा क्या होता है, वो डब्बा हमें फेंकना पड़ जाता है, कहाँ? डस्टबिन में। पैसा भी गया और खाना भी वेस्ट हुआ। तो भाई आजकल फूड मैनेजमेंट एप्स आपको ये याद दिलाती रहती हैं कि घर में ज्यादा चीज ऑलरेडी मौजूद है।

0: और किस चीज को पहले यूज करना चाहिए। कुछ एप्स तो रेसिपीज भी सजेस्ट कर देती हैं भाई, मतलब फ्रिज में जो आपका खाना बचा हुआ है ना, उसी से आप नया खाना और बना सकते हैं। एनवायरमेंट भी खुश रहेगी और आपका वॉलेट भी इससे बचा रहेगा भाई। और जब बात ट्रैवल की हो तो टेक्नोलॉजी वहाँ भी काम करती है भाई। देखें, हम अक्सर शॉर्टेस्ट रूट चूज करते हैं, लेकिन हर शॉर्टेस्ट रूट फ्यूल इफेक्टिव नहीं होती। देखें, कुछ नेविगेशन एप्स ना ट्रैफिक को देखते हुए ऐसी रूट्स सजेस्ट करती हैं जहाँ गाड़ी कम रुकती है। जब गाड़ी कम रुकेगी तो फ्यूल भी कम जलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और कुछ एप्स कारपूल ऑप्शंस भी दिखाती हैं। सोचिए, अगर चार लोग अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में ऑफिस जाएं तो कितना फ्यूल बचेगा? ज्यादा ही बचेगा ना। अब अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में पुरानी बैटरीज, चार्जर्स या ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स जमा हो जाते हैं और फिर हमें उनका समझ में नहीं आ रहा था कि उनका करना क्या है। हमने होता क्या है, डस्टबिन में फेंक देते हैं या उन्हें हम संभाल कर रख लेते हैं। देखिए, इको फ्रेंडली रिसाइक्लेबल एप्स जो होती है ना, इसी कन्फ्यूजन को दूर करती हैं। ये बताती हैं कि कौन सी चीज रिसाइकल हो सकती है और उसे कहाँ जमा करवाया जा सकता है। जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है भाई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज एनर्जी मॉनिटरिंग एप्स हैं। अगर आप स्मार्टफोन डिवाइसेस यूज करते हैं तो ये एप्स आपको बताती हैं कि घर में इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा केयरफुल चल रहे हैं, लेकिन जब हम असली फिगर्स देखते हैं ना तो फिर जाके पता चलता है कि एसी या कोई और अप्लायंस अननेसेसरीली चल रहा है। भाई, इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई अवेयरनेस के बाद ना इंसान नेचुरली अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है और सिर्फ अर्थ का ही नहीं, अपने फोन का भी ख्याल रखता है। देखिए साथियों, अक्सर औकात तो ये होता है कि हम इतनी सारी एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं कि आधी एप्स का तो हमें नाम भी याद नहीं होता। बहुत सी एप्स बैकग्राउंड में बैटरी और इंटरनेट कंज्यूम करती रहती हैं, इसीलिए हर कुछ महीनों बाद फोन का क्लीनअप जरूर करें। जो ऐप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर दें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और जितना हो सके डिजिटल नोट्स और डिजिटल बिल्स का इस्तेमाल करें। पेपर कम यूज होगा तो भाई ट्रीज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट ही करेंगी ना उससे। चलिए, हम चलते हैं आज के इको से चैलेंज की तरफ। ठीक है, आज सिर्फ 10 मिनट अपने फोन को देखिए। ठीक है, देखिए कितनी सारी एप्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्टोरेज खा रही हैं आपका। उन्हें डिलीट कर दें, मेहरबानी करके उनकी जगह कोई इको फ्रेंडली ऐप इंस्टॉल कर लें। चाहे वो रिसाइक्लेबल गाइड हो, चाहे वो फूड रिमाइंडर हो, चाहे वो एनर्जी मॉनिटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानर हो। सिर्फ एक ऐप भी आपकी डेली रूटीन में पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है साथियों। तो भाई साथियों, अगली बार जब आप अपने फोन को अनलॉक करें ना, एक बार जरूर सोचिएगा, क्या ये डिवाइस सिर्फ मेरी लाइफ को इजी बना रहा है या मेरी अर्थ को भी थोड़ा सा बेहतर बनाने में मेरी मदद कर रहा है। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल, प्रैक्टिकल और ग्रीन आइडिया के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों से ताल्लुक मजबूत रखने के बारे में। रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाना और उनका ख्याल रखना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। ये सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है। अक्सर बिजी रूटीन की वजह से हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि उनसे राब्ता बरकरार रखें, उनका हाल पूछें और ज़रूरत पर उनकी मदद करें। यह अमल रिश्तेदारों में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करता है और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान और खुशगवार होती है। आज का अमल ये है कि किसी एक रिश्तेदार को कॉल करें या मैसेज भेजें और उनसे राब्ता बरकरार रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तरतीब व पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: और दोस्तों आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्त से टॉपिक पे. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत एक्साइटिंग भी, और आपको और हमारा इस टॉपिक को जानना जरूरी भी है. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एआई गवर्न्ड सिटीज. देखिए एआई गवर्न्ड सिटीज यानी ऐसे मुस्तकबिल के शहर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर चीज को मैनेज करेगी, ट्रैफिक से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके सिक्योरिटी. वैसे आज के दौर में भी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर पूरा जो शहर है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करेगा जो रियल टाइम डेटा देखकर डिसीजंस लेगा. अब एआई गवर्न सिटीज है क्या? एआई गवर्न सिटीज असल में एक तरह की स्मार्ट सिटीज का अपग्रेडेड वर्जन होगा. स्मार्ट सिटीज में सेंसर्स, कैमरास, इंटरनेट यूज होते हैं, लेकिन एआई गवर्न सिटीज में सिस्टम खुद ब खुद डिसीजंस लेगा. यहाँ हर जगह सेंसर्स लगे होंगे रोड्स पर, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और ये सब डेटा एआई सिस्टम

फॉरवर्ड करते रहेंगे पास ऑन करते रहेंगे एआई फिर इस डेटा को एनालाइज करके खुद ब खुद फौरन से फैसला करेगा मिसाल के तौर पे अगर ट्रैफिक जाम हो रहा हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सिग्नल चेंज कर देगा इस तरह शहर एक लिविंग सिस्टम बन जाता है जो हर वक्त सिचुएशन को समझकर एडजस्ट करता रहेगा अब ट्रांसपोर्टेशन में एआई का रोल किस तरह का होगा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर सिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आज भी दुनिया के बहुत से शहरों में एआई यूज हो रहा है ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर और बहुत सारी चीजें एआई ट्रैफिक सिग्नल को रियल टाइम कंट्रोल करता है अगर किसी रोड पे ज्यादा कार्स हैं तो ग्रीन सिग्नल ज्यादा देर तक जो है वो रहेंगे अगर रोड खाली हो जाए तो सिग्नल जल्दी चेंज अपने आप हो जाएंगे इससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोगों का टाइम भी बच जाएगा वहीं अगर मैं बात करूं एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तो फ्यूचर में गाड़ियां खुद चलेंगी यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी इन गाड़ियों में एआई सेंसर्स और कैमरास होते हैं जो रोड सिग्नल और दूसरी गाड़ियों को देखकर डिसीजन लेते हैं ये सिस्टम एक्सीडेंट्स को भी कम करेगा क्योंकि एआई थकता नहीं है और हर वक्त फोकस में रहता है वहीं पर अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो एआई बसेस मेट्रो

0: दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फास्ट और रिलायबल हो जाएगा। वहीं अगर अब AI हेल्थ केयर की बात करें तो इस सेगमेंट पे क्यों बात करें, अगले सेगमेंट पे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे इजाजत लूंगी और कल वापस आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि AI का रोल हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह का हो, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। स्मार्ट सिटीज के बारे में तो हम और आप अच्छे से जानते ही जानते हैं, लेकिन अब जानना है AI गवर्न्ड सिटीज के बारे में जो फ्यूचर को डोमिनेट करेंगी। तो कल यानी जब वापस इस सेगमेंट में आपकी हमारी मुलाकात होगी तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगी। आज थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कल आऊंगी तो बात करेंगे हेल्थ केयर के रोल के बारे में। फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FM 107 pe ek bar phir se istiqbal hai aap sabhi ka. Badhiya product, saste product. और फिर अपने मुल्क जा रहे हैं, ये सब कुछ ले जाना तो बनता है, खिलौने, बड़ों के लिए कुछ खजूर, ऑलिव ऑयल, है ना, ये सारी चीजें तो ले जाना बनता है. अब आया, वेल, ये आपके साथ स्कैम हो सकता है. ये फ्रॉड अवेयरनेस का शो खास डेडिकेटेड है इस गर्मी की छुट्टी पर जा रहे लोगों के लिए. अगर आप अपने मुल्क जा रहे हैं और कुछ खरीदना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे खजूर है, अबाया है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, कपड़े हैं, है ना, कई चीज़ लोग खरीदना चाहते हैं, और ऐसे में आपके साथ होता ये है कि फेसबुक पर या सर्च इंजन पे आप जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, या ऑनलाइन आप खरीदने की कोशिश करते हैं, और आपको बहुत सस्ते और रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे कई चीज़ें दिख रही होती हैं. इवन मोबाइल, है ना, लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, टैबलेट यहाँ से लेकर जाते हैं. तो ऐसे में उनको लगता है कि यार ये सस्ता सामान अगर अपने घर वालों को दे दे तो वो खुश हो जाएंगे. लेकिन ये एक स्कैम हो सकता है. कई बार ऑनलाइन वेबसाइट आपको ये यकीन दिलाता है कि फला दुकान यहाँ पर है, या तो आप दुकान पहुँचें, या तो आप स्टोर हमारे पहुँचें, या फिर आप ऑनलाइन हमसे ऑर्डर कर सकते हैं. तो ये बाकायदा आपके पास सोशल मीडिया पे या सर्च इंजन पे जब आप जाते हैं तो वीडियोस आती हैं. वीडियोस में स्टोर का पूरा व्यू दिया जाता है, वीडियोस में आपको यू नो शॉप दिखाई जाती है, और कहा जाता है कि आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं. अगर आप नहीं आ सकते, आप हमसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करें. इस तरह की वीडियोज भी अब आने लग गई है. जब आप उस स्टोर पे जाते हैं बताई हुई लोकेशन पे, तो वो लोकेशन पे वो स्टोर मौजूद ही नहीं होता. लेकिन ऐसे जो लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप फॉरेन पे का इस्तेमाल करें पेमेंट करने के लिए. कई बार ये जो स्कैमर्स होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना कि वो वेबसाइट बना पाए, इसलिए वो स्टोर का व्यू दिखा के या लोकेशन बता के आपसे कहते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आप बस मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए. वो व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेजते हैं, आपको वीडियो भेजते हैं, आपको क्वालिटी दिखाते हैं, और कहते हैं कि ये बस अफोर्डेबल प्राइस में आपको आपके घर पे बैठे बैठे

0: बैठे आज के आज मिल जाएगा। इसके लिए आपको बस बताना है कि ये पैकिंग करवाइए, आपकी पैकिंग हो जाएगी और फौरन पे जैसे ही आप करेंगे आपके घर कुछ एक घंटे में डिलीवर हो जाएगा सामान। और आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट डील है आज तक की कि घर बैठे सामान आ जाएगा और फिर हमें पेमेंट करनी है फौरन पे, और फौरन पे करते ही इजिली सब कुछ काम हो जाना है। लेकिन आपके साथ एक तरह का स्कैम भी हो सकता है। कभी भी किसी भी शख्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हो सकता है कि उसके पास फौरन पे जरूर हो लेकिन वो अपने मुल्क में हो, या फिर और कोई तरीका अपना रहा हो, या किसी दोस्त का नंबर उसने दिया हो और वो उसने दोस्त को स्कैम किया हो, है ना। मिसाल के तौर पे तो ये भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि फजील एक पेमेंट आपके पास आएगा, आप उसको रिसीव कर लेना और मुझे पेमेंट कर देना, अभी मैं फला मुल्क में बैठा हूं। हो सकता है मुझे ना पता हो कि ये एक स्कैम है, लेकिन ये आपके साथ स्कैम हो रहा है मुझको इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह की चीजें भी मार्केट में हो रही हैं और मेरा बताना आपको इस तरह के स्कैम के बारे में फर्ज है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में बताएं कि किसी भी अनजान शख्स को जिसको आप नहीं जानते हैं ऑनलाइन अगर आपको वो प्रोडक्ट दिखाता है, बताता है, जब तक आप उसके स्टोर नहीं पहुंच जाते या 100% श्योर नहीं हो जाते कि वो असली है, तो प्लीज पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों इसके तीन बचने के तरीके हैं। सबसे पहले उस शख्स को जानना है आपको, अगर वो आपके जानकारी में नहीं है तो उसको पेमेंट ना करें। स्टोर जाकर अगर आप पेमेंट करेंगे तो ज्यादा इजी है, इस तरीके से बच सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान तरीका है कि ऑनलाइन पर आप भरोसा करना बहुत कम कर दें, जब तक वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप भरोसा ना करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर हम बात करेंगे और ऐसे स्कैम्स के बारे में जिससे आप बच सकते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 to 5 फजील के साथ,
1: फजील के साथ
0: संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दिल से देसी।
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
5: टॉप 10 काउंटडाउन।
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एनआरआई बैंकिंग के हवाले से, जिसमें लोगों में काफी कंफ्यूजन होती है। भाई किस टाइप के बैंक अकाउंट आपको यूज करना चाहिए और मुख्तलिफ अकाउंट्स के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्या चीजें आप कर सकते हैं और क्या चीजें इन अकाउंट्स से मुतालिक आप नहीं कर सकते हैं। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको अपने एनआरई, एफसीएनआर और एनआरओ अकाउंट के हवाले से जरूर मालूम होना चाहिए। हर पॉइंट्स बहुत अहम है। ये अच्छा आइडिया होगा कि आप शो को एंड तक सुने या हमारे साथ रहें। आपको स्मूथ बैंकिंग ऑपरेशन के हवाले से काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा और क्लियर होगा इंशाल्लाह। चलिए इन 12 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो कैटेगरीज के बैंक अकाउंट्स हैं जो आप ओपन कर सकते हैं या जिन पर आप डिपेंड कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107।
0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों एज यूजुअल पहले कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उनको थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है एनआरई अकाउंट का। एनआरई का मतलब है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट उन एनआरआईज के लिए होता है जो अपनी फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फुल्ली रिपेट्रिएबल हैं, मतलब आप इन पैसों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के वापस अब्रॉड ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट इंडिया में कमाई गई इनकम को मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि रेंट, डिविडेंड्स या पेंशंस वगैरह। इस अकाउंट के फंड्स फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं होते बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। उसके बाद तीसरा नंबर एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये असल में एक टाइप का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है जो फॉरेन करेंसी में होता है। एनआरआईज अपनी फॉरेन अर्निंग्स को करेंसीज जैसे कि QAR, USD, GBP या यूरो वगैरह में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक्सचेंज रेट रिस्क से बचाता है, क्योंकि डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में ही रहता है। दोस्तों नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट वो अकाउंट है जहां आप अपना पैसा बिना किसी परमिशन के रिपेट्रिएट यानी अपने मुल्क वापस भेज सकते हैं। आप

पैसा इस अकाउंट में रख सकते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में हो या किसी और मोड में। अगर आपको ये पैसा इंडिया के बाहर चाहिए हो तो आप बैंकिंग चैनल के जरिए इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में रिपेट्रिएशन के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप पैसा रिपेट्रिएट कर सकते हैं जो एनआरओ अकाउंट में है, लेकिन ये फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इस वजह से एनआरओ अकाउंट को नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट कहा जाता है, जबकि एनआरई अकाउंट को रिपेट्रिएबल अकाउंट कहा जाता है। होप क्लियर।

कर सकते हैं किसी और एनआरई अकाउंट में किसी बैंक अकाउंट में जो इंडिया के बाहर हो मतलब आप पैसा फ्रीली रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपने या किसी और के एनआरओ अकाउंट में किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंडिया में हो ये सब चीजें एनआरई अकाउंट के जरिए पॉसिबल होती हैं मगर अगर आपके पास एनआरओ अकाउंट है तो आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे किसी और एनआरओ अकाउंट में दूसरा पॉइंट किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट में लेकिन अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट भी है और आप एनआरआई भी हैं तो ये फेमा लॉ के मुताबिक एक ऑफेंस है फेमा लॉ FEMA आप अपने खुद के SB अकाउंट से NRO अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही NRO अकाउंट से अपने SB अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप NRI हैं और ये अकाउंट इलीगल तरीके से होल्ड कर रहे हैं आप NRO अकाउंट का पैसा इंडिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो कहीं भी मत जाइएगा जुड़े रहिए हमारे साथ सुनते रहिए FM 107

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: आइए दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको इन बैंक अकाउंट से मिलता है। अगर आपको एनआरई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंडिया में टैक्स फ्री होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये एनआरई फिक्स डिपॉजिट है तो इंडिया में इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये इंटरेस्ट उस मुल्क में टैक्सेबल हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के टैक्सेशन रूल्स पर। एग्जाम्पल, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं तो ये इंटरेस्ट यूएस में टैक्सेबल होगा लेकिन इंडिया में नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर आप कतर या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री में हैं जहां इनकम टैक्स नहीं होता तो ये इंटरेस्ट ना इंडिया में टैक्सेबल होगा ना आपकी कंट्री में। आपको अपने मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इंडिया से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी कंट्री में टैक्सेबल है या नहीं। एनआरओ अकाउंट के केस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट मेंटेन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होता है चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हों। इस वजह से एनआरओ अकाउंट का पैसा कम टैक्स एफिशिएंट होता है और वहीं एनआरई अकाउंट का पैसा ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है सिर्फ इंडियन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये टैक्सेशन सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए है। अगर आपने अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में टैक्सेबल होती हैं, चाहे अकाउंट एनआरई हो या एनआरओ। टैक्स फ्री स्टेटस सिर्फ एनआरई अकाउंट के इंटरेस्ट पर अप्लाई होता है और अगर आपका एफसीएनआर अकाउंट है तो उसका इंटरेस्ट भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का टेन्योर क्या है। अगर आप एनआरई या एनआरओ अकाउंट के जरिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो दोनों में टेन्योर का फर्क होता है। पहला पॉइंट, अगर आप एनआरई अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका मिनिमम टेन्योर 1 साल होगा और मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है। लेकिन अगर आप एनआरओ अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका टेन्योर सिर्फ 1 हफ्ते से लेकर 10 साल तक हो सकता है। ये फर्क समझना जरूरी है जब आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की। कैसे TDS अप्लाई होता है पैसे पर जो आपके एनआरई और एनआरओ अकाउंट में रखे गए हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका एनआरई अकाउंट है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई TDS अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट इंडिया में ऑलरेडी टैक्स फ्री है, इसलिए किसी को TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अगर पैसा आपके एनआरओ अकाउंट में है, चाहे वो SB सेविंग बैंक अकाउंट हो या RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट हो या FD यानी फिक्स डिपॉजिट, तो TDS अप्लाई होता है। जब पैसा आपको पे किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड पर तो बैंक TDS डिडक्ट करता है। ये TDS हाईएस्ट रेट पर अप्लाई होता है जो तकरीबन 30% प्लस एप्लीकेबल

सही नहीं है। TDS सिर्फ एक डिडक्शन है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का पता टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद चलता है। अगर आपका 30% TDS डिडक्ट हुआ है लेकिन आप उस साल टैक्स देने के लायबल नहीं हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत रखिए कि अगर TDS डिडक्ट हो गया है तो आपको वो पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। आप रिफंड ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब इंटरोपरेशन NRE और NRO अकाउंट के दरमियान ट्रांसफर के बारे में आपको बताता हूँ। आप NRE अकाउंट से पैसा NRO अकाउंट में फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप NRO अकाउंट से पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल कोर्स में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये मुमकिन है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, बैंक में कुछ फॉर्म्स फिल करने होंगे और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके बाद ही आप NRO अकाउंट का पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत रखिए कि NRO से NRE में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोसीजर है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों, आप NRE और NRO अकाउंट के अंडर इन टाइप्स के अकाउंट्स होल्ड कर सकते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या RD अकाउंट, या फिक्स डिपॉजिट यानी FD अकाउंट। ये टाइप्स दोनों अकाउंट्स के लिए सेम है। NRE और NRO दोनों में आप इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सामईन, वापस आने वाले NRIs के लिए ऑप्शन की बात करें तो अगर आप एक NRE अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और आप इंडिया वापस आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। आपको अपना NRE अकाउंट क्लोज करना होता है या उस अकाउंट का पैसा आप FCNR अकाउंट या RFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। RFC अकाउंट का मतलब है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये ऑप्शन सिर्फ NRE अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अगर पैसा आपके NRO अकाउंट में है तो आप डायरेक्टली उस पैसे को RFC या FCNR अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस केस में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे जब आप अभी भी NRI हैं तो NRO अकाउंट का पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होते हैं। दूसरा, उसके बाद आप NRE अकाउंट से पैसा FCNR या RFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के मुताबिक। तो अगर आप वापस जा रहे हैं तो ये प्लानिंग जरूर करें ताकि आपका पैसा एफिशिएंटली मैनेज हो सके। समीन, आइए अब जान लेते हैं कि आप अपने अकाउंट किस तरह होल्ड कर सकते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट सिंगल अकाउंट के तौर पर होल्ड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आप ही ओनर होते हैं, या फिर आप ज्वाइंट अकाउंट भी होल्ड कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट के केस में अगर आपका NRE अकाउंट है तो आप ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं किसी NRI, PIO या OCI के साथ। क्या आप रेसिडेंट इंडियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर आप रेसिडेंट इंडियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्ड करते हैं तो अकाउंट का टाइप होगा फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, और रेसिडेंट अकाउंट होल्डर आपका इमीडिएट रिलेटिव होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन के साथ ये अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी इसलिए दी गई है ताकि अगर NRI का इंतकाल हो जाए तो वो पैसा सीमलेसली उसके रिलेटिव को ट्रांसफर हो जाए। इमीडिएट रिलेटिव में शामिल हो सकते हैं कौन कौन? वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर, सन इन लॉ या फिर डॉटर। आप इन रिलेटिव्स के साथ NRE या NRO अकाउंट जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट जानिए, सिर्फ NRI ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, रेसिडेंट रिलेटिव अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सेम रूल दोनों अकाउंट्स यानी NRE और NRO पर भी अप्लाई होता है। दोस्तों, एक और सवाल जो अमूमन जहन में आता है कि अकाउंट किस करेंसी में होल्ड किया जा सकता है, तो ये जानिए कि NRO अकाउंट के केस में आप सिर्फ इंडियन रुपीस में ही अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। इस अकाउंट में फॉरेन करेंसी का ऑप्शन नहीं होता। NRE अकाउंट के केस में आपका अकाउंट इंडियन रुपी में भी हो सकता है, जो कॉमनली NRE अकाउंट के नाम से जाना जाता है। आप अपना NRE अकाउंट फॉरेन करेंसी में भी होल्ड कर सकते हैं। इसको FCNR अकाउंट कहते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। FCNR अकाउंट के जरिए आप अपनी पसंद की फॉरेन करेंसी में पैसा रख सकते हैं, जैसे कतरी रियाल, US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, सिंगापुर डॉलर, UAE दिरहम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, हांगकांग डॉलर वगैरह, या कोई भी करेंसी जो आपके बैंकर के जरिए अवेलेबल हो। तो NRE अकाउंट के दो मोड्स होते हैं, रुपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी FCNR। दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कि वो कौन से क्रेडिट

0: क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के लिए हैं। एनआरई अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड मिलता है जो आप इंडिया में भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आपके पास एनआरई डेबिट कार्ड है तो आप इंडिया के बाहर भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट के केस में डेबिट कार्ड सिर्फ इंडिया में यूज हो सकता है। ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड होता है, इंटरनेशनल यूसेज अलाउड नहीं होती। क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड बैंक की डिस्क्रिशन पर होता है। आपको ट्रू क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, मतलब जिसमें आप पहले स्पेंड करें और बाद में पे करें। अगर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो सिक्योर्ड होता है, यानी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट पैसा रखना पड़ता है। आपको पैसा रेमिट करना होता है और बैंक उसको सिक्योरिटी के तौर पर होल्ड करता है। आखिर में उसके बाद बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट में पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट के केस में आप पैसा इंडिया के बाहर से रेमिट कर सकते हैं। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और एनआरआई के एनआरई अकाउंट से। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स के तौर पर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से किया हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिल रहा है और आप चाहते हैं कि वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो, तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से किया था। इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट देना होता है कि पैसा एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। सिर्फ चेक लेने से पैसा एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंफर्मेशन जरूरी होती है। एनआरओ अकाउंट के केस में आप पैसा इंडिया के बाहर से रेमिट कर सकते हैं। आप पैसा एनआरई अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और एनआरओ अकाउंट से। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंडिया में हो। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स के तौर पर, अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हो और आपकी इंडिया की इनकम जैसे रेंटल्स, डिविडेंड्स या कोई और इनकम सिर्फ एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकती है। तो दोस्तों, प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले में हर एनआरआई के लिए एक जरूरी मशवरा। चाहे आप कितने भी साल से इंडिया के बाहर रह रहे हो, हर साल के एंड पर एक जरूरी काम जरूर करें। अपने पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट निकालें, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में सेफ तरीके से मेंटेन करें। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए जरूरी होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए। अगर आपने एनआरई अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो जब आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलेंगी तो इंस्टीट्यूट आपसे प्रूफ मांगेगा कि पैसा एनआरई अकाउंट से दिया गया था। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होती हैं, 10, 15, 20 या 30 साल बाद मैच्योर होती हैं। उस वक्त अगर आप बैंक से स्टेटमेंट मांगेंगे तो रिट्रीव करना मुश्किल हो सकता है। बैंक ने डेटा आर्काइव कर दिया होगा और टाइम लग सकता है उसको वापस लेने में। इसलिए हर साल अपना एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड करें और उसको मेल फोल्डर या किसी सिक्योर जगह पर रख लें। दूसरा, इनकम टैक्स के लिए। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है, आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो भाई, ऐसे केसेस में अगर आपके पास एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे तो आप इजीली प्रूफ दे सकते हैं। तो जब तक आप एनआरआई हैं, हर साल अपने एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट के पूरे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। ये फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों, चलते चलते एक छोटी सी रिकैप करते हैं। पहला, एनआरई अकाउंट फॉरेन अर्निंग फ्रीली रिपेटरेबल और इंडिया में टैक्स फ्री होता है। दूसरा, एनआरओ अकाउंट इंडियन अर्निंग लिमिटेड रिपेट्रिएशन और इंडिया में टैक्सेबल होता है। और तीसरा, एफसीएनआर अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। इसका इंटरेस्ट भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मस्जिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की